0: करता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 लीटर से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पानी को इसमें छोड़ते हैं।
1: अच्छा, तो ये कुछ विशेषताएं हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की, और लाभ के बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
0: ड्रिप सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि उत्पादकता और गुणवत्ता। यानी कि टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को प्रतिदिन हमको जरूरी मात्रा में पानी देना है, उससे उन पर तनाव नहीं रहता है, ठीक है। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई से फल है, सब्जी है और कुछ अन्य फसलों के उत्पादन में देखा गया है कि 20-50% तक की बढ़ोतरी संभव है। दूसरा, पानी, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी दक्षता जो है पानी को लगाने की वो 80-90% है, और इससे हम प्रैक्टिकली पाया गया है कि 30-60% तक पानी जो है ना, जो हम लोग जनरल इरीगेशन करते हैं, जनरल सिंचाई करते हैं, उसकी तुलना में बचा सकते हैं। तो आज के डेट में ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि पानी बचाना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। फिर ज़मीन, आपका अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन है या लवण वाला है, क्षारयुक्त है, बंजर ज़मीन है, शुष्क ज़मीन है, पानी का कम रिसाव हो रहा है आपकी ज़मीन से, यानी कि नीचे पत्थर वगैरह है, या बहुत कम वर्षा वाला एरिया है, समुद्र तटीय ज़मीन हो, कैसा भी ज़मीन हो, आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं। जो कि हम लोग जो जनरल इरिगेशन करते हैं, सरफेस इरिगेशन जिसको बोला जाता है, सतही सिंचाई विधि, वो नहीं कर सकते हैं। फिर है रासायनिक खाद। हम जो सतही विधि से सिंचाई करते हैं उसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि पौधे तेज़ी से बढ़ें, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में हम पानी के साथ ही रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिंचाई के साथ साथ हम फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर भी एक ही साथ दोनों डाल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा समय का भी बचत होता है और साथ ही साथ हमारे पौधे के लिए भी वो बहुत ही अच्छा होता है।
1: बिल्कुल।
0: अगला है खरपतवार। अब किसान बंधु सभी जानते हैं कि जैसे ही हम सरफेस इरिगेशन या सतही सिंचाई करते हैं तो हमारे खेत में हर एक जगह पानी पहुँचता है। अब जहाँ जहाँ पानी पहुँचेगा खरपतवार भी उगेगा ही उगेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं किया जा सकता है। लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या है, हम चूंकि पौधे के जड़ के पास पानी देते हैं, इसकी वजह से खरपतवार उगेगा कहाँ, जहाँ पे पानी है, तो बहुत ही सीमित मात्रा में खरपतवार बनता है ड्रिप सिंचाई में, तो खरपतवार को हम बहुत हद तक इससे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल में कीट और रोग का प्रभाव है, तो टपक यानी कि ड्रिप इरिगेशन को हिंदी में टपक विधि भी कहा जाता है। इस विधि से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिनमें कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छे से डेवलप किए गए हैं। कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में ऑब्वियस है कि तब थोड़ी सी कमी आ जाएगी। फिर टपक सिंचाई में होने वाला खर्च जो है और कार्य क्षमता इसकी जो है, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति उपयोग के लिए आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा सा खर्च लगे, लेकिन आप एक बार जब लगा देते हैं तो सालों साल चलता रहता है, ठीक है। और कार्य क्षमता ऐसी है कि आप एक जगह बैठे बैठे आप पूरे खेत की सिंचाई को प्रबंध कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब हैं जो मुख्य लाभ हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बहुत सारे लाभ हैं जिस तरह आपने बताया, जैसे कि फर्टिगेशन के साथ साथ आप इस सिंचाई को कर सकते हैं, और अगर खरपतवार को आपको ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देना है तो आप, क्योंकि ये जो सिंचाई है वो पौधों के जड़ में ही पानी देती हैं, तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे लाभ हैं इसके। और डॉक्टर साहब, अगर घटक की बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं?
0: ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक हैं जैसे कि नंबर 1 है हेडर असेंबली, फिर फिल्टर्स होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन बेस्ड हो सकते हैं, सैंड फिल्टर हो सकते हैं, स्क्रीन फिल्टर हो सकते हैं, यानी किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें से फिल्टर का चुनाव कर सकते हैं। रसायन और खाद देने का साधन होता है, वेंचुरी कहते हैं, फर्टिलाइजर टैंक होता है, ये जो फर्टिगेशन सिस्टम में यूज होता है, यही एक वेंचुरी होता है और एक फर्टिलाइजर टैंक होता है। इसके अलावा पानी को लाने के लिए स्रोत से आपके खेत तक, वहाँ मेन लाइन का प्रयोग होता है, फिर मेन लाइन को हम फिर एक अलग दूसरे पाइप से जोड़ते हैं जो कि सब मेन पाइप कहा जाता है, ठीक है। सब मेन पाइप के बाद आपका वाल्व होते हैं, लैटरल लाइन लगते हैं सब मेन पाइप में, फिर बहुत सारे इमिटर्स होते हैं, और इमिटर्स भी बहुत तरीके के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन हैं, इनलाइन हैं, मिनी स्प्रिंकलर्स कहते हैं, कुछ जेट्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहले था हेडर असेंबली,

हेडर असेंबली मतलब बाईपास या नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि पानी एक बार उधर आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा, ठीक है। एयर रिलीज वाल्व, ये सब यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ जो हैं वो हेडर असेंबली में आते हैं। फिर आता है फिल्टर। चूँकि हम इसमें नोजल्स को यूज करते हैं, नोजल्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पानी जो है पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल, बालू वगैरह, कण, कोई भी दूसरा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नोजल है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें जाके फंस जाएगा, जिससे कि पानी हमारा निकलेगा नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम साफ पानी को यूज करें। साफ पानी को यूज करने के लिए क्या करना होगा, जब हम कुएं से या किसी स्रोत से पानी लेंगे तो उस पानी को हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद ही हम अपने मेन लाइन में छोड़ेंगे। तो फिल्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोसाइक्लोन टाइप फिल्टर हो सकता है, सैंड एंड स्क्रीन फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, काई आदि से ड्रिपर्स के छिद्र को जो है ना बंद होने की संभावना रहती है, और इस प्रक्रिया में स्क्रीन फिल्टर को यूज कर सकते हैं, सैंड फिल्टर या सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक का भी उपयोग किया जा सकता है। पानी में रेत अथवा मिट्टी होने पर हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर या फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब फिल्टर हैं हमारे। अब सैंड फिल्टर के बारे में बोले तो सैंड फिल्टर होता है, ऐसा होता है कि एक बक्सा टाइप का है, समझिए, उसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ढक्कन को खोलकर बैकवॉश चालू करने के बाद फिल्टर के अंदर ना हाथ से उसमें बहुत सारा रेत जमा हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिल्टर से आने वाला पानी जो है ढक्कन से ऊपर ना निकलने दें, ये भी ध्यान रखना है। हाथ से रेत साफ करते समय अंदर के काले रंग के फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं, उसको ऐसा नहीं हो कि बार बार टच करके उसको डिस्टर्ब करें, अदरवाइज वो टूट जाएगा। इससे रेत के स्क्रीन फिल्टर में जाने की आशंका बढ़ जाएगी और आपका फिल्टर काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा एक स्क्रीन फिल्टर होता है, सैंड फिल्टर अगर नहीं छान पाए आपके पानी की गंदगी को, वैसे केस में आपको स्क्रीन फिल्टर की तरफ जाना है, ठीक है। तो सैंड फिल्टर द्वारा नहीं छनने वाला जो बारीक कचरा होता है उसको हम स्क्रीन फिल्टर लगा के साफ करते हैं। इसके बाद रसायन और खाद देने का साधन, जो कि फर्टिगेशन बेसिकली कहा जाता है। तो टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक या फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। वेंचुरी क्या है, तो ये एक दबाव के अंतर पर चलने वाला यंत्र है, और रासायनिक प्रक्रिया के समय खाद और रसायन जो है ना दोनों इसके द्वारा उचित ढंग से प्रदान किए जा सकते हैं पौधों के पास, और इस पद्धति से तरल पदार्थ पानी में उचित गति से डाले जा सकते हैं, और इसके द्वारा 60 से 70 लीटर प्रति घंटे की गति से खाद को हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक घंटे में 60 से 70 लीटर फर्टिलाइजर का घोल को हम अपने खेत में डाल सकते हैं, और डालेंगे कहाँ, हमारे पास एक टैंक होना चाहिए, जो टैंक होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर टैंक, यानी कि उसी टैंक से निकालेंगे ना खाद को, और वो पाइप के थ्रू भेजेंगे नोजल के पास, ठीक है, या ड्रिपर्स के पास। तो इस टैंक में तरल खाद भरकर दाब नियंत्रण से रासायनिक द्रव्य और खाद तुरंत संयंत्र के अंदर छोड़े जा सकते हैं, यानी कि एक टैंक है जिसमें हमारा खाद का घोल बना रहता है, उस घोल से हम वेंचुरी के माध्यम से हम उस खाद को भेजते हैं मेन लाइन में, मेन लाइन से हो जाता है सब मेन में, सब मेन से जाएगा वो लेटरल में, और लेटरल से जाएगा आपके ड्रिपर्स या नोजल, जो समझ किसान, ठीक है। तो ड्रिपर्स में जाएगा और वहाँ से पानी के साथ साथ आपका रसायन भी निकलता रहेगा। इसके बाद हमने बार बार टर्म यूज किया मेन लाइन। तो मेन लाइन है यह पंप से सब मेन तक, यानी कि पानी के स्रोत से सब मेन पाइप तक जोड़ने का एक साधन है, पानी पहुँचाने के लिए उपयोगी है। अब सब मेन क्या है, तो ये मेन को लैटरल पाइप से जोड़ता है। लैटरल पाइप सबसे पतले होते हैं, इनसे थोड़ा मोटा होगा आपका सब मेन, यानी कि इनका डायमीटर या व्यास ज़्यादा होगा, और सब मेन से ज़्यादा व्यास होता है मेन लाइन का, ठीक है, और वो जाएगा लैटरल के पास। फाइनली लैटरल क्या होता है, लैटरल प्लास्टिक के पतले ट्यूब्स होते हैं, उनको पॉली ट्यूब भी कहते हैं। सब मेन का पानी पॉली ट्यूब द्वारा पूरे खेत में हम पहुँचा सकते हैं पौधों के पास। हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार पॉली ट्यूब के ऊपर हम ड्रिपर लगा देंगे, और लैटरल जो होते हैं ना वो LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन से बने होते हैं। अब जब लैटरल आ गया तो लैटरल के ऊपर अब हमको इमीटर्स या ड्रिपर्स लगाने पड़ेंगे। तो इमीटर्स और ड्रिपर्स क्या हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है ड्रिप सिंचाई का। ऑनलाइन हो, इनलाइन ड्रिपर्स का

प्रति घंटा प्रवाह और संख्या फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान ऐसे ही कुछ भी लगा लिया, उसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा पौधा लगाया है, उस पौधे की डेली की जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से ही उसके खेत का जो ड्रिप सिंचाई की विधि है उसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जगह जगह हम वाल

0: पानी के प्रवाह और दबाव को हमको नियंत्रित करना होता है और ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि पानी मेन लाइन से सबमेन में आएगा, सबमेन से लेटरल में जा ही नहीं रहा, जब वो दबाव से नहीं जाएगा तो ड्रिपर से पास ही नहीं होगा पानी, ठीक है। तो हमको बहुत सारे वाल्व्स का प्रयोग करते हैं, सबमेन के शुरू में एयर रिलीज वाल्व यूज करते हैं या वैक्यूम रिलीज वाल्व, बहुत ही जरूरी है लगाना, अन्यथा क्या होगा पंप को हम जैसे ही बंद करेंगे हवा के साथ साथ मिट्टी के कण भी अंदर खींच जाएंगे और वो सीधे चले जाएंगे आपके ड्रिपर्स के पास और उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बंद कर देंगे और जैसे ही बंद होगा तो आपके ड्रिप सिंचाई विधि प्रणाली से एक भी पानी आपके पौधों तक नहीं पहुंचेगा, ना आप इरिगेशन कर सकते हैं ना ही आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमीटर्स और ड्रिपर्स का रेगुलर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि आप रेगुलर इसका देखभाल करते रहें, इसको चेक करना होता है
1: जी। तो ये बातें हो गई हैं ड्रिप सिंचाई के घटकों की। और डॉक्टर साहब, जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जो हम संयंत्र यूज़ करते हैं, इसका यंत्र जो होता है, तो उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, तो कैसे कर सकते हैं उनकी अच्छी देखभाल?
0: सबसे पहले हर एक दिन पंप को शुरू करने के बाद क्या करना है कि संयंत्र के दबाव स्थिर होने पर, मतलब प्रेशर को कॉन्स्टेंट होने पर, सैंड फिल्टर जो होता है उसमें लगा हुआ, उसको बैक वॉशिंग करना चाहिए डेली, ये काम होना चाहिए। और हाइड्रोसाइक्लोन जो है उसको हर एक दिन सफाई करने के बाद हर 5-6 घंटे, या पानी की गुणवत्ता, अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको सफाई करना पड़े। तो आपका पहला काम हो गया कि आप जो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, इसकी डेली सफाई कर रहे हैं। अगर आप सैंड फिल्टर के साथ साथ अगर आप दूसरे फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई करें, सुनिश्चित करें। फिर फिल्टर की सफाई होने के बाद हमको क्या करना है, हेडर असेंबली में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि नॉन रिटर्न वाल्व होगा, एयर रिलीज वाल्व होगा, बाईपास सिस्टम होगा, तो उन सबों को आप देख लें कि उचित दबाव पर वो काम कर रहे हैं या नहीं, या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं जाम तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर खेत में निरीक्षण कर आपको ये भी देख लेना चाहिए कहीं किसी पाइप में टूट फूट तो नहीं हुआ है या कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है। अगर वो लीकेज हो गया है तो आप उसे ठीक कर लें, टूट फूट हुआ तो उसे ठीक कर लें। पाइप अगर कहीं मुड़ा हुआ है या दबा हुआ है तो उसको तुरंत सीधा करें,
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई में आप सभी ड्रिपर्स को आपको चेक करते रहना पड़ेगा रेगुलर कि पानी हर एक से बराबर मात्रा में निकल रहा है, मतलब ठीक से निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो उस ड्रिपर को आपको देखना पड़ेगा, कुछ फंस गया है या जो भी हुआ है तो उसको आपको रिपेयर करना है। फिर है टपक सिंचाई प्रणाली जो है, पूरा जब एक बार जब हम चला देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका ज़मीन जो है पूरे का पूरा एक तरीके से भीगा है कि नहीं, कहीं पे हो सकता है पानी गया हो कहीं पे नहीं, यानी जहाँ पे नहीं गया है वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे पानी का जो ड्रिपर लगाए हैं हमने वो ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपका जो ड्रिपर्स हैं वो सही जगह पर लगे हैं कि नहीं, यानी कि पौधा है यहाँ पे और आपने कहीं 2 मीटर दूर कहीं पे लगा दिया तो उससे तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पौधे को पानी चाहिए तो उसके जड़ के पास वो लगा रहना चाहिए। साथ ही साथ लैटरल और इनलाइन का अंतिम छोर जो है ना उसको खोल कर पानी को 1-2 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें ताकि पाइप में जितनी भी गंदगी हो, ठीक है ना, लैटरल पाइप को बोल रहे हैं, जितनी भी गंदगियाँ हो सारी के सारे निकल जाएं बाहर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हुई यंत्र की, और फर्टिगेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है और साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदा हो सकता है।
0: फर्टिगेशन दो शब्दों, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक जिसको हिंदी में उर्वरक कहते हैं, और साथ ही साथ इरिगेशन जिसको हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि उर्वरक भी डालना है और सिंचाई का पानी भी डालना है। जब दोनों काम एक साथ होता है तो उसको हम लोग उर्वरकीकरण या फर्टिगेशन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाना, यही इसका काम है। ड्रिप सिंचाई में जिस प्रकार ड्रिपर के द्वारा बूंद बूंद करके जल दिया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई जल में मिश्रित करके उर्वरक को हम पौधे के जड़ के पास ड्रिपर के माध्यम से गिराते हैं। फर्टिगेशन उर्वरक जो है देने की एक सर्वोत्तम और अति आधुनिक विधि है, और फर्टिगेशन को फसल एवं मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरक और जल का समुचित स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी तकनीक के रूप में भी माना जाता है। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। फर्टिगेशन

0: जल और पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि दर और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा ही पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर जब भी जरूरत हो हम दे सकते हैं। फर्टिगेशन पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की जड़ों के द्वारा उनका उपयोग बढ़ा देता है। यानी कि हम उर्वरक को हम पौधे के पास दे रहे हैं, ना कि पूरे फील्ड में फेंक रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम पौधे को जड़ के पास पानी दे रहे हैं तो पौधे पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा ज़्यादातर। वहीं हम हर जगह पानी डाल देंगे तो पौधा तो उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। उसी तरीके से फर्टिलाइज़र अगर हम पूरे खेत में फेंक दें तो पौधा को तो ज़रूरत ही नहीं है। वो जहाँ पे फेंक दिया है उर्वरक, वहाँ पे वो खरपतवार उगाएगा, है ना। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि पौधे के जड़ के पास देते हैं। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की एक विश्वसनीय और सुरक्षित विधि है। इससे पौधों की जड़ों को हानि पहुंचने का भय नहीं रहता है। साथ ही साथ फर्टिगेशन से जल और उर्वरक जो है पौधों के मध्य न पहुंचकर सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं, इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम से कम संख्या में लगते हैं।
1: तो ये कुछ लाभ हैं फर्टिगेशन के, और आपने जाना कि फर्टिगेशन क्या है। और अब बात करते हैं सतही सिंचाई की। साथ ही अगर ड्रिप सिंचाई की बात करें तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सतही सिंचाई विधि जो है इससे कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि।
0: सबसे पहला है जल की बचत। ड्रिप सिंचाई में हम पहले भी बोल चुके हैं कि 60% से लेके 70% तक के पानी की बचत की संभावना है सतही सिंचाई की तुलना में। सिंचाई का जल जो है सतह पर बहकर और ज़मीन में नीचे नहीं जाता है, जो कि सतही सिंचाई में होता है। जबकि सतही सिंचाई में होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी सूरज की गर्मी में इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, वो हमारा बर्बाद हो गया। कुछ पौधे जो है अपने जड़ों में ले पाते हैं, और मैक्सिमम पानी तो ऐसे ही रहता है, जो पौधे से कोई लेन देन नहीं है। और जो ज़्यादा पानी डाल दिया वो पौधे के जड़ के नीचे चला गया, ठीक है, तो वो पानी तो पौधे का किसी काम का ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कम दक्षता के साथ हम लोग सतही सिंचाई करते हैं, जिससे कि जल की बचत जो है ड्रिप सिंचाई में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी तरीके से जल के उपयोग की दक्षता है, तो ड्रिप सिंचाई में ये पाया गया है कि हम 80-90% तक हम अगर सोर्स से पानी दे रहे हैं तो उपयोगी होगा पौधे के बढ़ोतरी में। जबकि सतही सिंचाई में सिर्फ 30-50% अगर बहुत अच्छा सेटअप बनाया हो तब। फिर साथ ही साथ श्रम की बचत है। ड्रिप संयंत्र जो है उसको लगभग प्रतिदिन शुरू और बंद करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपको क्या करना है, आपके पास एक बटन होता है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। बस उसका जो फिल्टर है उसको आपको देख लेना है, एक बार पूरे सिस्टम को चला के देख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कहीं खराबी है अथवा नहीं। हाँ, अगर खराबी है तब आपको लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है, अथवा लेबर की बहुत ही नगण्य ज़रूरत है। जबकि सतही सिंचाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है श्रम की। साथ ही साथ खरपतवार की समस्या, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ड्रिप सिंचाई में चूँकि पानी पूरे खेत को नहीं भीगाता, इसलिए खरपतवार की संभावना बहुत ही कम होती है। जबकि सतही सिंचाई में पूरे खेत को हम भीगाते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और उस पर खर्च भी हमारा ऑब्वियस है बढ़ेगा। फिर खारे जल का उपयोग, अगर हम ड्रिप सिंचाई यूज करते हैं तो हम बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं, जिससे कि हम उसको यूजेबल बना के, मतलब उपयोगी बना करके हम खेतों में भेज सकते हैं। लेकिन सतही सिंचाई जब हम करेंगे और खारे जल के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा खेत ही लवण, मतलब साल्टी, ये सब हो गया, और खेत बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। अगला है कि बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की समस्या। देखिए, पौधों के आसपास वायुमंडल में नमी और सांद्रता जो होती है ना, वो कम होती है ड्रिप इरिगेशन में, इसलिए पौधों में बीमारियों और कीड़े मकोड़े लगने की संभावना कम रहती है। जबकि सतही सिंचाई में बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगला फायदा यह है कि अगर मेरे पास किसी भी मिट्टी हो, किसी भी तरीके की मिट्टी हो, हम सिंचाई वहाँ पर कर सकते हैं, हम पौधा मतलब वहाँ पर उगा सकते हैं। लेकिन सतही विधि में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा रह सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो वहाँ पे पानी जाएगा नहीं, जो बहुत ज़्यादा नीचे होगा वहाँ बाढ़ आ जाएगी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पौधा हमारा ना नीचे जगह पे उगेगा ना ऊपर जगह। लेकिन ड्रिप में ऐसा नहीं है, चूँकि पाइपों से पानी जाते हैं और पौधे के पास ही जाके गिरने हैं उनको, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हमारे में नहीं आता है। हम अगला देखेंगे जल का नियंत्रण। जल का नियंत्रण मतलब हम एक वाल्व से या बैठे बैठे एक स्विच से हम पूरे का पूरे सिस्टम का

0: इरीगेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, सतही सिंचाई में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उर्वरक उपयोग की दक्षता, जो कि फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही महंगे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए, ना कि वो हमारी वजह से वो खरपतवार बना दे, हमारे लिए एक अलग खर्चा बने। ठीक है, हम ड्रिप इरीगेशन करेंगे तो उर्वरक उपयोग की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है सतही उपयोग की तुलना में। अगला प्रॉब्लम जो धीरे धीरे आ रहा है अब हमारे यहाँ भी, भूक्षरण, यानी कि धीरे धीरे जो मिट्टी जो है कटता जाता है। अब आप अपने खेत पे ही बहुत सारा पानी डाल दीजिए और थोड़ा भी अगर खेत में स्लोप होगा तो पता चलेगा मिट्टी का एक लेयर बह के दूसरे के खेत में चला गया या फाइनली नदी वगैरह में चला गया, नाला में। लेकिन हम ड्रिप इरीगेशन से करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैदावार में बढ़ोतरी, जल्दी जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल का जो है टेंशन एक होता है टर्म, वो नहीं रहता और पौधों की वृद्धि बहुत तेज़ी से और अच्छे से होती है। ठीक है, और पैदावार हमारा 100% तक बढ़ सकता है ड्रिप इरीगेशन में, जबकि हमारा ये जो सतही विधि है उसमें जल का वितरण हम समान रूप से कर ही नहीं पाते हैं पूरे खेत में, उबड़ खाबड़ आने की वजह से। ठीक है, तो असमान वितरण होता है और उसकी वजह से, और साथ ही साथ सिंचाई में अधिक अंतराल भी हम लेते हैं, है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी का जो है, मिट्टी में जो एक जलीय तनाव होता है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से वो पानी जो है पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है जितने उसकी ज़रूरत होती है, इस वजह से हमारा पैदावार में कमी हो जाती है।
1: जी, तो इस तरह श्रोताओं आपने जाना कि सतही सिंचाई विधि से कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि, और पूरी जानकारी आपको मिली है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ायदा है वो ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाने में ही है। और आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत जानकारी मिली होगी ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। तो अगले दिन एक अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनना ना भूलें एफएम ग्रीन और साथ ही उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के।

0: फैलता नहीं है, तो ये सब वैरायटी लगा सकते हैं किसान भाई
1: जी। आम के अगात, मध्य एवं पिछात में पकने वाली किस्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
0: हाँ, अगात किस्म में किसान भाई भी जानते होंगे, बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि गुलाब खास है, ये अर्ली में आ जाता है, शुरू में आ जाता है और मार्केट में लाल लाल दिखाई भी देने लगता है कि गुलाब खास, गुलाबी गुलाबी रंग का। बम्बई है, जरदालू।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडा क्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर लें और खाद उर्वरकों का प्रयोग

भी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही, और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है, और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर लें। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे जो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश

आने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा दो चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच चंदन पाउडर और एक चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट ज़रूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर।
तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि

0: गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो है बहुउपयोगी मसाला हल्दी की खेती के बारे में। आज इसके बारे में जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैम।
0: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हल्दी का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और इसके फायदे क्या क्या है।
3: जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे मसालों में हल्दी भारत की धरोहर है। प्राचीन काल से ही भारतवासी हल्दी का इस्तेमाल दाल, सब्जी, चटनी, अचार तथा अन्य भोज सामग्रियों को लुभावना तथा सुनहरा रंग प्रदान करने के साथ ही साथ विशेष प्रकार के सुगंध भरने के लिए करते हैं। भारतीय पकवान तो बिना हल्दी के बन नहीं सकती और यदि बनता भी है तो उसका रंग फीका दिखता है तथा स्वाद में भी फीका पड़ जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी में कैंसर रोधी गुण विद्यमान है। शायद हल्दी के इन्हीं गुणों के कारण भारतीय लोग आदिकाल से हल्दी का इस्तेमाल भोजन में करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही हल्दी प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु रही है। शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर हल्दी का इस्तेमाल प्रधानता के साथ भारत में किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर हल्दी का उपयोग विभिन्न मांगलिक कार्यों में किया जाता है। घरेलू चिकित्सा पद्धति में हल्दी अनेकों मर्ज की एक अचूक औषधि है। हल्दी का विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 86% भारत का हिस्सेदारी है। आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जहां तक मैं ये बता दूं कि बिहार के भी कुछ जिलों में हल्दी की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
0: जी, ऐसे सुना गया है कि हल्दी की खेती में कुछ समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं।
3: हल्दी की खेती में किसान भाई उसको ये ना सोचे कि क्या नुकसान होता है। उसका मतलब ये है कि नुकसान के बारे में हम आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि हल्दी की फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगता है। इस प्रकार यह दो फसल अवधि ले लेती है। जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं जिनके पास खेत कम है उनके लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि यह दो फसल ले लेता है एक हल्दी के क्रॉप। जो हमारे किसान भाई उतने टाइम में 2 या 3 फसल ले लेते हैं, इसमें आप एक ही फसल ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हल्दी का बीज दर 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर है जिसे खरीदने पर काफ़ी खर्च पड़ता है। यदि किसी किसान के पास इसका बीज नहीं है तो उसे बीज का अधिक खर्च करना पड़ता है। तीसरा, हल्दी उखाड़ने के बाद बाजार भेजने से पहले उसका प्रसंस्करण करना पड़ता है जिससे अधिक श्रम एवं खर्च पड़ता है। चौथा, रोग रोधी अधिक उपज एवं उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों के बीज किसानों को नहीं मिल पाते हैं। इसके वजह से हमारे किसान भाइयों इसमें प्रॉब्लम हो।

0: होती है और उसके उपज में उनको नुकसान होता है।
1: जी, तो अब आप किसान भाइयों को हल्दी के उन्नत किस्मों के बारे में बताएं ताकि वो इसकी खेती अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसकी खेती में।
0: हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट में, हमारे खुद के स्टेट में राजेंद्र सोनिया एक ऐसी वैरायटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा ढोली से इसको निकाला गया है। इसकी खेती के लिए हल्दी की उपज क्षमता 8 टन प्रति हेक्टेयर है। यह 210 दिनों में तैयार हो जाती है। इसमें करक्यूमिन, जो उसका पीलापन होता है, रंग रसायन जो उसमें पाया जाता है, उसकी मात्रा 8.5% होती है। उसी प्रकार बहुत सारी वैरायटी हैं, सोना, शोभा, कांथी, NDH 18 NDH 19, जो कि ND यूनिवर्सिटी अयोध्या से निकाली गई है, प्रतिभा, स्वर्णा, इन सभी वैरायटियों को हमारे किसान भाइयों लगा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते
1: हैं। हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है और इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है और खेत की तैयारी कैसे करें?
0: हल्दी की फसल खेत के लिए गर्म एवं नम जलवायु सर्वोत्तम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 900 से 1000 मिलीमीटर उपयुक्त होती है। बुआई तथा जमाव के समय कम वर्षा तथा पौधों के वृद्धि एवं विकास के समय अधिक वर्षा चाहिए। फसल परिपक्वता अवधि में शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक हम भूमि की बात करें, हल्दी के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो तथा मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी की हम बात करें, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अंतिम जुताई के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में बराबर मात्रा में डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें।
1: तो आपने अभी हल्दी के किस्मों के बारे में बताया, साथ ही साथ जलवायु के बारे में भी जानकारी दी। अब आप हल्दी के बीज उपचार, बुआई का समय, बीज दर और बुआई की दूरी और गहराई के बारे में बताएं।
0: जहाँ तक हम बीज उपचार की बात करें किसान भाइयों से, तो बीज उपचार हम हल्दी के केस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हल्दी की बुआई के पूर्व प्रकंदों की फफूदीनाशक इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बना लें। घोल के में कंदों को 60 मिनट लगभग 1 घंटा तक डुबोकर रखने के बाद छाया में सुखाकर 24 घंटे बाद ही बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, हल्दी की बुआई के समय पर इसकी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को 15 मई से 15 जून तक इसकी बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। और बीज उपचार की हम जहाँ तक बात करें, बीज की मात्रा प्रकंदों के आधार पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ व रोग मातृ प्रकंद एवं प्राथमिक प्रकंदों को ही बीज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रकंद जिसका वजन 20 से 25 ग्राम हो तथा प्रत्येक प्रकंद में 3 से 4 आँखें, जिसको हम बांड भी बोलते हैं, ये बीज के लिए अच्छा माना जाता है। बुआई की दूरी तथा गहराई, अच्छी उपज के लिए बीज बुआई हेतु कतार से कतार दूरी 30 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रकंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर गहराई में की करनी चाहिए।
1: अब इसके लिए खाद एवं उर्वरक प्रयोग की मात्रा, सिंचाई एवं जल निकास और निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएं।
0: खाद एवं उर्वरक, हल्दी की फसल अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 150 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा तथा पोटास 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय दें। तथा किसान भाई एक चीज़ें और ध्यान दें कि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा, पोटास शेष आधी मात्रा बुआई के 75 से 80 दिन के बाद दें।

0: सिंचाई एवं जल निकास की हम बात करें तो हल्दी की फसल को पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सिंचाई, जलवायु, भूमि की संरचना, वर्षा तथा पलवार, जिसको हम मल्चिंग भी कहते हैं, के अनुसार 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर की जाती है। प्रकंदों में के जमाव व वृद्धि विकास के लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और हम निकाई गुड़ाई और खरपतवार के बारे में हम बता दें आपको कि हल्दी के खेत में पत्तियों की पलवार, जैसे मल्चिंग, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, लगाने से काफ़ी हद तक खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। हल्दी की फसल में प्रायः 3 बार गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ प्रकंदों में वृद्धि एवं विकास अच्छे तरीके से होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों प्रथम गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद, तृतीय बुआई के 60 दिन बाद तथा तृतीय 90 दिनों के बाद करें।
1: अंत में आप इसमें मुख्य रूप से लगने वाले कीट एवं बीमारियों और इनसे सुरक्षा के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, साथ ही हल्दी का प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताएं।
0: हल्दी में मुख्य कीट हम किसान भाइयों को बता दें और इसका नियंत्रण हम बता दें कि हल्दी में जो पहला कीट है दीमक या कजरा पिल्लू, यह दोनों कीट पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। पौधों के प्रारंभिक अवस्था में कजरा पिल्लू जमीन की सतह से पौधे को काट देता है। इससे बचाव हेतु दानेदार फोराडान 3G कीटनाशी दवा का 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरा है तना छेदक। यह कीट छेद करके भीतर घुस जाता है तथा पत्ते को खोखला बना देता है, जिससे पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमेमेक्टाक्लोर बेंजोएट कीटनाशी दवा का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा है थ्रिप्स। इसका उपयोग, यह कीट पौधे के हरी पत्तियों को चूसता है तथा पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोफीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हल्दी के कुछ प्रमुख रोग एवं नियंत्रण है। प्रकंद विगलन रोग, फसल के प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तथा जमीन के ऊपर का तना गल जाता है। भूमि के भीतर का प्रकंद भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगग्रस्त बीज प्रकंद बोने पर ही यह रोग लग जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में पानी नहीं रुकने दें तथा कापर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास भिगोएं तथा पौधों पर भी इसी घोल का छिड़काव करें। स्वस्थ प्रकंद की बुआई करें और इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा ये है पूर्ण धब्बा रोग या पर्ण चत्ती रोग। इसके नियंत्रण के लिए भी मैंकोजेब फफूंदी नाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करें और इससे नियंत्रण पाएं। इसका प्रसंस्करण जो है, हमारे जो किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी की खेती करने के बाद आप उसे करेंगे क्या, उसका क्या कर सकते हैं आगे, उसमें है प्रकंदों को पहले उबालें। इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम लंबी तथा गोली प्रकंदों को अलग अलग काट लिया जाता है। इसके उपरांत लंबी प्रकंदों को अलग तथा गोले प्रकंदों को अलग अलग उबाला जाता है। प्रकंदों को एल्युमिनियम या मिट्टी के बर्तन में उबालना चाहिए। प्रकंदों को बर्तन में सुखाने के बाद ऊपर से पानी भर दिया जाता है ताकि प्रकंद पानी में डूब जाएं तथा बर्तन में मुंह पर धान या का पुआल या हल्दी के सूखी पत्तियों की परत रखकर ढक्कन से ढक दें। इसके बाद उसे धीमी आंच में उबलने दें। लंबे गाँठ 1 से 2 घंटे में तथा गोले गाँठ 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण रूप से पक जाते हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला पीला हल्दी के रंग का झाग निकलने लगे तथा हल्दी का गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी के प्रकंद पूरी तरह से पक चुके हैं। दूसरा है उबले प्रकंदों को सुखाना। उबले प्रकंदों को सुखाने के

0: लिए प्रकंदों को त्रिपाल या पक्की साफ सुथरा जगह पर धूप में पतली परत में फैला दिया जाता है। इस प्रकंदों को शाम के समय जमा कर त्रिपाल से ढक देते हैं ताकि रात में उस पर ओस न गिरे। हल्दी की उबली प्रकंद लगभग 10 से 15 दिनों में सूखकर तैयार हो जाती है। अच्छी प्रकंद से सूखी प्रकंद बिल्कुल सख्त तथा तोड़ने पर चट की आवाज करनी चाहिए। सूखने के बाद प्रकंदों में नमी 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उसे लंबी अवधि तक भंडारित किया जा सके। तीसरा है सूखे प्रकंदों का पॉलिशिंग करना, जो उसके चमक को लाता है, जो आप मार्केटिंग में उसको भेजते हैं, जिसका आपको लगता है कि अच्छे हमको वो उपज किए हैं तो अच्छा उसका वो आपको पैदावार मिला है तो उसका अच्छा बेनिफिट मिले, उसके लिए क्या करते हैं कि बाज़ार में हल्दी की अच्छी किस्म लेने के लिए हल्दी को पॉलिशिंग किया जाता है ताकि हल्दी आकर्षक एवं चमकदार दिखे। सूखे प्रकंद को जूट के बोरे या बांस की टोकरी से रख कर रगड़ा जाता है ताकि छिलका, मिट्टी का कण तथा छोटी जड़ें बाहर निकल जाएं। अब इसे हल्दी के पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उसे रंग देते हैं तथा सूखा देते हैं। बड़े पैमाने पर पॉलिशिंग या का कार्य यांत्रिक विधि से किया जाता है। पॉलिशिंग के बाद प्रकंदों को किसी वायुरोधी बड़े डब्बे में भंडारण कर सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इससे अधिक से अधिक आय कर सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हल्दी की खेती के बारे में और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि, सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज़ फर्स्ट में। और लेडीज़ फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है ख़ास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई

उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है, ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे ज़रूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुँचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के

बाद भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचें, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और ख़ुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फ़र्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है

उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों, तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों, शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले ख़ास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और बहुत सारी बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी के लिए, किसान भाइयों और बहनों, और बहुत कुछ जानने को भी आपको मिलता है। तो आज भी एक बहुत ही लाभप्रद बातें आप सभी के बीच हम रखेंगे। और आज हमारे आज विषय हैं, हम आपको बता दें कि कार्बन का प्रबंधन आप कैसे करेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर श्वेता सांभवी मैम। और मैं आपको बता दूँ, ये सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और बहुत सारी जानकारी आज मैम हमें देंगी। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद अनु। किसान भाइयों, आज जो मैं आपको थोड़ा कार्बन प्रबंधन मिट्टी में हम कैसे करेंगे इस पे मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। और आज के समय में जलवायु परिवर्तन, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कि समय के साथ जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो मिट्टी है, मिट्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट कहिए या सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी में आपका कार्बन
4: जी।
5: तो कार्बन को मिट्टी में बनाए रहने से मिट्टी में जो जीवाणु है उनकी आपको नंबर्स या उनका जो की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और इससे हम कार्बन को मिट्टी में बनाए, और जितने भी पोषण तत्व है मिट्टी में

0: वो आपको कार्बन के मिट्टी में रहने की वजह से, जिसको हम जनरली ऑर्गेनिक कार्बन या आप उसको कहो कि जो जैविक कार्बन होता है उसको वो कार्बन कहते हैं, वो ऐसा नहीं है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो कार्बन, वो आपको मिट्टी में कैद रहता है और उससे आपके जितने भी जीवाणु है मिट्टी में उसी की वजह से वो जिंदा रहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जो पिछले कुछ दशक में, 2-3 दशक से पहले तो यूरोप इन सब में हुआ, संरक्षित खेती, संरक्षण खेती यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो आपको जैसा कि पता होगा कि भारत जो है ना भौगोलिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है।
1: जी।
0: हमारे देश के लगभग 58% से ज्यादा लोग अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और इस प्रकार कृषि रोजगार और जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि प्रभावित हो रही है, ऐसे समय में जरूरत है कि कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना जिससे फसल उत्पादन पे कोई असर ना पड़े, अच्छा उत्पादन मिलता रहे। और ऐसी ही तकनीक है संरक्षित खेती या संरक्षण कृषि, जिसको हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, या इसको किसान भाई जीरो टिलेज या सीड ड्रिल इन सब के माध्यम से जो खेती कहते हैं वो कहते हैं। यह एक पद्धति है जिसमें कि कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ और टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। संरक्षित कृषि की वजह से जमीन की उत्पादकता में काफी इजाफा होता है, साथ ही साथ यह पानी, ऊर्जा और जमीन की उर्वरकता का भी संरक्षण करती है। संरक्षित खेती में हम क्या करते हैं ना कि सब मिट्टी की न्यूनतम जुताई की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको ईंधन, मानव श्रम इन दोनों की बहुत ज्यादा बचत होती है। आजकल आज के समय में आपको भी पता होगा कि ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोई भी मशीन है वो उनसे चलता है और उसकी कीमत में कितनी अत्यधिक वृद्धि हो गई। पेट्रोल आज 100 के पार है, डीजल भी लगभग 100 पहुंच चुका है। तो जब हम न्यूनतम जुताई करेंगे तो इनकी बचत होती है और आज के समय आपको जो मजदूर है, मजदूर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हम मजदूरी को भी बचा सकते हैं क्योंकि हम जुताई अगर कम करेंगे तो हमें मजदूर भी कम जरूरत होगी और आपको ईंधन भी आपका कम लगेगा।
1: तो ये कुछ बातें हैं इससे जुड़ी हुई। और प्रबंधन की बात करते हैं मैम, तो किस प्रकार से हम प्रबंधन करें कार्बन प्रबंधन?
0: देखिए, कार्बन प्रबंधन के लिए क्या है ना कि मिट्टी में जैविक जो कार्बन है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका देसी खाद। देसी खाद जैसे हम गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब हरा खाद, बहुत सारे जब हम धान की खेती करते हैं तो धान से पहले हमें जो समय मिलता है उस समय हम लगा देते हैं आपको कुछ भी ढेंचा, ये सब हरा मूंग, ये सब लगा देते हैं, इसको हम हरा खाद कहते हैं और इसको हम फिर जमीन में आप डाल देते हैं। तो इनका पर्याप्त उपयोग करने से हम जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। अगर जमीन में जैविक कार्बन बढ़ता है उससे नाइट्रोजन की मात्रा खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन को जो जितना एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में उसको अपने आप में खींचता है। तो संरक्षित खेती में मिट्टी को की स्वास्थ्य और उससे पैदावार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो मिट्टी का सतह है उसमें फसल अवशेषों का पर्याप्त आवरण हो। आवरण मतलब कि फसल अवशेष, जैसे हम फसल काटते हैं उसके जड़ और जो ऊपर की थोड़ी ठूंठ रह जाती है उसको हम अगर अच्छी तरह से प्रबंधन करें कि उसको मिट्टी में वापस डाल दें, उससे हम क्या कहते हैं कार्बन वो जब सड़ता है कंपोस्ट बनता है, उससे आपको मिट्टी में कार्बन और दूसरे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरे जो है वो आपको नाइट्रोजन, ये सब मिट्टी में आते हैं। अब मृदा में फसल अवशेष का स्थायी आवरण होने के कारण उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी जैविक गतिविधियां बढ़ जाती है और इससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना फसल को समुचित मात्रा में जितने भी पोषक तत्व है वो प्राप्त होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थों का मृदा में भौतिकी गुणों जैसे उसकी संरचना, जो मिट्टी की संरचना है, जल धारण की क्षमता है, उसका भार है, जो हम जितना उर्वरक है जो हम यूरिया पोटाश ये सब जो ऊपर से डालते हैं इसका उपयोग, इसके जो उपयोग क्षमता मतलब हम जितना डालते हैं उतना आपको जो आपके पैदावार है या हम जो लगाते हैं उसको वो मिल सके, जो पौधे लगाते हैं उसको वो मिल सके। अगर कार्बन रहेगा तो वो कार्बन उसको जितना प्रदान करने में उसको उपयोग करने में मदद करता है। जो पोषक तत्व है अगर हम जैसे बारिश हो गई तो पोषक तत्व क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व आपका बारिश के पानी के साथ निकल जाते हैं, उसको बह जाते हैं।

0: रहता है, तो हम रिटेंशन, रिटेंशन मतलब कि उसको रोकना, तो अगर कार्बन मिट्टी में रहता है तो उसको रोकते हैं। और जो ये खाद, ये कंपोस्ट जो हम देसी खाद, जो हम गोबर खाद है या हम कचरा को खाद बना देते हैं, बहुत सारा अभी हम लोगों ने देखा है कि जो सिटी वेस्ट है या घर का कचरा, उसको कहा जाता है कि अलग अलग रखिए, आप किचन के कचरे को अलग रखिए और जो प्लास्टिक है, शीशा है, इस टाइप का टिन वगैरह को अलग रखिए, और इसको हम फिर खाद बना देंगे। और इससे क्या होगा कि उसको खाद बना के हम उसको खेत में डाल सकते हैं, जो मिट्टी के आसपास जो जड़ है, जो पौधे उसके जड़ के आसपास, उसको हम मतलब साइंटिफिक टर्म से राइजोस्फीयर कहते हैं। तो इन राइजोस्फीयर में क्या है ना कि जितने भी सूक्ष्म तत्व है, आपके बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जीवाणु जो है, ये मदद करते हैं सारे पोषण तत्व को उपलब्ध कराने में, उसकी उपलब्धता को बढ़ाने में। तो जितना खाद रहेगा उसमें उतने जीवाणु ज्यादा पैदा लेंगे। केमिकल्स में कभी भी जीवाणु नहीं हो सकते हैं, तो इन सब की वृद्धि के लिए हम केचुआ खाद और ये सब डालते हैं, जिससे मिट्टी में जैविक कार्बन जो है वो हम उसको बढ़ा सकते हैं और उसको हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं।
1: जी, तो मैम अगर जलवायु की हम बात करें तो जलवायु में इसकी क्या भूमिका है अगर हम ये सारे प्रबंधन करते हैं तो?
0: अब इन सारे प्रबंधन से क्या होता है कि जितना हम अभी तक देखिए कृषि क्या है, मुख्यतः कृषि के तीन मुख्य स्तंभ है, मिट्टी, पानी और बीज। लेकिन अभी जो परंपरागत कृषि तकनीक, जैसे कि अत्याधुनिक जुताई हो रही है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, और जैविक खाद का उपयोग कम हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आ गई है। अब जितना मिट्टी में उपस्थित जितना जैविक कार्बन है, उसको समान रूप से सभी जीवाणु इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और उससे मिट्टी की जो भी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण है, ये इसमें कमी आ रही है। अब इन कमी और जो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी में, देखिए मिट्टी में जो जितने भी जैविक आपके जीवाणु रहते हैं, वो आपको एक तरह से बैलेंस करते हैं, बैलेंस मतलब बनाए रखते हैं। अगर मिट्टी में पानी ज्यादा रहता है तो वातावरण में वही पानी अगर रहता है तो वातावरण के टेम्परेचर को, उसके तापमान को नियंत्रण करने में मदद करता है, क्योंकि वो जब मिट्टी, जब धूप होती है तो वही पानी पहले भाप बनता है, तो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म नहीं होती। और हाँ, तो उस तरह से क्या होता है ना कि अगर जो वैश्विक उष्मीकरण है, यानी जो गर्मी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इनको कम करने, इसको कम करने में जो ये जैविक कार्बन है ये मदद करता है। वो वातावरण से जो भी जो आपका उष्म है उसको, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में उसको मदद करता है। इस तरह के प्रबंधन से सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, सिर्फ कि पौधों के आप उत्पादकता को बढ़ाते हैं, इसके साथ आप वातावरण में जो जितने भी हार्मफुल, यानी जो आपके कीटनाशक, इन सब का जो आपके जो निकलते हैं, उससे जो भी आपको, जो आपको हानि कर सके, हानिकारक जो पदार्थ सब निकलते हैं, केमिकल्स, वो आपके वातावरण में जो जाते हैं उसको ये अपने अंदर सोख लेता है, उससे वातावरण आपका प्रदूषित नहीं होता। अगर वातावरण जो प्रदूषित होता, उसी से आज की स्थिति में हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर के सतह है उसमें ये केमिकल्स जाके जमा हो रहे हैं और उसकी सतह में छेद कर रहे हैं, जिससे हम जो आपका ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मेन है कि हम उसमें आपका ओजोन लेयर जो है उसमें आपको छेद हो रहा है, और वो ओजोन की परत पतली होने या उसमें छेद होने की वजह से वो किरणें हमारे तक पहुंच रही है। तो मेनली जो केमिकल्स है इनकी वजह से, अगर हम केमिकल्स को वातावरण में कम जाने दें, इसको हम जमीन में ही रख लें, तो ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा और उसके पोल्यूशन को रोकेगा, तो बहुत मदद करता है। अगर कार्बन मिट्टी में अच्छा रहे तो ये सिर्फ आपके पैदावार के लिए नहीं, आपके पौधों के लिए नहीं, आपके वातावरण को भी बहुत तरह से संरक्षण प्रदान करता है।
1: जी, और एक अंतिम सवाल ये है जो अक्सर इस ये जानना चाहते हैं हमारे श्रोतागण और हमारे किसान भाइयों, कि मिट्टी पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए, कि मिट्टी अच्छी होगी तभी जो फसल है वो अच्छे होंगे, तो क्या इसका क्या असर होगा मिट्टी पर, वो भी बता दें मैम।
0: देखिए, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन के बढ़ाने, मात्रा बढ़ने से मिट्टी का, आपका मिट्टी का स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, जो खाद्य सुरक्षा है, मतलब जो आपके फूड है उसमें पेस्टिसाइड या किसी भी चीज के, इनकी गुणवत्ता को हम कम बढ़ा सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड को हम मिट्टी में ही रख लेंगे, कार्बन अपने में रख लेगा, तो वो खाने में या उस फल फूल में नहीं जाने देगा। जो जल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, और हम कार्बन अच्छे रहने से हम रसायन का प्रयोग हमको कम करना

0: करना होता है, क्योंकि जो आपको जो भी पोषक तत्व है कार्बन की वजह से वो वातावरण से मिट्टी में जाता है और उससे आपको मिल जाता है। अब इसे भूमि को अपरक्षण भी को भी रोका जा सकता है, जो हम कहते हैं कि बारिश होती है और बहुत ऊपरी तह से बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो बह जाते हैं पानी में, हाँ, तो वो उसको वो रोकने में सफल रहता है,
1: मतलब बैलेंस बनाए रखने में। जी
0: हाँ, बैलेंस बनाया रहता है आपका पोषण प्रबंधन, खाद और इन सब का प्रयोग से आपका जल संरक्षण और इसका संरक्षण होता है, मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर का रिटेंशन, पानी का रिटेंशन, पानी को हम रोक सकते हैं मिट्टी में और लंबे समय तक वो पानी उपलब्ध होता है। एक अनुमान के अनुसार कहा गया है कि अवक्रमित मिट्टी में केवल 1 टन कार्बन युक्त मिट्टी बढ़ा देने से प्रति हेक्टेयर फसल को कई किलोग्राम तक बढ़ाया जाए। अगर हम किसी तरह 1 टन कार्बन 1 हेक्टेयर में हम उसको कार्बन को रिटेन कर सके मिट्टी के अंदर, तो हम कई केजी तक उसकी फसल को हम बढ़ा सकते हैं। और मिट्टी में जितने उपस्थित कार्बन से जितने भी जीवाश्म है उससे निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस को हम प्रतिवर्ष 75% तक अवशोषित करने की क्षमता रखती है। और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के दौर में यह सबसे बड़ी राहत की बात हो सकती है, अगर हम मिट्टी में कार्बन बढ़ाए तो 75% तक हम जितना भी आपके हार्मफुल है एलिमेंट्स जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ऐसे हम जो भी गैसेस निकल रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कार्बन कितना ज़रूरी है मिट्टी के लिए, फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए। तो आशा करते हैं कि इस प्रबंधन को आप अपनाएंगे और अच्छे से खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव

0: जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है।
1: आदरणीय अजीत जी व भीमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
0: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
0: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है, आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा फेसबुक लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छाँव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते टुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा।

0: वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे हो।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों

0: पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
1: आ गया,
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
3: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी पृष्ठ 37। रेलगाड़ी
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
3: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
3: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
3: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
3: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
3: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
3: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
3: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
3: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
3: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा।

0: फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो।
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे। क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।

0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
3: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया, फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में

0: चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
1: माँ, अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: ये देखो माँ।
2: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
2: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
2: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
2: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा।
1: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
2: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा।
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
9: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 वी

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर, श्री, स्वर्णा सबेक,

राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना?

अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ 90.8 FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। और बातें होती है यहाँ पर हरियाली से खुशहाली तक की। और आज भी हम बहुत ही अच्छी बातें करेंगे और आज पशुपालक भाइयों के लिए खास बातें होंगी उनके पशुओं के लिए। और गर्मी का मौसम है, आप सभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है मार्च महीने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनकी चिंता बढ़ती जाती है कि उनके पशुओं की वो देखभाल करें, गर्मी के इस कहर से उन्हें कैसे बचाया जाए, क्या कुछ उचित देखरेख उन्हें करनी चाहिए, रखरखाव करनी चाहिए। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए इसी विषय पर, यानी गर्मियों के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल हम कैसे करें, इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो आज सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। जैसा कि आज का हमारा विषय ही है, तो सबसे पहले जो गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए जो खास रखरखाव की ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हमारे सभी पशुपालक भाइयों को बताएं।
2: वातावरण में तापक्रम अधिक होने से हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही कठिनाइयों का दौर इस गर्मी में झेलना पड़ता है, क्योंकि खास करके शहरी और अर्बन और पेरी अर्बन जो शहरी इलाका है या शहर से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर क्रॉस ब्रीड का पालन ज़्यादा किया जाता है, या संकर नस्ल की गायों का, या प्योर हॉस्टन फ्रीजियन का, या जर्सी नस्ल की गायें हैं। तो इन गायों में गर्मी में समस्या अधिक आती है
0: जी।
2: क्योंकि ये ठंडे प्रदेश की गायें हैं और हमारे यहाँ का तापक्रम अभी 40 से 42 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में उन इन क्रॉसब्रीड पशुओं के लिए खास

0: ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ जैसे ही समर स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस के चलते पशुओं में हाँफने की समस्या, उनके बॉडी का जो शरीर का तापक्रम है वो सामान्य जो पशुओं का तापक्रम 101.6 से 102 डिग्री फारेनहाइट तक है, उससे बढ़ के ये 103, 104, 105 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीधा प्रभाव पशुओं पर पड़ता है वो उनकी उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, और जहाँ दूध में प्रतिदिन 5 लीटर तक की कमी हो जाती है, जो कि हमारे जो वैसे फार्मर्स जो दूध उत्पादन करके अपना व्यवसाय करके जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो सीधा उनके उत्पादकता पर असर पड़ता है और नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो अपने पशुशाला के निर्माण पर में ही आपको ध्यान देना है कि छत की ऊँचाई बढ़ानी होगी
1: जी,
0: ताकि सीधा जो ऊपर से जो टेम्परेचर जो गर्म होता है वातावरण में टेम्परेचर की अधिकता के चलते उसका कम प्रभाव आपके पशुओं पर पड़े। हो सके तो या तो अगर आपने पशुशाला के निर्माण में जो आपने एस्बेस्टस दिया है या टीन का छत दिया है तो उसके नीचे अगर आपने खर का एक मोटा लेयर दिया है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने जो छत है उसके ऊपर भी एक लेयर खस का या पुआल का दे के और उसे भिंगाने का प्रयास करें, जिससे कि अंदर का तापक्रम सामान्य तापक्रम बना रहे। दूसरी बात है कि क्रॉस ब्रीड में जितना नस्ल प्योर होता जाएगा उनको तापक्रम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपने पशुशाला में पंखा लगाएं, अगर हवा का आदान प्रदान हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा पंखा या कूलर के माध्यम से वहाँ आप टेम्परेचर मेंटेन करें। अगर सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में करता है या जो अभी तो लू उस तरह का नहीं चल रहा है लेकिन जब लू चलेगी तो उससे बचने के लिए अपने पशुशाला में जो भी उसके दरवाजे हैं खिड़कियां हैं उस पर जूट का बैग टांगे या खस की चट्टी टांग के उसको भिंगा के रखें, जिसके चलते कि सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में न हो, और
1: जी जी।
0: हो सके तो अपने पशुओं को सवेरे शाम नहलाने का प्रयास करें और प्रचुर मात्रा में पानी या स्वच्छ जल पीने को अवश्य दें, जिससे कि आपके पशुओं में गर्मी का जो सीधा जो असर है उससे आप अपने पशुओं को बचा के और अपने उत्पादकता बढ़ाए रखें
1: जी। तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई हैं कि क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में, खासतौर पर पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए। अब बात करते हैं बीमारियों की, तो इस मौसम में खास तौर पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं पशुओं में?
0: जी, जैसा कि अभी एक तो तापक्रम के बढ़ने से समर स्ट्रेस या हीट स्ट्रेस
1: जी
0: जो आम है आप पशुओं में देखेंगे कि खास करके हीट स्ट्रोक या समर स्ट्रेस, जिसके चलते कि पशुओं में के शरीर का तापक्रम बढ़ता है और पशु हाँफते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहला चीज तो है कि दोनों टाइम अपने पशुओं को स्नान कराएं, स्वच्छ जल पीने के को दें, साथ ही साथ जो उनके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उससे बचाव के लिए इंटालाइट ओरल या जो भी नमक चीनी का प्रयोग करें, या इंटालाइट ओरल आता है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स आते हैं उसका इस्तेमाल उसके पीने के जल के साथ दें, ताकि उनके शरीर का में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस नहीं हो। दूसरा चीज़ है कि इस मौसम में खास करके जब हमारे पशुशाला के आसपास जल जमाव होता है तो हॉट और ह्यूमिड वेदर, हॉट ह्यूमिड वेदर जो है गर्म और नमी वाली जो वेदर है, ये खास करके जितने भी मक्खी मच्छर या चमोकन इसके प्रकोप को बढ़ाता है, और इसके चलते पशुओं में खासकर क्रॉसब्रिड पशुओं में बबेसिएसिस या रेड वाटर थैलेरियसिस या आपका ट्रिपनोसोमेसिस या सर्रा, इन बीमारियों का जो ब्लड प्रोटोजोआ के चलते होते हैं इनकी काफ़ी अधिकता पाई जाती है। तो खास करके अपने पशुशाला को नमी रहित बनाएं और जित हो सके तो अपने पशुशाला में कहीं भी क्रैक्स अर्थात चिकना रखें फर्श दीवार को, जहाँ की ये जो चमोकन है ये जो लाइस माइस्टिक्स हैं जो अपने अंडा और जिसका रिप्रोडक्टिव फेज उस दीवार में पूरा होता है जहाँ छिद्र रहता है या गैप्स रहता है, तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे उससे बचाएंगे तो आप अपने पशुओं को बचाने इस चमोकन से बचाने के लिए मक्खी मच्छर से बचाने के लिए शाम के समय धुआं का प्रयोग करें, और अगर चमोकन है तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाएं या साथ ही साथ जो

0: एक तो पैरासाइट्स यूज करने के लिए हम लोग एमिट्राज का सॉल्यूशन 1-2% आप अपने पशुओं को उससे धुला धो के और अपने पशुशाला को इससे चमोकन और जो अठैल होता है या जो इस प्रकार के लाइसमाइस्टिक्स हैं इससे फ्री रखें। अगर इनसे आप अपने पशुओं को बचाएंगे तो ये जो रक्त के द्वारा रक्त परजीवी के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं इनसे, और लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पशुओं में बवेसियसिस या लाल पेशाब की समस्या है या खाना कम खा रही हैं और तापक्रम बहुत ज़्यादा रह रहा है तो फिर आप चिकित्सक की सलाह लेकर इसकी चिकित्सा करवा सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, अब ये तो बातें हो गई बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, लेकिन और कुछ बातें उचित ध्यान रखने के लिए इस गर्मी से बचाने के लिए, गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए पशुओं को?
0: हाँ, ये जो ये सबसे प्रमुख बात है कि हम लोग इस समय वातावरण, पहला चीज है कि नस्ल के चुनाव के समय से ही और अपने पशुशाला के निर्माण के समय से ही प्रारंभिक अवस्था से इस पर अगर ध्यान देंगे तो हमारा डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग जिसके लिए भी जो हम लोग पशुपालन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो शेड का निर्माण है ऊंची जगह पर हो जहां जल जमाव ना हो इसका ध्यान रखें। पशुशाला के निर्माण के समय आप जो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स है हेड टू हेड या टेल टू टेल विधि से जो हम लोग नाद का निर्माण करते हैं या स्टैंडिंग जो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उसका उसके अनुसार अपने पशुशाला का निर्माण करें। साथ ही साथ हम लोग जो आजकल मॉडर्न डेयरी में हम लोग या तो पानी पीने की स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था दो खाने के नाद के बीच एक पानी का नाद अवश्य रखें जिससे आपके पशुओं को स्वच्छ जल जितना भी ज़रूरत हो, अर्थात एक स्वस्थ पशु को जो 15 से 20 लीटर दूध करती है उनको प्रतिदिन 80 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ जल प्रबंधन और जो NDDB के द्वारा या डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो न्यू प्रोटोकॉल्स है कि अगर आपके आपके यहाँ तापक्रम बहुत अधिक रह रहा है तो पशुशाला के निर्माण के समय ऊपर में हम लोग वाटर सप्लाई का पाइप देते हैं जिसमें झरना लगा होता है और जिसको कि हर 2-3 घंटे के अंतराल पर हम लोग 10 मिनट के लिए अगर खोल देते हैं और आपके पशुओं के शरीर पर हल्का हल्का पानी का फव्वारा आता है तो उससे पशुओं को जो स्वास्थ्य प्रबंधन है खास करके जो समर स्ट्रेस है और जो तापक्रम बढ़ता है इससे आप आसानी बॉडी टेम्परेचर मैनेजमेंट में आपको बहुत सहायता मिलती है और आपका आपके पशुओं में आप देखेंगे अगर इस प्रकार जल प्रबंधन और टेम्परेचर प्रबंधन दो चीज पर आप ध्यान देते हैं तो समर स्ट्रेस से आप अपने पशुओं को बचा के रखेंगे। दूसरी बात है कि उनके खाने में खासकर फाइबर का की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और अगर हरा चारा आपके पशुओं को, हालांकि गर्मी के मौसम में हरा चारे का अभाव होता है लेकिन अभी जो राउंड द ईयर ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन पर हम लोग बल जोर देते हैं तो इस मौसम में सुडान है और या फिर जो हाइड्रोपोनिक विधि से चारा आप उत्पादित करते हैं तो ट्रे के माध्यम से आप अपने कमरे में भी हरा चारा उत्पादित करके पशुओं को फाइबर युक्त अगर भोजन अधिक देंगे तो आपके पशुओं में स्वस्थ रहेंगे और उनमें बीमारियां कम होंगी, उत्पादकता बनी रहेगी और आप पशुपालन से खासकर गर्मी के मौसम में भी आप अपने पशुओं से परेशान नहीं होंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जानकारी युक्त बातें थीं, और गर्मी के मौसम में ऐसे आप अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपके पशु स्वस्थ होंगे, कोई भी बीमारी उससे नहीं होगी और आप अगर आय के लिए उनका पालन कर रहे हैं तो आपकी आय में भी बिल्कुल हानि नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
4: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
4: डॉक्टर, खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका पसंदीदा चैनल, जी हाँ 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी। और मैं आपको बता दूं, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से। और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी?
8: धान की खेती 2 तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई

0: द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में व्यय यानी कि खर्च अधिक आता है
1: जी।
0: इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियाँ इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहाँ पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं जो 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को, तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए
1: जी। तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें। यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। कादवा करने के 48 घंटे पूर्व बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भरकर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए। बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
1: तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है।
0: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, 4 से 6 तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है। जैसे 4 ड्रम का अगर होगा तो ये 8 लाइन में बुआई करेगा, और 6 ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो

0: बारह छः ड्रम का में बारह लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप ईजी से अगर यूज कर सकने के लिए चार ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता, एक घंटे में एक एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीटर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
0: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि एक लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो दो यानी कि अढ़ाई किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो वातावरण को गर्म कर रहा है। और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग छः दिन तक बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वार नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है। और मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है। और मीथेन उत्सर्जन, जो कदवा आप करते हैं मीथेन उत्सर्जन में उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हम एक कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम DAP बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2 से 3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
1: जी।
0: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़ कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें, इससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
1: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले

0: साथ।
1: माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हो, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही ज़िंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं। क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा, या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है। करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है, और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो

इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज़्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलते हैं, किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है,

सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नज़र आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो ज़रूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें, आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दें, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फ़ोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं, तो ये भी आपको नींद आने में काफ़ी मदद करता है। तो ये चीज़ें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीज़ों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आप रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आएँ, रोज़मर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहें हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल।

0: लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार, हाजिर है आरजी अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये हैं पशुपालन विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
5: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है, या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है, जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के, और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय

0: जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी एनजीओ के द्वारा भी और कॉम्फेड के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें उनकी श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़े से फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का, जिस नस्ल का, जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पर मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसिमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AM PM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है, एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24 से 26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहां कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनको क्लिनिकल जाँच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद, आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें, तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीके से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का, कुछ कुछ गाय छोटी होती हैं और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है या पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावे भी कुछ सावधानियाँ हैं जो जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
0: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
0: और दूसरी चीज़ है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे ज़रूरी है समय, और तीसरी चीज़ है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायोकैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गाय

0: को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी भी नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर हॉस्टन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्टोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं।
0: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है, दूसरी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति जो थोड़ा जिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहाँ हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहाँ भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बून है। और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर इसे एक रोज़गार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनाना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम।

0: കൃഷി.
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां.
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: अरे यार फिर पिट गया. बिल देना. इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था. इसकी यही प्रॉब्लम है.
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं. बुढ़बात
3: खांसी? हाँ. इसको तो एक आध महीना हो गया.
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए चलिए.
3: डॉक्टर खांसी तो है.
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए. 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है.
3: टीबी?
4: हाँ. तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए.
3: ठीक है.
4: टीबी किसी को भी हो सकता है. अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए. नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है. समझ गए भाई साहब आप? आइए. 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए. टीबी हारेगा देश जीते.
5: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से.
6: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला. उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर.
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. जय हिंद. पिछले 1 दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है. नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है. डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं. अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता.
6: हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही.
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
7: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज. तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया.
6: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है.
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

FM ग्रीन, आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents ऑडियो बुक संतूर, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 5,
3: पेज 41, चैप्टर 4, द वाइस पैरट। एट द टॉप राइट साइड ऑफ द पेज देयर इज अ QR कोड। Scanning the QR code will take you to additional information about this chapter. Let us read. In a quiet village, a rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold. The parrot had a sharp mind and often entertained the merchant with stories and songs. However, deep inside, the bird longed for the open skies and green trees. One day,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जायद में सब्जियों के प्रमुख कीटों के बारे में, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा कुमारी, जो हैं कीट विज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद उमा जी।
7: मैम, सबसे पहला सवाल कि जायद में जो उगाने वाली सब्जियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं?
8: जी नमस्ते किसान मित्रों, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस समय जो किसान मित्र हैं वो भिंडी, खीरा, लौकी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये सारी सब्जियां जो है वो लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि गर्मी के साथ साथ कीटों का हमला भी बहुत तेज होता है, तो अगर वो समय पर रह के इसकी पहचान रोकथाम करे तो नुकसान से बचा जा सकता है।
7: और मैम, इन सब्जियों के जो प्रमुख कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
8: देखिए, अगर हम भिंडी की बात करते हैं तो इसमें जयसिड है, सफ़ेद मक्खी है, उसके बाद फल एवं तना छेदक, ये कीट जो है वो प्रमुख होते हैं। फिर अगर हम बात करें कद्दूवर की सब्जियों की, तो उसमें खीरा है, लौकी, नेनुआ, ये सब जो आता है, करेला, तो इसके जो प्रमुख कीट हैं

0: वो है आपको चेपा, जिसको कि हम लाही या माहू भी कहते हैं। इसके बाद थ्रिप्स है, और एक बहुत अत्यंत मुख्य हम कीट मान सकते हैं फल मक्खी, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो एक वो भी आता है। इसके बाद हम खरबूज और तरबूज की बात करें तो उसमें चेपा, सफ़ेद मक्खी और चूसक कीट, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
1: और इन कीटों से जो क्षति होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं?
0: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं कि कौन से कीट हैं और फिर उसका रोकथाम कैसे करें। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी फल एवं तना छेदक कीट की। इसमें क्या होता है कि जो इसकी पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, उसके दौरान जो ये कीट हैं उनके लार्वा, जो लार्वा होते हैं, वो अंकुरों को क्या करते हैं, खोदते हैं, और उससे क्या होता है कि गांठों पर प्रभाव पड़ता है, और उसमें होता क्या है, अंत में अंकुर गिर जाएंगे। उसके बाद हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे पौधे झड़ जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो पूरी मर जाती हैं, और जो अगर दूसरे युवा पौधे होते हैं वो भी आपको मुरझा जाएंगे। हाँ, इसके साथ ही साथ केंद्रीय शाखाओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बाद में यह फल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर ये फल में प्रवेश कर गए तो उससे काफ़ी गंभीर नुकसान होता है। और अब फिर मैं बात करूँ चूसने वाले कीट में, जिसमें कि अभी मैंने बताया चेपा आता है, ये थ्रिप्स है, उसके बाद जैसिड है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो प्रारंभिक चरण होती है इनके खाने से, चूसने से, उनमें पत्तियाँ जो है उसमें विकृति आ जाती है, और उसके बाद वो मुड़ जाएगी और अंततः वो संक्रमित हो जाती है। जो चेपा होता है, चेपा कीट के कारण जो प्रभावित पत्तियां हैं वो काफ़ी पीली पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं, और अंत में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं पूरी तरह से मुरझा गई हैं, तो पौधा क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें चूसने वाले कीट के नुकसान के लक्षण हैं। फिर मैं बहुत महत्वपूर्ण एक कीट की बात कर रही हूँ, जो फल मक्खी है, तो उसके जो शिशु हैं, जिसे हम मैगट भी कहते हैं, वो लगभग पके हुए जो फल होता है उसको वो खाता है, और उसके बाद उससे नुकसान होता है, अंत में उससे भी क्या होता है, संक्रमण हो जाते हैं, और जो फल हैं वो खाने लायक नहीं बचते हैं। कुछ छोटे जो फल होते हैं उसमें वो फिर अचानक पीले होकर गिरने लग जाते हैं। इसके बाद उससे ये भी होता है कि जो फल में सड़न होती है वो हो जाती है, छेद हो जाते हैं, और अंत में उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। अगर मैं फिर बात कर रही हूँ आपको जैसिड की, तो जैसिड में भी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है और वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है इसका, इससे इसकी पहचान भी हो सकती है। और इसमें जो पत्तियां हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा कि चिपचिपा सा पदार्थ है, और इसमें भी आपको जो फल होंगे उसके बाद वो बहुत ही छोटे से हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और बिल्कुल खोखले पड़ जाते हैं। ये सारे जो प्रमुख कीट हैं उनके ये नुकसान के लक्षण आपको दिखाई देंगे।
1: और मैम, इन कीटों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: सबसे ज़रूरी यही है कि इनका समेकित प्रबंधन करना चाहिए, मतलब कि आपको सारी जितने भी कारक हैं, जितने भी विधियां हैं नियंत्रण के जो भी हैं, उन सब को आपको साथ में लेकर के इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी व्यवहारिक विधि की। व्यवहारिक जो विधि है उसमें होता क्या है कि सबसे पहले किसान मित्रों को ध्यान रखना है कि प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए उनको। हाँ, उसके बाद एक और बात है, अधिक नाइट्रोजन खाद से उनको बचना चाहिए, वो ज़्यादा ना दें। फिर जो खेत होते हैं उसको साफ रखा करें। इसके अलावा संतुलित सिंचाई भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं कहूँगी कि जो खरपतवार का जो नियंत्रण है वो समय समय पर किसान मित्रों को करना चाहिए। और इसके अलावा जो ठहराव होता है, जो जल का ठहराव, उसको नहीं करना चाहिए खेतों में, उस चीज़ से बचना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो है व्यवहारिक विधि। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी यांत्रिक रोकथाम की या फिर यांत्रिक नियंत्रण की। तो यांत्रिक नियंत्रण में क्या होता है, आप सबसे पहले तो पीला चिपचिपा फंदे का इसमें प्रयोग करना चाहिए। पीला चिपचिपा फंदा लाहू को, लाही जो लाहू या फिर माहू जो भी कहते हैं, चेपा भी इसको हम कहते हैं, तो उस सब को क्या करता है, आकर्षित करता है और उससे ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नीला चिपचिपा फंदे का प्रयोग भी थ्रिप्स के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। हाँ, इसके अलावा प्रकाश प्रपंच जो है वो खेतों में ज़रूर से ज़रूर लगाएं। प्रकाश प्रपंच से जो छेदक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। इसके बाद मैं फल मक्खी ट्रैप की बात कहना चाहूँगी, इसका उपयोग भी करना चाहिए। हाँ, एक और ज़रूरी आवश्यक बात कि इसमें जो ल्यूड होता है उसको 15 से 20 दिनों में बदल देना चाहिए।

0: ये साड़ी के अलावा जो है, अगर शिशु जो होते हैं किसी छेदक के, तो उनको हाथों से पकड़ कर भी नष्ट किया जा सकता है। ये सारी विधियाँ यांत्रिक में आती है। उसके बाद एक है जैविक विधि, जो बहुत ही जरूरी विधि है। इसमें किसान मित्रों को क्या करना है, तो किसान मित्रों को इसमें जो भी मित्र कीट हैं उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। जैसे आपको लेडी बर्ड विंग हो गया, उसके बाद ग्रीन लेस विंग है, ये सब जो है ना कीट, जैसे कि चेपा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, इन सबको ये सब खाते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र कीट हैं। इसके अलावा परभक्षी हुए, परजीवी हुए, इन सब का संरक्षण बहुत ही जरूरी होता है। सबसे अंत में रासायनिक नियंत्रण की मैं बात करूंगी। जो रासायनिक नियंत्रण होता है वो सबसे अंत में ही इसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैविक कीटनाशक में जैसे कि निबोली सत हो गया 5%, या फिर नीम अर्क हो गया, इस सब का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। इसके अलावा बीटी की जो कर्स्ट की प्रजाति होती है वो 1 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जा सकता है। फिर हम अगर बात करें इसके अलावा कुछ कीटनाशक की, तो इसमें सबसे पहले मैं इंडोक्सा कार्ब की बात करूंगी। इंडोक्सा कार्ब जो है 14.5% SC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये घोल कर दिया जा सकता है, या फिर स्पाइनोसैड होता है 45% SC, ये आपको 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये भी आपको घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। फिर अगर हम रस चूसक, ये भी जो मैंने बताया वो बताया छेदक के लिए। फिर अगर रस चूसक की बात करें तो उसमें ब्यूप्रोफेजिन एक नया है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ब्यूप्रोफेजिन 25% EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या फिर एसिडामीप्रिड है। एसिडामीप्रिड जो है वो सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो एसिडामीप्रिड 20% SP ये आपको 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इनका छिड़काव करने से भी रस चूसक कीट जो है वो आपको कम मिलेंगे, मर जाएंगे, तो इससे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं इस तरह से। और ये रासायनिक विधि का प्रयोग बिल्कुल अंत में ही करना चाहिए। इसके अलावा मैं 3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोलना चाहूँगी अपने किसान बंधुओं को। पहला तो ये कि सुबह या शाम वो छिड़काव करें, और उसके बाद खेतों की नियमित रूप से निगरानी करें, और तीसरी जो सबसे अंतिम बात है वो ये है कि तीसरी बात में आप सबसे अंत में आप जितने भी रासायनिक मैंने आपको विधि बताई है उनका प्रयोग करें, मतलब कीटनाशी सबसे अंत में, इसके अलावा जो भी विधि है वो आपको पहले करनी चाहिए।
1: तो किसान भाई बहन, उम्मीद है कि मैम के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर आप जायद सब्जियों की फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।

0: तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है?

0: शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 जून के दौरान सामान्यतः 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर लें और खाद उर्वरकों का

तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका शस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
1: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन ज़रूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
2: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो।
1: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की ज़रूरत होती है?
2: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
1: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
2: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
1: जी मैम, और बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
2: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं, और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश

0: रहे, तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदी नाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदी नाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेविस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए। और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए। और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं, इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
0: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है। वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो, यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड। और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसकी खासियत ये है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें, यानी कि 2-3 प्लॉइंग्स करना चाहिए, और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएँ आसानी से की जा सके। और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहाँ पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहाँ पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए, और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए, और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
1: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए, और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5

0: केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहां पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: मैम, अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
0: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े, जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है, जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं, वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
1: तो किसान भाई बहन, मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम, आपने जो जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक ख़ास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: यूएसपी है, जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो।
4: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं आरजे अनु एक बार फिर से हाजिर हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में और लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए कुछ अच्छी बातें, कुछ बहुत ही खास बातें। तो भाई, वैसे अगर गर्मी के मौसम की हम बात करें तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो करते हैं हम, वो है आम। जी हाँ, आम फलों का राजा है और उतना ही खाने में हमें स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब भाई यहाँ आम का जो पेड़ है उसकी रखरखाव की बात आती है, हमारे किसान भाई अगर आम के पौधे लगाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी देखभाल करना, तभी तो उस पे आम के फल आ पाएंगे। तो यहाँ पर जब बात आती है कीट की और इसके प्रबंधन की, तो उसके आम के प्रमुख रोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके प्रबंधन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SN राय जी, और ये हैं विश्वविद्यालय प्राध्यापक कीट और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारा आज का विषय ही है आम के प्रमुख कीट, तो बताएं कि आम पर लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हो सकते हैं?
6: आम पर लगने वाले प्रमुख कीट में आम का मधुआ कीट, आम का फल छेदक कीट, दहिया कीट, आम का तना छेदक कीट, आम पर फल, आम का फल मक्खी, लीफ वेवर, ये पांच जो है इनसे प्रमुख हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावे एक सूट गॉल भी कीट है जो आम को भी क्षति पहुंचाता है।
5: अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं मधुआ कीट की, तो इसे हमारे किसान भाई कैसे पहचान सकते हैं?
6: यह कीट आम की फसल पर

0: लगने वाला प्रमुख कीट है, जिसे मैंगो हॉपर भी कहते हैं। यह कीट छोटा एवं मटमैले रंग का फुदकने वाला कीड़ा है।
1: अच्छा।
0: फरवरी माह से जून माह तक मधुआ कीट के व्यस्त एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह पर एवं आम के पेड़ के तने पर काफ़ी संख्या में दिखाई देते हैं।
1: अच्छा।
0: पेड़ के पास जाने पर ये कीट काफ़ी संख्या में एक साथ सामूहिक रूप से भनभनाते हुए उड़ते हैं। इस कीट के प्रौढ़ एवं शिशु दोनों ही पत्तियों कोमल टहनियों एवं मंजरों को काफ़ी मात्रा में रस चूसते हैं, जिससे कि फूल एवं फल सूख कर गिर जाते हैं।
1: अच्छा।
0: फल कम लगते हैं अथवा छोटे फल ही गिर जाते हैं। यह कीट एक प्रकार की चिपचिपा पदार्थ पैदा करते हैं, जिसे सूटी मोल्ड कहते हैं। अनेक प्रकार के रोगों के आक्रमण भी इसे होता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका प्रबंधन कैसे करेंगे हम?
0: इस कीट के प्रबंधन के लिए घने पेड़ों को बेकार शाखाओं को काट कर घनापन कम कर देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: अक्टूबर नवंबर माह में खेतों की जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि खर पतवार एवं उसमें प्यूपा या अन्य कीट जो है मर सकें। इस कीट के क्रिया को अपने ही मंजर दिखाई देने पर तीन छिड़काव करना चाहिए। प्रथम छिड़काव जब बर्ड निकलने लगता है उस समय करना चाहिए। दूसरा छिड़काव प्रथम छिड़काव के 15 से 20 दिनों के बाद करना चाहिए, और तीसरा छिड़काव जब मटर के समान फल आ जाए तब करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: प्रथम छिड़काव में स्पाइनोसेट 1 ml 5 लीटर पानी में या थायोमिथोएक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसमें से किसी एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करते हैं, जो हम उसमें से थायोमिथोएक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में या स्पाइनोसेट 1 ml 5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जब मटर के समान फल आ जाए उस समय एसीफेट 0.5 ग्राम दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि सुरक्षित जो है फल को बचाया सके। यदि आवश्यकता पड़ी तो चौथा छिड़काव आप कर सकते हैं। उसके लिए नीम बेस इंसेक्टिसाइड निम्बिसिडिन या नीमाजोल का 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो इसके बाद बात करते हैं आम के फल छेदक कीट की, तो इसके पहचान और प्रबंधन के बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: आम के फल छेदक कीट, यह कीट जब मटर के समान बड़ा दाना हो जाता है उस समय इसका आक्रमण होता है। यह कीट पहले प्यूपा अवस्था में मोटे टहनियों पर छिपा रहता है। जो ही फल होने लगता है उस समय ये एडल्ट बनता है और पेडिकल पर अंडा अपना दे देता है। अंडा से फिर बच्चा होगा, फिर आम के नीचे वाले पोर्शन से छेद कर उसमें घुसता है, और जब फल बड़ा होने लगता है तो उसके गुठली में भी जाकर अंदर खाते रहता है। यह कीट लाल धारी बनाए हुए होता है, जिसे कि हम फल छेदक कीट कहते हैं। यह कीट खाता कम बर्बाद ज़्यादा करता है। इसे देखते हैं कि ये जब ये इसका आक्रमण होता है उस समय जो है बहुत ही आमों को नीचे गिरा देता है, खाकर नष्ट कर देता है। इसकी पहचान इसकी निदान के लिए पहले हम लोगों को चाहिए कि घने बागों को, जैसे कि आम की टुड़ाई करने के बाद मोटे टहनियों पर क्लोरोपाइरिफॉस एवं साइपरमेथ्रीन का मिक्सचर, एक दवा आता है जिसमें 50% क्लोरोपाइरिफॉस और 5% साइपरमेथ्रीन का एक मिक्सचर दवा आता है, उसको

0: ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर मोटे तहनी पर दो बार छिड़काव करना चाहिए 15 दिनों के अंतराल पर, जिससे कि उसके पीपा अवस्था को नष्ट किया जा सके। दूसरा है कि जब फल नीचे आक्रमण होता है तो फल नीचे गिरता है, उसको कलेक्ट कर जमीन में गाड़ देना चाहिए, जिससे कि पीपा या एडल्ट न बन सके।
1: अच्छा।
0: बगीचे को सफाई रखना चाहिए। यदि उसका आक्रमण फलों पर होता है, उसके लिए एक दवा आती है प्रोफेनोफॉस 50 EC 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से दो बार आप छिड़काव करेंगे तो फ्रूट बोरर का आक्रमण को रोका जा सकता है।
1: अच्छा, तो ये तो बात हो गई आम के फल छेदक कीट के बारे में, और अब जानना चाहेंगे हम दहिया कीट के बारे में, और इसके अब इसका पहचान कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई, और इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं।
0: इस कीट को मिली बग भी कहा जाता है। इस कीट के व्यस्क एवं शिशु दोनों ही मंजरों एवं कोमल टहनियों को हानि पहुंचाते हैं। मिली बग सफ़ेद चिपचिपा एवं बिना पंख वाला मादा कीड़े ही नुकसान पहुंचाती है। नर कीट के पंख होते हैं लेकिन यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस कीट के शरीर पर सफ़ेद दही के रंग का पाउडर चिपका रहता है, जिसके कारण इसे दहिया कीट कहते हैं। ये कीड़े मुलायम टहनियों एवं मंजर वाले भाग में चिपके रहते हैं और इसके लगातार रस चूसते रहते हैं, जिससे कि आक्रांत भाग सूख जाता है और मंजर झड़ जाते हैं। यह एक वर्ष में इस कीड़े का केवल एक ही पीढ़ी तैयार होती है। दिसंबर के मध्य भाग से फरवरी के पहले सप्ताह तक अंडों से बच्चे निकलते हैं और पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। मई जून माह तक ये कीड़े पेड़ पर रहते हैं। इसके बाद गर्भाधारण के बाद मादा कीट पेड़ के नीचे गिरकर या उतरकर जमीन में घुस जाती है और छोटी थैली में अंडे दे देती है, जिसके बाद वह मर जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए हम गर्मियों में चारों तरफ मिट्टी को खोदकर या गहरी जुताई कर देना चाहिए, या जब बारिश खत्म हो जाती है उस समय जुताई या कोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसके लार्वा या एक जो है खत्म किया जा सके। पेड़ के तने के चारों ओर जमीन से लगभग 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर चिपचिपा पट्टी बांध देना चाहिए। यह पट्टी अल्काथीन या पोलथीन की लगभग 8 इंच मोटी होनी चाहिए और इसके ऊपर पेड़ या ग्रीस या प्लास्टिक या ग्रीस लगा देना चाहिए। पेड़ के जड़ों के पास 3 फीट व्यास में इकालक्स 55% धूल का 200 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस दवा का 200 मिलीलीटर प्रति पेड़ की दर से चारों तरफ मिट्टी में मिला दें, जो कि कीट एवं चिड़ न सके। इसके नियंत्रण हेतु दानेदार दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थायमिथोएक्जेम दानेदार दवा का 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव भी किया जा सकता है, जिससे कि मिलीबग या दहिया कीट का प्रकोप को खत्म किया जा सकता है।
1: अच्छा, तो इस तरीके से दहिया कीट का जो प्रबंधन है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर साहब तना छेदक कीट पर, और जानना चाहेंगे कि तना छेदक कीट का हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं।
0: यह कीट भारत के हर कोने में पाया जाता है। इस कीट का प्रकोप पेड़ों पर सालों भर देखा जाता है। इस कीट के व्यस्त भूरे स्लेटी रंग के भृंग होते हैं। इसका टहनियों एंटीना शरीर से लंबा होता है। इसका शिशु लगभग 9 सेंटीमीटर लंबा एवं हल्के पीले एवं मुंह भूरा रंग का होता है। इस कीट के शिशु पेड़ों के तनों व शाखाओं या छाल के नीचे वाली लकड़ी के सुरंग बना

आकर उनके अंदर ही अंदर खाती है। ये सुरंगें कीट के मल, पेड़ की छाल या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी रहती है। इस कीट के प्रकोप पुराने बागों में ज़्यादा होता है। इस कीट के प्रकोप से पेड़ की शाखाएं या तना कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर

0: अच्छा,
1: इस कीट के प्रबंधन के लिए, कीट के प्रभाव को रोकने के लिए माह अप्रैल से अगस्त माह तक प्रकाश प्रपंच का व्यवहार करें। इस कीट के द्वारा बनाए गए सुरंग से इसके मल लकड़ी के बुरादे को किसी पतले तार से साफ कर देना चाहिए। सुरंग में किरासन तेल या पेट्रोल या अनुभान को रुई में डुबोकर उसके छेद में लगा दें और गिल्ली मिट्टी से बंद कर देने से इसका प्रकोप को खत्म किया जा सकता है।
0: अच्छा, तो ये आम का तनाछेदक कीट के बारे में आपने जाना कि कैसे आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आम के फल मक्खी कीट पर, और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इसका पहचान और प्रबंधन कैसे किया जाए।
1: आम के फल मक्खी भूरे रंग की होती है, पंख पारदर्शक जिस पर काले रंग के धारियां होती है। इस कीट के मादा मक्खी फलों के अंदर अंडे देती है, ये अंडे सफेद होते हैं। मादा कीट फरवरी से अक्टूबर तक अंडे देती है, अंडों से शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु ही हानि पहुंचाते हैं, ये फलों के गुद्दों को खाते हैं तथा फल सड़कर पकने के पूर्व ही गिर जाते हैं। इस कीट के प्रकोप बरसात के दिनों में अधिक होता है। इस कीट के प्रकोप से फलों में काफी कभी कभी 50% तक क्षति होती है। इस कीट के प्रबंधन हेतु सर्दियों में बाग को मिट्टी पलटने वाले हल से या मिट्टी पलट देना चाहिए जिससे कि प्यूपा नष्ट हो जाए।
0: अच्छा,
1: पेड़ के आम के पास गिरे हुए फलों को इकट्ठा कर जमीन के अंदर गाड़ दें। फलों को परिपक्व होने से पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए। फल मक्खी के नर व्यस्क को पकड़ने के लिए सबौर ट्रैप या बाजार में उपलब्ध ट्रैप को फल पकड़ने के लिए पूर्व से 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अप्रैल से जुलाई माह तक 3 से 4 बार मालाथियन 50 EC दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर थोड़ा छुआ या गुड़ मिलाकर देने से यह कीड़े अधिक आकर्षित होते हैं। या नीम पर आधारित निम्बिसिडिन या निमाजोल का 4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट के बचाव को रोका जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो 15 दिनों के अंतराल पर इसी दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: तो अंत में डॉक्टर साहब, जाते जाते अब आम के लीफ वेवर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी पहचान और प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
1: इस कीट के व्यस्क भूरे स्लेटी रंग के होते हैं, अगले पंखों पर गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, पिछले पंख पर सफेद होते हैं। इस कीट के शिशु भूरे रंग के होते हैं, इस कीट के शिशु ही हानि पहुँचाते हैं। अंडों से निकलने के बाद शिशु मुलायम पत्तियों पर समूह में खाती है, थोड़ा बड़ा होने पर ये पत्तियों को रेशमी धागों की मदद से वापस में जोड़कर जाला जैसा बनाती है। इस जाले के अंदर ही अंदर ये मुलायम पत्तियों या टहनियों एवं कलियों को खाती है, जिसे पौधा बढ़वा रुक जाता है और फलन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कीट के प्रबंधन हेतु बचाव हेतु मुड़ी हुई पत्तियों या टहनियों को तोड़कर नष्ट कर देने से इस कीट का बचाव को रोका जा सकता है। पेड़ों पर इस कीट के प्रकोप अधिक होने पर लिम्डासाई हेलोथ्रीन 5% EC दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर 2 बार छिड़काव करें। ये छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर होना चाहिए। दूसरा छिड़काव भी आप 15 दिनों के अंतराल पर कर सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आम के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, और इसमें आपने जाना मधुआ कीट के बारे में, साथ ही आपने जाना आम के फल छेदक कीट के बारे में, दहिया कीट के बारे में, आम का तना छेदक कीट के बारे में आपने जाना, आम के फल मक्खी कीट के बारे में, साथ ही आम के लीफ वेबर कीट के बारे में आपने जाना। तो इस तरीके से आप इन कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं, इनकी पहचान करके। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन।

0: और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
4: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो, बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु, और आज जी हां, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ की तरह हम लेकर आते हैं बहुत ही अच्छी और ख़ास बातें हमारे किसान भाइयों के लिए। और अभी जो मौसम चल रहा है वो खरीफ मौसम है, और ऐसे में तिल की खेती आप कैसे करेंगे, इन सभी जानकारियों के साथ हमारे बीच है आज डॉक्टर सीमा सिन्हा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है, और खरीफ मौसम की हम बात कर रहे हैं, खरीफ मौसम में तिल की खेती कहाँ लगाना अभी ज़्यादा सही होगा जिससे कि किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा?
6: मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तिल के बारे में किसानों को बताना चाहूँगी कि तिल एक तेलीय फसल है, इसमें करीब करीब 50% तेल की मात्रा, साथ साथ इसमें प्रोटीन भी 13-14% मिल जाते हैं, तो ये एक खाद्य के रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो किसान भाई इसको अवश्य लगाएं। और ये एक ऐसा पौधा है जिसको हम सदाबहार कह सकते हैं, ये किसी भी मौसम में होता है, खरीफ में भी हो रहा है, गर्मा में भी हो रहा है। खरीफ मौसम में विशेष ध्यान रखना है कि वैसे जगह पे हम इसको लगाएं जहाँ पे जल जमाव ना हो। खरीफ मौसम में इसमें इरिगेशन देने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, और इसका जो लगाने का सही समय है, एक जब बारिश गिर जाती है, खरीफ की हमारे मानसून का आ जाता है, उसके

बाद लगाते हैं, जल जमा हुआ तो पौधा चला जाता है, हमारा बचता नहीं, इसलिए पौधे को हम लोग बहुत बचा के रखते हैं कि वाटर लॉगिंग बिल्कुल ना हो। और जहाँ तक कि इसके महत्वपूर्ण, इसके जो आपको फसल के जो गुणवत्ता है, आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी वर्णन हुआ है, और इसको त्रिदोषा के रूप में भी हम लोग बोलते हैं। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए जो है इसमें अपना एक गुण है, और साथ में ये मतलब इसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि दिन रोज़मर्रे में हम लोग इसका तेल को, इसके तिल को अपने खाद्य में शामिल करना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। साथ ही हम इसके खेती के बारे में बात करें तो अभी खरीफ के मौसम में हम सबसे पहले जलवायु के बारे में बात करेंगे, साथ साथ इसके ज़मीन की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे कि किस ज़मीन में हम लोग इस जो उपलब्ध है और कौन से ज़मीन में हम इसको लगाएं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़मीन हम ऐसा चुनेंगे जो दोमट बलवाही मिट्टी हो और उसमें पानी का स्टैग्नेशन नहीं हो, साथ में थोड़ा ऊपर का ज़मीन हो, साथ ही अगर ढलाव की ज़मीन है तो और भी बेहतर है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है हमारी लगातार जब 3-4 बारिश हो जाती है तो फिर इसमें जल जमाव होने की समस्या आती है। तो अगर थोड़ा सा भी ढलाव है तो वो पानी नहीं जमेगा। और जहाँ तक हम इसके भूमि की चुनाव जब कर लेते हैं उसके बाद हम इसका सबसे पहले कोशिश करते हैं कि खरपतवार निकलवा दें, क्योंकि जो शुरुआत के दिनों में है तिल की बढ़वार थोड़ी कम होती है तो खरपतवार तुरंत बढ़ जाते हैं और फिर दिक्कत होती है। ऐसे खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत ही बाद हम लोग पेंडामेथिलीन डाल देते हैं 2-3 दिन के अंदर, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि बरसात का मौसम है, खरीफ का मौसम है, तो खरपतवार स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज़्यादा आता है। और जहाँ तक इसके हम लोग खरीफ में मौसम में हम लोग ये भी कहेंगे कि इसको जनरली छिटवा विधि से लोग लगा देते हैं, लेकिन कतार में लगाने से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर हमको इसमें घर पतवार हो गए हैं उसकी निकौनी करनी है तो वो बड़े आसानी से होता है। साथ ही साथ इसका जब बीज की रुपाई की बात हम लोग बोलते हैं तो इसका 5-6 kg हम लोग मुख्य रूप से बीज कतार से कतार लगाने में यूज़ करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, लेकिन अगर छिटवा विधि से है तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक उपाय करते हैं कि इसमें कुछ बालू मिला देते हैं जिससे कि सीड इसके काफ़ी छोटे होते हैं जो ज़्यादा ना गिरे। साथ ही साथ इसके भूमि के चुनाव के बाद हम लोग इसमें खाद की मात्रा के बारे में बात करते हैं। ये जनरली ये मुख्य रूप से अभी जो इसको उगाया जाता है लोग छोटे से प्लॉट में उगाते हैं अपने घर के पास के ज़मीन में, तो वहाँ खाद तो देते नहीं हैं, लेकिन अगर खाद उपलब्ध है तो देना चाहिए। और इसकी मात्रा हम लोग कहते हैं कि नेत्रजन है जो 40, 20 फास्फोरस, 20 पोटास kg पर हेक्टर के हिसाब से डालते हैं। जो नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 डोज में डालेंगे, बाकी तो सारा एक साथ में हम लोग डालते हैं फास्फोरस एंड पोटास। नाइट्रोजन की आधी मात्रा उस शुरुआत में डालते हैं जब हम लोग रुपाई करते हैं, आधी मात्रा हम लोग फ्लावरिंग आने से पहले डालते हैं। साथ में कंपोस्ट की उपलब्धता पे निर्भर करता है, अगर कंपोस्ट उपलब्ध है तो अवश्य हम उसमें डालेंगे। और बीज की मात्रा और दूरी की बात है तो बीज की मात्रा 5-6 kg लगेगा कि कतारों में, अगर इसको अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो इसके लाइन पे डिपेंड करता है कि आप कितने लाइन लगाए हो, अगर ज़्यादा लाइन है तो ज़्यादा बीज लगेगा, कम लाइन है तो कम लगेगा। और इसकी अगर एकल फसल के रूप में हम लोग इसको लेते हैं तो 30 cm और 10 cm, 30 cm कतार से कतार की दूरी यूज़ करते हैं और 10 cm पौधे से पौधे की दूरी करते हैं। और इसके बीज का उपचार करना आवश्यक होता है, 2 ग्राम कार्बोंडाजिम है या अथवा ट्राइकोडर्मा से भी हम लोग उपचार करते हैं। और इस खरीफ मौसम में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि थोड़े बीमारी इसमें ज़्यादा आते हैं खरीफ मौसम में, गर्मा मौसम के ये में, तो थोड़ी लागत अवश्य बढ़ती है। और इस समय हम लोग को बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाने के लिए सीड को अवश्य ही स्ट्रेप्टोमाइसिन से ये करना चाहिए, 4 kg बीज में 1 ग्राम
हम लोग

0: ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से ट्रीटमेंट देते हैं, उसको उपचार करते हैं ताकि बैक्टीरियल ब्लाइट से बचा रहे, क्योंकि ब्लाइट जो है काफ़ी छोटे, करीब करीब पौधे के 6 से 8 पत्ते के होते हैं, उस समय से आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी बहुत शुरुआत के दिनों में ही ब्लाइट आ जाते हैं, ज़्यादा बारिश होता है, तो फिर उसके बाद उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बीमारी है जिसको फाइलोडी बोलते हैं हम लोग। फाइलोडी भी दिखता है बहुत जगह पे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि पौधा जो फाइलोडी से अफेक्टेड है, इस जो इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि पौधे को पहचानने के लिए सारे पत्ते एक जगह पे हो जाते हैं और बीच की, दो पत्ते के बीच की दूरी जिसको इंटरनोड डिस्टेंस बोलते हैं, वो बिल्कुल ही घट जाता है, तो एक जगह बंच की तरह हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग और पॉडिंग नहीं के बराबर होती है, तो इसमें पॉड, इसमें हमारा यील्ड का काफ़ी लॉस होता है। तो इसको, इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइलोडी को मुक्त करने के लिए जो पौधे हमारे पास दिखें उसको हम लोग हटा देते हैं, उसको निकाल के दूर हटा देते हैं। या फिर इसको उपचार करने के लिए हम लोग ये भी करते हैं कि 3 ग्राम ब्लाइटोक्स 50 का पर लीटर पानी में उसको घोल के 15 से 20 दिन के इंटरवल पे 2 छिड़काव कर देते हैं। ये भी एक थोड़ा सा ये है। और इसके लिए दूसरी बात यह है कि हम बीज ही ऐसा लें जो फाइलोडी से मुक्त हो, रेसिस्टेंट हो। कुछ बीज हमारे पास जो अच्छे बीज हैं उसमें आपका काफ़ी बीज है, आप सबौर तिल 1 का उपयोग कर सकते हैं, आप GT10 का उपयोग कर सकते हैं, इन सबों में TKG22 का उपयोग कर सकते हैं, इन सबों में ऐसे बीमारी की कोई फाइलोडी से कोई मतलब फाइलोडी नहीं आता है इन पौधों में। तो इसके लिए भी हम लोग फसल सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा फसल ख़राब हो जाता है। साथ ही इसमें हम लोग तो इस तरह से इसमें नाइट्रोजन का लॉस नहीं होता है और पौधों को अच्छे से मिल जाता है और पौधा इसका उपयोग करते हैं। और खरपतवार तो इस मौसम में आते हैं, उसके लिए पेंडामिथिलिन मैंने बताया है, और जो आप ये हाथ से निकाई गुड़ाई कर सकते हैं उसको भी 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहें, जिससे कि आपका खरपतवार कम से कम 2 महीने तक तो बचा रहे क्रॉप। तो फिर क्रॉप की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत नहीं होती है, शुरुआत के दिनों में इसकी बढ़वार काफ़ी कम है, तो हम लोग इसका विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ कटाई करने के लिए इस फसल में एक दिक्कत ये आती है कि ये सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी नहीं है, एक साथ में नहीं पकता है, फिर भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऐसे कौन से समय में काटें जो कि कम से कम लॉस हो, मतलब कहने का कि फली फटने के पहले काट लें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके। तो इसके लिए हम लोग अगर पत्ती को देखते हैं तो नीचे की पत्तियाँ कुछ झड़ने लगती है और पीले हो जाते हैं, तो हम लोग इसको काट के खड़ा करते हैं और 3-4 दिन धूप में डाल के सुखा के उसके बाद इसको हम लोग थ्रेशिंग कर लेते हैं। और थ्रेशिंग करने के बाद भी हम लोग ये निश्चित करते हैं कि करीब करीब 8% के अराउंड में इसका मॉइस्चर रहे, नहीं तो फिर जहाँ स्टोरेज करेंगे वहाँ फिर उसमें कीट लगने की संभावना होती है। लेकिन अगर हम लोग इसको अच्छे से सुखा के अच्छे से बैग में पैक करेंगे तो फिर वो संभावना घट जाती है। तो किसान भाइयों, आप लोग इस जो उपयोगी फसल है आपके लिए इसको लगाएं, और इसका जहाँ तक बिकने की बात है और इसका जो रेट है वो काफ़ी हाई है, सरकार के तरफ से भी बार बार इसमें इसके जो MSP हैं बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तिलहनी फसलों में काफ़ी उपयुक्त फसल है, अपने खाने के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी, जिससे आप इससे आय अर्जित ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खरीफ में तिल की खेती, और इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं आपको, और आशा करते हैं आज का यह वार्ता ज़रूर आपको पसंद आएगा। अगले दिन मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, इसे फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी साथी आरजे उमा। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं हमारे अपने गांव-गांव में स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद आरजे बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी दिल से धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी के साथ करना चाहती हूँ। ये कहानी है भागलपुर के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ आरजे बाबू, मैं भी उस बच्चे को जानता था।
0: गर्मी का मौसम था और गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत हो गए थे, पानी जमा था, इसलिए सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो कोई साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया और शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर समय पर जांच हो जाती, अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू हमारे बीच होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये लापरवाही और जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और हम मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं हर साल 25 अप्रैल को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जब 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे तय किया गया। इस दिन का मकसद सिर्फ एक है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक चुनौती है जिसे हमें मिलकर हराना है।
0: तो भैया, जो हम मलेरिया दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ जागरूकता ही एक वजह है या फिर इसके पीछे और भी कोई उद्देश्य है?

0: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। ये दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सकें। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
1: और भैया, इस साल की थीम क्या है और उसका मतलब क्या है, ये भी आप हमें समझा दीजिए।
0: इस साल की थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो ज्ञान, वो तकनीक और वो संसाधन है जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
1: सिहतिया भैया, अगर आसान भाषा में बताएं तो मलेरिया आखिर क्या होता है?
0: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
1: मतलब ये शरीर के अंदर फैलता रहता है।
0: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
1: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है, जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयां आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहां तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही हैं उनमें नई तकनीक है, और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थीं, जो ज्यादा असरदार हैं।
1: तो इसका मतलब दुनिया में मलेरिया कम हुआ होगा?
0: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
1: कम हुआ है, लेकिन फिर भी मलेरिया अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है?
0: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
1: और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयां पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती है मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर, जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
1: अच्छा, एक और सवाल जो मेरे मन में है कि क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होता है?
0: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होता है। जहां साफ पानी की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, वहां यह बीमारी ज्यादा फैलती है। इसीलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
1: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी कोई दिक्कतें हैं?
0: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला, जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी। मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
1: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, तो आप इसे आसान भाषा में समझाइए कि फंड की कमी कैसे आ रही है?
0: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयां चाहिए, मच्छरदानियां चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए।

0: इन सब के लिए पैसे चाहिए, लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कई जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
1: भैया आपने एक और बात कही थी जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन का मलेरिया से क्या संबंध है?
0: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहां भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, ये पर्यावरण से जुड़ी समस्या भी बन चुकी है।
1: अब अगर हम अपने देश की बात करें भैया, तो हमारा भारत कहाँ खड़ा है इस सूची में?
0: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौतें दर्ज की गईं, लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं।
1: जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं कुछ जगहों पर कम पहुंचती है, और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी समस्या कहाँ है?
0: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
1: तो इतनी समस्याएं हैं, ऐसे में भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को लेकर?
0: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला न हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
1: और सरकार इस पर काम कैसे कर रही है?
0: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांवों में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। पीएचसी और सब सेंटर में मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं, और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें एसीटी यानी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
1: सिहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना, समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
1: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है, इसके बारे में भी बताइए।
0: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा ना फैले।
1: ये तो बात हो गई योजना की, लेकिन आप ये बताइए भैया कि जमीन पर क्या होता है और क्या हो रहा है?
0: जमीन पर बहुत काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांवों में नियमित रूप से इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती हैं जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती हैं।
1: मतलब ये कि लोग खुद जाएंगे तब ही जांच होती है।

0: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है, इसे एक्टिव सर्वेलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
1: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ये संभव है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया खत्म नहीं हो सकता। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं कराएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
1: तो इसमें आम लोगों की भी भूमिका होगी?
0: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पर जांच कराएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
1: भैया, गांव में ना कई तरह की बातें फैलती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मलेरिया खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: यही सबसे खतरनाक बात है। मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं, बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर न हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बुखार को हल्के में न लें।
1: लेकिन एक और बात है कि लोग अक्सर मलेरिया का इलाज या कोई किसी भी तरीके का इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, और खास तौर से मलेरिया का इलाज भी।
0: यही सबसे बड़ी गलती है। जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने 3 दिन या 7 दिन की दवा दी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: तो आखिर इसका समाधान क्या है?
0: समाधान बहुत स्पष्ट है। समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी, मिलकर काम करना।
1: तो भैया, ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
0: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी तब मलेरिया अपने आप खत्म होने लगेगा।
1: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
0: हाँ, और यही उम्मीद है। बिहार के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वह तुरंत आशा दीदी के पास गई। जांच हुई, मलेरिया निकला। उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
1: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
0: हाँ, एक फैसला, समय पर जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
1: भैया, क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
1: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
0: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
1: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, साधन है, अब बहाना नहीं चलेगा।
0: अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे।
1: तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम मिलकर लेंगे सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई, स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो।
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आइए एक बार फिर से आप सभी से हम मुलाकात करने आ चुके हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, जहाँ आप जानते हैं बहुत ही खास बातें, उपयोगी बातें, और आज फिर से बहुत ही खास आपके फायदे की बातें हम लेकर आए हैं। जी हाँ, जहाँ तक खेती की बात होती है तो खेती में हम बहुत सारे चीज़ आपको बताते हैं, उनसे जुड़ी बातें बताते हैं, जिसे आप अपना कर एक सफल किसान बन सकते हैं, चाहे हमारे किसान बहनें हो या भाई हो। फिलहाल यहाँ पर आज का विषय आप सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है, तो आपको बिल्कुल बिना इंतज़ार करवाए मैं बताती हूँ, आज का विषय है आर्सेनिक दूषित मिट्टी में सुरक्षित खेती। और इस विषय पर खास चर्चा के साथ हमारे बीच हैं, जी हाँ बता दें हम, डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं सहायक प्राध्यापक बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स जो हैं वो मानव को तो परेशान कर ही रहे हैं, और साथ ही अगर खेती की बात करें तो यहाँ भी ये अपनी जो कहर हैं वो बरपा रहे हैं। फिलहाल आज का

0: हमारा विषय है आर्सेनिक से रिलेटेड जुड़ा हुआ। तो आज सबसे पहले जानेंगे हम कि आर्सेनिक प्रदूषण क्या है और इसका मानक क्या है।
1: जैसा आपने बताया कि आर्सेनिक का एक भयावह स्थिति में पहुंच रही है, तो आर्सेनिक एक प्राकृतिक में पाए जाने वाला तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा जो परमिसेबल लिमिट भी बोलते हैं उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 ppb मतलब 10 ppb होनी चाहिए, पर बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसकी मात्रा 10 से बहुत ज़्यादा है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है।
0: जी, तो ये आपने जाना कि ये कैसे आपको प्रभावित कर सकता है। और इसके बाद डॉक्टर साहब, अगर बात करें मानव की और फसलों की, तो इसका क्या क्या कुप्रभाव इस पर पड़ सकता है?
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्सेनिक एक बहुत ही खतरनाक तत्व है जिससे त्वचा में संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य कई बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। हाल के दिनों में आर्सेनिक प्रदूषित जल का प्रयोग कृषि कार्यों में काफ़ी बढ़ गया है, जिससे मिट्टी में इसका संचय हो रहा है। फसल आर्सेनिक को खतरनाक स्तर तक अवशोषित कर रहा है और इन फसलों में आर्सेनिक के कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं, और इसके उपयोग से मनुष्य तथा जो हमारे जानवर हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं। और उनके जैसे हम लोग फसल खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, जानवर के मांस खाते हैं या दूध पीते हैं, उससे भी आर्सेनिक हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गई है।
0: यानी कि यूँ कहें कि अगर हम कोई शाक सब्जी खाते हैं, अगर खेती हो रही है, तो उसमें भी आर्सेनिक के कुछ जो मात्रा है वो चले जाते हैं,
1: बहुत ज्यादा आ सकती है। तो जो भी अगर आर्सेनिक कंटामिनेटेड एरिया में जो भी चीज ग्रो हो गई है और उस फसल को अगर हम खाते हैं या दूध के थ्रू हमारे शरीर में आता है, तो उससे भी आर्सेनिक का कुप्रभाव हो सकता है।
0: तो इस कुप्रभाव से मतलब जो मानव है उनमें किस तरह की लक्षण या स्थिति दिखाई देती है सर?
1: मानवों में आप देखें, हथेली में आर्सेनिक्रोसिस एक बीमारी होती है जो त्वचा में काले काले धब्बे नजर आते हैं।
0: अच्छा।
1: और उससे फेफड़ों में कैंसर भी बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है, तो इससे बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती है।
0: तो क्या जानवरों को भी ये प्रभावित करता है?
1: हाँ, जानवरों में भी ये प्रभावित करता है, पर उनके लक्षण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं
0: अभी पता चली है।
1: पर आदमी में, मनुष्यों में ऐसा बहुत ही ज़्यादा कुप्रभाव देखने को मिला है।
0: अच्छा, तो सर जब बिहार राज्य की हम बात करते हैं तो आर्सेनिक प्रदूषण की कितनी भयावह स्थिति हमारे बिहार में है?
1: अगर हम ऐसे देखें तो दुनिया में इससे बहुत सारे देश हैं उसमें आर्सेनिक का इफेक्ट है। भारत देश में अगर हम भारत की बात करते हैं तो 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक का कुप्रभाव देखा गया है। उनमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। बिहार, अगर हम बिहार की बात करें तो इसमें 18 जिले जो हैं आर्सेनिक से ग्रसित हैं। उनमें उन जिलों में भोजपुर, सागर, बेगूसराय, भागलपुर, पटना और बक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार भोजपुर जिले में के कुदरिया गांव में पाया गया है कि सिंचाई जल में 80 ppb तक आर्सेनिक कंटामिनेशन है, जबकि सॉइल में 2.5 मतलब 2.5 ppm तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और इसे बचने के उपाय बहुत ही अत्यंत आवश्यक है।
0: तो सर, अगर हमारे जो किसान भाई हैं, किसान बंधु हैं, अगर उन्हें पता लगाना हो कि जो उनके खेत में ये समस्या है या नहीं, आर्सेनिक की समस्या है या नहीं, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं?
1: जैसा सभी किसान भाइयों को पता है कि आर्सेनिक का कोई गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता, महत्व नहीं होता, तो इसे पता लगाना थोड़ी डिफिकल्ट है। पर आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर जल बोर्ड के अधिकारी आते हैं और आर्सेनिक दूषित क्षेत्र में वो सर्वे करते हैं, और जो भी ट्यूबवेल होता है या कुआं होता है उसको लाल रंग से या रेड कलर से उसको अंकित करते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर आपको जब पता चल गया कि ये रेड कलर से अंकित है, तो उसका पानी का उपयोग ना करें। और अगर कृषक बंधु भाई बहन अगर चाहे तो अपने मिट्टी और सिंचाई जल को किसी सर्टिफाइड लेबोरेटरी में ले जाके वो चेक भी करवा सकते हैं।
0: जी, ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं किसान बंधु कि आर्सेनिक समस्या आपके खेत में है या नहीं, ये आपको प्रभावित कर रही है नहीं। और इसके बाद अगर प्रबंधन की बात करें डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे खेत में आर्सेनिक की समस्या भी है, तो इसका प्रबंधन यानी कि इसका निदान कैसे कैसे कर सकते हैं?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जिस भूजल में या जिस ट्यूबवेल में आर्सेनिक कंटामिनेशन पता चल गया है, उसका सिंचाई में बहुत कम से कम पानी यूज करें और ऐसे फसल को उगाएं जहाँ पे भूजल और जो जमीन से निकलने वाले जंत्र है उसका उपयोग ट्रम्प

0: कम हो, क्योंकि भूजल में आर्सेनिक की कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। और किसान भाई ऐसे फसल चक्र का उपयोग कर सकते हैं जिसमें भूजल कम से कम यूज हो, जिसमें सिंचाई कम लगे, वैसे फसल चक्र का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा जो एग्रोकेमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं, उसमें भी आर्सेनिक कंटामिनेशन हो सकते हैं। तो प्रयोग में लाने के पहले आप उनके लेवल को पढ़ें, अगर उसमें आर्सेनिक हो तो वैसे केमिकल्स, वैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड का उपयोग ना करें, तो आप इसको प्रबंधन में ला सकते हैं।
1: तो इस तरीके से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपने जाना कि आर्सेनिक दूषित मिट्टी में आप सुरक्षित खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा किया, जैसे कि इसका क्या जो है प्रभाव पड़ सकता है मानव पर, साथ ही फसलों पर। इसके बाद आपने जाना कि इसकी समस्या का निदान आप कैसे कर सकते हैं। और तो इस तरीके से अगर आप भी यानी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके खेतों में भी ये समस्या है, तो आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आ सकते हैं और यहाँ पर हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 जून के दौरान सामान्यतः 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन

धान की खेती करते हैं। उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे के स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी

एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ FM ग्रीन। और आज फिर से हम हमारा जो खास प्रोग्राम है उन्नत कृषि लेकर आ चुके हैं। और आज हम एक खास विषय उर्वरक बचत हेतु धान की फसल में अजोला का प्रयोग, आज इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK झा, जो कि जी हाँ वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अजोला क्या है।
2: अजोला एक फर्न है, जलीय फर्न है। वास्तव में इस फर्न की पत्तियों में एनाबिना अजोली नाम का एक नीलहरित शैवाल रहता है। यानी कह सकते हैं कि इस फर्न का और नीलहरित शैवाल का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप है, तो यानी सहजीवी व्यवस्था है। और इस नीलहरित शैवाल के कारण ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है।
0: और अजोला को किस किस काम के लिए हम प्रयोग मिला सकते हैं?
2: बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया। वास्तव में अजोला एक ऐसा फर्न है जिसका प्रयोग आप खेती में उर्वरक बचत के लिए कर सकते हैं, खास करके धान की फसल में। दूसरी बात, यदि इसको आप प्याज में करके देखें तो यहाँ पर करके देखा गया है कि प्याज की फसल में, खास करके खरीफ प्याज में, सड़ने की ज्यादा समस्या होती है। और यदि हम अजोला का प्रयोग करते हैं तो उसमें सड़न कम होता है, उत्पादन बढ़ता है और इसका जो रंग है वो ज्यादा बढ़िया होकर के आता है। तो यह हमने देखा है कि इसमें खरीफ फसल, खरीफ ऑनियन में, खरीफ प्याज में ये फायदा कर सकता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग लोग जो पशुपालन है उसमें भी करते हैं, पशुओं के आहार के लिए। और यह यहाँ पर शोध करके देखा गया कि यदि हम 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम यदि गाय को अजोला देते हैं तो उसमें 8 से लेकर 15.6% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ यह बताएं कि कई देशों में इसको लोग पशु आहार के अतिरिक्त, पशु आहार मतलब कि बकरी का के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मुर्गी के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं इसको मनुष्य भी भोजन करते हैं। ये पेपर में है, ये हम लोगों ने नहीं करके देखा है, लेकिन यह जो पेपर में है, पेपर में यह है कि हाँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, 25 से 35% प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह मनुष्य आहार

0: में भी देखा गया है, और साथ ही साथ एक शोध में तो यह भी देखा गया कि यदि हम कैंसर पेशेंट्स को या HIV पेशेंट्स को यदि हम देते हैं तो उसकी रिकवरी तेज होती है। लेकिन इस पर हम बहुत ज्यादा बल नहीं देंगे, हम तो कृषि के हैं, तो कृषि में हमने बताया कि आप खेती में प्रयोग कर सकते हैं, पशुपालन में पशु आहार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: अभी आपने बताया कि धान की फसल में उर्वरक बचत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो कितने उर्वरक की बचत होती है?
0: देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने शोध करके देखा है, जिस पर टेक्नोलॉजी भी विश्वविद्यालय का है, कि यदि हम अजोला का ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उससे जो भी उस धान की अनुशंसित नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा है वह आपको आधी की बचत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, यदि आपको 6,000 रुपया उर्वरक के खरीद पे लगता है तो 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटास उसका कम कर दीजिए, जिस पर कि मोटा मोटी 2,500-3,000 रुपये की बचत आपकी प्रति हेक्टेयर हो सकती है यदि आप इसमें प्रयोग करते हैं तो।
1: धान की फसल में जो अजोला का प्रयोग किया जाता है तो अजोला का उत्पादन हम कैसे करेंगे और धान की फसल में इसका उपयोग कैसे करेंगे?
0: ये बड़ा महत्वपूर्ण और समीचीन प्रश्न है। वास्तव में क्या है कि अजोला की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है। यदि आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो 10 टन पर हेक्टेयर की अनुशंसा है, तो 10 टन पर हेक्टेयर उत्पादन करने में तो टफ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो खेत में ही 2 मीटर गुने 10 मीटर की क्यारी बना लेते हैं, बरसात में तो ऐसे भी पानी रहता है, तो उसमें आप मेड़ बना दें और वहाँ पर उस क्यारी में आपको करना ये है कि इसमें पानी आपको रखना होगा, कम से कम 10 सेंटीमीटर पानी हर समय आपको रखना पड़ेगा। पानी रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या है कि ये 1.5 किलो लगभग गोबर, यानी कहने का तो प्रत्येक क्यारी में आप 3 किलो कर लीजिए, क्योंकि देखिए 10 × 2 यानी कितना होगा, 20 स्क्वायर मीटर हो गया, तो उसमें 3 किलोग्राम गोबर को लेकर के आप 20-25 लीटर पानी में घोल करके, और जो चलनी आता है जो जिसे बालू आलू छानते हैं उसे छान करके उसको आप फैला दीजिए उसमें। ये करने के बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट ये आपको 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको डालना चाहिए। ये डाल करके इसमें अजोला डाल देते हैं लगभग 200 ग्राम, आप फ्रेश अजोला जो बिल्कुल ताज़ा है उस अजोला को उसमें डाल देते हैं, और या आप देखेंगे कि यदि आप 2-3 हफ्ते तक ये पानी का स्तर आपने बरकरार रखा तो आपको ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो ढक जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके लिए आपको करना क्या है, क्यारी बना लेना है 10 मीटर × 2 मीटर का, उसमें आपको 3 किलोग्राम गोबर को 20-25 लीटर पानी में घोल करके छान करके उसमें डाल देना है, उसके बाद 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना है, 200 ग्राम अजोला डाल देना है, 10 सेंटीमीटर पानी को आपको मेंटेन रखना है हर समय, और वह आप मेंटेन किए रहेंगे तो 2 से 3 हफ्ते में पूरा ये कवर हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में होगा। तो जितने एरिया में आपको धान की फसल करनी है उतने एरिया के हिसाब से आप क्यारी बना करके वहाँ पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान हैं कि इतना अजोला पैदा नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका है डुअल क्रॉपिंग, कि डुअल क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं कि जब 1 हफ्ते का आपका जब धान रोपने के बाद 1 हफ्ते का हो गया तो उसमें ही आप जस्ट उसका 10/10 भाग, यानी आप 10 टन डाल रहे थे तो 1 टन के हिसाब से आप वहां पर अजोला डाल देंगे, और डाल करके उसमें जो आपका फॉस्फोरस की मात्रा है वो लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको बढ़ा देंगे, और ये बढ़ा करके पानी का स्तर 2 से 3 हफ्ते तक आप मेंटेन रखेंगे तो देखेंगे क्या कि ये अजोला उस सरफेस को ढक लिया है। उस समय क्या करेंगे आप कि 2-3 हफ्ते के बाद उस पानी को कम कर देंगे तो ये सब जमीन पकड़ लेगा और ये बहुत जल्दी सड़ करके उसको पोषक तत्व देने का काम करना शुरू कर देता है। तो इस ढंग से यदि आप करते हैं तो इसको कहते हैं डुअल क्रॉपिंग। और वो पहला वाला जो बताया था वो ग्रीन मैन्योरिंग था, कि आपने पैदा किया और वहीं पर जैसे आप ढींचा पलटते हैं वैसे ही आप इस अजोला को पलटेंगे, और अजोला को पलट करके अब उसके बाद फिर आप रोपनी कर देंगे और ये सारी प्रक्रिया होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा अजोला तेजी से बढ़े तो उसमें चाहे वो क्यारी आप बनाए हुए हो चाहे खेत में डाल रहे हो, वह जो मैंने 20 केजी पर हेक्टेयर आपको कहा था उसको आप 3 हिस्सों में बांट करके हफ्ता भर के इंटरवल पर उस SSP को दीजिएगा। अब आप ये प्रश्न पूछिएगा कि भाई ये SSP पर इतना जोर क्यों, तो वास्तव में क्या है कि अजोला फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर करता है, तो फॉस्फोरस आप यदि उसमें डालते हैं तो अजोला की बढ़वार तेजी से होगी और आपको अजोला का ज्यादा

मास मिलेगा। वैसे अजोला तो आपको जान के ताजुब होगा कि 2 से 5 दिन में जब वातावरण उपयुक्त है तो 2 से 5 दिन में यदि आपने 1 किलो अजोला डाला तो वो 2 केजी हो जाएगा। लेकिन बिहार में इसका ज़्यादा प्रयोग पशुपालन में हो रहा है, तो ये तरीका है। आप पशुपालन में जो आप करते हैं उसके लिए तो छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर आपका फार्म है, जहाँ पर जानवर है।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएँ कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएँ अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती हैं तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ ज़रूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से काम कम ज़रूरी हैं, जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी, आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये ज़रूरी है, तो कुछ जो ज़रूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है, इससे आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकालें। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना ज़रूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि घर के लोग समझें, ख़ास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है।

समझना बहुत जरूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए। किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझें और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए ज़रूरी है। क्रेच सुविधा क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहां की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं, तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी, तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं, और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए तो आपका मन भी हल्का होगा और
कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात

0: का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दे। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कराती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के, अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं, और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं, और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें, और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की

1.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और आज एक बार फिर एक खास विषय लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। हम बात कर रहे हैं अजोला की और साथ ही इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप सभी को बताई जाएंगी जो किसान भाइयों के लिए, खेत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज हम बात करेंगे खेती, पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता के बारे में, साथ ही उत्पादन और प्रयोग विधि, आप कैसे अजोला का करेंगे इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर ए के झा, मृदा विज्ञान विभाग बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अजोला के बारे में बताएं।
2: एक्चुअली अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिनके पत्तियों में एनाविना अजोली नाम का एक नीलहरित शैवाल पाया जाता है। भारत के कई भूभागों में इसका उपयोग पशु आहार, मानव आहार, जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में किया जाता है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण के लिए भी किया जाता है।
0: जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो भारत में अजोला की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं एवं कहां कहां मिल सकती है, साथ ही बिहार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है?
2: देखिए, मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो अजोला की जो कि पाई जाती हैं। उसमें है अजोला कैरोलिनियाना, अजोला फेलिकुलाइड्स, अजोला मैक्सिकाना, अजोला माइक्रोफिला, अजोला पिन्नाटा, अजोला रुब्रा। लेकिन देखिए, पहले अजोला निलोटिका भी पाया जाता था, लेकिन अब अजोला निलोटिका सामान्यता नहीं मिलता है। तो ये जो 6 प्रजातियां हैं, ये 6 प्रजाति हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। भारतवर्ष क्या कहिए कि विश्व में पाई जाती है, यही 6 प्रजाति मुख्य रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है। और जहां तक बात है बिहार की, तो यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह शोध करके देखा है कि यहां के वातावरण के हिसाब से जो अजोला माइक्रोफिला है यह सबसे बढ़िया है। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है किसी 10-15 दिन अजोला कैरोलिनियाना बहुत अच्छा कर जाए, अगले 10-15 दिन हो सकता है रुब्रा अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अजोला माइक्रोफिला का सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ एक जो लोकल कलेक्शन है यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का BAUAS1, वह भी बहुत बढ़िया ये परफॉर्म करता है, खास करके माइक्रोफिला के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का देखा गया है।
0: जी, पोषक मान क्या है अजोला का?
2: देखिए, अब एक चीज है कि अजोला, मैंने कहा ही कि उच्च पोषक मान वाला है, इसमें 25-35% प्रोटीन है। अब देखिए, 25-35% प्रोटीन है, यानी कह लीजिए कि अंडा, मछली, मुर्गा, इस सबसे भी कुछ मामले में ये ज़्यादा प्रोटीन वाला है। तो इसमें 25-35% प्रोटीन पाया जाता है। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 4-5% तक पाया जाता है। फॉस्फोरस भी इसमें 0.85% के आसपास पाया जाता है। पोटास की बात करें तो पोटास आपको 2.5% से 4.5% के बीच में इसमें पोटास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे आप विटामिन B12 की बात करें तो 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है। कैल्शियम भी 67 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी 4-3 मिलीग्राम पाया जाता है। गंधक भी पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम। जस्ता भी पाया जाता है 4.1 मिलीग्राम। लोहा की बात करें तो 7.3 मिलीग्राम पाया जाता है। तांबा इसमें 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीज 100

0: बस 2 मिलीग्राम पाया जाता है, सोडियम भी 0.26 मिलीग्राम पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें लगभग लगभग जो हमारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न कहते हैं।
1: जी, अगर अजोला का प्रयोग किसान भाई खेती में करते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें?
0: देखिए, ऐसा है, इसका प्रयोग खेती में आज से नहीं होता है, इसका प्रयोग काफी पहले से किया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो दूसरे भागों में था, विश्व के दूसरे भागों में हम कहें तो ज्यादा बढ़िया है, उसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता था, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, क्योंकि हमने बताया कि इसके पत्ती में नीलहरी शैवाल पाया जाता है। तो ये लोग अभी यही करते थे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इसमें फायदा होता है, नाइट्रोजन की बचत होती है, इसी के लिए करता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने शोध करके इस पर टेक्नोलॉजी भी रिलीज किया है कि हम यदि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा यदि आधी कर दें, लेकिन हम इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें, तो हम देखे हैं कि हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग करके हम 50% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास जो हम धान में देते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शोध करके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जो ये प्याज है, खास करके खरीफ प्याज, बिहार में इसका काफी क्षेत्रफल है, तो ये जो खरीफ प्याज है, खरीफ प्याज सड़ता बहुत है। तो यदि अजोला की सिर्फ आप मल्चिंग कर दीजिए, तो मल्चिंग करने के बाद यह देखा गया है कि इसमें इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी सड़ता कम है, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो यह सारी चीजें यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने यह देखा है कि यदि हम इसका प्रयोग प्याज में करते हैं तो सड़ता कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़िया होता है, धान में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रिकमेंडेड अनुशंसित नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा है वह भी आधी बच जाती है। यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग न करें, यदि डुअल क्रॉपिंग करें धान के साथ, तब भी हमारे उत्पादन में, खास करके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में बचत होती है, यह चीज हम लोगों ने देखा है।
1: जी, अगर पशुपालन की हम बात करें तो क्या पशुपालन में अजोला का प्रयोग हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे, इसके फायदे क्या है, इसके बारे में बताइए।
0: बड़ा बढ़िया है, बड़ा आपने समचीन प्रश्न पूछा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वह खेती में तो कम प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, बिहार में भी या दूसरे जगहों पर भी पशुपालन में इसका जरूर प्रयोग कर रहे हैं। जो पशु पोषण है, पशु को जो हम चारा देते हैं, चारा मिल नहीं पा रहा है, और चारा नहीं मिल पा रहा, साथ ही साथ यदि चारा मिलता भी है तो चारा में उतना पोषक मान नहीं होता जितना अजोला में। यदि हम देखें अजोला को, तो 100 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हम सिर्फ अजोला को पैदा कर सकते हैं, यदि सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उतना कोई भी चारा आपको उत्पादन करके नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो ज्यादा पोषक मान वाला है वह ज्यादा मात्रा में यह उत्पादन करके आपको दे सकता है। अब यह बात है कि पशु पोषण में, यह तो हम लोगों ने यहाँ शोध करके भी देखा था, जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं वह भी हमारे साथ थे इस प्रयोग में, तो यह करके हम लोगों ने देखा कि यदि हम 1 kg सुबह और 1 kg शाम यदि हम जानवर को देते हैं खाने के लिए, जो भी आप दाना चारा देते हैं उसी के साथ मिला करके 1 kg सुबह में 1 kg शाम में देते हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 8 से लेकर 15.6% तक, यानी 8 से 16% तक लगभग हमारा दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिर्फ यदि 1 kg सुबह 1 kg शाम यदि हम खिला देते हैं, और आपका मान लीजिए गाय है वह 10 लीटर दे रही है, तो 10 लीटर के स्थान पर यदि आपको 1.5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है, तो सोचिए कि कितना फायदा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यदि 300 लीटर दूध यदि उत्पादन कर रहा है, तो उसके हिसाब से किसान को काफी हजारों रुपए का फायदा उसको हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही साथ देखिए, इसका आप जो उपयोग है वह आपको मुर्गी पालन में भी कर सकते हैं, बकरी पालन में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि बकरी पालन में जब आप करेंगे उसमें ज्यादा मात्रा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देने से 10% से ऊपर यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको उसको डिसेंट्री होने की संभावना होती है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। मुर्गी में तो आप 25% तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितना आप दाना दे रहे हैं उसका 25% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, बकरी में नहीं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं के पोषण के लिए आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, तो वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में क्या अजोला का प्रयोग किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में ही इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि केचुआ की तेजी से आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसकी ब्रीडिंग जल्दी से करना चाहते हैं, उसमें भी अजोला आपका बड़ा उपयोगी है।

0: कारण यह है कि अभी हमने बताया कि इसके पोषक मान बहुत अच्छे हैं, तो अब केचुआ भी इसको खा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है बढ़िया उसका वृद्धि होता है। इवन 200 से 250% तक 3 महीने में उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, ये हम लोगों ने शोध करके देखा है। अब प्रश्न उठता है कि जो समृद्धिकरण है क्यों हो जाता है। अब अभी आपने को हमने बताया कि नाइट्रोजन 4.5% से 5.5% है, कहीं से केचुआ बाहर से तो पोषक मान लाएगा नहीं। अब इसमें चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है इसीलिए उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हम 25% तक उसमें मिला रहे हैं, तो 25% तक यदि मिला रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि कम से कम 1/4 तो मामला उसमें जा ही रहा है, तो नाइट्रोजन निश्चित रूप में बढ़ेगा। पोटासी हमने बताया 2.5 से लेकर 4.5% तक है, तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होगी, या अन्य पोषक तत्व ही जो इसमें है वो पोषक तत्व के कारण आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वह गुणवत्तापूर्ण बनेगा। और इतना ही नहीं, केचुए की वृद्धि विकास यह भी बढ़िया होगा, तो इसके समृद्धिकरण में भी आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, अजोला की उत्पादन विधि के बारे में थोड़ा बताएं।
0: अब जहां तक अजोला के उत्पादन विधि की बात है, तो यदि आप ये पशुपालन के लिए करते हैं, तो पशुपालन के लिए कर रहे हैं तो जो आप बगल में जो फार्म है जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर गड्ढा आप बना लें। गड्ढा ऐसा है कि आप 2×2 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2×1 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2.25×1.5 मीटर का भी बना सकते हैं। हाँ, गहराई इसका 30 सेंटीमीटर से लेकर के 0.5 मीटर तक गहराई रखें। अब क्या है कि जो गड्ढा आपने बना लिया तो गड्ढे के नीचे कोई पॉलीथीन बिछा दीजिए, जैसे पानी रिसे नहीं, उसका कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर आप उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं। यदि आपने 30 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आप कम मिट्टी की ऊंचाई रखेंगे, यदि 0.5 मीटर का रखे हुए हैं तो मिट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो अब आपने मिट्टी कर दिया, इसके ऊपर ये जो है आप 2 से 4 इंच कम से कम पानी रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए, तो वह आपने वहां पर पानी डाल दिया। जब पानी डालेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां झाग वाग होगा, तो जो भी आपके पास तांबे की या प्लास्टिक की जो भी जाली रखते हैं तो उसके जो स्कम है, उसके जो झाग है, उसको आप चाल करके वहां से हटा दिए। हटा देने के बाद उसमें जो है आपको ये डाल देना है, क्या कहते हैं, अजोला। तो अजोला को कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में यूज करते हैं तो उसमें कीड़े की भी समस्या आती है, तब आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है। लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, जो आप पानी डाले हैं उस पानी में गोबर भी मिलाया जा सकता है, मिलाया जाता है, जो एक आपका स्क्वायर मीटर में है 1 से 1.5 kg जो गोबर है उसको पानी में 10-15 मिलीलीटर पानी में घोल करके, जो बालू चालने वाला चलनी है उस चलनी से चाल करके उस स्लरी को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप गोबर मिलाते हैं तो बहुत सारा जानवर खाने में नाटक करता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तब भी आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, वहां पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे डालेंगे भैया? तो इसमें आप ये कीजिए कि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए, और उसमें 0.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाइए, और इसको मिला करके जो उसका 5 ग्राम है, 10 ग्राम भी कर सकते हैं लेकिन 5 ग्राम अनुशंसित है, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए, तो 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें डालते रहें हफ्ता 10 दिन के बाद। आप इस ढंग से करेंगे, कारण ये है जो अजोला है उसको फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसका ज़्यादा है, तो जो फास्फोरस का रिक्वायरमेंट है वह उसको मिल रहा है, और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भैया इतना ज़्यादा यदि हम अजोला वहाँ पर चाहिए धान के लिए, वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो देखिए, वहाँ पर आपको करना ये है कि यदि हरी खाद के लिए करते हैं तो खेत में ही क्यारी बना लीजिए, वहां 10×2 मीटर का या 10×1 मीटर का क्यारी बना लीजिए। अब यह क्यारी बना करके उसमें वही गोबर डाल करके, गोबर का घोल डाल करके, अब उसमें आप अजोला डाल करके अब उसके बाद उसकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डुअल क्रॉपिंग के लिए करते हैं, जैसे धान का और अजोला का एक ही साथ वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो वहां पर जितना आप ग्रीन मैन्योरिंग में डालते हैं उसका 1/10 हिस्सा ही वहां पर आप प्रयोग कीजिए। जब धान आपको 5-7 दिन 10 दिन का हो गया, रोपा हुआ, तो उसी में पानी थोड़ा सा 2-4 इंच जरूर रहना चाहिए, उसमें अजोला आपने छिड़क दिया, और जितना आपने फास्फोरस डाला था वो कम से कम 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा दीजिए, और उसकी मात्रा को बढ़ा करके आपने डाल दिया, और 21 दिन तक, 15 से 21 दिन तक जो पानी का

0: प्लास्टर है, 2 से 4 इंच आप बरकरार करके रखेंगे तो देखेंगे कि पूरा खेत अचोला से भर गया। अब उसके बाद पानी के स्तर को कम कर दीजिए। अब पानी के स्तर को कम करके छोड़ देंगे तो वह जितना अजोला है वह आपके मिट्टी को पकड़ लेगा और उसके बाद वह खुद वहां पर ये खत्म हो करके वो हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था कि जब आप अजोला पैदा कर रहे हैं पशु के लिए तो वहां पर हर एक 15-20 दिन के बाद आप 1/3 पानी को जरूर निकालते रहिए, नए पानी से उसको प्रतिस्थापित करते रहिए, और जब मिट्टी काली हो जाए तो अब उसकी स्थिति में आप मिट्टी को हटा करके फिर जब काली मिट्टी हो गई तो फिर नई मिट्टी डालना पड़ेगा, ये करेंगे तभी आपका अजोला चलेगा। तो ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों को आप जान करके अजोला का उत्पादन करके अपने पशुपालन में भी फायदा कमा सकते हैं, खेती में फायदा कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन फिर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सबौर में आइए। हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, यहाँ आकर के सीखें और जरूर इसका उपयोग करें।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता, उत्पादन और प्रयोग विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना ये देखने में छोटन लागे है, घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च।

0: की, और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़ी। तो हरी मिर्च की उपयोगिता, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी।
1: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है
0: जी।
1: मिर्च पर पाले का असर ज़्यादा होता है, इसलिए जहाँ पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूँ तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफ़ेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डाले

तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना

0: बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
1: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपनी फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफ़ेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बेफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफ़ेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं। तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले हिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज़्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोज़ेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
1: तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज के वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। इसी फ्रिक्वेंसी याद रखें, 90.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है

0: हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
9: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
8: जी।
9: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
8: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
9: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
8: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
9: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
8: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले

0: क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
2: जी।
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में, पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए इत्यादि। ये सब है जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए। इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत पाया गया, बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या कहना?
1: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे। इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
0: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां दी, उनमें से बहुत सी जानकारियां फ़ायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए।

0: सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम अरुण के संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
1: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जल धाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है। तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला

0: हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-5559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सके और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की।

0: कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 14
3: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर

0: घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
1: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
1: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
4: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
4: सू,
3: ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता

0: अभी भी वही है।
1: हाँ
0: हाँ,
1: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन से, मैंने देखा।
2: देखो अब वो वहीं पर है, अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉन सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: हाँ, हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा, वो आखिरी पत्ता वही था। पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन सी, कैसा महसूस कर रही हो?
4: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
4: थैंक यू
1: जॉन सी। एक बुरी खबर भी है।
4: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
4: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
4: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
4: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
4: ओह गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
4: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
4: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
4: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
5: जॉन सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
4: ओह,
1: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
4: पेंटिंग?
1: हाँ।
4: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
4: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
4: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
4: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
4: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
4: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया,
4: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
4: मास्टरपीस,
1: हाँ
4: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा, वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
5: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे।

0: और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जोंसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना,
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
9: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान

0: करता रहता था। पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद

खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल,

0: स्वस्थ जीवन सेहत सही लाभ कई
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन
0: उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आज एक खास विषय और हम लेकर आए हैं जी हां सब्जियों की बात करें तो सब्जी जो है कहा जाता है कि अगर आप शुद्ध और शाकाहारी हैं तो आप सब्जियां खाइए ये आपको स्वस्थ रखती हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं विटामिन मिनरल्स जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं तो आज हम सब्जियों की बात कर रहे हैं अगर हमारे ये सब्जी रोग विरोधी हो तो ज़रूरी है कि उसमें कोई कीट और कीड़े ना लगे हों तो आज हम बात करेंगे अगर हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियों की और सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या आपको दिख रही है तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी इसी फ्रिक्वेंसी पर और साथ ही आज आप इसके बचाव के बारे में भी जानेंगे तो ध्यान से सुनिएगा हमारा आज का एक कार्यक्रम हम आपको बता दें कि इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंटेमोलॉजी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में
2: नमस्कार जी नमस्कार
0: सर हम बात कर रहे हैं आज सूत्रकृमि की सब्जियों में ये समस्या अक्सर देखा जाता है हमारे किसान भाई जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत है सब्जियों के देख रेख में पौधे लगाने की और ये सूत्रकृमि उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे लेकिन सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं हमारे किसान भाइयों को सब्जियों के महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी दें
2: हाँ जैसा कि आपने बताया कि सब्जियों में पौष्टिक तत्व अन्य किसी खाद्य आहार की अपेक्षा अधिक होते हैं हमारे राज्य में मौसम के हिसाब से प्राय हर प्रकार की सब्जी उगाई जाती है अब चूंकि सब्जियों की खेती सिंचित एवं अधिक उर्वरक भूमि में की जाती है इसीलिए इन पर विभिन्न कीट एवं रोग कारकों के साथ साथ सूत्रकृमियों का प्रकोप भी बहुत अधिक होता है
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये बहुत ही लाभदायक हैं पौष्टिक गुण हैं इसमें और सूत्रकृमि की जहाँ तक बात है तो हम सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि सूत्रकृमि क्या है ये
2: सूत्रकृमि दरअसल बहुत छोटे पतले और खंड रहित धागे के समान जीव होते हैं बहुत छोटे प्रकार के कृमि होते हैं जिनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते
0: अच्छा
2: इसलिए इनको अदृश्य शत्रु भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अपनी आंखों से देखना संभव नहीं है
0: मतलब ये बहुत ही छोटे साइज के
2: जी,
0: होते हैं
2: जी ये आकार में बहुत ही 2 मिलीमीटर से भी कम आकार के होते हैं पौधे परजीवी सूत्रकृमि जो जमीन के अंदर से नुकसान पहुंचाकर पूरी फसल को जमीन के अंदर जो फसल के पोषक तत्व हैं उनका चूषण करके उनका शोषण करके उसी पर जीवित रहते हैं
0: तो ये टहनियों पर नहीं मतलब जमीन के अंदर ही
2: अधिकांश सूत्रकृमि जमीन के अंदर ही रहते हैं
0: अच्छा
2: कुछ प्रजातियां हैं जो पत्तियों पर भी
0: टहनियों पर पत्तियों पर जी तो ये सूत्रकृमि बहुत ही सूक्ष्म यूं कहें कि साइज में है और इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं इसलिए आपको लेंस की भी जरूरत पड़ सकती
2: जी
0: है
2: जी जी इनको विशेष प्रकार के जो माइक्रोस्कोप होते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है इनको उन्हीं की सहायता से देखना संभव है
0: जी तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक प्रकार के कीड़े हैं जो हमारी सब्जियों को हानि पहुंचाते हैं ज़मीन के अंदर ही जड़ से उनकी पोषक तत्वों को चूस लेते हैं जिसकी वजह से जो हमारा सब्जी है वो ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर साहब इनके प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन से सूत्रकृमि जो हैं हमारी सब्जियों को हानि पहुँचाते हैं
2: दरअसल सूत्रकृमियों की कई प्रजातियाँ हैं जो सब्जियों में लगती हैं जैसे रूट नॉट निमेटोड मिलेडोगाइनिन कोगनेटा मिनोडोगाइनिन जावानिका इसकी 2 प्रजातियां हैं इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रजातियां हैं जैसे रटाइलिंकस रोटाइलिंकस टाइलिंकोरियंकस होप्लोलेमस हेलिकोटाइलिंकस ये कुछ प्रजातियां हैं पर मुख्यतः सब्जियों का पर जो सूत्रकृमि पाया जाता है वो रूट नॉट निमेटोड होता है जिसे मूल ग्रंथि सूत्रकृमि भी कहते हैं या जड़ गांठ सूत्रकृमि भी कहते हैं यही सबसे ज़्यादा प्राय सब्जियों में नुकसान पहुंचाता है
0: जी
2: ये जो रोग होता है ये मिलोडोगाइन नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है ये रोग प्राय उन सभी क्षेत्रों में व्याप्त है जहां सब्जी उगाई जाती हैं अगर मिलोडोगाइनी नामक सूत्रकृमि नर्सरी में ही मौजूद हो तो वहीं पर पौधों की जड़ों में घुस जाता है तथा ऐसे पौधों को जब

0: उनके नुकसान में एक विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं
1: जी।
0: पर सूत्र क्रम में की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ विशेष लक्षण नहीं दिखते हैं। रोग के प्रमुख लक्षणों में अगर हम जड़गांठ रोग की बात करें तो जैसा कि इसका नाम है, इस रोग के मुख्य लक्षण की ओर संकेत देता है कि इसमें रोगग्रस्त पौधों की जड़ों के में विभिन्न प्रकार की मोटी मोटी गांठें बन जाएंगी और इन गांठों के भीतर सूत्रकृमि रहते हैं और जड़ों द्वारा पौधे के लिए अर्जित किए गए जल व भोजन पर अपना निर्वाह करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा रोगीला पौधा स्वस्थ पौधों की तुलना में कमजोर तथा छोटा रह जाता है। रोग का प्रकोप यदि अधिक होने पर पत्तियां गिर जाती हैं तथा फल बहुत छोटे व कम मात्रा में लगते हैं। अगर रोगी पौधों को हम उखाड़ने पर ये देखें तो ये बड़े आसानी से उखड़ जाएंगे तथा जड़ों पर गोल आकार की बड़ी बड़ी गांठें आपको नजर आएंगी। ये सूत्रकृमि प्राय सभी प्रकार की सब्जियों पर आक्रामक है। हमारे खेतों में उगने वाले खरपतवारों पर भी ये सूत्रकृमि जिंदा रह सकता है। ये सूत्रकृमि स्वयं तो नुकसान करता ही है, साथ साथ अन्य प्रकार की बीमारियाँ जो विभिन्न प्रकार की फफूंद या जीवाणुओं से पैदा होती है उनको भी फैलाने में मदद करता है, जैसे कि उकटा रोग, जड़ सड़न रोगों को फैलाने में ये सूत्रकृमि बहुत मदद करता है। इस सूत्रकृमि की मादा जो कि जड़ों में रहती है और औसतन 500 से 600 अंडे देती है और ये अंडे एक मुलायम आवरण में बंद रहते हैं। वे अंड समूह जड़ों के साथ चिपके रहते हैं। खेतों में नमी मिलने पर अंड समूह से आक्रामक कृमि निकलते हैं जो भोजन की तलाश में यत्र तत्र घूमने लगते हैं तथा जड़ मिलते ही अपने सुई के आकार जैसी डंक से जड़ में छिद्र करके उसमें घुस जाते हैं और वहीं जड़ों के अंदर बड़े होकर ये सूत्रकृमि जड़ों में गांठें बनाने लगते हैं और 20 से 25 दिन के अंदर अपने जीवन चक्र में खेत की मिट्टी में हजारों सूत्रकृमि अपनी संख्या में वृद्धि कर प्रवेश पा जाते हैं।
1: तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे सब्जियों में सूत्रकृमि का हमला हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं तो ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं सब्जियों के, वो बताएं।
0: इन सूत्रकृमि से प्राय सब्जियों में 25-30% तक नुकसान होता है, पर अगर रोग की अधिकता हो तो कभी कभी तो ये 70-80% तक सब्जियों में नुकसान पहुँचा देते हैं।
1: अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचता है इससे। और डॉक्टर साहब, हम इससे बचाव कैसे करें?
0: जी हाँ, इस रोग के या इन सूत्रकृमि से बचाव के लिए, क्योंकि ये दिखते नहीं है तो इनका बचाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सूत्रकृमि सभी प्रकार की सब्जियों तथा अन्य पौधों पर भी जीवित रह सकता है। अतः सूत्रकृमि रोगों से बचाव के लिए अनेक उपायों का समन्वय करना अति आवश्यक है, जिसमें खेतों में विषैले रसायनों द्वारा कम से कम प्रदूषण हो, किसानों पर आर्थिक भार भी ना पड़े। तो इस हेतु रोगी खेत में फसलों को बदल बदल कर बोएं। खेतों में एक बार इस सूत्रकृमि के पोषक फसल बोने के बाद इन खेतों में अभोज्य फसलें यानी मक्का, धान, सरसों, प्याज, लहसुन, तिल इत्यादि बोएं, जिससे सूत्रकृमि को पोषक फसल नहीं मिलने से उनकी संख्या में कमी आती है। कृषि क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम मई और जून के माह में जब दिन का तापमान अधिक होता है तो खाली खेतों की 2-3 गहरी जुताई करें। इससे सूत्रकृमि के अंडे वे जो द्वितीय अवस्था की जो डिम्बक जिसको बोलते हैं या लार्वा जिसको बोलते हैं वो तेज धूप के संपर्क में आकर मर जाती है। इसके अलावा खेतों में सनई या ढेंचा उगाकर हरी खाद बनाएं अथवा फसल बोने से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलाएं। इससे भूमि में कई रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन होते हैं जिससे सूत्रकृमियों की संख्या में भारी कमी आती है, साथ ही फसल में रोगरोधी क्षमता भी बढ़ती है। कुछ फसलें जिनमें गुलदाउदी, गेंदा, सरसों की जड़ों से कुछ रासायनिक द्रव्य भी निकलते हैं जो सूत्रकृमियों के लिए जहर का कार्य करते हैं, तो अगर इन फसलों को हम उगाते हैं मुख्य फसल के साथ या मुख्य फसल के बीच में मिश्रित खेती के तौर पर तो उनसे भी लाभ होता है। अब अगर हम बात करें कि हम प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का निदान करने के लिए अगर नर्सरी में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी के स्वस्थ पौध तैयार की जाए, इसके लिए नर्सरी का उपयुक्त स्थान चुना जाए जहाँ सूत्रकृमियों की समस्या ना हो। पौधशालाओं में रासायनों का प्रयोग एक तो कम खर्च में अधिक लाभकारी होता है।

0: इस रोग से बचाने के लिए नर्सरी क्षेत्र को मई और जून के महीने में हल्की सिंचाई कर एक पतली पारदर्शी पॉलीथीन से 15 दिन के लिए ढक दें। नर्सरी में बुवाई के समय बीजों के साथ कार्बोफ्यूरान नामक दवा 3G 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। मुख्य खेत में पौध रोपाई से पूर्व 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से नीम की खली का प्रयोग करें। साथ ही इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे सरल उपाय है कि रोगरोधी किस्मों को उगाना। तो कुछ सब्जियों की मूल जो जड़गांठ सूत्रकृमि के रोगरोधी किस्मों में अगर हम बात करें तो टमाटर की किस्म है सिलेक्शन 120, कर्नाटक हाइब्रिड, हिसार ललित, नेमाटेक्स, रोनीता, बैंगन की ब्लैक ब्यूटी, विजया, बनारस जॉइंट या गच्छा बैंगन। मिर्च की किस्म की किस्मों में है पूसा ज्वाला या K2, भिंडी की IC 9773, IC 18960। ये कुछ रोगरोधी किस्में हैं जो जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो इस सूत्रकृमि से बचाव संभव है
1: जी।
0: अब अगर हम रासायनों की बात करें, रासायनिक उपचार की बात करें तो सूत्रकृमि नाशक रासायनों में रोग की अधिकता होने पर कार्बोफ्यूरान 3G नामक जो दवा है उसका 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें तो इस रोग से बचाव संभव है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, सब्जियों की अधिकतम उपज प्राप्त हो सके इस हेतु एक तो अच्छा बीज, सही समय पर बुवाई, खाद एवं उर्वरक का सही इस्तेमाल, कीट एवं रोग नियंत्रण के साथ साथ सूत्रकृमियों का नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये दिखते तो नहीं है पर फसल को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि किसानों को अपनी मेहनत एवं अब उनकी जो पूंजी का निवेश है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अतः सूत्रकृमियों की उपस्थिति के लक्षणों को देखते ही समाधान के सही प्रयत्न किए जाने चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दिखते नहीं हैं और हानि बहुत ज़्यादा पहुंचा देते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने आपको जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को करना चाहिए अगर आप इससे बचाव चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच थे डॉक्टर संजय कुमार शर्मा और हमारा विषय आज का था सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या और बचाव। अगले दिन आपसे एक और अलग विषय के साथ हाजिर रहेंगे इसे फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर सुनना ना भूलें, उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड

0: remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए, हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज़ के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मज़ा ही ख़त्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज़ के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज़ के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितनी तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतनी खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता

है, पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं. जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है. क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं. सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है. इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे. एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है. सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी. और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं. आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी. अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है. ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है. और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है. वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है. आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं हैं, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ. स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है. आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता. मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं. अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है. आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है. आप बहुत आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है. डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे. देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं. और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है. वो आपको ठग रहे हैं, या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं. तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें. और हमारे आसपास के लोगों को भी ये समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना. हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं. और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं. अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं. ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए. और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा. आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी. कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है. जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी. फिर आप गोरे हो, काले हो, मायने नहीं रखता है. तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है. इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है. आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नज़रिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई. तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है. और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना. और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी. आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे. और इससे अच्छा क्या हो सकता है. अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं. ये गलत है. आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है. अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए. और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं. और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स. और ये बहुत बहुत भयानक

0: भारी होती है, मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीज़ें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए और ख़ुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और ख़ुद की तारीफ़ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और ख़ुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात कि ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक लाई जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुमको बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज़ तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ के साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं आप सभी के बीच। और जब यहां पर हम खेती की बात करते हैं तो सिंचाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और सिंचाई के महत्व को बताने, इसके फ़ायदे और सिंचाई से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने के लिए आज हमारे बीच है सनोज कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। तो आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई का महत्व क्या है।
2: आदरणीय किसान बंधुओं, जैसा कि पूछा गया है कि सिंचाई का महत्व क्या है, तो सिंचाई मतलब जल का, जब हम एप्लीकेशन करते हैं खेत में, जल को हम खेत में डालते हैं, बेसिकली तो जल

0: एक अमूल्य और सीमित प्राकृतिक संपदा है जो कि प्रत्येक जीव के लिए अति आवश्यक है। जीव मतलब हम लोगों के लिए भी आवश्यक है, पौधों के लिए भी आवश्यक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जैसा कि सभी बंधु जानते हैं 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से कृषि योग्य क्षेत्रफल सिर्फ 172 मिलियन हेक्टेयर है। कृषि के लिए जल एक महत्वपूर्ण निवेश है और फसलों और फल वृक्षों के लिए जल उतना ही आवश्यक है जितना हमारी ज़िंदगी के लिए। और यदि फसलों को सही मात्रा में और सही समय पर पानी न मिले तो सूख जाएंगी, खराब हो जाएंगी और देश के समग्र जल संसाधनों की 80% से अधिक जल कृषि के लिए खपत होती है और देश की 1 अरब से अधिक आबादी को भरपेट भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त सिंचाई महत्वपूर्ण है। परंतु भरपूर प्रयासों के बावजूद भी केवल 5 से 6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है, जबकि कुल 13 से 14 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलों का हम उगान कर रहे हैं। यानी लगभग 38 से 40% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है और बाकी के खेत को हम सिंचाई का काम सीधे कुदरत के भरोसे रखते हैं। वर्षा से वरानी क्षेत्रों में फसलें पर्याप्त उपज नहीं दे पाती हैं और यदि सिंचाई के समस्त साधनों का पूरा उपयोग कर लिया जाए तो भी अधिक से अधिक 60% क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है, यानी 40% क्षेत्र फिर भी असिंचित ही रह जाएगा। और पानी के विभिन्न उपयोगों के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ देश में सिंचाई के लिए पानी का कुशल उपयोग नहीं हो पा रहा है। जल उपयोग की कुशलता केवल 30 से 40% तक ही सीमित है। जितने भी हमारे आज के सिंचाई व्यवस्था जो किसान जनरली यूज कर रहे हैं उसमें खेतों और बाग बगीचों में सीधे पानी लगाने वाली सतही सिंचाई विधि से बहुमूल्य पानी का 60% भाग तक किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाता है। इसलिए पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए और यदि हम जल प्रबंध के वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं तो बहुमूल्य पानी के काफ़ी बचत हम कर सकते हैं।
1: जी, सिंचाई के फ़ायदे आपने कहीं ना कहीं बता ही दिए हैं और हम सिंचाई सिस्टम को कैसे चुने उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: देखिए, बेसिकली सिंचाई के फायदे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी में ये भी बात हुई थी कि हम उसी के भरोसे हैं, जिससे कि पास्चर हो या क्रॉप हो, कोई भी घास या पौधा हो उससे ही हम उगाते हैं। इरिगेशन हमारे पास फैसिलिटी अगर रहता है तो हमारे पास पूरा खेत को संचालन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम कोई भी काम बड़ी आसानी से, बेसिकली सिंचाई का काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। फिर हम हाई क्वालिटी का मतलब उच्च क्वालिटी का क्रॉप को उगा सकते हैं या घास वगैरह को उगा सकते हैं जब मर्जी है, सीजन जैसा मतलब सीजन अगर अलाउ करे तो। फिर हम जो क्रॉप को उगाते हैं उसका सीजन को हम ग्रोइंग सीजन जो कहते हैं उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। फिर सीजनल में इनवेरिएबिलिटी होती है कि कभी ख़राब मौसम आ गया तो अच्छा है, कभी अच्छा है तो ठीक है, अगर ख़राब आ गया, अगर हमारे पास सिंचाई की कोई फैसिलिटी है तो भी हम अपने को बचा सकते हैं, अपने पौधों को बचा सकते हैं। और इवन कुछ ऐसी भी सिंचाई विधियाँ हैं जिससे कि हम फर्टिलाइज़र भी सीधे सीधे खेत में डाल सकते हैं। कुछ ऐसे एरिया को हम यूज कर सकते हैं जिसमें पहले कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन या किसी पौधा को हम उत्पादन नहीं कर सकते थे, लेकिन सिंचाई के बाद हम उसके कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट का इंसेंटिव भी है, कुछ अगर सिंचाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें हमारा क्रॉप क्वालिटी अच्छा होगा। कैपिटल वैल्यू हमारा जो खेत है उसका बढ़ जाता है, पहले मार्केट में उसका कम दाम रहा होगा लेकिन सिंचाई की व्यवस्था कर देने से उसी खेत का दाम ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट में हमको ग्रेटर सेविंग मतलब सेविंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब होने के लिए ऑब्वियस है कि हमारे पास बहुत सारे सिंचाई विधियाँ हैं, तो हमको कौन से सिस्टम को चुनना चाहिए, इसको चुनने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ता है हर एक सिंचाई विधि के लिए। पहला तो इक्विपमेंट की कौन से टूल्स या मशीनरी उसमें चाहिए, फिर अगर उस तरीके का सिंचाई बनाना है तो हमारा सिस्टम का डिज़ाइन कैसे करेंगे, फिर हमको ये भी देखना होगा कि प्लांट स्पीसीज क्या है। हम हर एक जगह पर ड्रिप या माइक्रो स्प्रिंकलर तो लगा नहीं सकते हैं, है ना। ग्रोथ स्टेज कौन से में है क्रॉप का, फिर रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, सोयल का कंपोजिशन कैसा है और लैंड का फॉर्मेशन कैसा है, इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही हम किसी इरिगेशन सिस्टम का चुनाव करते हैं। और इरिगेशन सिस्टम बेसिकली करेगा क्या, हमारा ऐसा वो काम करना चाहिए कि साल्ट इम्बैलेंस अगर कुछ है, लीफ अगर पत्ती में बर्निंग हो रही हो या सोयल का इरोजन हो रहा हो या पानी का नुकसान हो रहा हो, इन इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं वो ना हो, इतना तो हमको इरीगेशन से ध्यान में रख के करना चाहिए।

0: जी, सिंचाई के अलग अलग मुख्य प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे।
1: सिंचाई के अलग अलग प्रकार में बोले तो एक फरो सिस्टम होता है, फिर फ्लड और बॉर्डर चेक सिस्टम भी होता है, एक लेवल बेसिन सिस्टम होता है, यानी कि बेसिन बना करके लेकिन लेवल फील्ड पे, उसमें कोई स्लोप नहीं रखेंगे, फिर सेंटर पाइवट स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। फिर जैसे कि इसमें क्या होगा कि एक सेंटर पाइवट स्प्रिंकलर है, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, एक सिंगल पाइपलाइन होता है, ए रो ऑफ मोबाइल टावर लगे रहेंगे और वो 2 से 4 मीटर जमीन से ऊपर टंगे रहते हैं, तो उससे भी ऊपर से जैसे ही वर्षा की तरह पानी गिरेगा तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं सेंटर पाइवट स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर एक होता है हैंड मूव स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब जैसे कि नाम से लग रहा है हाथ से ही हम इसको घुमा सकते हैं, हाथ से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लाइट वेट होगा, पाइपलाइन सेक्शन भी उसके हल्के होंगे और मैनुअली हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और सक्सेसिव इरीगेशन छोटा खेत हो तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद एक आएगा सॉलिड सेट एंड फिक्स्ड स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें बहुत सारे उसके कंपोनेंट जो होंगे वो सब ज़मीन के अंदर फिक्स रहेंगे और उसको हम बार बार बाहर नहीं निकालना है। फिर एक ट्रेवलिंग गन स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ये इसमें एक लार्ज स्प्रिंकलर रहेगा जो कि एक ट्रेलर पे माउंटेड रहेगा और रबर होस लगे होंगे, उसमें से स्प्रिंकलर अपना काम करेगा। फिर एक हो सकता है साइड रोल व्हील मूव सिस्टम, या दूसरा हो सकता है लीनियर और लैटरल मूव सिस्टम, फिर एक है लो फ्लो इरिगेशन सिस्टम। इस तरीके से बहुत सारे सिंचाई के साधन विधियां हैं आज के डेट में।
0: यहां पर अब हम बात करते हैं जब कम सिंचाई होती है या ज़्यादा सिंचाई हो जाती है तो इस में क्या नुकसान होता है।
1: अगर अंडर वाटरिंग हो गया है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा इल्ड का जो होना था, जो उत्पादन होना था, वो घट जाएगा और हमारा मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई फ्रूट है तो फ्रूट का साइज घट जाएगा, उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। वहीं दूसरी बात, अगर हमने ओवर वाटर कर दिया है, मतलब ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो जो ज़रूरत नहीं है वेजिटेशन वो भी ग्रोथ वहाँ किया रहेगा, अनवांटेड वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। फिर हमारा जो वाटर टेबल जो लगातार नीचे जाएगा क्योंकि हमने नीचे से पानी ऊपर लाया है सिर्फ वाटरिंग करने के लिए ही, तो लॉस होगा हमारा ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पानी का, और उसकी वजह से हमारा वाटर टेबल लगातार नीचे जाएगा क्योंकि हमने कम पानी की ज़रूरत थी और ज़्यादा पानी डाल दिया। अगर लैंड स्लोपी रहा तो वहाँ पे इरोजन हो सकता है, मिट्टी का कटाव हो सकता है। फिर पेस्टिसाइड हैं, पैथोजेन हैं, एंड जो वीड्स होते हैं वो ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा एरिया में वो सब फैलेंगे, फिर रन ऑफ होगा जो कि इरोजन के साथ होना है। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे को ज़्यादा समय तक पंपिंग करना पड़ा तो हमको ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा, फिर कॉस्ट ऑफ वाटर ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमको लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हमने न्यूट्रिएंट खेत में डाल दिया है वो लीच होने में उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा। फिर डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट क्वालिटी होगा और साथ ही साथ रिड्यूस्ड यील्ड, जो ऐसा नहीं है कि यील्ड हमारा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से। फिर इसी लास्ट में क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहेगा, और इसकी वजह से साथ ही साथ हमारा जो वाटर का रिजर्व है, हमारा वाटर जो रिसोर्स है, उस पर भी प्रेशर रहेगा क्योंकि हमने जहाँ कम पानी की ज़रूरत थी उसी वाटर रिसोर्स में से ज़्यादा पानी निकाल लिया है। अब अगले सीजन के समय उस वाटर रिसोर्स में उतना पानी नहीं रहेगा कि हम अपना सिंचाई।
0: बिहार के संबंध में सूक्ष्म सिंचाई योजना के महत्व के बारे में थोड़ा बताएं।
1: बिहार राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना को वर्ष 2006-07 में लागू किया गया था, परंतु योजना में वर्ष 2009-10 तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई थी और वर्ष 2010-11 और 11-12 में योजना ने कुछ रफ्तार पकड़ी थी शुरुआत में, और लगातार किसानों का योजना के प्रति आकर्षण तब से बढ़ ही रहा है। वर्ष 2010 के मध्य अर्थात जुलाई 2010 से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को कुछ परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में लागू किया गया, और ये बिहार राज्य में यह मिशन 1 अप्रैल 2011 से लागू है। जैसा कि आपको पता है बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यद्यपि उत्तरी बिहार में जल की प्रचुरता है और इसके विपरीत गंगा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी बिहार में सिंचाई जल के साथ साथ पीने के पानी की भी कमी है। साथ ही इसी को ध्यान में रखकर और खेती में सिंचाई के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने सिंचाई हेतु राज्य में एक अलग विद्युत फीडर बनाने का निर्णय किया था। विद्युत आपूर्ति कम होने के कारण सिंचाई की इकाई लागत व्यय अन्य राज्यों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक हो जाती है और किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर जल के अपव्यय को रोका जा सकता है, साथ ही उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकती है। ये मिशन सिंचाई जल की उपयोगिता, दक्षता और उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि

0: के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन में वृद्धि की दिशा में केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य में भी वर्ष 2006-07 से किया जा रहा है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, सिंचित कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के आने से सिंचाई विकास की समुचित प्रक्रिया एक प्रौद्योगिक जटिलता के दौर से गुजर रही है। अच्छा, जल प्रबंधन से जल आपूर्ति में अवधारणात्मक बदलाव के साथ साथ जन शक्ति का व्यवस्थित नियोजन और विकास भी आवश्यक है ताकि पानी का ठीक इस्तेमाल हो सके। साथ ही सदियों पुराने नियमों और पद्धतियों को भी बदलना जरूरी है ताकि वे आज की प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अतः एक ऐसी प्रभावशाली प्रबंध नीति सिंचाई जल के लिए जरूरी है जिससे उपरोक्त आधारों पर क्रियान्वयन संबंधी कार्यों में मदद मिल सके ताकि उपलब्ध जल संसाधनों से खेती की पैदावार बढ़ाई जा सके।
1: एक अच्छी सिंचाई प्रबंध नीति के कौन कौन से परिणाम आने चाहिए?
0: जहाँ तक एक अच्छी सिंचाई प्रबंध नीति की बात है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जरूर होने चाहिए। जैसे कि जहाँ जल की सुलभता सीमित हो वहाँ प्रति जल इकाई से अधिकतम खेतिहर पैदावार हो, उत्पादन बढ़े। दूसरा है कि जहाँ भूमि की सुलभता सीमित हो वहाँ प्रति भूमि इकाई में हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, यानी कि जहाँ जल की कमी हो तो हम कम जल में ज़्यादा उत्पादन करें, जहाँ भूमि कम हो तो वहाँ कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन करें। तीसरा हो सकता है बड़े और छोटे किसानों के बीच अग्रणी और निम्न स्तरीय उपयोगकर्ताओं के बीच जल का समतापूर्ण बंटवारा हो। चौथा हो सकता है उत्पादकता के नुकसान के बगैर स्थायी सिंचाई कर सकें एक व्यवस्था। सामान्यता इसका अर्थ भूजल का जो टेबल है वो अस्थायी रूप से बनाए रखने से, यानी कि वाटर टेबल है जो जमीन के अंदर, उसको हमको ट्राई करना होगा कि उसको बनाए रखें, वो नीचे ना जाए। सिंचाई करने वालों को लाभ जिनमें सही समय पर उचित मात्रा में और उचित अवधि के लिए पानी की उपलब्ध होना भी शामिल है, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से व्यवहारिक तथा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाएँ बनाई जानी चाहिए, और सूखा संभावित क्षेत्रों में आपूर्ति क्षेत्र का अधिकतम विस्तार होना चाहिए। इस तरीके के सिंचाई नीतियों का
1: अगर जल का कुशल उपयोग करना हो तो कैसे करेंगे?
0: जल का कुशल प्रयोग की जहाँ तक बात है तो इन्हें पूरा करने के लिए निम्नलिखित कुछ मुख्य बिंदु हैं या निम्न बिंदु हैं, कुछ उस पर हम बात करना चाहेंगे। इस क्षेत्र में लोगों के बीच प्रशिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अनुसंधान भी होने चाहिए। प्रमुख प्रणाली का फिर बेहतर संचालन कैसे करें, प्रबंध कैसे करें, उसका अनुरक्षण कैसे करें, बुनियादी तौर पर इसके लिए संचालन और अनुरक्षण की पूर्व निर्धारित योजना के जरिए प्रमुख प्रणाली का उचित अनुरक्षण कैसे करें, फसल संचालन कैसे करें ताकि फसल उगाने के नाजुक चरणों में कम से कम फसल की मांग को हम पूरा कर सकें। फिर हो सकता है स्व प्रबंधित प्रणाली के चरणबद्ध विकास की नीति जो तीसरे स्तर से नीचे होगी। फिर हो सकता है सिंचाई के क्षेत्र में वांछित संगठनात्मक और कार्य पद्धति विषयक परिवर्तन जो अंतर क्षेत्रीय संपर्क व समन्वय, सिंचाई विभागों के पुनर्गठन, वैधानिक सहायता, कार्मिक प्रबंध आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, और साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों की प्रमुख प्रणाली और अर्ध तृतीय प्रणाली की जल उपयोगकर्ता संस्था दोनों ही के द्वारा प्रबंध की ऐसी व्यवस्था करना जिसमें वित्त पोषण की व्यवस्था निहित हो। साथ ही साथ फसलों के सिंचाई में जल उपयोग की कुशलता बढ़ाने का एक बेहद महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, जिसे सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरीगेशन सिस्टम भी कहते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी की बर्बादी नहीं होती है और इस प्रणाली से पानी की 40-60% तक की बचत हो जाती है। और इस महत्वपूर्ण बचत के कई कारण हैं। दरअसल जब खेतों या बाग बगीचों में परंपरागत ढंग से सीधे पानी लगा दिया जाता है तो भूमि पर खड़े पानी की काफ़ी मात्रा रिस कर धरती में वापस चली जाती है। कच्ची नालियों में बहता पानी भी रिसाव द्वारा धरती में समा जाता है। ड्रिप सिंचाई को लगभग सभी फसलों में लगाया जा सकता है, परंतु बागवानी फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। भांति भांति के फूलों, फलों, मसाले, औषधीय व सुगंधित पौधों व सब्जियों की खेती में ड्रिप प्रणाली अपनी सिद्ध कर चुकी है, इसलिए बागवानी फसलों में इस प्रणाली की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
1: सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से क्या कुछ लाभ हो सकता है, इसके बारे में बताएं।
0: इस पद्धति द्वारा पानी को केवल पेड़ों के जड़ों में ही वितरण या

0: पानी की निश्चित बचत होती है, इसके द्वारा अधिक क्षेत्र में खेती संभव है, क्योंकि हम खेत में पानी सिर्फ जड़ तक ही जाने देते हैं, उससे नीचे पानी नहीं जाने देते हैं, तो हमारा पानी का बचत होता है, उपज समय से जल्दी या एकदम समय पर प्राप्त हो जाता है। पानी देने के लिए नालियाँ बनाने की आवश्यकता हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे अगर मतलब किसी प्रकार के नाली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए श्रम से ही बचत होती है। पोषक तत्वों, पानी और हवा का पौधों की जड़ों में समुचित सम्मिश्रण संभव है, अतः पैदावार तथा पैदावार की गुणवत्ता में अति विश्वसनीय वृद्धि हो जाती है। केवल जड़ों को ही पानी देने से खरपतवार नियंत्रण होता है, अतः खरपतवार की समस्या भी इसमें नहीं होती है, क्योंकि पानी हमने कहीं दिया नहीं है, सिंचाई सिर्फ जड़ के पास दिया होता है, खरपतवार भी पूरे खेत में कहीं भी नहीं उगता है, सिर्फ जड़ के पास, और उसको हम लोग बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम द्वारा पौधों की जड़ों में ही खाद का एक सा वितरण कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिगेशन संभव है, अतः इसमें रसायन की बचत भी हो सकती है। लवणीय भूमि में भी खेती को हम संभव कर सकते हैं, सिंचाई के लिए लवणीय जल को हम उपयोगी बना सकते हैं। इस सिंचाई से यदि खेत समतल नहीं है तब भी, अर्थात उबड़ खाबड़ है तब भी, पौधों की सिंचाई भली प्रकार से कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मृदा में सिंचाई, और सिंचाई के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, इसके फायदे, सिंचाई सिस्टम को आप कैसे चुनेंगे, सूक्ष्म सिंचाई क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें। तो आशा करते हैं कि आज का ये वार्ता आप सभी के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
6: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
7: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
6: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
7: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
8: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
9: क्या क्या क्या?
7: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
9: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8।

FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और ये है आपका अपना पसंदीदा FM ग्रीन। तो हर रोज़ उन्नत कृषि की बातें होती हैं, उन्नत बातें होती हैं खेती बाड़ी की, और साथ ही हमारे पशुपालक भाइयों के लिए भी हम कुछ अलग सी बातें लेते हैं। और अगर मछली पालन का शौक है और आप उसे आय का जरिया बना रहे हैं, तो आपके लिए आज एक खास विषय हम लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके

0: यही है समेकित मत्स्य पालन। आज मछली पालन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर एम जेड होदा सर। और मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान विभाग में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं, अभी थोड़ी क्रिएटिविटी उनकी माइंड हो रही है कि चलो मछली पाला जाए, देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि मछली पालन हम क्यों करें, क्यों ज़रूरी है ये?
1: देखिए, मछली पालन खास करके कोविड के बाद से हमारे जो पढ़े लिखे युवा छोटे छोटे नौकरियाँ बाहर करते थे और उनकी सारी नौकरियाँ छूट गई हैं, उसमें रोजाना हमसे हमको लगता है 3-4-5 इंजीनियर्स कैटेगरी के लोग और बड़े प्रोफेशनल्स अच्छे लोग आ रहे हैं जिनके पास जमीन काफ़ी है लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और वो सीधे हमसे मत्स्य पालन के बारे में जानकारी हासिल करने आ रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मत्स्य पालन एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत ही कम समय में और बहुत कम समय में वो तकनीकी जानकारियां प्राप्त करके अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। मत्स्य पालन खास करके हमारे बहुत सारे किसान हैं, मत्स्य पालन अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप भटके नहीं। बहुत हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं तिलापिया पालना है, पेंगीशियस पालना है और ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि कभी भी आप जो हमारी जो 6 मेजर कार्प हैं, रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, इन मछलियों का पालन आप सबसे पहले करें और जब इसमें आपको दक्षता मिल जाए उसके बाद आप दूसरा पालन करें। मछली पालन क्यों करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मछली पालन के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके मार्केट की खोज की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस वक्त ताज़ी मछलियाँ मारेंगे वहीं पर मार्केट अवेलेबल है और लोग आपके यहाँ से ही ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। मार्केट प्रॉब्लम इसमें ज़रा सा भी नहीं है और बहुत ही कम लागत में हम बहुत अच्छी आमदनी, जो साधारणतया 1 एकड़ के फसल में हम लोग पूरे साल फसल चक्र को अपनाते हैं तो इससे 30 से 35 हज़ार रुपए की शुद्ध आमदनी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग 1 एकड़ मत्स्य पालन करते हैं तो कम से कम हम 1,65,000 से 1.25 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि वो युवा जिनके पास मछली पालन के साधन उपलब्ध हैं और वो कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर लोग लीज पर भी ज़मीन लेकर के मत्स्य पालन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, और हम लोग बहुत भागलपुर और एक बांका हमारा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा हम लोग यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना है अभी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा पा सकते हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पर आप जो है पूछ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर से में आकर हमारे होदा सर से मिल के। सर, अब बात करते हैं तालाब निर्माण की। ये बहुत ज़रूरी है तालाब निर्माण के हम बारे में जाने, क्योंकि मछलियों को इन्हीं में रखना है हमें, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें तालाब निर्माण के दौरान?
1: किसान भाइयों, मत्स्य पालन आप 2-3 जगहों पर करते हैं साधारणतः, या तो आपके पास पहले से निर्मित तालाब होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नए तालाब का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन या चौर में मछली पालन करते हैं। तीनों जगह पर आपको अलग अलग सावधानी बरतनी होगी। देखिए, आपके पास अगर पुराना तालाब है तो आप सबसे पहले, अगर संभव है कि आप उसकी जल निकासी कर सकते हैं तो बिल्कुल जल निकासी को करें। हमारा किसान सबसे बड़े प्रॉब्लम में ये होता है कि वो तो मछली पाल लेता है लेकिन उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाता, उसको निकाल नहीं पाता। उसके पीछे बेसिक रीज़न है कि वो अपने कभी अपने तालाब की तलहटी को नहीं देखा है। कहीं ऊंचा होता है किसी की तलहटी, किसी कहीं नीची होती है। जब आप जाल देते हैं तो मछलियाँ एक साइड से दूसरे साइड निकल जाती हैं, आप हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं मछली रहते हुए भी। तो हमारा ये बिल्कुल सलाह होगा, जब आप पुरानी तालाब में सीधा मछली पालन करना चाहते हैं तो कभी भी आँख बंद करके उसमें जितनी मछलियाँ हैं सबसे पहले आप सारी मछलियों को हटा लें, संभव हो उस पानी को खाली करें और देखें कि तालाब की तलहटी कैसी है। मछली पालन के लिए मात्र हमको 1.5 मीटर पानी की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता हमें नहीं है। तो आप देख लें कि कितने लेवल पर आप 1.5 मीटर पानी का ये स्थान कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। तो उसके अंदर अगल बगल बड़े बड़े पौधे हों तालाब के ऊपर तो उसको आप हटा दें। पूरी सूरज की रोशनी उसमें प्रॉपर जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप करें। तीसरा, जब अगर नव निर्माण आप तालाब का कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि तालाब की लंबाई जो है पूर्व और पश्चिम दिशा में हो। ये अगर होता है ना तो उसमें आप हमेशा देखते होंगे कि हवा या तो पूर्व से चलती है या पश्चिम से चलती है, तो एक लंबा सरफेस एरिया मिल जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे तालाबों में, और उसमें जो है हवा का घुलन आसानी से होता है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि रेक्टेंगल शेप में, किताब के शेप में आप अपने तालाबों का निर्माण करें, और तालाब का निर्माण बिल्कुल गड्ढे नुमा ना करें।

देखिए, आप तालाब को बिल्कुल एक कोण को आप जो है बिल्कुल एक कोण के रूप में करें, बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शेप में कर्व के रूप में होना चाहिए तलहटी से ऊपर की तरफ, जिससे कटाव ना हो। मछली मारने में आप एक तरफ से अगर जाल लेके चलते हैं, अगर ढलान ढल साइड जो है उसका ढालनुमा होता है, तो मछली को मारते वक्त आपको बड़ी सावधानी होती है, आसानी होती है, आप बिल्कुल एक

0: उसका बहुत उपयोगिता है। दो तरीके से नया तालाब बनता है, अगर आपके यहाँ पर पानी ठहरने का आपके यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध है और अच्छी ज़मीन है जहाँ पानी ठहरता हो, तो आप ये 5.5 मीटर के जो हम कहे थे आपको कि लगभग 1.5 मीटर 5.5-6 फीट के आसपास का जो पानी होता है, तो इसमें आप बंड में भी आधा साइज आप ले सकते हैं। जब आप 3 फीट गड्ढा करेंगे और 3 फीट जब एम्बैकमेंट को ऊंचा करेंगे तो उससे भी आपका तालाब निर्माण हो सकता है वैसी जगहों पर जहाँ पर पानी ठहरता हो, अच्छा होता हो। तो उसके बाद आप जब तालाब कर लेते हैं तो आप क्या करें कि उसमें 3-4 kg आप DAP को चारों तरफ छींट दें, 20-25 kg चूना आप उसको घोल बनाकर उसमें छींट दें, 3-4 kg यूरिया छींट दें और उसके बाद उसमें पानी को भरें। गोबर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो पूरा डाल देते हैं तालाब में, वैसा बिल्कुल नहीं करना। जहाँ पर किनारे पर जहाँ पर पानी सटता होगा वहाँ पर 3-4 जगहों पर आप आधा आधा टेलर गोबर गिरा दें, धीरे धीरे वो सीपेज करके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनाता जाएगा और उससे 10-15 दिनों के बाद आप वहाँ आसानी से मछलियों को डालें, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है तालाब निर्माण के समय। सर, अब बात करते कि अगर हम 1 एकड़ के तालाब की बात करें और इसमें कितनी संख्या में हमको मछली डालनी चाहिए?
0: देखिए किसान भाई, मछली का बीज हमेशा नहीं मिलता है, ये हमको जो भी हमारे सबसे अच्छे मत्स्य पालक है उसको ये बात समझ लेनी होगी। अप्रैल माह के अंत से आपको अगस्त के मिड तक ही हमारा जो 6 इंडिजिनस और एग्जोटिक कार्प हैं जो वो उनका बच्चा तैयार होता है। जो हमारे अच्छे मत्स्य पालक हैं वो एक छोटा सा अलग से तालाब रखते हैं और वहाँ पर जीरा का संचय करते हैं, जिससे कि 6 महीना में अगर आप अच्छी तरीके से भोजन करते हैं तो वो मछली आपको 1-1.5 kg के आसपास हो जाती है। उस वक्त आपको बीज मिलता नहीं है, तो पुनः जो आपने बीज संरक्षित किया है उस बीज का इस्तेमाल करके फिर आप 6 महीने को यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए, हम एक आज बहुत ही की पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। जो भी हमारे किसान भाई हैं जो मत्स्य पालक हैं, आप कोशिश ये करें कि बीज की संरक्षण, बीज का बचाव आप करना अगर सीख जाएंगे तो मत्स्य पालन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास अगर छोटा तालाब है तो कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में हम लोग जीरा भी देते हैं, अंगुलिका भी देते हैं और हम लोग फ्राई भी देते हैं। जो हमारे आजकल हम लोग इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि जो हमारे मत्स्य पालक है कम से कम जिनके पास 2-3 की संख्या में तालाब है, एक तालाब में वो जीरा से फ्राई और फिंगरलिंग अंगुलिका बनाने की प्रक्रिया को सीख लें, इससे दोहरा लाभ है। 2 समय जीरे का डिमांड बहुत अधिक होता है, पहला जो आप मार्च के आसपास काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हमको मछली का बच्चा चाहिए, उस वक्त कहीं बन नहीं रहा होता, और दूसरा अगस्त के बाद। ये 2 समय बहुत ही बड़ा समय होता है जहाँ बीज की स्कार्सिटी होती है, तो आपके पास जो बीज संरक्षित रहेगा तो आप मार्च में भी जीरा को बेच सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जितना आमदनी आप मछली उत्पादन करके 1 एकड़ के तालाब में नहीं ले सकते हैं, अंगुलिका का संरक्षण करके आप ले सकते हैं। पहला, अब बताइए 1 एकड़ की तालाब है, अब डिपेंड करता है कि आप किस अवस्था की मछलियों को डालते हैं। जिसको फ्राई हम लोग कहते हैं वो 1 इंच के आसपास का होता है, तो 1 एकड़ के तालाब में वो 10,000 की संख्या में हम लोग फ्राई को डालते हैं। जब हमारी मछलियों का साइज 1 इंच का मिले हमें तो हम लोग 1 एकड़ के तालाब में 10,000, और जब हमको 3 इंच अंगुलिका जब अगर हम डालते हैं तो वो 4,000 डालते हैं, और इसकी भी मात्रा सीमित है। देखिए, जो हमारा जो 6 मेजर कार्प है, जो हमारा रोहू है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कतला है, मिरिगल है, ये जो हमारी जो मछलियाँ हैं उसमें जो कतला और सिल्वर कार्प है ऊपरी सतहों पर भोजन करती हैं। दूसरा जो रोहू और ग्रास कार्प है वो तालाब के मध्य सतह पर भोजन करती है, और तीसरा जो कॉमन कार्प और मिरिगल है ये तालाब की निचली सतह से भोजन लेती है। तो आप ये जान लें कि अगर 100 मछली आपको अगर डालनी है तो उसका 30% आप कतला और सिल्वर कार्प डालें, 30% आप रोहू ग्रास कार्प डालें, और 40% जो है आप डालें कॉमन कार्प और मिरका। अगर इस संख्या में आप देते हैं मछलियों को, साधारणतः हमारे ग्रामीण परिवेश में किसानों के दिमाग में एक भ्रम है कि जितनी ज़्यादा संख्या में हम मछलियों का बच्चा डालेंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन इसके उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है। 6 महीने बाद 8 महीने बाद किसान आते हैं, सर हमारे तालाब में नहीं बढ़ रहा है मछलियाँ, तो कैसे होगा? एक तो हम लोग आहार प्रबंधन नहीं जानते हैं, संख्या बहुत बढ़ा के रखी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खाना नहीं देते हैं और पूरा साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये मछलियों की

0: मात्रा है इसको सीमित करना नहीं करिएगा तो आप मछली में जो उत्पादकता है नहीं ले सकते हैं।
1: जी सर, अभी आपने कहा कि आहार प्रबंधन हमें मालूम नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दो।
0: देखिए किसान भाइयों, हम लोग ग्रामीण परिवेश में मछली को तालाब में डाल के सिर्फ मछली को निकालने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमको बड़ी बड़ी मछलियाँ मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। मछलियों के उसके वजन का 2% भोजन प्रत्येक दिन चाहिए होता है। जिस दिन आपने, मैंने 4000 संख्या आपको बताया कि एक एकड़ के तालाब में अंगुलिका को डालना है और एक अंगुलिका का दाम 20 ग्राम होता है और 4000 से 20 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, जो टोटल वजन आएगा उसका 2% ही भोजन देना। और मछलियों का भोजन बहुत आसान है। मछलियों का भोजन सरसों की खल्ली होती है, राइस ब्रान होता है जो हर जगह अवेलेबल होता है। आप कोशिश करें कि इसका बराबर बराबर मात्रा में आप एक पैकेट बना लें जूट के बोरे में 10-10 किलो। देखिए मैं एक नटसेल में आपको फार्मूला बता देता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। 10 किलो आपका अगर एक एकड़ का तालाब है तो 10 किलो खल्ली, 10 किलो राइस ब्रान और 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, एग्रीमीन फोर्ट, बहुत सारे खनिज मिश्रण मिलते हैं। इसको आप एक जूट के बोरे में भर दें, इसको हल्का सा भींगो दें और जूट के बोरे में नीचे से छोटा सा छेद कर दें और अपने तालाब के एक किनारे पर कमर भर पानी में एक बांस गाड़ के, तालाब में दो जगहों पर ऐसा करके बांस गाड़ के आधा जूट का बोरा को पानी में डुबा दीजिए और नीचे से देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सारी तालाब की मछलियाँ वहीं आकर भोजन करेंगी और जब कभी वो खाली हो जाए आप जो है उसमें पुनः उसको भर दें। ये एकदम साधारण तरीका है। एक बात हमको ध्यान देनी है यहाँ पर, जब कभी पानी का रंग भूरा हो जाए तो आप ये समझेंगे कि वो उसमें संख्या बहुत खाने की ज़्यादा हो गई है, खाने की अधिकता हो गई। आप उस समय कुछ समय के लिए भोजन देना बंद कर दीजिए। फिर जब पानी सामान्य कलर का हो जाए तो आप उसमें पुनः जो है ये करें। तो आपको हम समझते हैं कि, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि आप 3 महीना पला हुआ, 4 महीना पला हुआ बच्चा कहीं से भी खरीदें या आपने आप छोटे तालाब में उसको बनाएं, वो खरीद करके जब आप बड़े तालाब में डालते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। देखिए हमारा जो भागलपुर का एरिया है, चानन का एरिया है और हमारे जो कोसी के एरिया है, हमारा जो किसान है सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि हम एक चीज़ के लिए ताकीद करना चाहेंगे आपको कि जब आप नदी से बीज लेते हैं तो सीधा नदी से बीज लेकर आप सीधे कभी भी अपने तालाबों में नहीं डालें। ऐसा करना आपको अब दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है, क्योंकि गंगा में जो बीज होती है, नदियों से जो बीज प्राप्त होते हैं उसमें बहुत सारे बुआरी होती हैं, बहुत सारी मागुर जो हमारी कैटफिश होती हैं और बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती हैं जिसका संचय हमें तालाब में बिल्कुल नहीं करनी है। वो एक तरह से कहिए मांसाहारी मछलियाँ होती हैं। अगर उनको तालाब में खाना नहीं मिलेगा तो अपने से छोटे मछलियों को वो खाना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा कि जब 5 बुआरी आपके तालाब में आ गया और एक बुआरी को उसके वजन का लगभग 3 गुना भोजन प्रत्येक दिन चाहिए होता है। अगर 5 बुआरी किसी ने आपको डाल दिया, आपने गलती से उसमें डाल दिया, तो आपने जो मछली पालना है वो सारी मछलियों को खा करके आपको बहुत बड़ी आर्थिक हानि देगा। जीरा संचय नदियों से करें, मैं इसको इसके फेवर में हूँ, लेकिन जब कभी भी आप जीरा या मछली का बच्चा का संचय बाहर से करते हैं तो उसको ला करके एक छोटे से गड्ढे में रखें और वहाँ से उसको निकाल कर रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प जो मैंने संख्या बताई है उसको गिन कर अगर आप डालेंगे तो हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और मछली पालन में मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से 6 महीने में आप अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।
1: तो ये सारी बातें जो हैं विस्तार में डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, आशा करते हैं कि आपको ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है वो भी आपको ज़रूर मालूम चल गया होगा। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले दिन अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदू हिंदुस्तान में

0: भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
0: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
0: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
0: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
0: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
2: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
5: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
5: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
7: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK झा। मैं आपको बता दूँ, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद
7: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
8: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं, वर्मी कंपोस्ट जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कंपोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कंपोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है।
7: जी,
8: बहुत सारी चीज़ें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाए लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है, केचुआ इसे खाता है।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
2: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
5: हाँ,
2: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
5: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
5: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना,
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
6: CIET NCERT presents ऑडियो बुक गणित प्रकाश, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 7,
7: चैप्टर 1, लार्ज नंबर्स अराउंड अस, पेज नंबर 1। ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज यू विल फाइंड QR कोड। बाई स्कैनिंग इट यू कैन फाइंड एडिशनल रिसोर्सेस टू दिस चैप्टर। 1.1, अ लैक वेराइटीज। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, a town in Karnataka. He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. During one such visit, he overheard a conversation between Ramana and Lakshma. Ramana said, earlier, our country had about 1 lakh varieties of rice. Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice. Now, we only have a handful of varieties. Also, farmers have to come to the market to buy seeds. Lakshma said, there is a seed bank near my house. So far, they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. You can also buy seeds from there. You may have heard the word lakh before. Do you know how big 1 lakh is? Let us find out. Ishwarappa shared this incident with his daughter Roxy and son S2. S2 was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in his country. He wondered, 1 lakh, so far I have only tasted 3 varieties. If we tried a new variety each day, would we even come close to tasting all the varieties in a lifetime of 100 years? What do you think? Guess. On this page, we find 2 pictures. One is of the seed bank with some people having some conversations. And the other picture, we can find Ishwarappa, S2 and Roxy. Page number 2. But how much is 1 lakh? Observe the pattern and fill in the boxes given. The boxes displayed are, the largest 3-digit number is 999. If 1 is added to 999, we get a number which is the smallest 4-digit number, that is 1000. The largest 4-digit number is 9999, and 1 is added to this number, we get the smallest 5-digit number, that is 10,000. The largest 5-digit number is 99,999 plus 1, we get 1 lakh, that is the smallest 6-digit number. So,

बी 9,876,501,234 कैन बी रेड एज 9,876,501,234 इन द अमेरिकन सिस्टम. फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1. रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम्स. ए 4050678 B 4812162 C 200220002 D 2468135 79 E 3450005 43 F 10203040 50. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन. ए 1,01,01,010 बी 1,01,001,001 सी 10,20,30,040 डी 9,80,700,600 क्वेश्चन नंबर 3. कंपेयर एंड राइट लेस देन कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू. ए 30,000-3 lakhs बी 500 lakhs-5 million सी 800,000-8 million डी 640 crore-60 billion वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स. 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज. हियर वी हैव एन इंटरेस्टिंग क्लिपिंग इन विच ईश्वरप्पा सेज 1 lakh पीपल विजिटेड द बुक फेयर. रॉक्सी सेज ओ सो मैनी पीपल. एस टू सेज इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक. पेज नंबर 10. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन. हैव यू रेड और हर्ड such headlines or statements? Very often exact numbers are not required and just an approximation is sufficient. For example, according to the 2011 census, the population of Chintamani town is 76,068. Instead saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is. Here we have a very interesting clipping in which father is asking his son, Bappi, call and check if Tufan Express is on time. There is a list of numbers displayed, police 100 or 112, fire 101, ambulance 102, disaster management services 108, national emergency number 112, railway inquiry 139. Bappi rings up and the phone call reaches a police station. Now father is asking, because the police has reached the house, father is asking Bappi, what number did you call? Bappi replies, I called the rounded off number, of course. My teacher told us that efficient people deal with rounded off numbers. There are situations where it makes sense to round up a number
rounding

0: दलहनी फसल में भी शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दलहनी फसल इतना फैलाव कर लेती है कि खरपतवार अगर उगते भी हैं तो उनको दबा देती है। तो दलहनी फसल चाहे आपका चना हो, मटर हो, मसूर हो, इन सब में ससमय नियंत्रण करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ स्टेप को फॉलो करें जिससे हम कर सकते हैं। जैसे दलहनी फसल में अगर संभव हो सके तो बुआई के समय ही हम खेत को पलेवा कर देते हैं या मॉइश होने पर 1 सप्ताह के लिए खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज हैं वो जम जाते हैं। उसके बाद हम जुताई कर देते हैं। जुताई करते समय खरपतवार का जो जमा हुआ बीज है वो एक फ्लश उसका नष्ट हो जाता है। उसके बाद हम बुआई करते हैं। इस टेक्निक को हम स्टेल सीड बेड यानी बासी बीज सैया कहते हैं। इसको भी अपना करके खरपतवार का प्रेशर कम किया जा सकता है। उसके बाद हम जब बुआई करते हैं दलहनी फसल की, तो बुआई करने के तुरंत बाद फ्लूक्लोरालीन जो बाज़ार में बेसालीन के नाम से उपलब्ध है, तो फ्लूक्लोरालीन का 1 किलोग्राम मात्रा जो है पर्याप्त होता है, जो है सक्रिय तत्व फ्लूक्लोरालीन यानी बेसालीन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त होता है, और इसको बुआई के समय ही जमीन में मिक्स कर देता है। इसको हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि शुरू के 15-20 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरी दवा है बेसालीन हो गया, जिसे दूसरी दवा है पेंडीमिथिलीन। तो पेंडीमिथिलीन को जब हम बुआई कर लेते हैं उसके 2 दिन के भीतर हमें छिड़कना होता है। तो पेंडीमिथिलीन का जो सक्रिय तत्व है वो 1 लीटर पर्याप्त होता है, क्योंकि पेंडीमिथिलीन 30% की दवा आती है, स्टाम्प के नाम से भी आती है, तो इसका 3 गुना मात्रा लग जाता है। तो 3 लीटर करीब पेंडीमिथिलीन हम स्टाम्प जो बाज़ार में आती है, स्टाम्प 3 लीटर लेकर के उसको हम 1000 लीटर पानी में घोल करके और बुआई के तुरंत बाद से 3 दिनों के भीतर तक इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो इससे जो जमीन में उगने वाले खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। उसके बाद हमको अगर और दवा देना है तो हम वहाँ पर एला क्लोर यानी लासो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए लासो का जो सक्रिय तत्व है वो 2 किलोग्राम रिकमेंडेड है, क्योंकि 50% की इसकी उपलब्धता है। तो बाज़ार में लासो जो है मिल जाता है, उसका 4 लीटर लेना पड़ेगा, और बुआई के तुरंत बाद हमको 2 दिनों के भीतर तक लेना होता है। तो लासो का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो है अगर विशेष करके हमारा दलहनी फसल है, तो इसमें हमने जैसे पहले बताया सरसों में, उसी तरह से यहाँ भी क्विजिला फाफिथाइल हम दे सकते हैं। क्विजिला फाफिथाइल जो है ये टर्गा सुपर के नाम से भी उपलब्ध है। तो टर्गा सुपर का मात्रा जो है 1 लीटर पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए।
1: जी
0: तो 1 लीटर टर्गा सुपर को लेकर के 1000 लीटर पानी में घोलिया जाए। अब बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद हम टर्गा सुपर का व्यवहार कर सकते हैं। थोड़ा अगर उस समय खेत में हल्की नमी रहे तो ज़्यादा उसका रिस्पांस मिलता है। तो हम 1000 ml यानी 1 लीटर जो है टर्गा सुपर लेकर के उसको 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और प्रति हेक्टेयर हम उसका छिड़काव कर देते हैं बुआई के 25 दिन बाद। तो इससे क्या होगा कि खरपतवार जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक और अच्छी हर्बिसाइड है जिसको हम बोलते हैं इमेजाथाइपर, जो मार्केट में परस्यूट के नाम से उपलब्ध है। तो इमेजाथाइपर का थोड़ा सा 50 से 60 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा पर्याप्त होता है, क्योंकि 10% का आता है, तो 500 से 600 ml 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है परस्यूट। इसको भी हम आवश्यकता अनुसार 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं। अब बुआई के 25 दिन बाद हम खेत में व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना होता है कि अगर उस समय किसी कारणवश हल्की नमी मिल जाए, चाहे बरसात से या हल्का सिंचाई कर दें, क्योंकि सिंचाई का इसमें कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से अगर उस समय हल्की बरसात अगर हुई रहे, तब जो है क्विजिलोफाफिथाइ ये आपका इमेजाथाइपर यानी कि परस्यूट देना ज़्यादा लाभदायक रहता है।
1: जी
0: अगर सूखे खेत में हम परस्यूट को देते हैं तो वो काम नहीं करता है, बल्कि फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट देता है पौधों पर। तो इन सभी सावधानियों को बरतते हुए भी हमको खेत में हर्बिसाइड का प्रयोग करना होता है। तो बेहतर होगा कि हम सबसे पहले दलहनी फसलों की बुआई करने के तुरंत बाद हम जो है पेंडीमिथिलीन है या फ्लूक्लोरालीन है इसका व्यवहार करें, एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जरूर दे दें। और उसके बाद अगर बुआई के 25 से 30 दिन तक एक हल्की सी बरसात हो जाती है, खेत का सतह जो है अगर नम हो जाता है, तो हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड चाहे आपका क्विजिलोफाफिथाइल हो जो टर्गा सुपर के नाम से है, चाहे आपका इमेजाथाइपर हो जो परस्यूट के नाम से है, इसका भी व्यवहार हम उचित डोज में दे करके कर सकते हैं, इसका रिस्पांस मिलेगा। लेकिन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो हमने बताया इनका व्यवहार तभी करें जब खेत में हल्का सा मॉइस्चर हो, खेत में हल्की सी नमी हो, क्योंकि नमी न रहने पर खेत खेत पर जो है इसका खरपतवार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखेगा, बल्कि फसल पर हानिकारक

0: आने लगते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना और इन फसलों का कैसे आप जो है देख रेख कर सकते हैं, इन फसलों में कैसे आप खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि आप इनके दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और अपनी फसलों से खरपतवार प्रबंधन करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही और आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए 90.8 FM। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू सा और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए तो उसके बारे में पहले बता दें।
2: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाया होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। इसके करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूरज के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, ज़मीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फ़ायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में, थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खरीज फसल में जब फास्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं, तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पाटा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा,

लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, चूँकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें। और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इनकेस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है, समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएँ। तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयोग टाइम चल रहा है उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पे करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो
कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में

0: हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 ए सी प्लस साइपरमेथ्रिन 5 ए सी ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी। तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है, दो केजी वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए। और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके, अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है। जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए। क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
1: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
0: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचाने, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जो हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियों के फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बात है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं। चूँकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए ये जो कीट है इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है। तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं,

लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 EC प्लस साइपरमेथ्रिन 5 EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय, शाम के 4 बजे के आसपास से इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जो बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है? ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से 3-3 गोला गोला छिद्र ये हो सकता है, छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ एस्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसके उपचार कैसे करें? तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है जो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4 G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि 2-3 उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरपाइरीफॉस दानेदार, उस ये दानेदार कीटनाशी है, उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए। क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है और आपका जो है जिस पोर्शन में जिस पॉकेट में जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या उधर ही सिर्फ छिटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छिटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छींट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है और घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है, गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा बूंद आए, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉइल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो

0: फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये ताना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है। क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है, और साथ ही साथ इसके जो टेल जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु, काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी बम है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उसे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी 6 इन स्टार है, इसके जो 6 स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है, जैसे 4-5 और उसके आगे के इन स्टार में है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको, और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथक जम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथक जम प्लस लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मी बम में क्या होता है, ये आपके पत्तियां को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
1: उन्नत कृषि उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे रबी मक्के की खेती और खास तौर पर इसमें हम लेकर आए हैं जल और उर्वरक प्रबंधन की बातें। तो इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं, जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह जो कि वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी को देंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और अगर हम बात करते हैं रबी मक्के की, तो इसकी बुआई कब हम कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मक्के की बुआई कब करें। तो हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं और भी आप लोग भी देखे हैं कि जो रबी मक्के की बुआई होती है उसका सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर माह की अंतिम सप्ताह से पूरे नवंबर तक बुआई का

0: सही समय होता है। लेकिन अब चूंकि उस समय तो बीत चुका है जो किसान भाई समय पे लगा लिए हैं, उनका फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा। और वैसे किसान भाई जो किसी कारणवश या जहां धान की खेती होती है वहां भी अक्सर देर हो जाता है धान काटने में, तो वहां पे यदि खेत में नमी है तो वहां पे अभी भी आप मक्के की बुआई कर सकते हैं, रबी मक्के की। लेकिन जो किसान भाई अक्टूबर या नवंबर में लगाए हैं उनसे उपज आपको कम प्राप्त होगी। तो हमारा ये सलाह है कि अभी भी आप मक्का की बुआई कर सकते हैं। अभी मक्का की बुआई करेंगे तो समानतः जो जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, वो 7 से 8 दिन ले सकता है, चूँकि रात का तापमान काफ़ी नीचे चल जा रहा है। तो उससे जर्मिनेशन तो आपका सब सही हो जाएगा, फिर पौधे जनवरी के बाद से सामान्य जो उसका ग्रोथ होता है, बढ़वार होता है, उस रूप में आ जाएंगे। तो अभी भी यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें कोई सिर्फ में खेत में ये ध्यान देना है कि पर्याप्त नमी हो
1: जी। और किस प्रकार करनी चाहिए उसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में बताएं।
0: किसान भाइयों, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जो मक्के की बुआई है उसके एक लाइन से दूसरे लाइन जो कतार से कतार की दूरी होती है 50 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए, तथा एक बीज से दूसरे बीज यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होता है वो 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप खेत की जुताई कर लें और भुरभुरी मिट्टी को काफ़ी भुरभुरी बना लें और उसमें लाइन से बुआई कर दें। और ये ध्यान रहे कि जो आपका कतार से कतार है वो पूरब से पश्चिम रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधों की धूप काफ़ी मात्रा में मिलता है, तथा जब अप्रैल में या मार्च महीने में तूफान टाइप की जो हवाएं चलती हैं उससे भी पौधा आपका नहीं गिरता है। अब रही बात कि आपका खेत निश्चित रूप से अभी डिले हो गया है, देर हो गई है, तो आप चाहें तो बिना बुआई किए भी आप खेत में नमी है तो देखते हैं खेत में एक सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर मोटा एक लोहे का या लकड़ी का रॉड ले लीजिए और उससे छेद करते जाइए 50 से 50 सेंटीमीटर या 60-60 सेंटीमीटर पर, एक लाइन से दूसरे लाइन को रखते हुए एक लाइन में 20-20 सेंटीमीटर पर छेद बनाते जाइए, करीब 1 से 1.5 इंच अंदर छेद बनाएं और उसमें मक्के का एक एक दाना डालते जाएं और ऊपर से आधी मात्रा बालू और आधी मात्रा कंपोस्ट से उस छेद को भरते जाएं। वो क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपका जो पौधा होगा सारे का अंकुरण बहुत सही समय पे और सही रूप में हो जाएगा
1: जी। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई जो है वो अक्टूबर या नवंबर में बुआई कर चुके हैं तो उनके लिए सिंचाई के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे किस प्रकार कब करनी चाहिए।
0: किसान भाइयों जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर में लगाए हैं वो निश्चित रूप से सही समय पे लगाए हैं, तो उनको एक सावधानी की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप खेत में नमी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि जानते हैं कि जब तापक्रम नीचे जाता है 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है और ठंड लगने की डर लगती है, तो पौधे का जो प्रॉपर जो बढ़वार है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पे खेत में नमी बनाए रहें और ध्यान रखें कि जब भी सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें ताकि वो पानी रात भर में सूख जाए। पानी खेत में काफ़ी देर तक नहीं लगा होना चाहिए, तो पानी निकल जाएगा, नमी बना रहेगा तो आपके पौधे का बढ़वार नहीं रुकेगा, बढ़वार प्रॉपर होते रहेगा। तो आप 20-20 दिन पे, 15-15 दिन पे या 21 दिन पे ज़रूरत के अनुसार मिट्टी के का जिस तरह से टेक्सचर है, बनावट है, उसके अनुसार आप हल्की सिंचाई करते रहें
1: जी। और अब बात करते हैं जल प्रबंधन की सर।
0: तो जल क्या, जैसा कि हम बताएं कि जो सिंचाई करें हमेशा हल्की करें, और जो किसान भाई लाइन में बुआई किए हैं और मिट्टी भी पौधों के ऊपर चढ़ा कर यदि मेढ़ बना लिए हैं तो उनके लिए ये सलाह है कि आप चाहें तो आप एक एक नाली, जैसे पहली सिंचाई आप दे रहे हैं दूसरी सिंचाई दे रहे हैं तो उसमें जल का आप बचत कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो जितनी नाली है तो एक सिंचाई देने जा रहे हैं जो पहली, तो चाहें तो पहली तीसरी पाँचवीं सातवीं नौवीं नाली में दें और दूसरे चौथे और छठवें नाली को बंद कर दें, उससे कोई भी आपके फसल पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब आप दूसरी सिंचाई करने जाएंगे तो जिस नाली को बंद कर दिए थे पहली बार, दूसरे चौथे और छठवें नंबर को उसमें पानी दे दें, अब पहला तीसरा पाँचवां सातवां को बंद कर दें, इससे आपके करीब 60% पानी में ही पूरा सिंचाई हो जाएगा और फसल भी जितना होना चाहिए उतना उपज आपको आवश्यकता के अनुसार मिलेगा।

0: जी, फसल प्रबंधन में क्या कुछ करना होगा इसमें?
1: अब ये ध्यान देना है किसान भाइयों की, ठंड बढ़ती है, जाड़े में फॉल आर्मी वर्म विभिन्न प्रकार के कीट का आक्रमण होता है, तो आप सबसे पहले जैसे आपका जो पौधा 20 दिन 25 दिन या 30 दिन का हो गया है, तो जो आप खाद की जो आधी मात्रा बचाए हुए हैं, जैसा पहले बताया गया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास आपको देना है, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो आप बुआई के समय दे दिए होंगे। अब जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची हुई है उसका आधी मात्रा अभी आप खेत में दे दें, खेत में देने के बाद मिट्टी जो पौधों के जड़ के पास है उसको चढ़वा दें, कुदाल से चढ़ा लें या मशीन से चढ़ा लें, और उसके बाद सिंचाई कर दें, तो ये कर लें। और जो किसान भाई ये सारी प्रक्रिया कर लिए हैं या नहीं किए हैं, तो आप देखते होंगे कि खेत में कुछ कीड़ों का प्रकोप हो रहा है, पौधे मर जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं। कुछ पौधों में आप ऊपर देखेंगे जाली जाली टाइप का छेद बना हुआ है, जैसे खिड़की नुमा जाली बना हुआ है, ये सारे कीड़ों के प्रकोप के वजह से हुआ है। जो तना चेदक कीट होता है वो पूरे पौधे को सुखा देता है, और जो फॉल आर्मी वर्म काफ़ी अभी भयानक रूप से पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तो आप देखते होंगे कि वो जालीदार पत्तों के जो ऊपर वाली पत्ती होती है जालीदार बना देता है, और जो उसके छोटे छोटे उस पर दाने दाने दिखेंगे चाय का जो पत्ती होता है उस टाइप का, तो इसका जैसे ही आपके खेत में दिखता है, एक दो पौधा भी दिख गया, तो ये समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में आक्रमण फॉल आर्मी वर्म का हो गया है। तो उसके बचाव के लिए करना क्या है कि एक बाज़ार में दवा आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपना अलग अलग नाम से बेचती है, लेकिन उसका जो बेसिक चीज़ है इमामेक्टिन है, बेंजोएट के नाम से आता है, वो 4 लीटर पानी में 1 ml दवा डालना है। उस दवा को डालने के बाद आप छिड़काव कर दें, तो ये छिड़काव पौधे जैसे ही 4-6 पत्ती का हो गया है उस पर या एक बार उस समय छिड़कें, फिर जब पौधे घुटने के ऊंचाई का हो जाए तब छिड़कें, और तीसरा जो है छिड़काव बाली और धनबाल दिखने के समय कर दें। इससे क्या होगा कि पौधे भी सुरक्षित रहेंगे, खेत में आपका बीमारी कीड़ा नहीं लगेगा, और जो भुट्टे बनते हैं ये फॉल आर्मी वर्म भुट्टे में भी घुस जाते हैं, तो उससे भी आपका बचाव हो गया। तो इस तरह से आप 3 छिड़काव तो ज़रूर करें ताकि आपका फॉल आर्मी वर्म और विभिन्न प्रकार के कीड़ों से आपके फसल को बचत हो सके
0: जी। और अंत में सर उर्वरक प्रबंधन के बारे में बता दीजिए। हाँ,
1: उर्वरक में जैसे जो किसान भाई बताए कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास देना था, तो बुआई के समय फास्फोरस और पोटास की सारी मात्रा तो दे दिए होंगे, यदि नहीं दिए हैं तो अभी भी मिट्टी चढ़ाने से पहले नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास को मिला लें, और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है, आधी मात्रा का आधा यानी आपको बताया गया था कि 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास देना है। तो आप यदि फास्फोरस और पोटास दे चुके हैं तो आपके पास बचा हुआ होगा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, उस 60 किलोग्राम नाइट्रोजन का आधा कर लीजिए यानी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन को आप प्रति हेक्टेयर का हम बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं प्रति हेक्टेयर के लिए बता रहे हैं, तो आप जो आधी मात्रा बचा लें और 30 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है आपके पास उसको आप खेत में सिंचाई के पहले या सिंचाई के ठीक बाद दें और उस पर मिट्टी चढ़ा दें, और जो दूसरी तीसरी जो मात्रा होगी, ये तीसरा आप दूसरा मात्रा दे रहे हैं नाइट्रोजन का, तीसरा के लिए जब अब धनबाल आपके खेत में आना शुरू होगा, पहले उसमें धनबाल आता है तब नीचे मोचा आता है जिसमें बाली बनता है, तो जैसे ही धनबाल के अवस्था में आता है तो उसके आने से पहले आप जो आधी मात्रा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन बचाए हैं उसको आप खेत में पौधे के जड़ के पास लाइन से डाल दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो पौधे में भुट्टे आएंगे, धनबाल आएंगे, उसमें बहुत अच्छा बढ़वार होगा, भुट्टे भी बढ़िया होंगे और दानों में चमक भी बरकरार रहेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको करना है। अब किसान भाइयों आप देखते होंगे कि आप दवा देते हैं तो एक तना छेदक कीट भी बड़ा भयानक रूप से बाद में प्रकोप करता है, जैसे पौधे में जब बालियां बन जाती हैं या बनता है उस समय आंधी आता है, तो आंधी के साथ पौधे गिरने लगते हैं बीच बीच से टूट के, इसका मतलब कि उसमें पहले से कीड़ा अंडा दे चुका था जिसका वो लार्वा प्यूपा बड़ा हो गया उसको खा गया।

0: या उसको कमजोर कर दिया। इसके लिए क्या कीजिए कि पौधे चाहे घुटना ऊंचाई का हो या उससे थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, कार्बाफ्यूरान बाजार में आता है, कार्बाफ्यूरिन नाम का एक दवा, वो चाय पत्ती टाइप का होता है, काला पतला छोटा छोटा, उसको आप ले लीजिए। और धूप, अभी जैसे धूप थोड़ा तेज हो तो 12 बजे के बाद, 1-1.5 बजे जब खेत में ओस नहीं रहे, तो हर एक पौधे के गाभे में यानी ऊपर वाले पत्ती पे 4-6 दाना डाल दें, पूरे खेत में डाल दें, छिड़के नहीं, डाल दें। तो उससे क्या होगा कि जो भी अंदर में कीड़ा होगा वो गैस से मर जाएगा या भाग जाएगा, ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं। तो ये भी ज़रूर आप करें, कार्बोफ्यूरान का छिड़काव ऊपर से पत्ती में गाभे में डाल दीजिए, और इमामेक्टीन का छिड़काव, 3 छिड़काव निश्चित रूप से करें ताकि आपके पौधे और दाने स्वस्थ आपके खेत से आए।
1: इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जल और उर्वरक प्रबंधन के बारे में रबी मक्के की खेती में, तो आपको ज़रूर ये फ़ायदा देगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि, उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हूँ मैं हर रोज की तरह आप सभी के बीच एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, और आज हमारे साथ फिर से एक खास मेहमान है, खास एक्सपर्ट है आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आइए सबसे पहले आज यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आज का हमारा विषय क्या है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन तकनीक। वैसे किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि हरा चारा हमारे पशुपालक भाइयों के लिए खास तौर पर कितना ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं को जब हरा चारा मिलेगा तभी उनमें वो ताकत आएगी कि वो काम करेंगे, और पशुओं को जब हरा चारा मिलेगा तभी वो दूध दे पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है हरा चारा उत्पादन के बारे में हम जानें, इसके तकनीक के बारे में जानें। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SK गुप्ता जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और देखा जा रहा है जैसे कि आज का हमारा विषय है डॉक्टर साहब, रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन, तो सबसे पहले तो हम डिटेल में जानेंगे इसके उत्पादन के तकनीक के बारे में। लेकिन जहां तक बात आती है हरे चारे की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि मौसम के आधार पर हरा चारा जो है या फिर चारा फसलों को किस तरीके से हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं।
2: जी, देखिए, भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक आमदनी का प्रमुख स्रोत है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। फसल उत्पादन से पशुओं को चारा एवं खाद्य सामग्री तथा पशुधन से बैल ऊर्जा, जैविक खाद एवं खेती के अन्य कार्यों में मदद मिलती है। आज के समय में बढ़ती हुई आबादी को और दूध की मांग को देखते हुए जो हरे चारे की मांग है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही हरे चारे की जो फसलें हैं उनके क्षेत्रफल में वृद्धि की काफ़ी संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो सघन चारा उत्पादन चारे की आपूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही जैसे मौसम की अगर बात करें तो प्राय बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर रोजाना की ज़रूरतें आसानी से किसान पूरा कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश के डेयरी व्यवसाय में सबसे बड़ी समस्या वर्ष भर हरे चारे का उपलब्ध न होना है, क्योंकि कृषि जोत के आकार लगातार कम हो रहे हैं, जिसके कारण किसान की नकदी फसलें, अनाज की फसलें तथा सब्जियां इस

0: 2:1 प्रति सती है। इस प्रकार जो प्रति पशु प्रति व्यक्ति अगर हरा चारे की हम उपलब्धता की बात करते हैं तो वो बहुत कम ही है, क्योंकि इस प्रकार डेयरी व्यवसाय व दुग्ध उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे करें ये किसानों को जानना बेहद जरूरी है। चारे की खेती की कमी को पूरा करने के लिए जो कृषिगत भूमि से चारे की खेती के लिए जगह निकालना तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे अन्य राज्य हैं उनमें से अपना बिहार राज्य भी है, पूरे देश में बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्नों दालों एवं सब्जियों की खेती करना अति आवश्यक है। तो दूसरा, यहाँ जलवायु के बदलते परिवेश में यह भी आवश्यक हो जाता है कि कृषि में सघन कृषि प्रणाली, कम सिंचाई होने पर भी अधिक हरा चारा मिलता रहे एवं जो किसान के पास कम उपजाऊ या बेकार भूमि पड़ी हुई है उसमें कौन कौन सी ऐसी मौसमी चारा फसलों का वो
1: उत्पादन
0: करे। तो इस प्रकार किसान के पास पूरे साल में सूखे चारे के अलावा हरा चारा कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हम जो पूरा साल है हमारा उसको एक मौसम के या सीजन के आधार पर हम अपनी चारा फसलों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे हरा चारे के लिए अगर हम फसलों की बात करते हैं तो जो पूरा हमारा एक मौसमी चक्र है उसके लिए बिहार राज्य पूरे देश में, अपने राज्य सहित पूरे देश में विभिन्न मौसम में जो चारा है वो अलग अलग तरह के चारा फसलों में उगाया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले चारा फसलें। ये जो खरीफ मौसम है ये प्राय जून माह से अगस्त महीने तक अनेक चारे की फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, कुछ ऐसी बहुवर्षीय घासें हैं जैसे गिनी घास है, संकर नेपियर है, इसके अलावा लोबिया, ग्वार आदि फसलों का हम चयन कर सकते हैं। जहाँ तक रबी मौसम की बात है, इन फसलों का बुवाई का जो उपयुक्त समय है वो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर के और जो दिसंबर का महीना है इस अवधि में हम रबी की फसलें जैसे बरसीम है, रिजका है और जई है, खेसारी है, जो हमारी चारे की लिए कुछ फसलों का प्रभेद का हम चयन कर सकते हैं जैसे सरसों है, मक्खन ग्रास है इत्यादि फसलों का हम चुनाव करके आसानी से इस समय अवधि में बुवाई कर सकते हैं। और जो तीसरा और अंतिम मौसम होता है जिसको हम गर्मी का या बसंत या जायद मौसम कहते हैं, इस मौसम में बुवाई का जो उपयुक्त समय है वो जनरली फरवरी से मार्च के मध्य से लेकर के और मई तक भी हो सकता है, जिसमें कुछ इस प्रकार की फसलें हैं जैसे लोबिया है और हमारा ग्रीष्मकालीन बाजरा है, मक्का है, या कुछ विभिन्न प्रकार की बहुवर्षीय घासों का भी चयन करके हम फसलों का चुनाव करके और उनकी बुवाई करके आसानी से हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे घासों के यहाँ पर प्रकार बताए जैसे कि संकर घास और नेपियर घास, तो क्या ये मतलब हमारे जो पशु हैं उनके लिए इनके अलग अलग क्वालिटीज हैं, यानी कि अलग अलग गुण हैं उनके लिए?
0: जी जी जी बिल्कुल, देखिए आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है। दरअसल ये जो हम मौसम की आधारित पर जो इसलिए कह रहे हैं कि किसान के पास वो सबसे पहले ये तो जानना होगा कि हमारे पास इस मौसम में मौसम खेत खाली है या नहीं है, उसके जो समकक्ष है, जो उपलब्धता है वो फसल की है या नहीं है, या प्रभेद हमारे पास है या नहीं है, तो उसके साथ साथ ही जो बहुवर्षीय हरे चारे की घासें हैं उनका भी चुनाव हम करके अंतर्वर्ती फसल के रूप में इनसे मिला करके हम लगातार अलग अलग मौसम में चयन करके फसलों को और हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो जब बीज की बात आती है डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीज किस मात्रा में और कैसे होने चाहिए?
0: जी जी जी, वो तो देखिए इसका अभी हम आज का जो हमारा विषय रखा गया है वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा करके अपना सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो जो आज का विषय रखा गया है वो यही है कि जो मौसम की जानकारी तो सभी किसान भाइयों को इस के माध्यम से हो गई होगी, लेकिन जो रबी मौसम है इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के चारा फसलें हैं उनका हम चुनाव करके उसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं जो अभी हम आपको बताएंगे।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और खास तौर पर मौसम के आधार पर इन्होंने चारा फसलों को जो विभिन्न भागों में बांटा गया है उसके बारे में बताया, और इसके साथ ही आइए

0: सवाल की ओर बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि रबी मौसम में हरे चारे के लिए ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं और वो भी आसानी से कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से।
1: जी देखिए, जहाँ तक रबी मौसम की बात है, इसमें बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, जैसे चनों रबी मौसम में की अगर फसलों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जिनका चयन हम सितंबर के अंतिम माह से और दिसंबर तक कर सकते हैं, तो उसमें हम जैसे बरसीम है, रिजका है, जई है, सरसों है और मक्का भी है, जो हम रबी मौसम में आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम विस्तार से सबसे पहले आपको हम जो बरसीम फसल है उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल बरसीम उत्तर प्रदेश सहित जो विभिन्न राज्य हैं उसमें उगाई जाने वाली रबी की एक प्रमुख दलहनी चारा फसल है। बरसीम जो अगर हमारे देश के रबी मौसम में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दालें की जो फसल है, इसके में दरअसल इसके चारे में प्रोटीन की मात्रा अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। दलहनी फसल होने के कारण यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि करती है। इसका चारा पौष्टिक एवं पाचनशील होने के कारण जो दुधारू पशु हैं उनको खिलाने से दूध की मात्रा में भी लगातार वृद्धि होती है। इसके अलावा बरसीम से उत्तम किस्म का हम साइलेज, जो चारे का बैंक या भी कहते हैं, उसको भी तैयार कर सकते हैं। और बरसीम की जो खेती है, वैसे तो ये बहुत पूर्व आदिकाल से हमारे देश में की जा रही है और अच्छे गुणों के कारण इसकी खेती बिहार राज्य के सभी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सुगमता पूर्वक हम कर सकते हैं। जहाँ तक जलवायु की बात है, बरसीम की खेती के लिए प्राय शरद ऋतु में जो अर्ध शुष्क एवं ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, प्राय उन क्षेत्रों में जहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, उन स्थानों पर आसानी से बरसीम की खेती की जा सकती है। अधिक पानी भर जाने के कारण जो बरसीम के पौधे की जड़ें हैं उनमें जो पाए जाने वाले जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि नहीं होती और वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बरसीम की खेती करने के लिए जो उपयुक्त तापक्रम है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से और लगभग 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त माना जाता
0: मतलब
1: है।
0: मतलब 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 25 से 26 डिग्री ज्यादा नहीं होना, मतलब इस बीच होना चाहिए।
1: इस प्रकार का जो तापक्रम है वो दरअसल इसी महीने में अच्छा माना जाता है। जहाँ तक भूमि और उसकी तैयारी की बात है, चूंकि ये एक हम बता चुके हैं कि जो एक दलहनी फसल है इसकी जड़ों में सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए हम मिट्टी में जल निकास और उपयुक्त जो उचित वायु संचार है उसको बनाए रखते हैं। तो और वैसे भी इसका जो बीज है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके खेत को अच्छी तरह हम तैयार कर सकते हैं। और बरसीम की जो खेती है वो मक्का, ज्वार, धान की कटाई के बाद जब मिट्टी पलट हल से सबसे पहले हम इसकी 2-3 जुताइयां कर देते हैं और इसके बाद जो खेत है उसकी ढेलों को बारीक करके और खेत को पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है।
0: अच्छा।
1: और इसकी बुवाई से पूर्व जो बीज होता है उसको हम बीज उपचार कर लेते हैं और बीज उपचार हमेशा स्वस्थ पीले रंग का तथा अन्य फसलों के बीज रहित होना चाहिए, क्योंकि बरसीम के बीज के साथ अक्सर कासनी के बीज आ जाते हैं और कासनी चूंकि उसके लिए एक दूसरा फसल होने के कारण उसको खरपतवार माना जाता है, तो इससे बचने के लिए जब हम बीज खरीदते हैं उससे 5% नमक के घोल में बीज को डालकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कासनी के बीज हैं हल्का होने के कारण वो ऊपर आ जाते हैं और उनको आसानी से अलग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो इसका बीज है उसको एक सबसे पहले जो किसान भाई हैं जो खेत में बरसीम की खेती पहली बार करना चाह रहे हैं तो अपने एक राइजोबियम कल्चर से उसको एक संवर्धन कर लेना चाहिए। इसके लिए हम बताएंगे कि जो 1 किलोग्राम राइजोबियम संवर्धन या कल्चर है उसको लगभग 1 लीटर पानी के 10% गुड़ के घोल में अच्छी तरह मिला लेते हैं। इसके बाद 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बीज की मात्रा को इस कल्चर के साथ मिला करके छाया में सुखा देते हैं। तो इस प्रकार ये जो संवर्धन या कल्चर होता है इसमें जो बीज को मिला करके 24 घंटे के अंदर खेत में बुवाई कर देनी चाहिए।

0: जहाँ तक इसको राइजोबियम कल्चर को प्राप्त करने की बात है, वो जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, इसके मृदा विज्ञान विभाग से संपर्क करके वहाँ से आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। और लगभग 1 हेक्टेयर की बरसीम की बुवाई करने के लिए जो है लगभग सामान्य परिस्थितियों में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जो इसकी बुवाई की विधि है, वो इस राज्य में बरसीम की बुवाई खेत को महीन व समतल करके लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर पहले उसमें पानी भर देते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार उसका छोटा छोटा क्यारी बना लेते हैं, और उन क्यारियों को या तो किसी पटेला या किसी अन्य यंत्र से उसको कादो करते हैं और तुरंत बाद बीज को छिटक देते हैं। बस ये ध्यान में रखना होता है कि बरसीम के अच्छे अंकुरण के लिए बीज की बुवाई से 4 घंटे पहले पानी को भिगो कर रखते हैं, जिससे सभी बीजों का जमाव जो है वो शीघ्रता से हो जाता है। और जहाँ तक उन्नत प्रभेद की बात है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रभेद हैं जो इस क्षेत्र के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकती है, जिनमें प्रमुख हैं बरसीम लुधियाना, मेस्काबी, पूसा जायंट, और इसके अलावा S991। ये प्रवादी जितने भी प्रजातियां हैं, ये सब इस क्षेत्र के लिए आसानी से उपयोग
1: मतलब
0: करके
1: हमारे
0: इनकी
1: बिहार
0: बुवाई
1: क्षेत्र में।
0: जी की जा सकती है। और जहाँ तक जो अंत में खाद की बात होती है और उर्वरक
1: हाँ
0: देने की बात
1: हाँ
0: होती
1: हाँ
0: है, तो दरअसल बरसीम की खेती करने के लिए बुवाई से लगभग 15 से 20 दिन पहले, जैसे ही पूर्व फसल की कटाई करते हैं उसके एकदम बाद, अगर संभव हो सके तो उसमें लगभग 80 से 100 क्विंटल जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसको हम मिट्टी की ऊपरी सतह पर मिला
1: मतलब
0: करके,
1: जैविक खाद ज्यादा
0: जी
1: होने
0: जी
1: चाहिए।
0: जी तो उसको मिला करके उसकी जुताई कर देते हैं और उसकी ऊपरी सतह पर वो आसानी से मिल जाता है। चूंकि बरसीम एक दलहनी फसल है, तो इसके लिए हम जो अगर उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम सिफारिश की जाती है, जो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा फास्फोरस को 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हिसाब से, और उसकी अंतिम जुताई के समय खेत में आसानी से दे करके मिला दिया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम इन सब प्रबंधों का समुचित प्रयोग करते हैं तो हम बरसीम की खेती
1: आसानी से कर
0: आसानी से
1: सकते।
0: कर सकते हैं, और सामान्य परिस्थितियों में 6 से 7 कटिंग करने के बाद में लगभग इससे 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारे का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये तो एक बरसीम का है। इसी प्रकार जो रिजका है, जो इसका
1: रिज का प्रकार
0: दूसरा हमारी
1: है
0: चारे की फसल है,
1: रबी मौसम
0: तो
1: के।
0: उसका इसी मौसम में इसको बोते हैं। बस हमको बीज उपचार भी इसी विधि से करना होता है। बस इसके कुछ ऐसे उन्नतशील प्रभेद हैं जो लगभग जैसे चेतक है, पंजाब टाइप 8 है 9 है, एवं आनंद 2 है। तो इस प्रकार के कुछ रूसन और रिजका के ऐसे प्रभेद हैं जिनका हम प्रयोग करके और इसी विधि से और लगभग इसी समय इसका प्रयोग करके इन और इसी उचित प्रबंधन से भी हम लुसर्न और रिजका का चुनाव कर सकते हैं। जो एक तीसरा फसल है वो है जई।
1: जी
0: रबी मौसम में हरा चारा प्राप्त करने के लिए जरी एक महत्वपूर्ण फसल है, और इसका जो भूमि की तैयारी जो सिंपल है, उसमें एक जुताई पहले हम मिट्टी पलटने वाले हल से कर सकते हैं और तत्पश्चात हैरो से करा करके खेत को पाटा लगा करके समतल कर दिया जाता है। चूंकि ये रबी मौसम में इसको हम उगाते हैं, तो उसी मौसम में इसको हम लगभग 20 अक्टूबर से लेकर के और 10 से 15 नवंबर या मध्य नवंबर कहिए तक इस जई का हम बुवाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक बीज की मात्रा की बात है, लगभग 1 हेक्टेयर में बुवाई के लिए जो इसके बड़े दाने की जो प्रजातियां हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, उसका लगभग 80 से 100 किलोग्राम बीज को प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें हम सीड ड्रिल द्वारा पंक्तियों में बुवाई कर सकते हैं, जो लगभग हमारी 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लाइनों की दूरी होती है। और जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, बुवाई से पहले हम खेत में तैयारी करते समय लगभग 10 से 15

0: टन या कहें 100 से 150 क्विंटल जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो हम खेत को तैयारी करते समय डाल
1: डालते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। और जो 2 या 2 से अधिक कटान वाली प्रजातियां हैं उसमें हम लगभग नत्रजन की अधिक सिफारिश की जाती है, जो लगभग 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश, और जो कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो एक ही कटिंग देते हैं उसके लिए हम केवल 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन एवं 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की सिफारिश की जा सकती है। और जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है, सामान्यतः जो जई है उसमें लगभग हरे चारे के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन जो ये ध्यान में रखना होता है कि जो बहुकाट वाली प्रजातियां हैं उनको कटाई के पश्चात तुरंत उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि दूसरा जो कटाई है उसकी समय पर तैयार हो जाए। और इस प्रकार हम जई की जो कटाई है वो 50% पुष्प अवस्था आने पर आसानी से कर सकते हैं, और जो बहुकाट वाली प्रजातियां हैं उसकी प्रथम कटाई लगभग 55 से 60 दिन पश्चात कर सकते हैं, और इस प्रकार तीसरी लगभग 1.5 से 2 महीने के अंतराल पर कटाई कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रहे कि कटाई करते समय 8 से 10 सेंटीमीटर के ऊपरी भाग से हसुआ से उसका कटाई करके और हरा चारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लगभग जो एक कटिंग वाली हमारी फसलें हैं उससे लगभग हम 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा बहु कटाई वाली जिनसे हम 3 से 4 कटिंग एक सीजन में ले सकते हैं, तो उससे हम लगभग 600 क्विंटल हरा चारा एक मौसम में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में ये हम बरसीम, रिजका और जई की बात किए हैं। इसी के साथ साथ हम मक्का है, जैसे अफ्रीकन टाल है जो बहुत अधिक तीव्र वृद्धि करती है, उसका भी चयन करके और लगभग उसका अगर हम रबी में उसका चुनाव कर रहे हैं तो भी उसको आसानी से मध्य अक्टूबर से लेकर के और मध्य नवंबर के बीच में उसकी बुवाई कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी देखा गया कि बिहार क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में आसपास जो हैं वो बाढ़ आए हुए हैं, और हमारे कई किसान भाइयों के खेतों में भी पानी जो है वो घुस गए हैं। उस वजह से फसल और जो हरा चारा उन्होंने लगाए होंगे वो बर्बाद हो चुके हैं। तो अब वो नए तरीके से बीजों की बुआई करके हरा चारा उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कुछ सलाह या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, हाँ, ये जो बाढ़ का प्रकोप है जैसा कि सभी जानते हैं प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इससे बचाव जो हमारी आकस्मिक योजना है जो कंटीजेंट प्लानिंग है उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में ही नहीं हमारे राज्य में अनेक सभी राज्यों में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक हमारा दूसरा बड़ा व्यवसाय है।
1: जरूर।
0: तो उसके लिए इसको हम क्या करते हैं कि जो फसल बाढ़ के चलते हुए किसान की हरे चारे की बर्बाद हो गई है तो वो इस समय या तो जो कम अवधि के हैं, है जी, जो रबी मौसम में कम अवधि के कुछ ऐसी प्रभेद हैं जैसे एक गोभी सरसों है, इसकी चाइनीज कैबेज है, जापानी सरसों हैं, अगर किसी नज़दीकी किसी संस्थान से या कहीं से प्राप्त हम कर सकते हैं तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो हमारी मिट्टी है उसमें अगर हम बंड बना करके जो अड्डा है उस पर बना करके बहुवर्षीय घासों की रोपाई भी कर सकते हैं, और अगर जल जमाव की स्थिति खत्म हो गई है तो वहाँ हम बेड उसका बना करके, जैसे अभी हम बता रहे थे कि जैसे बरसीम है जी, और लूसर्न है, या इसके अलावा रेज बेड पर जो पंक्तियों में उसकी अड्डा बना करके मेंढों पर उनकी बुवाई कर सकते हैं। बस यही उसमें ध्यान रहना चाहिए कि जो जल जमाव है उसमें तो किसी भी फसल को उगाना संभव नहीं है। जहाँ जल निकास हो चुका है, पानी नहीं है, तो हम गीली अवस्था में भी हम उसका बुवाई कर सकते हैं, और हरा चारा के लिए ऐसी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर साहब से विस्तार में जाना रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन तकनीक के बारे में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि रबी मौसम में हरे चारे के लिए कौन कौन सी फसलों का हम चयन करें, और आप सभी ने ये जानकारी ली। और आशा करते हैं कि

0: आप डॉक्टर साहब के बताए गए सुझाव को अपनाएंगे और किस तरीके से कैसे सिंचाई और बीज उपचार के बारे में भी आपने जाना तो उसे अपनाएंगे, और जो भी आप हरी चारे का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें इस बातों को शामिल करेंगे और ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आगे आपसे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली चर्चा के साथ हम हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु, और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम रबी सब्जियों के बारे में बात करेंगे और इसकी नर्सरी हमें कैसे तैयार करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो इस विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता मैडम। मैं आप सभी को बता दूँ, मैडम वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद अनु।
0: सबसे पहले तो मैडम, रबी सब्जियों में कौन कौन सी जो सब्जियों की फसल है वो आते हैं?
1: ये जो रबी सब्जियां हैं मुख्यतः पूरे साल को रबी, खरीफ और गर्मा में तीन भागों में बांटा गया है, और आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर से हमारा रबी का सीजन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए रबी में बहुत सारी सब्जियां आती हैं। आपका गोभी आता है, पत्ता गोभी आता है, टमाटर आता है, पालक है, मेथी के पत्ते हैं, शलजम है, बीट रूट है, सारे सब्जी इस तरह के, गाजर है, मटर है, ये सारी सब्जियां आपको रबी फसल में ही आती हैं।
0: विषय है वो है नर्सरी कैसे तैयार करना रबी सब्जियों का। तो सबसे पहले तो नर्सरी क्या होता है इसके बारे में बता दें।
1: नर्सरी पौधशाला को कहते हैं। नर्सरी एक बहुत ही बड़ा बृहद शब्द है। नर्सरी सिर्फ पौध का नहीं होता है, जो भी छोटे चीज होते हैं, जैसे एक माँ है जो अपने बच्चों को, शिशु को पालती है, पालने में रख करके उसको धीरे धीरे एक एक दिन करके बड़ा करती है, उसी तरह से पौधा में जब पौधा तैयार करते हैं तो पौधशाला भी उसी तरह से तैयार किया जाता है, उसी तरह से नर्चर किया जाता है। तो नर्सरी में पौधों को धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से उसे बढ़ाया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, पौधा स्वस्थ हो, ताकि आने वाले दिन में उत्पादन को में अच्छा प्राप्त कर सकें। इसीलिए नर्सरी में हमेशा पौधे को स्वस्थ रखना चाहिए
0: जी। और जब हम नर्सरी में सब्जियों के बीज डालते हैं तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: सर्वप्रथम अभी गर्मी सितंबर का माह है, और सितंबर में साधारणतः अगर क्लाइमेट चेंज की बात ना करें तो बहुत कड़ा धूप निकलता है, गर्मी का धूप रहता है, इस धूप में बहुत गर्मी रहती है। तो इसमें हमारे किसान जो भी हैं नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, जहाँ पे भी पौधशाला तैयार करना चाहते हैं, उसकी मिट्टी को वो खोल दें। मिट्टी को खोल करके उस मिट्टी में 1% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन डाल करके उसे उजली पन्नी से मिट्टी को ढक दें, ढक करके उसे एक सप्ताह लगभग छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो उन्होंने घोल डाला है 1% फॉर्मल्डिहाइड का, उसमें ईचिंग का टेंडेंसी होता है, वो लगता है उसमें। इससे क्या होगा कि वो जैसे जैसे आपका घोल नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से आपका जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो बाहर की तरफ भागेंगे, और बाहर में आपने उसे ज़मीन को पन्नी से ढक करके रखा है। पन्नी से ढकने की वजह से एक तो कीड़ा आपका बाहर भाग नहीं सकेगा, दूसरा क्या होगा कि धूप की गर्मी उस पन्नी को में प्रवेश करके अंदर की तरफ जाएगा और उस गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखेगा, जिसमें सतह पर जितने भी कीड़े मकोड़े या फफूंद रहेंगे वो लगभग 50% तक के समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से एक सप्ताह आप अपनी ज़मीन की तैयारी कर लें, या इस तरह से मिट्टी की तैयारी कर लें, और तैयारी करने के बाद पुनः ज़मीन को खोल करके आप ज़मीन की अच्छे से जुताई करें, उसे महीन करें ताकि नर्सरी उसमें डाला जा सके। और अभी नर्सरी डालने के लिए बहुत सारे प्लास्टिक का प्रो ट्रे आ गया है, अलग अलग साइज में, आकार में। तो उस मिट्टी का प्रयोग वो वर्मी कंपोस्ट और 1 ग्राम डीएपी

प्रति स्क्वायर मीटर के दर से मिला करके वो मिट्टी को तैयार में डालें और तैयारी करें। साथ में नर्सरी जहां भी तैयार करनी है वहां पर नर्सरी वाले मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की मात्रा को नहीं डालना है। अगर कंपोस्ट की मात्रा को वो ज़्यादा डालते हैं तो पौधा लंबा हो जाता है, पौधा मोटा होने की बजाय पौधा लंबा हो जाता है। अब हम लोगों ने मिट्टी की तैयारी की, मिट्टी हमारा तैयार हो गया है। आप प्रोट्रे ले लें, प्रोट्रे में उन मिट्टी को भर दें। प्रोट्रे में मिट्टी भरने से पहले प्रोट्रे के जो बेस होता है, जो कटोरी नुमा संरचना होता है, उसके बेस पर हल्का बालू डाल दें। बालू डालने से क्या होगा कि आपका वो मिट्टी है जो आपके कप में सटेगा नहीं, और उस प्रत्येक में मिट्टी डाल दें और बीज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब तक हम लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें गुणवत्ता युक्त बीज का व्यवस्था करना चाहिए। टमाटर में भी, बैगन, ये इसका गोभी का, पत्ता गोभी का, शिमला मिर्च का, इन सब का बीज का हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। और बीज को तैयारी करके बीज को उपचारित कर दें, रात में बीज को फूलने दे दें और बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके और क्लोरोपायरीफॉस 6 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप उस बीज को अच्छे से उपचारित कर लें। और अगर बीज को उपचारित करना, अगर पानी में नहीं फुलाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो क्या करें कि कार्बेंडाजिम में किसी अलग रंग को मिला दें, कार्बेंडाजिम में अलग रंग का, मतलब गुलाबी मिला दें या पीला मिला दें, और बीज को किसी प्लास्टिक वाले सतह पर फैला लें। और फैलाने के बाद उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें, छिड़काव करने के बाद दवा का भुरकाव करके उसे अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि बीज, एक एक बीज पर कुछ ना कुछ दवा लग जाए। रंग मिलाने से क्या होता है कि बीज पर जब रंग दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ, इस पे दवा मिल गया है। उसी प्रकार से अगले दिन क्लोरोपायरीफॉस से कर लें। दूसरा चीज़ है कि किसान भाई बीज को उपचारित करते समय उसमें गुड़ की मात्रा थोड़ा मिला देते हैं, तो गुड़ का एक कोट बन जाता है बीज पर, जो बीज को स्वस्थ रखता है और न्यूट्रिशन, पोषण देने का काम करता है। तो बीज इस न्यूट्रिशन, जब पोषण उसको मिलता है तो बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से किसान हमारे बीज, एक एक बीज करके प्रोट्रे में डालें। और अगर नर्सरी में बीज वो डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, तो छिट्टा विधि को से नहीं डालना चाहिए हमारे किसानों को। छिट्टा विधि से क्या होता है कि कभी कभी बीज है का फैलाव एक तरीके से नहीं होता है, कुछ बीज एक जगह ज़्यादा पड़ जाते हैं, कुछ जगह एक बीज कम पड़ते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जहाँ पे कम बीज पड़ता है वहाँ पे पौधा बौना और मोटा होता है, और जहाँ पर घना बीज पड़ता है वहाँ पर नर्सरी है जो आपका पौधा है जो लंबा और उसका जो तना होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसे हमें मुख्य भूमि में देते हैं तो उस समय हमें गुणवत्तापूर्ण पौध नहीं तैयार होता है। तो किसान भाई, इसको नर्सरी में अगर जमीन में भी डाल रहे हैं तो बीज को हमेशा 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर दें, ताकि उनको पौधा अच्छा प्राप्त हो। दूसरा, किसान हमारे सावधानी बरतें कि लगाते समय वो कोशिश करें कि लगाने के एक दिन पहले उसमें सिंचाई करेंगे तो उसमें किसी कीटनाशक को अवश्य पानी में डाल करके उसका पटवन कर दे, ताकि प्रत्येक पौधा में कुछ न कुछ कीटनाशक का अंश आ जाए। दूसरा चीज़ है कि अगर वो लगाने जा रहे हैं पौधे को, तो ऊपर की पत्तियों को काट दें, जो बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं लगाने में, सिर्फ उसके एपिकल कली का भाग को छोड़ दें और बाकी पत्तियों को हटा दें वो नर्सरी में ही। इससे क्या होगा कि जब आप उसे मुख्य भूमि में लगाएंगे तो लगाते समय आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि पत्तियां ही खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, और जब पत्तियों को सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो पत्तियां हैं जो जड़ से आपको खाना मांगना, पानी मांगना प्रारंभ कर देगा, और आपका जड़ जो है अभी जमीन में स्थापित नहीं हुआ है। तो अपनी लगाए गए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए किसान भाइयों को अग्रभाग को छोड़कर बाकी की पत्तियों को हटा दें। और इससे क्या होगा, पत्तियों को हटाने से आपका मुख्य तना ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तना निकलना प्रारंभ हो जाएगा जहाँ जहाँ से आपने पत्तियाँ छोड़ी हैं, तो कल्लिका है जो तना में

0: परिवर्तित हो जाएंगे, इससे पौधों में शाखाएं की संख्या बढ़ जाएंगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फल लगने वाले कल्ले भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर किसान अपने पौधों का प्रबंधन करते हैं नर्सरी अवस्था में ही, तो वो उत्पादन में एक नया आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मैडम। और श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आप उन्नत कृषि कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हम खेती से जुड़ी बातें करते हैं। किसान भाइयों के खेती में आने वाली दिक्कतों के समाधान को हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। तो आज हम विषय लेकर आए हैं रबी तिलहनी, राई, सरसों, तोरिया, इसके बारे में, और प्रमुख किस्में क्या क्या हैं इसकी, और इसकी प्रारंभिक तैयारी आप कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है।
2: किसान भाई नमस्कार। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि बढ़िया मुनाफा के चलते किसानों के बीच जो हमारी रबी तिलहनी फसलों को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ रही है। जैसा कि बाज़ार में तिलहन की फसल से निकाले गए खाद तेलों की मांग ज़्यादा हो रही है, यही वजह है कि जैसे कि अभी राई, तोरी, सरसों और मूँगफली के तेलों की कीमत में काफ़ी उछाल दिखाई पड़ रहा है
1: जी।
2: यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सरकार की भी तरफ से तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी बहुत सा योजना चलाई जा रही है। परिणाम के तौर पर हम देख रहे हैं कि तिलहन की खेती का रकबा में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है
1: जी। तो इसमें से तिलहन की किन फसलों की खेती कर किसान भाई जो है आसानी से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं सर?
2: जैसे कि जिसे तिलहन जो है हमारी अर्थव्यवस्था में अनाज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तिलहन के फसल से जो हम लोग तेल जो निकलता है उसको तेल में आहार कप में प्रयोग करते हैं, बहुत सारे अन्य उत्पाद भी बनते हैं जैसे पेंट में वर्निशेस, वनस्पति तेल, साबुन, इत्र, ये सब के प्रयोग में कच्चे माल के रूप में हम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है। तेलहन में तेल निकालने के उपरांत बची हुई खली का प्रयोग पशुओं को चारे और खाद के रूप में भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तिलहन फसल में जैसे अभी रबी मौसम है तो राई, सरसों, तिल, अलसी जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं का महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन में हमारा जो भारत है विश्व में तीसरा स्थान है। बिहार के रबी मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में राई, तोरिया और सरसों का ही प्रमुख स्थान है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद तेल या जानवरों के लिए खली के रूप में किया जाता है। किसान भाई, अधिक एवं गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि इसकी खेती हम वैज्ञानिक ढंग से करें जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राई, तोरी, सरसों के उन्नत प्रभेद और कौन कौन सी है और खेत की विधि क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तोरी के अनुशंसित प्रभेद उसके बारे में बात करेंगे। तोरी के का बुआई का समय मुख्य रूप से 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच है। तो इसके लिए जो अनुशंसित बिहार के जलवायु के अनुकूल जो हमारे लिए अनुशंसित प्रभेद है उसमें RUTS-17, यह इसकी परिपक्वता अवधि 90 से 95 दिनों की होती है। इसका औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें तेल की मात्रा इसके बीज में 43% पाई गई है। इसी तरह दूसरा प्रभेद है पंचाली, यह 95 से 105 दिनों की प्रभेद है। इसका भी औसत उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 40% है। इसी तरह PT-303 और भवानी किस्म है जो 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी भी औसत उपज काफ़ी अच्छी है, 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 43% पाई गई है। इसी तरह किसानों के बीच में पीली सरसों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो पीली सरसों के लिए जो उन्नत अनुशंसित प्रजातियां हैं उसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पहले था उसके द्वारा ये विकसित की गई थी उसमें 66-197-3 और इसका राजेंद्र सरसों 1 और स्वर्णा। इसके बुआई का समय 10 से 20 अक्टूबर

0: है जिसमें अच्छा उपज किसान भाई ले सकते हैं। अब परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की होती है। औसत उपज जैसे 66 197 डस्ट दिन की 14 से 16 क्विंटल है। और राजेंद्र सरसों अभी वहां से अधिसूचित विमोचित हुई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से, तो उसमें 15 से 16 क्विंटल इसका औसत उपज है और तेल की मात्रा 46% पाई गई है। और भी बहुत से अच्छे प्रभेद हैं जैसे पीली सरसों के लिए अभी जो हाल के दिनों में जो प्रभेद विकसित की गई है उसमें NRCYS 0510 यह प्रभेद का औसत उपज 1317 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसका परिपक्वता अवधि जिसको हम मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहते हैं वो 94 से 125 दिनों की है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें तेल की मात्रा 38.2 से 46.5% पाई गई है। ये वेराइटी 2009 में नोटिफाई की गई। इसी तरह दूसरी प्रभेद अच्छी प्रभेद है YSHO 401। इसका इस प्रभेद का भी औसत उपज 12 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा परिपक्वता अवधि 115 से 120 दिनों की होती है। इसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी पाई गई है जो 43 से 45% है। इसी तरह जैसे हम लोग पीली सरसों के बारे में बात किए उसी तरह राई के जो उन्नत और अनुशंसित प्रभेद है उसमें वरुणा, बूसा बोल्ड, क्रांति, राजेंद्र राय पिछात और राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम। तो वरुणा जो है उसको बुआई का उपयुक्त समय जो है 15 से 25 अक्टूबर है। इसकी परिपक्वता अवधि 135 से 140 दिनों की है और उपज बहुत अच्छी है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसको 42% इसमें तेल की मात्रा पाई गई है। उसी तरह अभी राजेंद्र इसे अभी धान कटने में लेट हो जाती है तो इसके लिए जो किसी किसान बंधुओं को लगाना है तो इसके लिए राजेंद्र राय पिछात जो 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी परिपक्वता अवधि 105 से 115 दिनों की होती है और औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 41% पाई गई है। इसी के अनुरूप राजेंद्र अनुकूल ये भी पिछात किस्म है और इसको लोग किसान भाई 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक लगा सकते हैं। उसी तरह राजेंद्र सुफलाम ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है राई की और इसको 15 नवंबर से 25 दिसंबर इसको बहुत लेट तक भी किसान भाई इसको ले सकते हैं। यदि विलंब से भी बुआई करें तो अच्छा उपज दे देती है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसमें तेल की मात्रा 40% पाई गई है। इसी तरह पूसा IRI संस्था से पूसा मस्टर्ड 27 2011 में अधिसूचित विमोचित की गई। इसका औसत उपज 14 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो तेल की मात्रा 40 से 45% पाई गई है। उसी तरह पूसा मस्टर्ड 26 पूसा मस्टर्ड 28 अभी हाल के दिनों में 2020 में एक बहुत अच्छी प्रभेद आई है पूसा महक। इसका औसत उपज 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा तेल की मात्रा इसमें 42% पाई गई है
1: जी। और सर अभी यहाँ पर सरसों, तोरी और राय की बात हम कर रहे हैं तो वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती कर हमारे किसान भाई मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं?
0: सरसों का जैसे हम लोग जानते हैं कि बीज दर इसका 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तो किसानों भाइयों को एकदम बीज दर हिसाब से लगाना चाहिए। ज़्यादा बीज दर रखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो पंक्ति में बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी की दूरी हम लोग को 30 सेंटीमीटर रखनी है तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। इकाई क्षेत्रफल में जैसे पर्याप्त पौधों की संख्या होती है तो उपज भी अच्छी प्राप्त होती है और बीज को सबसे बड़ा है कि 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने से जो जर्मिनेशन होता है बीज का जमाव होता है वह समान रूप से होता है, यह ध्यान देना चाहिए। और बीज उपचार के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्मेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के दर से हिसाब से हम लोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी मृदा जनित जो फंगस है उससे बचाव करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं खाद उर्वरक का प्रयोग। खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि 10 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तथा 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम सफोर जिसको फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास खेत में डालने से फसल के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जैसा कि नेत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जैसे कि हम लोग जुताई अंतिम जुताई करते हैं उस समय खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए और जो शेष नेत्रजन की आधी मात्रा है उसमें फूल आने के समय हम लोग को उपरिवेशन के रूप में दे देना ज़्यादा उपज देती है। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर यदि गंधक, जिंक और बोरोन का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि कमी हो तो असिंचित अवस्था जैसे होती है तो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा पोटाश के रूप में प्रयोग करना चाहिए और पौधे की बछनी हम लोगों को करना चाहिए। यदि बीज बुआई के 15 दिनों बाद बछनी की आवश्यकता यदि आपको दिखाई पड़ रही हो तो कर देना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर

0: अन्य सभी पौधे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर पौधे को सनलाइट मिलना, सूरज की प्रकाश मिलना अति आवश्यक है। कतार में सही दूरी पर पौधे में होने से उपज में वृद्धि होती है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तथा इसमें जो निकोनी और कमौनी होती है, तो बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद निकोनी अवश्य करनी चाहिए। खेत में खरपतवार मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ पौधों के जड़ों के पास प्रकाश एवं हवा ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि फसल की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। सिंचाई को यदि हम देखें तो राई और सरसों में दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल लगने के समय करनी चाहिए तथा दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी न हो तो हल्की सिंचाई कर देना ज़्यादा हितकर होता है
1: जी। और अब इसमें लगने वाले रोग और कीटों के प्रबंधन के बारे में बताएं।
0: जो प्रमुख कीट और रोग इसमें सरसों में लगते हैं, उसमें प्रमुख रूप से है जिसको हम लोग सफ़ेद रोली रोग या सफ़ेद रतुआ रोग हम लोग कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है, या सरसों का अति इससे सफ़ेद रतुआ जो रोग है वह बहुत भयंकर रोग है। यह बीज और भूमि जनित रोग है। इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद, जैसा कि हम लोग देखते हैं, पत्तियां की निचली सतह पर सफ़ेद रंग का उभरे हुए फफोले दिखाई देने लगते हैं। फफोले के ऊपरी सतह पर पत्तियां पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उग्र अवस्था में सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोलों पत्तियाँ के दोनों सतह पर फैल जाती हैं। और फफोलों को देखिएगा तो फट जाने पर सफ़ेद चूर्ण बाहर की तरफ फैलता है और पीले रंग के धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। और फूल लगने और फलियां पूरी तरह से विकृत हो जाती है, जिसमें बीज नहीं बन पाता है और काफ़ी क्षति होती है। तो इसके नियंत्रण के उपाय है कि सरसों की बुआई हम लोग को हमेशा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में करना चाहिए। और बीजों को जैव नियंत्रक आजकल बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है, तो ट्राइकोडर्मा पाउडर को 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम या फफूदनाशी मेटालेक्सिल कि 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करके बुआई करें। और फसल के बुआई के 55 से 60 दिनों के बाद या रोग के लक्षण दिखाई देने पर रिडोमिल MZ 2% का छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार 10 दिनों के अंतराल पर पुनः छिड़काव कर दोहरा दें। एक सरसों में अंगमारी रोग लगता है। इस रोग के पत्तियों पर कथई भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जिनके किनारे पीले रंग के होते हैं। देखने में ये धब्बे आँख की तरह प्रतीत होते हैं और उग्र अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, जिससे कि सरसों की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती है। तो इसके नियंत्रण के लिए थायराम 75 WP 3 ग्राम या ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से किसान भाई इसको बीज को उपचारित कर लगावें और तो ये समस्या से निजात पा सकते हैं। या 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम मिलाकर 15 दिन तक रखें और बुआई के पहले खेत में छिड़क कर हल्की सिंचाई कर दें। और दूसरा सबसे प्रमुख रोग है सरसों का तुलासीता रोग, जिसको डाउन मिल्डी भी कहते हैं। इस रोग के कारण पत्तियां के निचली सतह में ये रोग दिखाई देता है। निचली सतह पर कपास की तरह उभरी हुई सफ़ेद भूरियां दिखाई देती है, जिसमें पत्तियां के निचली सतह पर हल्के भूरे बैंगनी धब्बे पड़ जाते हैं, जिनका ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है। और उग्र अवस्था आने पर तना और पुष्प अतिवृद्धि के कारण फूल जाते हैं और फलियां में दाना नहीं बनते, जिसके कारण काफ़ी हानि होती है। इस रोग का प्रकोप सफ़ेद रोली के साथ दिखाई देता है तो फसल में ज़्यादा नुकसान होता है। इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई को चाहिए कि सरसों की बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कर दें और बीजों को मेटालेक्सिल 6 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से बीजोपचार कर दें। और फसल बुआई के 2 माह बाद या रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो रिडोमिल MZ 2% का छिड़काव करें। और सरसों का जो प्रमुख जैसे जो कीट है वो माहू कीट है। और सरसों का माहू कीट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटा लंबा और कोमल शरीर वाला कीट है। प्रौढ़ माहू 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला पंख रहित, दूसरा पंख सहित। पंख रहित प्रौढ़ 2 मिलीमीटर लंबा गोलाकार और हरे रंग या हल्के पीले रंग का होता है। तो इसमें जो माहू कीट लग जाने पर हम लोग किसान भाई को काफ़ी हानि पड़ती लगती है होती है। तो हानि के ये कीट प्राय दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकट होता है और मार्च के अंत तक सक्रिय रहता है। और मार्च के अंत तक विभिन्न भाग, जैसे सबसे पहले पुष्पक्रम, पत्तियां, टहनी, तना, फलियों में रस चूसकर नुकसान पहुँचाते हैं। यह कीट समूहों में रहते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वंश वृद्धि करते हैं। माहू पहले फसल की वनस्पति कलिका को प्रकट होते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधे को ढक लेते हैं। ये कीट मधुस्राव निकलता है और पौधे को काले

0: का आक्रमण हो जाता है, जैसा कि किसान भाई पहचानते हैं। तना और पत्तियां काली हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा जाती है। इस प्रकाश यह कीट उपज और तेल की मात्रा में कमी होती है। बादल युक्त और ठंडा मौसम में वंश वृद्धि के अत्यंत उपयुक्त होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि रोग और कीट के लिए हम लोग को समन्वित कीट प्रबंधन अपनाएं। जहाँ तक संभव हो, सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए, जिससे कि फसल माहों के प्रकोप से बच जाए। उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए और माहों के प्राथमिक आक्रमण पर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार माहों ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें, या माहों के वृक्ष वृद्धि को इसे के कम किया जा सकता है। फसल में कम से कम 10% पौधे माहों से ग्रसित हों तो प्रत्येक पौधे पर 26 से 28 माहों हो तभी छिड़काव कर देना चाहिए। जैसा कि इमीडाक्लोपीड 17.8 SL को 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव घोल बना लें और छिड़काव करें। यदि दोबारा से कीट का प्रकोप आ जाए तो 15 दिनों के अंतराल पर पुनः छिड़काव कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि किसान भाई एक वैज्ञानिक ढंग से यदि खेती करें तो राई सरसों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में भी अच्छा अभी मुनाफा देखा जा रहा है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रबी तिलहनी के प्रमुख किस्में और इसकी प्रारंभिक तैयारी खेती के लिए। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन। और इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर कुमारी करुणा मैडम, और मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग फल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम, सघन बागवानी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो किसे कहते हैं सघन बागवानी, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: सघन बागवानी जैसे नाम से ही है कि सघन मतलब घना घना करना है, यानी कि जो परंपरागत तरीके से बागवानी की जाती है उससे और घना करना है। यानी कि आम का हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो आम के केस में 10 मीटर 10 मीटर में हम लोग कहते हैं लगाने की, ये परंपरागत विधि है लगाने का कि 10 मीटर पौधा से पौधा और 10 मीटर कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। जब सघन की हम बात करते हैं तो उससे नीचे जब हम डिस्टेंस लेते हैं, दूरी लेते हैं 8 मीटर 8 मीटर 7 मीटर 7 मीटर 6 मीटर 5 मीटर, तो ये सघन होते जाता है। सघन में भी बहुत तरह का है, जैसे कि कहते हैं कि कम सघन, मध्यम सघन, अति सघन, मतलब जब बहुत नंबर ऑफ संख्या जब बढ़ाते जाते हैं पौधा को, उस तरह से उसका नामकरण होते जाता है सघन का। तो इसको हम लोग नॉर्मल से जब हम कम दूरी पर पौधा को लगाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं सघन बागवानी। इसकी उपयोगिता ये है कि प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पौधा बढ़ जाता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाती है। इसमें अच्छी इसलिए हो जाती है कि इसमें छत्रक प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। छत्रक प्रबंधन किया जाता है और प्रॉपर फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, सिंचाई, निकाई, गुड़ाई करने से इसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है।
1: जी, अगर सघन बागवानी की बात करें तो हम ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे, गड्ढा बनाना, गड्ढा भरना, इसमें कैसे किया जाता है?
2: ज़मीन की तैयारी जैसे परंपरागत तरीके से करते हैं, 3 बार जुताई करते हैं, उसके बाद पाटा चलाते हैं। इसी तरह से सघन बागवानी के लिए भी अगर शुरुआत में हमको बगीचा लगाना है, किसान भाई को बगीचा लगाना है सघन बागवानी में, तो उसी तरह से ज़मीन की तैयारी करनी होगी, पाटा चला के उसके बाद लेआउट करना होगा जिस विधि में किसान भाई लगाना चाहेंगे, जिस दूरी में लगाना चाहेंगे, 5 मीटर 5 मीटर में लगाना चाहेंगे या 6 मीटर 6 मीटर में लगाना चाहेंगे। सबसे अच्छा जो डिस्टेंस होता है, जो हम बिहार सरकार से भी प्रेस्क्राइब है और हम लोग

0: और लेमैन लैंग्वेज में ऐसा बताएंगे कि आम के जो ये है पल्प है उससे भाप जब निकलने लगे, बिल्कुल हल्का भाप निकलने लगे, मतलब 100 डिग्री तक नहीं टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, भाप जब निकलने लगे उसको उतार लीजिए, तो इसको पास्तुरीकरण कहते हैं। पास्तुरीकरण हुआ, ये पास्तुराइज कर लिया उसको, उसके बाद उतार लिया, और उतारने के बाद इसमें परिरक्षक डालते हैं, रासायनिक परिरक्षक। इसमें हम लोग नॉर्मली पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड या सोडियम बेंजोएट डालते हैं। सोडियम बेंजोएट अगर डालना है, चूँकि पल्पी है इसलिए सोडियम बेंजोएट ज़्यादा सुटेबल होगा, तो सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड जो होता है वही होता है इसमें, तो वो उसमें 0.02% 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी एक ग्राम जो है पाँच लीटर अगर पल्प है तो आप उसमें सिर्फ 1 ग्राम डालेंगे, आप 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम डाल करके उसको स्वच्छ जल में, यानी पानी है उसको बॉयल कर लीजिए, आप बॉयल करके उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद उसमें उसको पूरे पल्प में उसको मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद जो है उसको फिर हम लोग अगर हेड स्पेस छोड़ा है तो थोड़ा सा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड भी ऊपर में थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद बंद करके उसको सील कर देते हैं, और इस पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया। अब ये पल्प अगले साल तक के लिए प्रिजर्व हो गया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी, मान लिया आपको स्क्वैश बनाना है या आरटीएस बनाना है या जैम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो ये आप इससे निकाल के व्यवहार कर सकते हैं। जब आम का सीज़न ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसको निकाल करके आप व्यवहार कर, नॉर्मली तो वही करेंगे लोग कि जब प्रिजर्व करेंगे तो उसको जब तक आम चल रहा है उसी से हम अपना बना सकते हैं जो भी बनाना हो उत्पाद, तो उस तरह से वो हम लोग सील करके रख देते हैं। और अब स्क्वैश देखिए, अब स्क्वैश पर आते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्क्वैश। ये बीवरेजेस में आता है, पेय पदार्थ, नॉन फर्मेंटेड बीवरेजेस।
1: अच्छा।
0: तो अनफर्मेंटेड बीवरेजेस में दो आते हैं, स्क्वैश एंड आरटीएस। तो स्क्वैश बनाने के लिए क्या है कि ये पल्प को हम लोग, मान लिया अगर हम 1 लीटर पल्प को हमने लिया और लेने के बाद उसको जो है उसका 1.5 गुना चीनी का शीरा बना लेते हैं, 1.5 गुना चीना, दुगुना इसलिए नहीं देते हैं कि ऑलरेडी इसमें चीनी है। ये आम मीठा आम है, पका हुआ आम, ये कच्चा आम अगर हम लेंगे तो कच्चे आम में फिर हमको चीनी दुगुना मिलाना पड़ेगा, तो 1.5 केजी चीनी इसमें हम डालते हैं, और इसमें नहीं डालेंगे, मतलब अलग से शीरा में डालेंगे, शीरा बनाने के लिए उसका हाफ पानी डालेंगे, यानी अगर 1.5 केजी चीनी लिया है तो उसमें 750 मिलीलीटर पानी मिला करके उसको गर्म करके शीरा हम लोग तैयार कर लेंगे। अब है कि अगर हम जब शीरा मिला रहे हैं तो हल्का सा उसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, 1 किलो चीनी अगर है तो उसमें 4 ग्राम सिट्रिक एसिड, चूँकि हमने 1.5 किलो चीनी दिया है तो इसलिए हमको 6 ग्राम सिट्रिक एसिड को पानी में घोल के उस उबलते हुए नहीं, मैंने गर्म जो हम चढ़ाए हैं गर्म करने के लिए ताकि चीनी उसका घुल जाए पानी में, तो उसको हम लोग डाल देते हैं सिट्रिक एसिड को, और सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि वो चीनी की जो गंदगी है अगर तो वो भी निकल जाती है, उसमें जो कीड़ा मकोड़ा मान लिया अगर आ गया है तो वो भी निकल जाता है। उसके बाद जब शीरा ये बन जाता है हमारा, चीनी घुल जाता है, सिर्फ चीनी घुलाना है, शीरा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और उसके बाद जब इसको जो है हम लोग छान लेते हैं, और छानने के बाद धीरे धीरे उसमें वो जो हमारा पल्प है 1 केजी पल्प है, पल्प को किसी बर्तन में डाल देते हैं, बोतल से निकाल के पल्प में डाल देते हैं या डब्बे से, और उसके बाद 1 लीटर उसमें धीरे धीरे हम लोगों को ये शीरा जो है चीनी का जो सिरप है उसको धीरे धीरे मिलाते हैं और चलाते जाते हैं ताकि वो उसमें विलीन हो जाए, सारा शीरा जो है धीरे धीरे उसमें घुल जाए, और घुलने के बाद ये जो क्वांटिटी मेरा 1 केजी से बढ़ के 2.5 केजी हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब ये शीरा मेरा ये स्क्वैश तैयार हो गया। चूँकि परिरक्षक हमने पहले से दे रखा है उसमें, इसलिए दोबारा परिरक्षक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं आम का तो उसमें हम इस समय परिरक्षक दे सकते हैं, तो उसमें 0.06% डालते हैं पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइट, इसमें लिख लीजिए, चूँकि इसमें पानी मिल गया है, इसमें चीनी मिल गया है, हालांकि चीनी भी प्रिजर्वेटिव है लेकिन उस क्वांटिटी में हम नहीं दे रहे हैं जितना उसमें प्रिजर्व हो सके, तो उसमें एक थोड़ा बहुत जो है प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, तो 0.06% यानी 600 मिलीग्राम 1 लीटर में डालना। तो अगर ये 2 लीटर हमारा बना है पूरा चीनी

0: स्टरलाइज बॉटल में, अगर प्लास्टिक का बॉटल है तो पानी से धो के उसको धूप में अच्छा से सुखा के, और उसको जैसे पानी का जो बॉटल मिलता है हम लोग आरओ वाटर वगैरह पीते हैं उसमें भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको करके उसमें जो है बढ़िया से स्वच्छ जल से धो के धूप में सुखाने के बाद हम लोग जो है उसको उसमें भर देते हैं, भरने के बाद कैप को जो है सील कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्वैश बन गया। अब स्क्वैश में अगर मुझे व्यवसाय करनी है तो मुझे लाइसेंस लेना होगा, FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की भी प्रक्रिया अब गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हर शहर में होता है, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ये इसका पता लगाना होगा कि भाई हमने ट्रेनिंग लिया है या सीखा है, हमारे यहाँ किसी विश्वविद्यालय सबौर में ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग आप ले लीजिए, सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उससे आपको बैंक का लोन भी मिलने में आसानी होगी और आपको लाइसेंस भी मिलने में आसानी होगा। तो ये आप करके व्यवसाय भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगर मान लिया RTS बनाना है आपको, नुक्कड़ पर छोटे छोटे 100-150 ml में आपको बाहर भेज करके, जैसे लोग फेंटा कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं लोग, तो अब ये लोग जान रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गैस के और कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप लोग बेवरेज बना इसी स्क्वैश को अगर 3 times आप मिला देते हैं पानी इसमें, तो ये बन गया RTS। और RTS बनाने के बाद उसको बॉटलिंग कर दीजिए, क्रॉन कॉर्क सीलिंग कर दीजिए, और उसके बाद एक बड़े से पतीली में डाल करके उसको फिर से स्टरलाइज करना पड़ता है बोतल के समेत, और इसको जो है तो 70-80 degrees centigrade पर कम से कम 15 मिनट तक उसको बॉयल करते हैं। तो उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें जो बॉटल है वो हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इसमें जाने के बाद बॉयलिंग वाटर में जो पानी में जाएगा ये उबलते पानी में, गर्म पानी में, तो वो फट सकता है। तो हीट रेसिस्टेंट बॉटल लेना होगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें जहाँ पर आप मान लिया सेल के लिए डाल रहे हैं किसी नुक्कड़ पर, तो उसको फिर से बॉटल को वापस लेना होगा, ये एक है प्रॉब्लम। और ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान है शीशे के बोतल में करना, इसलिए कि उसको आप फिर से स्टरलाइज कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग RTS भी बना सकते हैं घर में। अगर आपके पास स्क्वैश का बोतल रखा हुआ है तो आप कोई आपके यहाँ कोई आया गेस्ट आया है तो आप उसमें 1/4 जो है आप ले लीजिए स्क्वैश डाल लीजिए ग्लास में, और 3/4 जो है 3 hissa पानी उसमें मिला के आप उसमें पानी से चम्मच से चला के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हाईली न्यूट्रिशस हुआ। ये वही चीज़ फ्रूटी में भी है। फ्रूटी जो पैक करते हैं उसका जो पैकिंग इक्विपमेंट्स है, उसका जो पैकिंग ये है जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत कॉस्टली है। 25-30 lakh रुपए का आता है वो सिर्फ पैकिंग के लिए। चीज़ उसमें वही है जो आपको हमने बताया बनाने के लिए, वैसे ही कर सकते हैं आप। तो ये हो गया है ना। अब एक चीज़ और बताते चले हम कि ग्रीन मैंगो के बारे में हमने नहीं बताया।
1: जी जी।
0: अभी हरा आम का देखिए सीजन है, और हरा आम बहुत टूट रहा है, गिर रहा है, आंधी तूफान आना नेचुरल है, वो आता ही है इस समय में। तो उसको हरा आम के लिए भी इसी तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं पल्प को, लेकिन इसमें क्या है कि आम को छीलने के बाद उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं। अब बॉयल करने के बाद उसको जो है फिर उसको निकाल करके हाथ से बिल्कुल उसका पल्प निकाल कर उसको छान लेते हैं, और बॉयल जब हमने कर लिया है तो उसको पास्टोरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयलिंग से वो निकला है पल्प, चूँकि कड़ा पल्प रहता है कच्चे आम में। अब बॉयलिंग के बाद उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद उसको उसी तरह से प्रिजर्वेटिव हम लोग डाल देते हैं उसमें, जैसे हमने पके आम के लिए बताया, और क्वांटिटी वही रहेगी उसकी भी, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। स्क्वैश बनाने के लिए भी सीख वही विधि अपनाई जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि स्क्वैश बनाने के लिए उसमें हमने 1.5 kilo चीनी लिया था, क्योंकि आम मीठा होता है पका हुआ आम, तो कच्चे आम के लिए मुझे 2 kilo चीनी लेनी होगी, और उसमें भी सैट्रिक एसिड डालना है, क्योंकि चीनी डाल रहे हैं तो सैट्रिक एसिड उस चीनी को खट्टे मीठे में बदलने के लिए उसको सैट्रिक एसिड को डालना पड़ता है, और चीनी की सफाई के लिए भी, और उसमें जो गंदगी है वो भी निकल जाए उसके लिए भी करते हैं। और फिर उसके बाद उसको उसमें तब यह है कि ग्रीन मैंगो में हम लोग चूँकि रंग नहीं होता है उसमें, तो उसमें हरा आम का जो है एसेंस भी डालते हैं और कलर भी डालते हैं। तो इसमें कलर और एसेंस का जो परसेंटेज है उसमें 0.001% है, हल्का बिल्कुल। अब वो देखिए, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जो बाज़ार में खाने का रंग मिल रहा है, रंग जो जनरली जो हलवाई लोग यूज़ कर रहे हैं कि वो उठा के ले आते हैं रंग और डाल देते हैं, उसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे पैकेट पर कि दिस इज़ नॉट फॉर फूड पर्पस। तो उसके लिए अलग से बुश कंपनी का या और भी बहुत सी कंपनी है, तो उसका जो है तो वो रंग होता है अलग से आता है, वो खाने वाला रंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप देखिएगा कि वो अलग से आता है, 2 gram 3 gram का ही पैकेट आता है।

0: ज्यादा नहीं आता है, इसलिए कि बहुत कम पड़ता है वो, तो घर में किचन में रखने के लिए उतना ही बहुत है। तो ये रंग भी और एसेंस भी, एसेंस भी आपको अब देखिएगा कि एसेंस जो है FFB कंपनी का हम लोग यूज़ करते हैं, वो कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेंस भी 0.001% कलर डालना अगर है तो 0.001% एप्पल ग्रीन कलर डालना होगा, एप्पल ग्रीन कलर डालना है ग्रीन मैंगो के लिए। और कलर जो कलर तो राइट मैंगो में तो कलर रहता ही है, इसलिए उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया RTS स्क्वैश और मैंगो पल्प को कैसे हम पके आम का और कच्चे आम का दोनों का प्रिजर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया
1: जी। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी और विशेष जानकारी के लिए, और आशा करते हैं आम को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, सभी लोगों को ये आम फल का राजा है इसलिए काफ़ी पसंद होता है, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिकता भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे लेकर, इसके उत्पाद को लेकर क्या कुछ हम बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उत्सुकता रहती है जो आपने जानकारी दी। तो आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को इस वार्ता को सुनकर लाभ मिलेगा।
0: विशेष जानकारी के लिए आप हमारे विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, हमारा डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं तुलाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे आके भी पर्सनली मिल सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं किसानों को, और इन उद्यमी हमारे यहाँ से बहुत से उद्यमी बने हैं, काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे।
1: तो श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
8: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना? ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
9: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है।

0: और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता, और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सुजाता जी।
4: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
5: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है, वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
4: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
5: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं, तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं जैसे स्क्रब टाइफस, कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
4: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
5: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
4: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
5: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
5: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछूंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं।

0: जारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
2: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टेबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
2: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
2: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विघर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
2: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरिन की टेबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
2: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
2: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता करता है उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जाँच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं।

0: संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे। कुछ दवाइयां भी वो देंगे, तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपके पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास सिंधु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
7: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
9: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
10: 12 साल

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में। और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखे तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यह टॉपिक लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर एमपी मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्रॉल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
2: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। यह घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है, जिनमें फ्लेक्सुओसिस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगन नार्डस, सिम्बोपोगन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी, कोमल व गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
1: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
2: लेमन ग्रास भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
1: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
2: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लैटेराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
1: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जानना चाहेंगे, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए।
2: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी,

0: सिम शेखर अभी वैरायटी है, इसका जो है उपज क्या है 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नेमा, CKP25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
1: और डॉक्टर साहब अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास की कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो।
0: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25-30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
1: और डॉक्टर साहब अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
0: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
1: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
0: रोपण का कार्य वर्ष में दो बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25-30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गोमूत्र, एक भाग गोमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5-8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है
1: जी। तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
0: लेमन ग्रास शाकीय फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2-2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटास तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटास तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक

0: दो महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
1: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
0: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3-4 कटाइयों प्रतिवर्ष।
1: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
0: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45-50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
0: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग हैं लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15-20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60-70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10-15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3-4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4-5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
1: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
0: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है। तो आसवन उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए। इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45-50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है, तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या होता कि 6-7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
0: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
0: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके

0: फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
1: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं। इससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचाता है, त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी सेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
0: जी तो श्रोताओं, आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फ़ायदे हैं और इसलिए बाज़ार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। और व्यावसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फ़ायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन पर। मैं हूं अनु और स्वागत करती हूं हर रोज़ की तरह हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम आज खास विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं, धान में पोषक तत्व प्रबंधन। और इस विषय को आज हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर राजीव रक्षित। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि बीज स्थली में उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए।
3: नमस्कार किसान बंधु, जहाँ तक धान की बात है, बीज स्थली हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि सीधी तरह इसका बुआई नहीं करते धान में, हम लोगों को पता है। तो बीज स्थली में जहाँ तक की बात है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है किसी भी बीज स्थली में, उसकी क्यारियों में हम कोशिश करेंगे कि 1 kg नाइट्रोजन, जिसे हिंदी में नाइट्रोजन कहा जाता है, 1 kg पोटाश और 1 kg स्फुर या उसे फास्फोरस कहा जाता है।
0: अच्छा।
3: तो हम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसको देने की कोशिश करेंगे जब हम मिट्टी की प्रिपरेशन या फिर जब शुरुआत करेंगे, जब बीज स्थली बनाने की क्यारियों को तैयार करेंगे।
0: जी।
3: फिर जब बीज गिरने के 15 दिन बाद हम करते हैं कि उसमें 1 kg नाइट्रोजन और देने की कोशिश करेंगे, और नाइट्रोजन जो है बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और सब किसान बंधु इसी विषय की जानकारी अवश्य रखते हैं कि यूरिया जो है जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है या नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम ये पाएंगे कि बीज स्थली में या बीज गिराने के 15 दिन बाद हम 2.2 किलोग्राम यूरिया का बीज स्थली में उपनिवेशन करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन या फिर उस बीज स्थली में डालेंगे।
0: जी, तो यहाँ पर उर्वरक प्रबंधन आपने जाना, और बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब की मात्रा, यानी कि खाद की मात्रा की हम बात करते हैं, अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए खाद की इसमें?
3: अब ये जो है

0: विषय जो है आपकी, कि ये आप डिपेंड करेगा कि क्या कौन से सारे प्रभेद आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अगर हमने कहा कि अगर ऊपरी जमीन है आपकी, तो वहाँ कुछ अगर जल्द पकने वाली कुछ प्रभेद रहेंगे, तो अवश्य किसान भाई ये करेंगे कि 80, 40 और 20 के हिसाब से, मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ संकर किस्म है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, वो उन्नत मान की किस्म है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि जल्द पकने वाली प्रभेदों में 80, 40, 20 के हिसाब से करेंगे, पर जैसे ही संकर किस्मों का अगर इस्तेमाल करने लगे, तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा हम 20 केजी और बढ़ा देंगे। तो इस अनुसार अगर संकर किस्म है आपके पास, तो 100, 40 और 20 केजी के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का इस्तेमाल आप करेंगे। कई किसान ऐसे हैं जो भागलपुर या इससे जुड़े हुए जिलों में सुगंधित किस्में लगाते हैं।
1: जी।
0: सुगंधित किस्मों में आपके दो तरह के किस्में और आएंगी, एक बौनी किस्म होगी, एक हो सकती है लंबी किस्में। तो बौनी किस्मों में मूलतः हम 80, 40 और 20 केजी एनपीके के हिसाब से ही चलेंगे, पर जो अगर लंबी किस्में हैं, जिनको जिनके गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हम वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ी कमी कर देंगे और बौनी लंबी किस्मों के लिए 40, 30 और 20 केजी एनपीके का इस्तेमाल हम प्रति हेक्टेयर के मात्रा में करेंगे।
1: और इसके बाद जो अलग खाद हम देते हैं, तो उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जैसे हम ये कह सकते हैं कि अलग खादों में धान के लिए सबसे मूलतः जरूरी है आपका जिंक सल्फेट। जिंक की कमी मूलतः धान में पाई जाती है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जिंक की कमी है, और इस बात को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि धान की फसलों में कहीं जिंक की कमी ना आ जाए। तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय एवं कदवा जब करेंगे, जब कादो करेंगे उस फील्ड को, तो उसके पूर्व खेत में हम इसको मिला दें, ताकि किसी भी तरह की जिंक से जुड़ी हुई समस्याएं ना उत्पन्न हो। इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जब हम फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर किसान भाई कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो अवश्य ये कोशिश करें कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वो रोपाई के 20 से 25 दिन पहले कंपोस्ट का इस्तेमाल कर ले।
1: जी। और किन फसल चरणों में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए?
0: जहाँ तक फसल चरण की बात है, हर एक किसानों को ये पता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम एक बार में नहीं कर देते। हम कोशिश करते हैं कि जो स्पेशलाइज स्टेज है, जहाँ पर फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी जगह उसका इस्तेमाल की जाए। तो अगर फसल चरण की बात कही जाए धान में, तो नाइट्रोजन की आधी एवं पोटाशियम एवं फॉस्फोरस की पूरी मात्रा जब हम कादो के समय, तथा 1/4 नाइट्रोजन की मात्रा रोपाई के 20 से 30 दिन बाद, तथा शेष जो नाइट्रोजन बचेगी हमारे पास, वो बाली निकलने के वक्त ही हम उसका इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल कंडीशन में हम ये करें, साधारण मूलतः तो यही किया जाता है। अगर आप किसान भाई के पास ऐसी कोई प्रभेद है जो 150 दिन लेगी या 150 से ज़्यादा दिन लेगी, तो ऐसे क्षेत्र में वो नाइट्रोजन का 1/4 मात्रा रोपाई के पहले इस्तेमाल करें, दूसरा 1/4 मात्रा रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, तीसरा जो है वो 5 से 6 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, और अंतिम जो 1/4 बचेगी वो 7 से 8 सप्ताह में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस जगह, कि खड़ी फसल में नाइट्रोजन का व्यवहार करने के पूर्व खेत से आप अवश्य आपके खरपतवार जो है उसको निकाल दें, या यदि पानी का जमाव बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी निकासी कर दी जाए। इन बातों का ध्यान आप फसल के चरणों में रखिए जब आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे।
1: जी। तो आपने सुना किसान भाइयों कि जल जमाव नहीं रहना चाहिए आपके खेतों में, और आप पानी की निकासी का व्यवस्था ज़रूर रखें। अब जैव उर्वरक की बात करते हैं, तो क्या इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: अभी भारत सरकार या कई राज्य सरकार भी पारंपरिक खेती की बात कर रही है,

0: ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अवश्य ये रेकमेंड करते हैं, हम अवश्य ये किसानों को बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग करें। अच्छा। तो इनके देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि धान में आप अजोला का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, या इस्तेमाल किया भी जाता है या कुछ लोग कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो मिट्टी में नेत्रजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, वायुमंडल में जो नेत्रजन आपका है उसका इस्तेमाल, उसको खींच कर अपने पास रख लेते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं मिट्टी में। कुछ ऐसे हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु। उसके साथ साथ आप धान की उत्पादकता अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो अवश्य ही एजोला के साथ साथ कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका उदाहरण हम कह सकते हैं एजो स्पाइरिलम है, उसके अलावा नील हरित शैवाल है जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि फॉस्फोबैक्टीरिया जो फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाएगी, ऐसे बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है आज। और साथ ही साथ माइकोराइजा भी है, किसान इस माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाया जा सके। तो यही सब है कि आप रासायनिक के साथ साथ जैविक खाद का भी समेकित तरीके से इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करें ताकि धान की उत्पादकता भी बनी रहे और भविष्य में हमारी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बने रहे। जो मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास जो खाना है उसको हम इस तरह बचा के रखें ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिलते रहे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उतने अच्छे से आप सुनेंगे और इसे अपने व्यवहार में ज़रूर लाएंगे तो आप अच्छे से धान में पोषक तत्व प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों

में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करे और ध्यान दे के स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी

जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि पुराना हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है, वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड से धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है। और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है। और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीजन है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो धीमा फ्लो होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो खून आता है वो काला आ सकता है। क्या होता है कि धीमा फ्लो है तो खून जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में रुक रुक कर अंदर डार्क हो जाता है और अक्सर ये लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है। और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना, तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर PCOS जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है, तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस

उसका एक सिम्टम हो या फिर उसका ये एक साइन हो, यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो, ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफी अलग होता है, ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हैवी फ्लो भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि फिब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं, तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी दिख सकता है, और खास तौर से तब जब फ्लो रुक रुक कर आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो ये कंडीशन थोड़ी ज्यादा पेनफुल होती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक तो काला खून आता ही है, इसके अलावा बहुत ही इरेगुलर ब्लीडिंग होती है और जिसमें कि डार्क ब्लड भी हो सकता है, और कभी कभी आपको कमजोरी लगती है या फिर नौजिया लगता है। इसके अलावा आप पेशाब जाते हैं या स्टूल पास करते हैं तब भी आपको दर्द होता है। इसके अलावा आप पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो भी ये हो सकता है कि लक्षण हो एंडोमेट्रियोसिस का। और अगर आपको ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं, हर बार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न आपको नोटिस कर रहे हैं, कभी बहुत स्लो है फ्लो और कभी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, इसके अलावा डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है कि इतनी ज़्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इसे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हों, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट ख़राब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसी कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार और सुनते रहे 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से, जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर, आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
2: नमस्ते किसान भाइयों। सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है, तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला का जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सो सूखने लगती हैं। और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या वाइट फ्लाई है, इसके चलते होता है। तो इनसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है, तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए, अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यूलियोर ट्रैप है, उस क्यूलियोर ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का, जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है, उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है, जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो, या

जो हम लोग हैं उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला के फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं मतलब दोहराते हैं तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों अगर ये भी उपलब्ध है आपको नहीं है, तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है उसकी जो है 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करें, तो इससे जो है कि आपको इसे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और कीट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झांका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल भ्रिंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल भ्रिंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं, और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो ज़मीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो जमीन से सटे हुए रहता है तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाता है, और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो ख़राब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है
उसे 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से

ये जो लाल भृंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी। तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट लगते हैं, तो भिंडी में सबसे ज़्यादा जो है आप देखते होंगे कि जो उसका जो फल है, तो फल को आप देखते होंगे कि उसमें छोटा सा पहले छिद्र करता है, फिर बाद में क्या होता है कि आपके भिंडी को टेढ़े मेढ़े कर देता है वो। तो ये फल एवं प्ररोह बेधक कीट इसको बोलते हैं। तो ये इसके चलते क्या होता है, ये आपका दो तरह से क्षति करता है। एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, तो ये इसके जो शिशु है उसी में उसके बढ़ने वाला पोर्शन में ही उसको काट देता है। और काट देने के बाद क्या होता है कि जो जो उसको बढ़ने वाला जो कली होता है वो चूँकि उसी को काट देता है, तो पुनः जो है कि नीचे से या बगल से कली निकलती है, जिसके चलते जो है कि उत्पादन पे बहुत मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये है शुरुआती कंडीशन में, और बाद की कंडीशन में जो है कि आपके फल को ये टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है, वो जो भाग है ऊपरी वाला भाग, वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है, क्योंकि उसको काट देते हैं इसके शिशु। तो अब इससे हम लोग कैसे इसका बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपके अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंकें, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें। तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो दवा कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये इमामेक्टिन बेंजोएट पुनः जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली के तरह होता है। तो पहले इसको हम लोग को घुला लेना है, और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है, और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो 1 रुपये वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए, और पुनः उसको अच्छी ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय 4 बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC। यह एक लिक्विड के फॉर्म में ये कीटनाशी पाया जाता है, और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर सकते, इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसीलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोजम का जो है 35 AC का 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोजम 75 AC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो आधा ml प्रति लीटर पानी में, साथ में हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है। स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से, ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है, और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है।
इसलिए स्टिकर आप जरूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसान भाइयों पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या हो

0: है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो वेन होता है वो पीला दिखता है, और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी का जो पत्ती है वो चितकावर टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है, और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है। तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है, और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब किसी चीज़ से काटिए, और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है, उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूँकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे, तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है, और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है, और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है, और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सुन रहे हैं।

हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वहां कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर लें और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है।

0: आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
1: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवंबर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। और बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जल जमाव के कारण गेहूँ या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊंचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपजशील धान के बौने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहाँ सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
0: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य के किरणों की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपजशील प्रजातियों में गौतम, ब्रह्मचर्या, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है। तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपजशील किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियां खड़ी तथा हरी होती है। इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि, परिपक्वता अवधि 170 से 175 दिन की होती है। और दूसरी जो प्रभेद है वह रिचारिया है। यह बौना प्रभेद 155 से 160 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज क्षमता 55 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा प्रभेद सरोज है। यह बौना प्रभेद बोरों में 160 से 170 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं। इसकी उपज लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें होंगी अनुशंसित किस्मों की, अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे। कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
1: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में एक हेक्टेयर के 10वें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरों से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटे या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबो कर रखने के बाद नमी वाले बोरे में एक दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेष्ठ होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने

0: बताई। लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं, किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
1: बोरो के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है, और बीज दर हम लोग को एक हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर एक या एक से दो बिचड़े रोपने चाहिए। पौधे से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक वर्ग मीटर में 35 से 40 मीटर झूर रखें। रोपनी के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएं तो वहीं पुनः रोपनी कर देना चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफोर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफोर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25 से 30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं सस्क्रियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% इसी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5 से 7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बालू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है, बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधिक कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधिक कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल के भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13 से 14% नमी तक सुखाकर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें पौधों की सिंचाई के समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियाँ पर एकत्र उसको गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं, प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचा जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान किसानों के बीच हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज की किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है। लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है, तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहां जल जमाव की समस्या रहती है, जहां हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं उसकी खेती करके, बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, तो किसान भाइयों, बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: Hershey.
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
6: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
7: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
9: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट

0: जिसको हम सीधी बुवाई बोलते हैं, एक होती है ट्रांसप्लांटिंग जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं, उसके बाद होती है श्री विधि जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं, और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुवाई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमा हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुवाई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते।
1: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
0: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुवाई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुवाई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुवाई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुवाई दो तरीके के होती हैं, एक तो हमारी सूखी बुवाई होती है और एक गीली बुवाई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुवाई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुवाई करते हैं, अपने धान की बुवाई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुवाई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लाविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं, और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुवाई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुवाई करना कैसे है, हम सीधी बुवाई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुवाई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारे रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं, और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुवाई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके, और उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारे मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
0: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया हमने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को हमने पिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में ला

लगाते हैं तो वो मेन लाइन में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं, तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लाइन के लिए। इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब, तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया।

टेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि, तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन, तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी, तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरिगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारे श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है,
स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं हम

0: क्या करते हैं, अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे, तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए, आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियाँ होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीक की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है, अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पर पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पर, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका नेचुरल जैसा

0: ही रहता है, आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डेपोक नर्सरी, तो ये डेपोक नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगे, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से, तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोक नर्सरी। तो ये डेपोक नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डेपोक नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजुअली डेपोक नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारी।
1: मैम, तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी

0: कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहुउपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
4: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
5: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुउपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बेसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बेसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बेसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बेसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
4: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
5: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बेसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफूंद का जो माइसेलिया होता है या फफूंद की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया, फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है, और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बेसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बेसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ

0: प्रमोशन भी करता है, तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है
0: जी।
1: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बेसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बेसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बेसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बेसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बेसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बेसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बेसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बेसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहाँ पर आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बेसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बेसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बेसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। अब अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बेसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सिडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं,

0: तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं। तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है, ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बेसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बेसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं, बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो ज़रूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइज़र दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं और वो सभी जगह पर अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बेसिलस का इस्तेमाल करना और बाज़ार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बेसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव नियंत्रक कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े कितनी भी बारिश क्यों ना हो वो वहाँ पर थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज़्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये उपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो कीटनाशी के बारे में, यानी कि नैनो पेस्टिसाइड के बारे में। ये क्या है और आजकल क्यों कृषि विशेषज्ञ विशेष सलाह दे रहे हैं कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे समय से किसान भाई बहन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो आखिर अंतर क्या है नैनो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: जी, थैंक यू मैम।
5: सर, आपसे सबसे पहला सवाल, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कि नैनो पेस्टिसाइड यानी कि नैनो कीटनाशी क्या है?
7: नैनो पेस्टिसाइड, जिसको कि नैनो कीटनाशी भी बोलते हैं, यह उन्नत इंजीनियरिंग कृत फार्मूलेशन है जो नैनो तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है। और इसमें जो कीटनाशक तत्वों का आकार जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में समाहित रहता है, या डायरेक्ट इसमें या प्रत्यक्ष रूप से नैनो कण को यूज करते हैं, और साथ ही साथ यह जो है ना कुशल एवं लक्षित होता है, उसे नैनो कीटनाशी कहा जाता है। जैसे नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऑक्साइड इत्यादि इनके उदाहरण माने जाते हैं।
5: ये इतना ज़रूरी क्यों है?
7: जरूरी अभी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई, जैसे पहले परंपरागत जो कीटनाशी होते थे उसमें कुछ बहुत सारे महत्व बिंदु है जिसको कि इसमें नहीं समाहित किया गया है, जैसे कि उपयोग करने का तरीका, उसका मात्रा, यह सब इसमें कम हो गया है। तो जैसे मुख्य सब इनकी विशेषताएं हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पर काम करता है, या जहाँ पे चाहिए जितना उतना ही यह काम करता है। इसका बड़ा मुख्य पहलू है कि नैनो कीटनाशी का। साथ ही साथ यह अत्यधिक कुशल होते हैं, जिसको कि कह सकते हैं कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं, कि जो परंपरागत जो हम कीटनाशी यूज करते थे उसके तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसका जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावश्यक उपयोग जो आने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जो होती थी इसमें कम हो गया है, परंपरागत में ज़्यादा होती थी। और अगर मात्रा कम होगा तो यह पर्यावरण पर भी इसका जो है न प्रभाव जो है न पॉजिटिव होगा या निगेटिव कम होगा।

0: और खेतों में नैनो कीटनाशी का अवशेष की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रारंभ में ही इसकी मात्रा कम होती है। और जब ये नियंत्रित जो करते हैं वह पूरा लक्ष्य बेस्ड काम करते हैं, और उपयोग में जो मात्रा होती है बहुत कम, लगभग जो है ना जो परंपरागत कीटनाशी थे उसका लगभग 10% अप्रॉक्स हम इसमें यूज करते हैं, और जो है यह धीरे धीरे काम करता है जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है और इसमें अवशिष्ट बचने का चांस कम हो जाते हैं। और निश्चित तौर पे है कि जब हम चीज़ को कम उपयोग करेंगे, कम खर्च होगा, तो इससे जो है ना किसान भाई का जो खर्च आता था कम हो जाते हैं, और जो है ना जो प्रतिरोधकता जो था कि बहुत सारे कीट जो है ना जो कीटनाशी थे उससे प्रतिरोधी हो गए थे, तो इसमें जो है ना प्रतिरोधकता जो है यह भी कम है नैनो कीटनाशी में, और इससे कृषि उपज को बढ़ाने में ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसका उपयोग टारगेट वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ यह हम स्थिति परिस्थिति और बुद्धिमता से नैनो कीटनाशी का उपयोग करते हैं।
1: जैसे कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल टारगेटेड काम करता है और बहुत कम मात्रा में बेहतर काम करता है, तो सर आप ये बताइए कि काम कैसे करता है नैनो पेस्टिसाइड?
0: जो कीटनाशी होता है यह सर्वप्रथम जब हम उस पर जहाँ चाहिए जब कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सर्वप्रथम होता है कि कीट के जो शरीर का हिस्सा है, जो बॉडी का पार्ट है, उससे जो है ना चिपकता है, और धीरे धीरे उनके बॉडी पे जो क्यूटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं इन कीड़ों पे, उसको जो है ना उससे इंट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे कीटों के शरीर के अंदर जाता है, और जो कि जो शरीर जो कीट के शरीर में जो पानी रहता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंतोगत्वा शरीर में डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि वह जो है ना कीट मरने लगता है, क्योंकि जो हम कीटनाशी का जो प्रयोग करते हैं ना इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो हम अपने सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो और उसका सतही क्षेत्रफल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कार्य क्षमता सतही क्षेत्रफल का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और इसीलिए जो है ना इसका यह जो है ना कि वह टारगेटेड होते हुए काम करते हैं। तो ओवर ऑल अगर आप हम देखें तो यह क्या करता है कि जब हम डालते हैं तो लक्ष्य पे काम करता है, या पत्तियों के सतह पे जो कि चिपक जाते हैं तो वहाँ भी इंसेक्ट जब बैठ जाते हैं तो उससे उसका जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना सक्रिय तत्व इंसेक्ट के शरीर में जाते हैं और उसका शारीरिक क्रियाएं बाधित होती है और अंतोगत्वा उनका मृत्यु होने लगता है।
1: जी सर, आपने ये तो बताया कि नैनो पेस्टिसाइड काम कैसे करता है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैनो पेस्टिसाइड बनाया कैसे जाता है?
0: नैनो जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है यह मुख्यतः दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष नैनो कण का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ धातुएं जैसे नैनो जिंक ऑक्साइड है, तो आप जिंक ऑक्साइड को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही लेके उसको जो है ना छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो है ना कीट जो होते हैं मरने लगते हैं, तो यह प्रत्यक्ष नैनो कणों का उपयोग है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो है ना नैनो इनकेप्सुलेशन करते हैं, नैनो का कण लेते हैं, उसके अंदर जो कीटनाशी होता है परंपरागत कीटनाशी होता है उसको उसके अंदर में कैप्सूल की तरह रखते हैं, तो इसका क्या होता है कि कैप्सूल में बंद हो जाता है, तो इससे कीटनाशक जो है ना जो निकलता है कैप्सूल से धीरे धीरे निकलता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और कभी कभी जो है ना हम लोग कीटनाशक को नैनो इमल्सन के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ हुआ जैसे तेल वगैरह में नैनो के रूप में यूज करते हैं, जो सक्रिय मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जिससे कि जो है ना मिल के मुख्य सक्रिय तत्व और जो नैनो कण होते हैं या कीटनाशक को के तरह काम करते हैं, और जिससे कि अंतोगत्वा कीट का मृत्यु हो जाता है।
1: सर, अब आप ये बताइए कि नैनो पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं?
0: मुख्यतः

0: जो है कीट नैनो कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक रूप में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें हम कार्बनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के तेल होते हैं और वह उसके लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है, तो उसको लेके हम यूज करते हैं। दूसरा है कि अकार्बनिक के रूप में, जैसे कि मतलब अकार्बनिक धातु के जो है ना जो होते हैं उसको डायरेक्ट हम जो है ना नैनोकन बनाते हैं। नैनोकन बनाने का मतलब हुआ कि उसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में लाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं और वह जो है ना धातु के रूप में होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, जैसे नैनो सिल्वर हुआ, तो यह जो है ना उसमें बहुलता से कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है और वह प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है जहाँ पे उसको मारना चाहिए।
1: जी सर, तो अभी आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और जब नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो ऐसे भी हम जब आम कीटनाशकों की भी बात करते हैं तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वक्त भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, यहाँ मुख्य बात यह है कि यह जो हम पहले परंपरागत कीटनाशी यूज करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते थे, तो मात्रा पे ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो परंपरागत है उसका दसवां हिस्सा ही इसमें हो जाता है, तो दसवां हिस्सा से मतलब जितना ज़रूरी हो उतना ही जो है ना इसका जो है ना उपयोग करें। दूसरी बात है कि जो हवा का जो वेग है, डायरेक्शन है, जो उसका बहने का जो रुख है, उसको देखते हुए जो है ना किसान भाई को इसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो है ना जब आप नैनो कीटनाशी यूज करते हैं तो मास्क का ज़रूर यूज करें, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इवन सूक्ष्म होता है और खुली आँखें के द्वारा दिख नहीं पाता और पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया, तो इससे हार्म होने का भी जो है ना विपरीत हेल्थ जो अपना स्वास्थ्य है उस पर जो है ना विपरीत प्रभाव पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए जो है ना मास्क का भी ज़रूर यूज करना चाहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका उपयोग करें। और मुख्यतः जो है इसका उपयोग जैसे हम पत्ते पे स्प्रे करके करना अच्छा माना जाता है, या दूसरा जहाँ पे देखें कि जो उसका व्यवहार जो होता है कीटों का, जो उसका एक्टिव फेज होता है जहाँ व्यवहार होता है लार्वा वगैरह जो है ना, वहाँ अगर कीट नैनो कीटनाशक का उपयोग करें तो इस तरह जो है ना बहुत कारगर माना जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका कि ध्यान रख के ही किसान भाइयों का नैनो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, नैनो हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए।
1: यानी कि हवा का रुख आप विशेष रूप से ध्यान रखें और जी, अनुशंसित मात्रा है।
0: जी जी जी जी।
1: और मास्क का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया तो परेशानी हो सकती है।
0: जी,
1: तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें, और उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी मिट्टी का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब

0: चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
6: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
6: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती हैं तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ ज़रूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से काम कम ज़रूरी हैं जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये ज़रूरी है, तो कुछ जो ज़रूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है, इससे आपका वक्त ज़ाया

नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकालें। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे। इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना ज़रूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि घर के लोग समझें, ख़ास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए। किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सकें। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं, अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं, और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझे और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व

अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए ज़रूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र या फिर जिस

0: सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी। तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कराती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के, अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं। इस बात

का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाह कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर लें और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और आज एक बार फिर एक खास विषय लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। हम बात कर रहे हैं अजोला की और साथ ही इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप सभी को बताई जाएंगी जो किसान भाइयों के लिए, खेत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज हम बात करेंगे खेती, पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता के बारे में, साथ ही उत्पादन और प्रयोग विधि, आप कैसे अजोला का करेंगे इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा, मृदा विज्ञान विभाग बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अजोला के बारे में बताएं।
2: एक्चुअली अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिनके पत्तियों में एनाविना अजोली नाम का एक नील हरी शैवाल पाया जाता है। भारत के कई भूभागों में इसका उपयोग पशु आहार, मानव आहार, जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में किया जाता है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण के लिए भी किया जाता है।
0: जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो भारत में अजोला की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं एवं कहां कहां मिल सकती है, साथ ही बिहार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है?
2: देखिए, मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो अजोला की जो कि पाई जाती हैं। उसमें है अजोला कैरोलिनियाना, अजोला फेलिकुलाइड्स, अजोला मैक्सिकाना, अजोला माइक्रोफिला, अजोला पिन्नाटा, अजोला रुब्रा। लेकिन देखिए, पहले अजोला निलोटिका भी पाया जाता था, लेकिन अब अजोला निलोटिका सामान्यता नहीं मिलता है। तो ये जो 6 प्रजातियां हैं, ये 6 प्रजाति हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। भारतवर्ष क्या कहिए कि विश्व में पाई जाती है, यही 6 प्रजाति मुख्य रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है। और जहां तक बात है बिहार की, तो यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह शोध करके देखा है कि यहां के वातावरण के हिसाब से जो अजोला माइक्रोफिला है यह सबसे बढ़िया है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है किसी 10-15 दिन अजोला कैरोलिनियाना बहुत अच्छा कर जाए, अगले 10-15 दिन हो सकता है रुब्रा अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अजोला माइक्रोफिला का सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ एक जो लोकल कलेक्शन है यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का BAUAS1, वह भी बहुत बढ़िया ये परफॉर्म करता है, खास करके माइक्रोफिला के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का देखा गया है।
0: जी, पोषक मान क्या है अजोला का?
2: देखिए, अब एक चीज है कि अजोला, मैंने कहा

0: ही कि उच्च पोषक मान वाला है। इसमें 25-35% प्रोटीन है। अब देखिए 25-35% प्रोटीन है, यानी कह लीजिए कि अंडा, मछली, मुर्गा, इस सबसे भी कुछ मामले में ये ज्यादा प्रोटीन वाला है, तो इसमें 25-35% प्रोटीन पाया जाता है। जहां तक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 4-5% तक पाया जाता है। फॉस्फोरस भी इसमें 0.85% के आसपास पाया जाता है। पोटास की बात करें तो पोटास आपको 2.5% से 4.5% के बीच में इसमें पोटास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे आप विटामिन B12 की बात करें तो 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है। कैल्शियम भी 67 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी 4-3 मिलीग्राम पाया जाता है। गंधक भी पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम। जस्ता भी पाया जाता है 4.1 मिलीग्राम। लोहा की बात करें तो 7.3 मिलीग्राम पाया जाता है। तांबा इसमें 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीज 102 मिलीग्राम पाया जाता है। सोडियम भी 0.26 मिलीग्राम पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें लगभग लगभग जो हमारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न कहते हैं।
1: जी, अगर अजोला का प्रयोग किसान भाई खेती में करते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें?
0: देखिए ऐसा है, इसका प्रयोग खेती में आज से नहीं होता है, इसका प्रयोग काफी पहले से किया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो दूसरे भागों में था, विश्व के दूसरे भागों में हम कहें तो ज्यादा बढ़िया है, उसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता था, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चूंकि हमने बताया कि इसके पत्ती में नीलहरी शैवाल पाया जाता है, तो ये लोग अभी यही करते थे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इसमें फायदा होता है, नाइट्रोजन की बचत होती है, इसी के लिए करता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने शोध करके इस पर टेक्नोलॉजी भी रिलीज किया है कि हम यदि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा यदि आधी कर दें, लेकिन हम इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें, तो हम देखे हैं कि हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग करके हम 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटास जो हम धान में देते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शोध करके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जो ये प्याज है, खास करके खरीफ प्याज, बिहार में इसका काफी क्षेत्रफल है, तो ये जो खरीफ प्याज है, खरीफ प्याज सड़ता बहुत है, तो यदि अजोला की सिर्फ आप मल्चिंग कर दीजिए तो मल्चिंग करने के बाद यह देखा गया है कि इसमें इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी सड़ता कम है, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो यह सारी चीजें यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने यह देखा है कि यदि हम इसका प्रयोग प्याज में करते हैं तो सड़ता कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़िया होता है। धान में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रिकमेंडेड अनुशंसित नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा है वह भी आधी बच जाती है। यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग न करें, यदि डुअल क्रॉपिंग करें धान के साथ, तब भी हमारे उत्पादन में खास करके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास में बचत होती है, यह चीज हम लोगों ने देखा है।
1: जी, अगर पशुपालन की हम बात करें तो क्या पशुपालन में अजोला का प्रयोग हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में बताइए।
0: बड़ा बढ़िया है, बड़ा आपने समचीन प्रश्न पूछा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वह खेती में तो कम प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी पशुपालन में इसका जरूर प्रयोग कर रहे हैं। जो पशु पोषण है, पशु को जो हम चारा देते हैं, चारा मिल नहीं पा रहा है, और चारा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ यदि चारा मिलता भी है तो चारा में उतना पोषक मान नहीं होता जितना अजोला में। यदि हम देखें अजोला को तो 100 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हम सिर्फ अजोला को पैदा कर सकते हैं यदि सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उतना कोई भी चारा आपको उत्पादन करके नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो ज्यादा पोषक मान वाला है वह ज्यादा मात्रा में यह उत्पादन करके आपको दे सकता है। अब यह बात है कि पशु पोषण में, यह तो हम लोगों ने यहां शोध करके भी देखा था, जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं वो भी हमारे साथ थे इस प्रयोग में, तो यह करके हम लोगों ने देखा कि यदि हम 1 kg सुबह और 1 kg शाम यदि हम जानवर को देते हैं खाने के लिए, जो भी आप दाना चारा देते हैं उसी के साथ मिला करके 1 kg सुबह में 1 kg शाम में देते हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 8-15.6% तक, यानी 8-16% तक लगभग हमारा दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिर्फ यदि 1 kg सुबह 1 kg शाम यदि हम खिला देते हैं, और आपका मान लीजिए गाय है वो 10 लीटर दे रही है, तो 10 लीटर के स्थान पर यदि आपको 1.5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है तो सोचिए कि कितना फायदा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यदि 300 लीटर दूध यदि उत्पादन कर रहा है तो उसके हिसाब से किसान को काफी हजार

0: हजारों रुपए का फायदा उसको हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही साथ देखिए इसका आप जो उपयोग है वह आपको मुर्गी पालन में भी कर सकते हैं, बकरी पालन में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि बकरी पालन में जब आप करेंगे उसमें ज्यादा मात्रा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देने से 10% से ऊपर यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको उसको डिसेंट्री होने की संभावना होती है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। मुर्गी में तो आप 25% तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितना आप दाना दे रहे हैं उसका 25% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, बकरी में नहीं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं के पोषण के लिए आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में क्या अजोला का प्रयोग किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में ही इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि केचुआ की तेजी से आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसकी ब्रीडिंग जल्दी से करना चाहते हैं, उसमें भी अजोला आपका बड़ा उपयोगी है। कारण यह है कि अभी हमने बताया कि इसके पोषक मान बहुत अच्छे हैं, तो अब केचुआ भी इसको खा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है बढ़िया उसका वृद्धि होता है। इवन 200 से 250% तक 3 महीने में उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, यह हम लोगों ने शोध करके देखा है। अब प्रश्न उठता है कि जो समृद्धिकरण है क्यों हो जाता है? अब अभी आपने को हमने बताया कि नाइट्रोजन 4.5% से 5.5% है, कहीं से केचुआ बाहर से तो पोषक मान लाएगा नहीं। अब इसमें चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है इसीलिए उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हम 25% तक उसमें मिला रहे हैं, तो 25% तक यदि मिला रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि कम से कम 1/4 तो मामला उसमें जा ही रहा है, तो नाइट्रोजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। पोटास ही हमने बताया 2.5 से लेकर 4.5% तक है, तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होगी, या अन्य पोषक तत्व ही जो इसमें है वो पोषक तत्व के कारण आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वह गुणवत्तापूर्ण बनेगा। और इतना ही नहीं, केचुए की वृद्धि विकास यह भी बढ़िया होगा, तो इसके समृद्धिकरण में भी आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। अजोला की उत्पादन विधि के बारे में थोड़ा बताएं।
0: अब जहां तक अजोला के उत्पादन विधि की बात है, तो यदि आप ये पशुपालन के लिए करते हैं, तो पशुपालन के लिए कर रहे हैं तो जो आप बगल में जो फार्म है जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर गड्ढा आप बना लें। गड्ढा ऐसा है कि आप 2×2 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2×1 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2.25×1.5 मीटर का भी बना सकते हैं। हाँ, गहराई इसका 30 सेंटीमीटर से लेकर के 0.5 मीटर तक गहराई रखें। अब क्या है कि जो गड्ढा आपने बना लिया तो गड्ढे के नीचे कोई पॉलीथीन बिछा दीजिए, जैसे पानी रिसे नहीं, उसका कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर आप उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं। यदि आपने 30 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आप कम मिट्टी की ऊंचाई रखेंगे, यदि 0.5 मीटर का रखे हुए हैं तो मिट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं। तो अब आपने मिट्टी कर दिया, इसके ऊपर ये जो है आप 2 से 4 इंच कम से कम पानी रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए, तो वह आपने वहां पर पानी डाल दिया। जब पानी डालेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां झाग वाग होगा, तो जो भी आपके पास तांबे की या प्लास्टिक की जो भी जाली रखते हैं तो उसके जो स्कम है, उसके जो झाग है, उसको आप चाल करके वहां से हटा दिए। हटा देने के बाद उसमें जो है आपको ये डाल देना है, क्या कहते हैं, अजोला। तो अजोला को कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में यूज करते हैं तो उसमें कीड़े की भी समस्या आती है, तब आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है। लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, जो आप पानी डाले हैं उस पानी में गोबर भी मिलाया जा सकता है, मिलाया जाता है, जो एक आपका स्क्वायर मीटर में है 1 से 1.5 kg जो गोबर है उसको पानी में 10-15 लीटर पानी में घोल करके, जो बालू चालने वाला चलनी है उस चलनी से चाल करके उस स्लरी को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप गोबर मिलाते हैं तो बहुत सारा जानवर खाने में नाटक करता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तब भी आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, वहां पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे डालेंगे भैया? तो इसमें आप ये कीजिए कि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए, और उसमें 0.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाइए, और इसको मिला करके जो उसका 5 ग्राम है, 10 ग्राम भी कर सकते हैं लेकिन 5 ग्राम अनुशंसित है, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए, तो 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें डालते रहें हफ्ता 10 दिन के बाद। तो आप इस ढंग से करेंगे। कारण ये है, जो अजोला है उसको फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, तो जो फास्फोरस का रिक्वायरमेंट है वह उसको मिल रहा है, और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भैया इतना ज्यादा यदि हमको अजोला वहां पर चाहिए धान के लिए

0: वहां पर हम क्या करेंगे। तो देखिए वहां पर आपको करना यह है कि यदि हरी खाद के लिए करते हैं तो खेत में ही क्यारी बना लीजिए, वहां 10 मीटर × 2 मीटर का या 10 मीटर × 1 मीटर का क्यारी बना लीजिए। अब यह क्यारी बना करके उसमें वही गोबर डाल करके, गोबर का घोल डाल करके, और उसमें आप अजोला डाल करके और उसके बाद उसकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डुअल क्रॉपिंग के लिए करते हैं, जैसे धान का और अजोला का एक ही साथ वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो वहां पर जितना आप ग्रीन मैन्योरिंग में डालते हैं उसका 1/10 हिस्सा ही वहां पर आप प्रयोग कीजिए। जब धान आपको 5-7 दिन 10 दिन का हो गया रोपा हुआ, तो उसी में पानी थोड़ा सा 2-4 इंच जरूर रहना चाहिए, उसमें अजोला आपने छिड़क दिया, और जितना आपने फॉस्फोरस डाला था वो कम से कम 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा दीजिए, और उसकी मात्रा को बढ़ा करके आपने डाल दिया, और 15 से 21 दिन तक जो पानी का स्तर है 2 से 4 इंच आप बरकरार करके रखेंगे, तो देखेंगे कि पूरा खेत अजोला से भर गया। अब उसके बाद पानी के स्तर को कम कर दीजिए, अब पानी के स्तर को कम करके छोड़ देंगे तो वह जितना अजोला है वह आपके मिट्टी को पकड़ लेगा, और उसके बाद वह खुद वहां पर ये खत्म हो करके वो हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था, कि जब आप अजोला पैदा कर रहे हैं पशु के लिए, तो वहां पर हरेक 15-20 दिन के बाद आप 1/3 पानी को जरूर निकालते रहिए, नए पानी से उसको प्रतिस्थापित करते रहिए, और जब मिट्टी काली हो जाए तो अब उसकी स्थिति में आप मिट्टी को हटा करके, फिर जब काली मिट्टी हो गई तो फिर नई मिट्टी डालना पड़ेगा, ये करेंगे तभी आपका अजोला चलेगा। तो ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों को आप जान करके अजोला का उत्पादन करके अपने पशुपालन में भी फायदा कमा सकते हैं, खेती में फायदा कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन फिर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सबौर में आइए, हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, यहाँ आकर के सीखें और जरूर इसका उपयोग करें।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता, उत्पादन और प्रयोग विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी, बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में

0: सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है घाव करे गंभीर, तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद अनु।
3: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
4: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है।
3: जी,
4: मिर्च पर पाले का असर ज़्यादा होता है, इसलिए जहाँ पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। 1 हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु

0: से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
1: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थीरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए

0: रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए। दाय मीठे 3 EC का 0.1 ml प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
1: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज की वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
12: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
11: जी।
12: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
11: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से

0: अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में।
0: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए, इत्यादि ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया, लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना
1: है? महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए, और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
0: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फ़ायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए, और हाँ, हमारे यहाँ 90.8 FM

0: ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 एफएम ग्रीन को दिया, इसके लिए एफएम ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेक अनेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब?

0: तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहाँ के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगीं और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन सी,

0: सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
1: सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
0: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
1: यस। साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे

0: से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हाँ हूँ कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह जॉन्सी, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू
3: हाँ
4: सू अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
3: जॉन से

0: थी वो। सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था।

0: सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जोंसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जोंसी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्स।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्स, मैंने देखा।
1: देखो अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: हाँ, हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
1: ओ गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
2: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी

0: मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: हाँ। उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे। हाँ या ना?
1: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
6: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ

0: लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी की BPT 5204 कि नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें। वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु

यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वह कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आरजे अनु। आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आज एक खास विषय और हम लेकर आए हैं। जी हां, सब्जियों की बात करें तो सब्जी जो है कहा जाता है कि अगर आप शुद्ध और शाकाहारी हैं तो आप सब्जियां खाइए, ये आपको स्वस्थ रखती हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो आज हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, अगर हमारे ये सब्जी रोग विरोधी हों तो ज़रूरी है कि उसमें कोई कीट और कीड़े ना लगे हों। तो आज हम बात करेंगे अगर हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियों की, और सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या आपको दिख रही है तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। और साथ ही आज आप इसके बचाव के बारे में भी जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा हमारा आज का एक कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी। मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंटोमोलॉजी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार जी। नमस्कार
0: सर। हम बात कर रहे हैं आज सूत्रकृमि की, सब्जियों में ये समस्या अक्सर देखा जाता है, हमारे किसान भाई जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत है सब्जियों के देख रेख में, पौधे लगाने की, और ये सूत्रकृमि उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को सब्जियों के महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: हाँ, जैसा कि आपने बताया कि सब्जियों में पौष्टिक तत्व अन्य किसी खाद्य आहार की अपेक्षा अधिक होते हैं। हमारे राज्य में मौसम के हिसाब से प्राय हर प्रकार की सब्जी उगाई जाती है। अब चूंकि सब्जियों की खेती सिंचित एवं अधिक उर्वरक भूमि में की जाती है, इसीलिए इन पर विभिन्न कीट एवं रोग कारकों के साथ साथ सूत्रकृमियों का प्रकोप भी बहुत अधिक होता है।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये बहुत ही लाभदायक हैं, पौष्टिक गुण हैं इसमें। और सूत्रकृमि की जहाँ तक बात है तो हम सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि सूत्रकृमि क्या है ये?
2: सूत्रकृमि दरअसल बहुत छोटे, पतले और खंड रहित धागे के समान जीव होते हैं, बहुत छोटे प्रकार के कृमि होते हैं जिनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते।
0: अच्छा,
2: इसलिए इनको अदृश्य शत्रु भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अपनी आंखों से देखना संभव नहीं है।
0: मतलब ये बहुत ही छोटे साइज के
2: जी,
0: होते हैं।
2: ये आकार में बहुत ही 2 मिलीमीटर से भी कम आकार के होते हैं। पौधे परजीवी सूत्रकृमि जमीन के अंदर से नुकसान पहुंचाकर पूरी फसल को, जमीन के अंदर जो फसल के पोषक तत्व हैं उनका चूषण करके, उनका शोषण करके उसी पर जीवित रहते हैं।
0: तो ये टहनियों पर नहीं, मतलब जमीन के अंदर ही?
2: अधिकांश सूत्रकृमि जमीन के अंदर ही रहते हैं।
0: अच्छा,
2: कुछ प्रजातियां हैं जो पत्तियों पर भी,
0: टहनियों पर, पत्तियों पर। जी, तो ये सूत्रकृमि बहुत ही सूक्ष्म, यूं कहें कि साइज में है और इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको लेंस की भी जरूरत पड़ सकती है।
2: जी, इनको विशेष प्रकार के जो माइक्रोस्कोप होते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, इनको उन्हीं की सहायता से देखना संभव है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक प्रकार के कीड़े हैं जो हमारी सब्जियों को हानि पहुंचाते हैं, ज़मीन के अंदर ही जड़ से उनकी पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सब्जी है वो ख़राब हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इन

0: प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन से सूत्रकृमि जो है हमारी सब्जियों को हानि पहुंचाते हैं?
1: दरअसल सूत्रकृमियों की कई प्रजातियां हैं जो सब्जियों में लगती हैं, जैसे रूट नॉट निमेटोड, जिसको मूल मिलेडोगाइनिन कोगनेटा मिनोडोगाइनिन जावानिका, इसकी दो प्रजातियां हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रजातियां हैं, जिस प्रटाइलिंकस रोटाइलिंकस टाइलेंकोरियंकस होप्लोलेमस हेलिकोटाइलेंकस, ये कुछ प्रजातियां हैं। पर मुख्यतः सब्जियों का पर जो सूत्रकृमि पाया जाता है वो रूट नॉट निमेटोड होता है, जिसे मूल ग्रंथि सूत्रकृमि भी कहते हैं या जड़ गांठ सूत्रकृमि भी कहते हैं। यही सबसे ज्यादा प्राय सब्जियों में नुकसान पहुंचाता है
0: जी।
1: ये जो रोग होता है ये मिलोडोगाइन नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है। ये रोग प्राय उन सभी क्षेत्रों में व्याप्त है जहां सब्जी उगाई जाती है। अगर मिलोडोगाइनी नामक सूत्रकृमि नर्सरी में ही मौजूद हो तो वहीं पर पौधों की जड़ों में घुस जाता है तथा ऐसे पौधों को जब मुख्य खेत में रोपा जाता है तो इससे भारी क्षति होती है।
0: तो यहाँ पर आपने जाना कि कितने प्रकार के और कितने प्रजातियों में ये पाए जाते हैं और कैसे ये हानि पहुँचाते हैं सब्जियों को। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ कि लक्षण की, अगर देखा जाए हमारी सब्जियों में ये सूत्रकृमियों ने हानि पहुँचा रहे हैं, तो क्या कुछ लक्षण हमें दिखते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये सूत्रकृमि हमारे सब्जियों में लग चुका है, कुछ लक्षण होंगे?
1: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। दरअसल जो रोग कीटों के द्वारा जो नुकसान होता है फसलों में, या विषाणुओं द्वारा या जीवाणुओं द्वारा जो नुकसान होता है, उस उनके नुकसान में एक विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं
0: जी।
1: पर सूत्रकृमि की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ विशेष लक्षण नहीं दिखते हैं। रोग के प्रमुख लक्षणों में अगर हम जड़गांठ रोग की बात करें तो जैसा कि इसका नाम है, इस रोग के मुख्य लक्षण की ओर संकेत देता है कि इसमें रोगग्रस्त पौधों की जड़ों के में विभिन्न प्रकार की मोटी मोटी गांठें बन जाएंगी और इन गांठों के भीतर सूत्रकृमि रहते हैं और जड़ों द्वारा पौधे के लिए अर्जित किए गए जल व भोजन पर अपना निर्वाह करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा रोगीला पौधा स्वस्थ पौधों की तुलना में कमजोर तथा छोटा रह जाता है। रोग का प्रकोप यदि अधिक होने पर पत्तियां गिर जाती हैं तथा फल बहुत छोटे व कम मात्रा में लगते हैं
0: जी।
1: अगर रोगी पौधों को हम उखाड़ने पर ये देखें तो ये बड़े आसानी से उखड़ जाएंगे तथा जड़ों पर गोल आकार की बड़ी बड़ी गांठें आपको नजर आएंगी। ये सूत्रकृमि प्राय सभी प्रकार की सब्जियों पर आक्रामक है। हमारे खेतों में उगने वाले खरपतवारों पर भी ये सूत्रकृमि जिंदा रह सकता है। ये सूत्रकृमि स्वयं तो नुकसान करता ही है, साथ साथ अन्य प्रकार की बीमारियां जो विभिन्न प्रकार की फफूंद या जीवाणुओं से पैदा होती है उनको भी फैलाने में मदद करता है, जैसे कि उकटा रोग, जड़ सड़न रोगों को फैलाने में ये सूत्रकृमि बहुत मदद करता है। इस सूत्रकृमि की मादा जो कि जड़ों में रहती है और औसतन 500 से 600 अंडे देती है और ये अंडे एक मुलायम आवरण में बंद रहते हैं। वे अंड समूह जड़ों के साथ चिपके रहते हैं। खेतों में नमी मिलने पर अंड समूह से आक्रामक कृमि निकलते हैं जो भोजन की तलाश में यत्र तत्र घूमने लगते हैं तथा जड़ मिलते ही अपने सुई के आकार जैसी डंक से जड़ में छिद्र करके उसमें घुस जाते हैं और वहीं जड़ों के अंदर बड़े होकर ये सूत्रकृमि जड़ों में गांठें बनाने लगते हैं और 20 से 25 दिन के अंदर अपने जीवन चक्र में खेत की मिट्टी में हजारों सूत्रकृमि अपनी संख्या में वृद्धि कर प्रवेश पा जाते हैं।
0: तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे सब्जियों में सूत्रकृमि का हमला हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं तो ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं सब्जियों के, वो बताएं।
1: इन सूत्रकृमि से प्राय सब्जियों में 25-30% तक नुकसान होता है, पर अगर रोग की अधिकता हो तो कभी कभी तो ये 70-80% तक सब्जियों में नुकसान पहुँचा देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचता है इससे। और डॉक्टर साहब, हम इससे बचाव कैसे करें?
1: जी हाँ, इस रोग के या इन सूत्रकृमि से बचाव के लिए, क्योंकि ये दिखते नहीं है तो इनका बचाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सूत्रकृमि सभी प्रकार की सब्जियों तथा अन्य पौधों पर भी जीवित रह सकता है। अतः सूत्रकृमि रोगों से बचाव के लिए अनेक उपायों का समन्वय करना अति आवश्यक है, जिसमें खेतों में विषैले रसायनों कम से कम प्रदूषण हो, किसानों पर आर्थिक भार भी ना पड़े, तो इस हेतु रोगी खेत में फसलों को बदल बदल कर बोएं। खेतों में एक बार इस सूत्रकृमि के पोषक फसल बोने के बाद इन खेतों में अभोज्य फसलें यानी मक्का, धान, सरसों,

0: प्याज लहसुन तिल इत्यादि बोएं, जिससे सूत्र कमी को पोषक फसल नहीं मिलने से उनकी संख्या में कमी आती है। कृषि क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम मई और जून के माह में जब दिन का तापमान अधिक होता है तो खाली खेतों की 2 से 3 गहरी जुताई करें। इससे सूत्रगमी के अंडे वे जो द्वितीय अवस्था की जो डिम्बक जिसको बोलते हैं या लार्वा जिसको बोलते हैं वो तेज धूप के संपर्क में आकर मर जाती है। इसके अलावा खेतों में सनई या ढेंचा उगाकर हरी खाद बनाएं अथवा फसल बोने से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलाएं। इससे भूमि में कई रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन होते हैं जिससे सूत्रकृमियों की संख्या में भारी कमी आती है, साथ ही फसल में रोगरोधी क्षमता भी बढ़ती है। कुछ फसलें जिनमें गुलदाउदी, गेंदा, सरसों की जड़ों से कुछ रासायनिक द्रव्य भी निकलते हैं जो सूत्रकृमियों के लिए जहर का कार्य करते हैं, तो अगर इन फसलों को हम उगाते हैं मुख्य फसल के साथ या मुख्य फसल के बीज में मिश्रित खेती के तौर पर तो उनसे भी लाभ होता है। अब अगर हम बात करें कि हम प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का निदान करने के लिए अगर नर्सरी में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी के स्वस्थ पौध तैयार की जाए, इसके लिए नर्सरी का उपयुक्त स्थान चुना जाए जहाँ सूत्रकृमियों की समस्या ना हो। पौधशालाओं में रासायनों का प्रयोग एक तो कम खर्च में अधिक लाभकारी होता है। इस रोग से बचाने के लिए नर्सरी क्षेत्र को मई और जून के महीने में हल्की सिंचाई कर एक पतली पारदर्शी पॉलीथीन से 15 दिन के लिए ढक दें। नर्सरी में बुवाई के समय बीजों के साथ कार्बोफ्यूरान नामक दवा 3G 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। मुख्य खेत में पौध रोपाई से पूर्व 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से नीम की खली का प्रयोग करें। साथ ही इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे सरल उपाय है कि रोगरोधी किस्मों को उगाना। तो कुछ सब्जियों की मूल जो जड़गांठ सूत्रकृमि के रोगरोधी किस्मों में अगर हम बात करें तो टमाटर की किस्म है सिलेक्शन 120, कर्नाटक हाइब्रिड, हिसार ललित, नेमाटेक्स, रोनीता। बैंगन की ब्लैक ब्यूटी, विजया, बनारस जॉइंट या गच्छा बैंगन। मिर्च की किस्मों में है पूसा ज्वाला या K2। भिंडी की IC 9773, IC 18960। तो ये कुछ रोगरोधी किस्में हैं जो जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो इस सूत्रकृमि से बचाव संभव है
1: जी।
0: अब अगर हम रासायनों की बात करें, रासायनिक उपचार की बात करें तो सूत्रकृमि नाशक रासायनों में रोग की अधिकता होने पर कार्बोफ्यूरान 3G नामक जो दवा है उसका 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें तो इस रोग से बचाव संभव है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, सब्जियों की अधिकतम उपज प्राप्त हो सके इस हेतु एक तो अच्छा बीज, सही समय पर बुवाई, खाद एवं उर्वरक का सही इस्तेमाल, कीट एवं रोग नियंत्रण के साथ साथ सूत्रकृमियों का नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये दिखते तो नहीं है पर फसल को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि किसानों को अपनी मेहनत एवं अब उनकी जो पूंजी का निवेश है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अतः सूत्रकृमियों की उपस्थिति के लक्षणों को देखते ही समाधान के सही प्रयत्न किए जाने चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दिखते नहीं हैं और हानि बहुत ज़्यादा पहुंचा देते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने आपको जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को करना चाहिए अगर आप इससे बचाव चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच थे डॉक्टर संजय कुमार शर्मा और हमारा विषय आज का था सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या और बचाव। अगले दिन आपसे एक और अलग विषय के साथ हाजिर रहेंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिल

0: उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
9: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
8: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए, हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितनी तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देख

हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतनी खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की और अलग अलग तरह के बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हो, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा। नहीं, ठीक उसी तरह से और आज के समय में आपको पता है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत मोटे, आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी ये समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी

पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीज़ें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए। और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और ख़ुद की तारीफ़ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और ख़ुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात कि ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें। और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं अनु और हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के बीच. और जब यहां पर हम खेती की बात करते हैं तो सिंचाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और सिंचाई के महत्व को बताने, इसके फ़ायदे और सिंचाई से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने के लिए आज हमारे बीच है सनोज कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में. तो आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई का महत्व क्या है.
1: आदरणीय किसान बंधुओं, जैसा कि पूछा गया है कि सिंचाई का महत्व क्या है, तो सिंचाई मतलब जल का, जब हम एप्लीकेशन करते हैं खेत में, जल को हम खेत में डालते हैं. बेसिकली तो जल एक अमूल्य और सीमित प्राकृतिक संपदा है जो कि प्रत्येक जीव के लिए अति आवश्यक है. जीव मतलब हम लोगों के लिए भी आवश्यक है, पौधों के लिए भी आवश्यक है. भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जैसा कि सभी बंधु जानते हैं, 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से कृषि योग्य क्षेत्रफल सिर्फ 172 मिलियन हेक्टेयर है. कृषि के लिए जल एक महत्वपूर्ण निवेश है और फसलों और फल वृक्षों के लिए जल उतना ही आवश्यक है जितना हमारी ज़िंदगी के लिए. और यदि फसलों को सही मात्रा में और सही समय पर पानी न मिले तो सूख जाएंगी, खराब हो जाएंगी. और देश के समग्र जल संसाधनों की 80% से अधिक जल कृषि के लिए खपत होती है. और देश की 1 अरब से अधिक आबादी को भरपेट भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त सिंचाई महत्वपूर्ण है. परंतु भरपूर प्रयासों के बावजूद भी केवल 5 से 6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है, जबकि कुल 13 से 14 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलों का हम उगान कर रहे हैं. यानी लगभग 38 से 40% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है और बाकी के खेत को हम सिंचाई का काम सीधे कुदरत के भरोसे रखते हैं. वर्षा से वरानी क्षेत्रों में फसलें पर्याप्त उपज नहीं दे पाती हैं और यदि सिंचाई के समस्त साधनों का पूरा उपयोग कर लिया जाए तो भी अधिक से अधिक 60% क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है. यानी 40% क्षेत्र फिर भी असिंचित ही रह जाएगा. और पानी के विभिन्न उपयोगों के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है. साथ ही साथ देश में सिंचाई के लिए पानी का कुशल उपयोग नहीं हो पा रहा है. जल उपयोग की कुशलता केवल 30 से 40% तक ही सीमित है. जितने भी हमारे आज के सिंचाई व्यवस्था जो किसान जनरली यूज कर रहे हैं, उसमें खेतों और बाग बगीचों में सीधे पानी लगाने वाली सतही सिंचाई विधि से बहुमूल्य पानी का 60% भाग तक किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाता है. इसलिए पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए और यदि हम जल प्रबंध के वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं तो बहुमूल्य पानी की काफ़ी बचत हम कर सकते हैं.
0: जी, सिंचाई के फायदे आपने कहीं ना कहीं बता ही दिए हैं और हम सिंचाई सिस्टम को कैसे चुनें उसके बारे में थोड़ा बता दें.
1: देखिए, बेसिकली सिंचाई के फायदे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी में ये भी बात हुई थी कि हम उसी के भरोसे हैं, जिससे कि पास्चर हो या क्रॉप हो, कोई भी घास या पौधा हो उससे ही हम उगाते हैं. इरिगेशन हमारे पास फैसिलिटी अगर रहता है तो हमारे पास पूरा खेत को संचालन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. हम कोई भी काम बड़ी आसानी से, बेसिकली सिंचाई का काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं. फिर हम हाई क्वालिटी का, मतलब उच्च क्वालिटी का क्रॉप को उगा सकते हैं या घास वगैरह को उगा सकते हैं जब मर्जी है, सीजन जैसा, मतलब सीजन अगर अलाउ करे तो. फिर हम जो क्रॉप को उगाते हैं उसका सीजन को हम ग्रोइंग सीजन जो कहते हैं उसको हम बहुत बढ़ा सकते हैं. फिर सीजनल में इनवेरिएबिलिटी होती है कि कभी ख़राब मौसम आ गया तो अच्छा है, कभी अच्छा है तो ठीक है, अगर ख़राब आ गया, अगर हमारे पास सिंचाई की कोई फैसिलिटी है तो भी हम अपने खेत को बचा सकते हैं, अपने पौधों को बचा सकते हैं. और इवन कुछ ऐसी भी सिंचाई विधियाँ हैं जिससे कि हम फर्टिलाइजर भी सीधे सीधे खेत में डाल सकते हैं. कुछ ऐसे एरिया को हम यूज कर सकते हैं जिसमें पहले कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन या किसी पौधा को हम उत्पादन नहीं कर सकते थे, लेकिन सिंचाई के बाद हम उसके कर सकते हैं. साथ ही साथ मार्केट का इंसेंटिव भी है, कुछ अगर सिंचाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें हमारा क्रॉप क्वालिटी अच्छा होगा. कैपिटल वैल्यू हमारा जो खेत है उसका बढ़ जाता है. पहले मार्केट में उसका कम दाम रहा होगा, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था कर देने से उसी खेत का दाम ज़्यादा हो जाएगा. साथ ही साथ लास्ट में हमको ग्रेटर सेविंग, मतलब सेविंग ज़्यादा हो जाती है. तो ये सब होने के लिए ऑब्वियस है कि हमारे पास बहुत सारी सिंचाई विधियाँ हैं. तो हमको कौन से सिस्टम को चुनना चाहिए, इसको चुनने से पहले हमको

0: कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ता है हर एक सिंचाई विधि के लिए। पहला तो इक्विपमेंट की कौन से टूल्स या मशीनरी उसमें चाहिए, फिर अगर उस तरीके का सिंचाई बनाना है तो हमारा सिस्टम का डिजाइन कैसे करेंगे, फिर हमको ये भी देखना होगा कि प्लांट स्पीसीज क्या है। हम हर एक जगह पे ड्रिप या माइक्रो स्प्रिंकलर तो लगा नहीं सकते हैं, है ना। ग्रोथ स्टेज कौन से में है क्रॉप का, फिर रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, सोइल का कंपोजिशन कैसा है और लैंड का फॉर्मेशन कैसा है। इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही हम किसी इरिगेशन सिस्टम का चुनाव करते हैं। और इरिगेशन सिस्टम बेसिकली करेगा क्या, हमारा ऐसा वो काम करना चाहिए कि साल्ट इम्बैलेंस अगर कुछ है, लीफ अगर पत्ती में बर्निंग हो रही हो, सॉइल का इरोजन हो रहा हो या वो पानी का नुकसान हो रहा, तो इन इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं वो ना हो, इतना तो हमको इरिगेशन से ध्यान में रख के करना चाहिए।
1: जी, सिंचाई के अलग अलग मुख्य प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे।
0: सिंचाई के अलग अलग प्रकार में बोले तो एक फरो सिस्टम होता है, फिर फ्लड और बॉर्डर चेक सिस्टम भी होता है, एक लेवल बेसिन सिस्टम होता है, यानी कि बेसिन बना करके लेकिन लेवल फील्ड पे, उसमें कोई स्लोप नहीं रखेंगे, फिर सेंटर पाइवट स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। फिर जैसे कि इसमें क्या होगा कि एक सेंटर पाइवट स्प्रिंकलर है, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, एक सिंगल पाइपलाइन होता है, ए रो ऑफ मोबाइल टावर लगे रहेंगे और वो 2 से 4 मीटर जमीन से ऊपर टंगे रहते हैं, तो उससे भी ऊपर से जैसे ही वर्षा की तरह पानी गिरेगा तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं सेंटर पाइवट स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर एक होता है हैंड मूव स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब जैसे कि नाम से लग रहा है हाथ से ही हम इसको घुमा सकते हैं, हाथ से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लाइट वेट होगा, पाइपलाइन सेक्शन भी उसके हल्के होंगे और मैनुअली हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और सक्सेसिव इरिगेशन छोटा खेत हो तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद एक आएगा सॉलिड सेट एंड फिक्स्ड स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें बहुत सारे उसके कंपोनेंट जो होंगे वो सब जमीन के अंदर फिक्स रहेंगे और उसको हम बार बार बाहर नहीं निकालना है। फिर एक ट्रेवलिंग गन स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ये इसमें एक लार्ज स्प्रिंकलर रहेगा जो कि एक ट्रेलर पे माउंटेड रहेगा, रबर होस लगे होंगे उसमें से स्प्रिंकलर अपना काम करेगा। फिर एक हो सकता है साइड रोल व्हील मूव सिस्टम, या दूसरा हो सकता है लिनियर और लैटरल मूव सिस्टम, फिर एक है लो फ्लो इरिगेशन सिस्टम। इस तरीके से बहुत सारे सिंचाई के साधन विधियां हैं आज के डेट में।
1: यहाँ पर अब हम बात करते हैं जब कम सिंचाई होती है या ज़्यादा सिंचाई हो जाती है तो इस में क्या नुकसान होता है।
0: अगर अंडर वाटरिंग हो गया है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा इल्ड का जो होना था, जो उत्पादन होना था, वो घट जाएगा और हमारा मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई फ्रूट है तो फ्रूट का साइज घट जाएगा, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी बात, अगर हमने ओवर वाटर कर दिया है, मतलब ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो जो ज़रूरत नहीं है वेजिटेशन वो भी ग्रोथ वहाँ किया रहेगा, अनवांटेड वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। फिर हमारा जो वाटर टेबल जो लगातार नीचे जाएगा, क्योंकि हमने नीचे से पानी ऊपर लाया है और सिर्फ वाटरिंग करने के लिए ही, तो लॉस होगा हमारा ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पानी का, और उसकी वजह से हमारा वाटर टेबल लगातार नीचे जाएगा, चूँकि हमने कम पानी की ज़रूरत थी और ज़्यादा पानी डाल दिया। अगर लैंड स्लोपी रहा तो वहाँ पे इरोजन हो सकता है, मिट्टी का कटाव हो सकता है। फिर पेस्टिसाइड हैं, पैथोजेन हैं, एंड जो वीड्स होते हैं वो ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा एरिया में वो सब फैलेंगे, फिर रन ऑफ होगा जो कि इरोजन के साथ होना है। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, चूँकि हमारे को ज़्यादा समय तक पंपिंग करना पड़ा तो हमको ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा, फिर कॉस्ट ऑफ वाटर ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमको लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हमने न्यूट्रिएंट खेत में डाल दिया है वो लीच होने में उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा। फिर डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट क्वालिटी होगा, और साथ ही साथ रिड्यूस्ड यील्ड, जो ऐसा नहीं है कि यील्ड हमारा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से। फिर इसी लास्ट में क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहेगा, और इसकी वजह से साथ ही साथ हमारा जो वाटर का रिजर्व है, हमारा वाटर जो रिसोर्स है, उस पर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमने जहाँ कम पानी की ज़रूरत थी उसी वाटर रिसोर्स में से ज़्यादा पानी निकाल लिया है। अब अगले सीजन के समय उस वाटर रिसोर्स में उतना पानी नहीं रहेगा कि हम अपना सिंचाई।
1: बिहार के संबंध में सूक्ष्म सिंचाई योजना के महत्व के बारे में थोड़ा बताएं।
0: बिहार राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना को वर्ष 2006-07 में लागू किया गया था, परंतु योजना में वर्ष 2009-10 तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई थी, और वर्ष 2010-11 और 2011-12 में योजना ने कुछ रफ्तार पकड़ी थी शुरुआत में, और लगातार

0: किसानों का योजना के प्रति आकर्षण तब से बढ़ ही रहा है। वर्ष 2010 के मध्य अर्थात जुलाई 2010 से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को कुछ परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में लागू किया गया और ये बिहार राज्य में यह मिशन 1 अप्रैल 2011 से लागू है। जैसा कि आपको पता है, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यद्यपि उत्तरी बिहार में जल की प्रचुरता है और इसके विपरीत गंगा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी बिहार में सिंचाई जल के साथ साथ पीने के पानी की भी कमी है। साथ ही इसी को ध्यान में रखकर और खेती में सिंचाई के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने सिंचाई हेतु राज्य में एक अलग विद्युत फीडर बनाने का निर्णय किया था। विद्युत आपूर्ति कम होने के कारण सिंचाई की इकाई लागत व्यय अन्य राज्यों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक हो जाती है और किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर जल के अपव्यय को रोका जा सकता है। साथ ही उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकती है। ये मिशन सिंचाई जल की उपयोगिता, दक्षता और उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन में वृद्धि की दिशा में केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य में भी वर्ष 2006-07 से किया जा रहा है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, सिंचित कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के आने से सिंचाई विकास की समुचित प्रक्रिया एक प्रौद्योगिक जटिलता के दौर से गुजर रही है। अच्छा, जल प्रबंधन से जल आपूर्ति में अवधारणात्मक बदलाव के साथ साथ जन शक्ति का व्यवस्थित नियोजन और विकास भी आवश्यक है ताकि पानी का ठीक इस्तेमाल हो सके। साथ ही सदियों पुराने नियमों और पद्धतियों को भी बदलना जरूरी है ताकि वे आज की प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अतः एक ऐसी प्रभावशाली प्रबंध नीति सिंचाई जल के लिए जरूरी है जिससे उपरोक्त आधारों पर क्रियान्वयन संबंधी कार्यों में मदद मिल सके ताकि उपलब्ध जल संसाधनों से खेती की पैदावार बढ़ाई जा सके।
1: एक अच्छी सिंचाई प्रबंध नीति के कौन कौन से परिणाम आने चाहिए?
0: जहाँ तक एक अच्छी सिंचाई प्रबंध नीति की बात है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जरूर होने चाहिए। जैसे कि जहाँ जल की सुलभता सीमित हो वहाँ प्रति जल इकाई से अधिकतम खेतिहर पैदावार हो, उत्पादन बढ़े। दूसरा है कि जहाँ भूमि की सुलभता सीमित हो वहाँ प्रति भूमि इकाई में हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, यानी कि जहाँ जल की कमी हो तो हम कम जल में ज़्यादा उत्पादन करें, जहाँ भूमि कम हो तो वहाँ कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन करें। तीसरा हो सकता है बड़े और छोटे किसानों के बीच अग्रणी और निम्न स्तरीय उपयोगकर्ताओं के बीच जल का समतापूर्ण बंटवारा हो। चौथा हो सकता है उत्पादकता के नुकसान के बगैर अस्थायी सिंचाई कर सकें एक व्यवस्था। सामान्यतः इसका अर्थ भूजल का जो टेबल है को अस्थायी रूप से बनाए रखने से है, यानी कि वाटर टेबल है जो ज़मीन के अंदर, उसको हमको ट्राई करना होगा कि उसको बनाए रखें, वो नीचे ना जाए। सिंचाई करने वालों को लाभ जिनमें सही समय पर उचित मात्रा में और उचित अवधि के लिए पानी की उपलब्ध होना भी शामिल है। और साथ ही साथ आर्थिक रूप से व्यवहारिक तथा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए और सूखा संभावित क्षेत्रों में आपूर्ति क्षेत्र का अधिकतम विस्तार होना चाहिए इस तरीके के सिंचाई नीतियों का।
1: अगर जल का कुशल उपयोग करना हो तो कैसे करेंगे?
0: जल का कुशल प्रयोग की जहाँ तक बात है तो इन्हें पूरा करने के लिए निम्नलिखित कुछ मुख्य बिंदु हैं या निम्न बिंदु हैं, कुछ उस पर हम बात करना चाहेंगे। इस क्षेत्र में लोगों के बीच प्रशिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अनुसंधान भी होने चाहिए। प्रमुख प्रणाली का फिर बेहतर संचालन कैसे करें, प्रबंध कैसे करें, उसका अनुरक्षण कैसे करें। बुनियादी तौर पर इसके लिए संचालन और अनुरक्षण की पूर्व निर्धारित योजना के जरिए प्रमुख प्रणाली का उचित अनुरक्षण कैसे करें, कुशल संचालन कैसे करें ताकि फसल उगाने के नाजुक चरणों में कम से कम फसल की मांग को हम पूरा कर सकें। फिर हो सकता है स्व प्रबंधित प्रणाली के चरणबद्ध विकास की नीति जो तीसरे स्तर से नीचे होगी। फिर हो सकता है सिंचाई के क्षेत्र में वांछित संगठनात्मक और कार्य पद्धति विषयक परिवर्तन जो अंतर क्षेत्रीय संपर्क व समन्वय, सिंचाई विभागों के पुनर्गठन, वैधानिक सहायता, कार्मिक प्रबंध आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। और साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों की प्रमुख प्रणाली और अर्ध तृतीय प्रणाली की जल उपयोगकर्ता संस्था दोनों ही के द्वारा प्रबंध की ऐसी व्यवस्था करना जिसमें वित्त पोषण की व्यवस्था निहित हो। साथ ही साथ फसलों के सिंचाई में जल उपयोग की कुशलता बढ़ाने का एक बेहद महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, जिसे सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम भी कहते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी

0: बर्बादी नहीं होती है और इस प्रणाली से पानी की 40-60% तक की बचत हो जाती है। और इस महत्वपूर्ण बचत के कई कारण हैं। दरअसल जब खेतों या बाग बगीचों में परंपरागत ढंग से सीधे पानी लगा दिया जाता है तो भूमि पर खड़े पानी की काफ़ी मात्रा रिस कर धरती में वापस चली जाती है। कच्ची नालियों में बहता पानी भी रिसाव द्वारा धरती में समा जाता है। ड्रिप सिंचाई को लगभग सभी फसलों में लगाया जा सकता है, परंतु बागवानी फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। भांति भांति के फूलों, फलों, मसाले, औषधीय व सुगंधित पौधों व सब्जियों की खेती में ड्रिप प्रणाली अपनी सिद्ध कर चुकी है, इसलिए बागवानी फसलों में इस प्रणाली की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
1: जी, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से क्या कुछ लाभ हो सकता है, इसके बारे में बताएं।
0: इस पद्धति द्वारा पानी को केवल पेड़ों के जड़ों में ही वितरण या अतः पानी के निश्चित बचत होती है, जिसके द्वारा अधिक क्षेत्र में खेती संभव है, क्योंकि हम खेत में पानी सिर्फ जड़ तक ही जाने देते हैं, उससे नीचे पानी नहीं जाने देते हैं, तो हमारा पानी का बचत होता है। उपज समय से जल्दी या एकदम समय पर प्राप्त हो जाता है। पानी देने के लिए नालियाँ बनाने की आवश्यकता हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे बगैर मतलब किसी प्रकार के नाली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए श्रम से भी बचत होती है। पोषक तत्वों, पानी और हवा का पौधों की जड़ों में समुचित सम्मिश्रण संभव है, अतः पैदावार तथा पैदावार की गुणवत्ता में अति विश्वसनीय वृद्धि हो जाती है। केवल जड़ों को ही पानी देने से खरपतवार नियंत्रण होता है, अतः खरपतवार की समस्या भी इसमें नहीं होती है, क्योंकि पानी हमने कहीं दिया नहीं है, सिंचाई सिर्फ जड़ के पास दिया होता है, इसलिए खरपतवार भी पूरे खेत में कहीं भी नहीं उगता है, सिर्फ जड़ के पास, और उसको हम लोग बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम द्वारा पौधों की जड़ों में ही खाद का एक सा वितरण कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिगेशन संभव है, अतः इसमें रसायन की बचत भी हो सकती है। लवणीय भूमि में भी खेती को हम संभव कर सकते हैं, सिंचाई के लिए लवणीय जल को हम उपयोगी बना सकते हैं। इस सिंचाई से यदि खेत समतल नहीं है तब भी, अर्थात उबड़ खाबड़ है तब भी, पौधों की सिंचाई भली प्रकार से कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मृदा में सिंचाई, और सिंचाई के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, इसके फायदे, सिंचाई सिस्टम को आप कैसे चुनेंगे, सूक्ष्म सिंचाई क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें। तो आशा करते हैं कि आज का ये वार्ता आप सभी के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना है तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
6: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
7: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार

0: पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना?
6: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी की BPT 5204 कि नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें।

जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी

0: नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और ये है आपका अपना पसंदीदा FM ग्रीन। तो हर रोज़ उन्नत कृषि की बातें होती हैं, उन्नत बातें होती हैं खेती बाड़ी की, और साथ ही हमारे पशुपालक भाइयों के लिए भी हम कुछ अलग सी बातें लेते हैं। और अगर मछली पालन का शौक है और आप उसे आय का जरिया बना रहे हैं तो आपके लिए आज एक खास विषय हम लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए ही है, समेकित मत्स्य पालन। आज मछली पालन के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर MZ होदा सर। और मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान विभाग में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे।
2: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं अभी, थोड़ी क्रिएटिविटी उनकी माइंड हो रही है कि चलो मछली पाला जाए, देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि मछली पालन हम क्यों करें, क्यों ज़रूरी है ये?
2: देखिए, मछली पालन खास करके कोविड के बाद से हमारे जो पढ़े लिखे युवा छोटे छोटे नौकरियाँ बाहर करते थे और उनकी सारी नौकरियाँ छूट गई हैं, उसमें रोजाना हमसे हमको लगता है 3-4-5 इंजीनियर्स कैटेगरी के लोग और बड़े प्रोफेशनल्स अच्छे लोग आ रहे हैं जिनके पास जमीन काफ़ी है लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और वो सीधे हमसे मत्स्य पालन के बारे में जानकारी हासिल करने आ रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मत्स्य पालन एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत ही कम समय में और बहुत कम समय में वो तकनीकी जानकारियां प्राप्त करके अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। मत्स्य पालन खास करके हमारे बहुत सारे किसान हैं, मत्स्य पालन अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप भटके नहीं। बहुत हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं तिलापिया पालना है, पेंगीशियस पालना है और ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि कभी भी आप जो हमारी जो 6 मेजर कार्प हैं, रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, इन मछलियों का पालन आप सबसे पहले करें और जब इसमें आपको दक्षता मिल जाए उसके बाद आप दूसरा पालन करें। मछली पालन क्यों करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मछली पालन के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके मार्केट की खोज की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस वक्त ताज़ी मछलियाँ मारेंगे वहीं पर मार्केट अवेलेबल है और लोग आपके यहाँ से ही ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। मार्केट प्रॉब्लम इसमें ज़रा सा भी नहीं है और बहुत ही कम लागत में हम बहुत अच्छी आमदनी, जो साधारणतया 1 एकड़ के फसल में हम लोग पूरे साल फसल चक्र को अपनाते हैं तो इससे 30 से 35 हज़ार रुपए की शुद्ध आमदनी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग 1 एकड़ मत्स्य पालन करते हैं तो कम से कम हम 1,65,000 से 1.25 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि यो युवा जिनके पास मछली पालन के साधन उपलब्ध हैं और वो कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर लोग लीज पर भी ज़मीन लेकर के मत्स्य पालन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, और हम लोग बहुत भागलपुर और एक बांका हमारा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा हम लोग यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना अभी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा पा सकते हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पर आप जो है पूछ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर से में आकर हमारे होदा सर से मिलके। सर, अब बात करते हैं तालाब निर्माण की। ये बहुत ज़रूरी है तालाब निर्माण के हम बारे में जाने, क्योंकि मछलियों को इन्हीं में रखना है हमें, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें तालाब निर्माण के दौरान?
2: किसान भाइयों, मत्स्य पालन आप 2-3 जगहों पर करते हैं साधारणतः, या तो आपके पास पहले से निर्मित तालाब होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नए तालाब का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन या चौड़ में मछली पालन करते हैं। तीनों जगह पर आपको अलग अलग सावधानी बरतनी होगी। देखिए, आपके पास अगर पुराना तालाब है तो आप सबसे पहले, अगर संभव है कि आप उसकी जल निकासी कर सकते हैं तो बिल्कुल जल निकासी को करें। हमारा किसान सबसे बड़े प्रॉब्लम में ये होता है कि वो तो मछली पाल लेता है लेकिन उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाता, उसको निकाल नहीं पाता। उसके पीछे बेसिक रीज़न है कि वो अपने कभी अपने तालाब की तलहटी को नहीं देखा है। कहीं ऊंचा होता है किसी की तलहटी, किसी कहीं नीची होती है। जब आप जाल देते हैं तो मछलियाँ एक साइड से दूसरे साइड निकल जाती हैं, आप हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं मछली रहते हुए भी। तो हमारा ये बिल्कुल सलाह होगा, जब आप पुरानी तालाब में सीधा मछली पालन करना चाहते हैं तो कभी भी आँख बंद करके उसमें जितनी मछलियाँ हैं सबसे पहले आप सारी मछलियों को हटा लें, संभव हो उस पानी को खाली।

0: करें और देखें कि तालाब की तलहटी कैसी है। मछली पालन के लिए मात्र हमको 1.5 मीटर पानी की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता हमें नहीं है। तो आप देख लें कि कितने लेवल पर आप 1.5 मीटर पानी का ये स्थान कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। तो उसके अंदर अगल बगल बड़े बड़े पौधे हों तालाब के ऊपर तो उसको आप हटा दें। पूरी सूरज की रोशनी उसमें प्रॉपर जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप करें। तीसरा, जब अगर नव निर्माण आप तालाब का कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि तालाब की लंबाई जो है पूर्व और पश्चिम दिशा में, ये अगर होता है ना तो उसमें आप हमेशा देखते होंगे कि हवा या तो पूर्व से चलती है या पश्चिम से चलती है, तो एक लंबा सरफेस एरिया मिल जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे तालाबों में, और उसमें जो है हवा का घुलन आसानी से होता है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि रेक्टेंगल शेप में, किताब के शेप में आप अपने तालाबों का निर्माण करें, और तालाब का निर्माण बिल्कुल गड्ढे नुमा ना करें। देखिए, आप तालाब को बिल्कुल एक कोण को आप जो है बिल्कुल एक कोण के रूप में करें, बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शेप में कर्व के रूप में होना चाहिए तलहटी से ऊपर की तरफ, जिससे कटाव ना हो। मछली मारने में आप एक तरफ से अगर जाल लेके चलते हैं, अगर ढलान ढल साइड जो है उसका ढाल नुमा होता है तो मछली को मारते वक्त आपको बड़ी सावधानी होती है, आसानी होती है। आप बिल्कुल एक तरफ से चलते जाएंगे और सारी मछलियाँ आपकी एक तरफ आ जाएंगी। ये तालाब, अब आपने नया तालाब निर्माण किया तो आप हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारे किसान क्या करते हैं, तालाब में पानी भरे और सीधे उसमें जो है मछली को लाके डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप तालाब का निर्माण कर लेते हैं और उसके बंड को अच्छे से बनाएं, जो भिंडा होता है उसका बहुत उपयोगिता है। दो तरीके से नया तालाब बनता है, अगर आपके यहाँ पर पानी ठहरने का आपके यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध है और अच्छी ज़मीन है जहाँ पानी ठहरता हो, तो आप ये 5.5 मीटर के जो हम कहे थे आपको कि लगभग 1.5 मीटर 5.5-6 फीट के आसपास का जो पानी होता है, तो इसमें आप बंड में भी आधा साइज आप ले सकते हैं। जब आप 3 फीट गड्ढा करेंगे और 3 फीट जब एम्बैकमेंट को ऊंचा करेंगे तो उससे भी आपका तालाब निर्माण हो सकता है वैसी जगहों पर जहाँ पर पानी ठहरता हो, अच्छा होता हो। तो उसके बाद आप जब तालाब कर लेते हैं तो आप क्या करें कि उसमें 3-4 kg आप DAP को चारों तरफ छींट दें, 20-25 kg चूना आप उसको घोल बनाकर उसमें छींट दें, 3-4 kg यूरिया छींट दें और उसके बाद उसमें पानी को भरें। गोबर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो पूरा डाल देते हैं तालाब में, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पर किनारे पर जहाँ पर पानी सटता होगा वहाँ पर 3-4 जगहों पर आप आधा आधा टेलर गोबर गिरा दें, धीरे धीरे वो सीपेज करके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनाता जाएगा और उससे 10-15 दिनों के बाद आप वहाँ आसानी से मछलियों को डालें, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है तालाब निर्माण के समय। सर, अब बात करते कि अगर हम 1 एकड़ के तालाब की बात करें और इसमें कितनी संख्या में हमको मछली डालनी चाहिए।
0: देखिए किसान भाई, मछली का बीज हमेशा नहीं मिलता है, ये हमको जो भी हमारे सबसे अच्छे मत्स्य पालक है उसको ये बात समझ लेनी होगी। अप्रैल माह के अंत से आपको अगस्त के मिड तक ही हमारा जो 6 इंडिजिनस और इंडिजिनस और एग्जोटिक कार्प हैं जो, वो उनका बच्चा तैयार होता है। जो हमारे अच्छे मत्स्य पालक हैं वो एक छोटा सा अलग से तालाब रखते हैं और वहाँ पर जीरा का संचय करते हैं, जिससे कि 6 महीना में अगर आप अच्छी तरीके से भोजन करते हैं तो वो मछली आपको 1-1.5 kg के आसपास हो जाती है। उस वक्त आपको बीज मिलता नहीं है, तो पुनः जो आपने बीज संरक्षित किया है उस बीज का इस्तेमाल करके फिर आप 6 महीने को यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए, हम एक आज बहुत ही की पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। जो भी हमारे किसान भाई हैं जो मत्स्य पालक हैं, आप कोशिश ये करें कि बीज की संरक्षण, बीज का बचाव आप करना अगर सीख जाएंगे तो मत्स्य पालन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास अगर छोटा तालाब है तो कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में हम लोग जीरा भी देते हैं, अंगुलिका भी देते हैं और हम लोग फ्राई भी देते हैं। जो हमारे आजकल हम लोग इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि जो हमारे मत्स्य पालक है, कम से कम जिनके पास 2-3 की संख्या में तालाब है, एक तालाब में वो जीरा से फ्राई और फिंगरलिंग अंगुलिका बनाने की प्रक्रिया को सीख लें। इससे दोहरा लाभ है। 2 समय जीरे का डिमांड बहुत अधिक होता है। पहला जो आप मार्च के आसपास काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हमको मछली का बच्चा चाहिए, मछली का बच्चा चाहिए, उस वक्त कहीं बन नहीं रहा होता है, और दूसरा अगस्त के बाद। ये 2 समय बहुत ही बड़ा समय होता है जहाँ बीज की स्कार्सिटी होती है। तो आपके पास जो बीज संरक्षित रहेगा तो आप मार्च में भी जीरा को बेच सकते हैं, और हम आपको बता दें कि जितना आमदनी आप मछली

0: उत्पादन करके एक एक करके तालाब में नहीं ले सकते हैं, अंगुलिका का संरक्षण करके आप ले सकते हैं। पहला, अब बताइए एक एकड़ की तालाब है, अब डिपेंड करता है कि आप किस अवस्था की मछलियों को डालते हैं। जिसको फ्राई हम लोग कहते हैं वो एक इंच के आसपास का होता है, तो एक एकड़ के तालाब में वो 10,000 की संख्या में हम लोग फ्राई को डालते हैं। जब हमारी मछलियों का साइज एक इंच का मिले हमें तो हम लोग एक एकड़ के तालाब में 10,000, और जब हमको 3 इंच अंगुलिका जब अगर हम डालते हैं तो वो 4,000 डालते हैं, और इसकी भी मात्रा सीमित है। देखिए जो हमारा जो 6 मेजर कार्प है, जो हमारा रोहू है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कतला है, मिरिगल है, ये जो हमारी जो मछलियाँ हैं उसमें जो कतला और सिल्वर कार्प है ऊपरी सतहों पर भोजन करती हैं। दूसरा जो रोहू और ग्रास कार्प है वो तालाब के मध्य सतह पर भोजन करती है, और तीसरा जो कॉमन कार्प और मिरिगल है ये तालाब की निचली सतह से भोजन लेती है। तो आप ये जान ले कि अगर 100 मछली आपको अगर डालनी है तो उसका 30% आप कतला और सिल्वर कार्प डालें, 30% आप रोहू ग्रास कार्प डालें, और 40% जो है आप डालें कॉमन कार्प और मिरिका। अगर इस संख्या में आप अगर आप देते हैं मछलियों को, साधारणतः हमारे ग्रामीण परिवेश में किसानों के दिमाग में एक भ्रम है कि जितनी ज़्यादा संख्या में हम मछलियों का बच्चा डालेंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन इसके उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है। 6 महीने बाद 8 महीने बाद किसान आते हैं, सर हमारे तालाब में नहीं बढ़ रहा है मछलियाँ, तो कैसे होगा? एक तो हम लोग आहार प्रबंधन नहीं जानते हैं, संख्या बहुत बढ़ा के रखी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खाना नहीं देते हैं, और पूरा साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये मछलियों की जो मात्रा है इसको सीमित करना नहीं करिएगा तो आप मछली में जो उत्पादकता है नहीं ले सकते हैं।
1: जी सर, अभी आपने कहा कि आहार प्रबंधन हमें मालूम नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दो।
0: देखिए किसान भाइयों, हम लोग ग्रामीण परिवेश में मछली को तालाब में डाल के सिर्फ मछली को निकालने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमको बड़ी बड़ी मछलियाँ मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। मछलियों के उसके वजन का 2% भोजन प्रत्येक दिन चाहिए होता है। जिस दिन आपने, मैंने 4,000 संख्या आपको बताया कि एक एकड़ के तालाब में अंगुलिका को डालना है, और एक अंगुलिका का दाम 20 ग्राम होता है, और 4,000 से 20 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, जो टोटल वजन आएगा उसका 2% ही भोजन देना। और मछलियों का भोजन बहुत आसान है, मछलियों का भोजन सरसों की खल्ली होती है, राइस ब्रान होता है जो हर जगह अवेलेबल होता है। आप कोशिश करें कि इसका बराबर मात्रा में आप एक पैकेट बना लें जूट के बोरे में 10-10 किलो। देखिए मैं एक नटसेल में आपको फार्मूला बता देता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। 10 किलो आपका अगर एक एकड़ का तालाब है तो 10 किलो खल्ली, 10 किलो राइस ब्रान, और 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, एग्रीमीन फोर्ट, बहुत सारे खनिज मिश्रण मिलते हैं। इसको आप एक जूट के बोरे में भर दें, इसको हल्का सा भिंगो दें, और जूट के बोरे में नीचे से छोटा सा छेद कर दें, और अपने तालाब के एक किनारे पर कमर भर पानी में एक बांस गाड़ के, तालाब में दो जगहों पर ऐसा करके बांस गाड़ के आधा जूट का बोरा को पानी में डुबा दीजिए, और नीचे से देखिएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सारी तालाब की मछलियाँ वहीं आकर भोजन करेंगी। और जब कभी वो खाली हो जाए आप जो है उसमें पुनः उसको भर दें, ये एकदम साधारण तरीका है। एक बात हमको ध्यान देनी है यहाँ पर, जब कभी पानी का रंग भूरा हो जाए तो आप ये समझेंगे कि वो उसमें संख्या बहुत खाने की ज़्यादा हो गई है, खाने की अधिकता हो गई है, आप उस समय कुछ समय के लिए भोजन देना बंद कर दीजिए। फिर जब पानी सामान्य कलर का हो जाए तो आप उसमें पुनः जो है ये करें। तो आपको हम समझते हैं कि, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि आप 3 महीना पला हुआ, 4 महीना पला हुआ बच्चा कहीं से भी खरीदें, या आपने आप छोटे तालाब में उसको बनाएं, वो खरीद करके जब आप बड़े तालाब में डालते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। देखिए हमारा जो भागलपुर का एरिया है, चानन का एरिया है, और हमारे जो कोसी के एरिया है, हमारा जो किसान है सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि हम एक चीज़ के लिए ताकीद करना चाहेंगे आपको कि जब आप नदी से बीज लेते हैं तो सीधा नदी से बीज लेकर आप सीधे कभी भी अपने तालाबों में नहीं डालें। ऐसा करना आपको अब दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है, क्योंकि गंगा में जो बीज होती है, नदियों से जो बीज प्राप्त होते हैं उसमें बहुत सारे बुआरी होती हैं, बहुत सारी मागुर जो हमारी कैटफिश होती हैं, और बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जिसका संचय हमें तालाब में बिल्कुल नहीं करनी है। वो एक तरह से कहिए मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, अगर उनको तालाब में खाना नहीं मिलेगा तो अपने से छोटे मछलियों को वो खाना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा कि जब 5 बुआरी आपके तालाब में आ गया और 1 बुआरी को उसके वजन का लगभग 3 गुना भोजन प्रत्येक

0: चाहिए होता है। अगर 5 बुआरी किसी ने आपको डाल दिया, आपने गलती से उसमें डाल दिया, तो आपने जो मछली पालना है वो सारी मछलियों को खा करके आपको बहुत बड़ी आर्थिक हानि देगा। जीरा संचय नदियों से करें, मैं इसको इसके फेवर में हूँ, लेकिन जब कभी भी आप जीरा या मछली का बच्चा का संचय बाहर से करते हैं तो उसको ला करके एक छोटे से गड्ढे में रखें और वहाँ से उसको निकाल कर रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प जो मैंने संख्या बताई है उसको गिन कर अगर आप डालेंगे तो हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और मछली पालन में मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से 6 महीने में आप अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।
1: तो ये सारी बातें जो है विस्तार में डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, आशा करते हैं कि आपको ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है वो भी आपको ज़रूर मालूम चल गया होगा। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले दिन अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
9: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
10: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने

0: देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं।

एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाह कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK जाम। मैं आपको बता दूँ, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
2: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं कि वर्मी कंपोस्ट, जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कंपोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कंपोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है।
0: जी,
2: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं, लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है। केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना। तो उसी चाय जैसी जो पत्ती जैसी संरचना है, उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
0: जी, तो ये तो बातें हुई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थेनियम की। तो सर, इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: देखिए, पार्थेनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी सब जगह। यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है कि वह फसलों के लिए या दूसरे जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है।
0: अच्छा,
2: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है।
0: अच्छा,
2: यदि हम पार्थेनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.23% जो यहां जांच किया था तो 1.23% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 ppm पाया जाता है, लोहा 528 ppm पाया जाता है, तांबा 8 ppm पाया जाता है, मैग्नीज 161 ppm पाया गया। यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय ये पोषक मान पाया गया।
0: जी, तो ये बातें हो गई हैं पार्थेनियम की। और अगर डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थेनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें।
2: बिल्कुल सही बात आपने पूछा। ये किसान, एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं। जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो

0: वर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं उसी के पोषक मान के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारा वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा।
1: जी।
0: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा, तो निश्चित रूप में जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला वर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान सामान्यतया कम होता है पार्थेनियम की तुलना में। तो इसी तरह से यदि हम पार्थेनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं उसका पोषक मान ज्यादा होता है तो उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया था उस वर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थेनियम और जो 60% है वो गोबर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं और 60% गोबर प्रयोग करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इस सब के पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया, इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 0.698 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन वही पार्थेनियम में यदि प्रयोग हम करते हैं तो पार्थेनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.757% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808% यानी 0.8 के यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से हम पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फास्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण आपको 0.8% से ऊपर फास्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें, हार्म ना हो और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी उतना रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं तो जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थेनियम से भी ज़्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये और ज्यादा है। तो यदि अजोला वाले आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा। और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब ये बात कर रहे हैं हम पार्थेनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें, हम वो भी बता दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थेनियम ऐसे ही डाल देते हैं।
1: जी,
0: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
1: अच्छा।
0: पार्थेनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थेनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी

0: कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है, तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा, तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया। उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें, ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे? यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1000 से 2000 केचुआ डालना चाहिए। 1000 से 2000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे कम से कम, तो 60-65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से, और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, 3-4 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को 3-4 दिन के लिए रोक दीजिए, और सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे। अच्छा। वहीं तक हटाइएगा जहाँ तक केचुआ आपको नहीं दिखे, जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट बन रहा है, हाँ ऊपर वाला बन चुका हुआ है, तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा, इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए, और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, तो बर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहाँ आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कि धोखा से यदि ज़्यादा पानी पड़ गया तो वो वहाँ से बह करके निकल जाएगा, तो इस ढंग से आप करेंगे। हाँ, वहाँ पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे, इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, 1-2 हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहाँ पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं, तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है, इस ढंग से करके जब आपने हाँ इसमें एक चीज बताया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो, इसीलिए जब बर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप से आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो, तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बन जाएगा और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा और वहां पर आपको फिर पार्थिनियम पैदा होने लगेगा, इसीलिए यह निश्चित रूप से विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थिनियम आपको प्रयोग करना है।
1: डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 कि नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने

0: तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़वा यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
1: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए। तो किसान भाई, इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेशा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65-70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15-20% जो रेशा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5-3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रागी युक्त आहार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं, से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से यह बहुत ही लाभदायक है। इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिससे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
0: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
1: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है, इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है, अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं, तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारे भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए। और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में 1 या 2 जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें। और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें, और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कार्बेंडाजिम, उससे

उच्चारित करके वहीं बोए। रागी की बुआई दो तरह से की जाती है, एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है, और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है, एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए, ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की धूप वो मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उसे नष्ट हो जाए। और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें। और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि 3-4 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें, और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें, ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 kg नेत्रजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 kg नेत्रजन, 30 kg फास्फोरस P2O5 और 30 kg पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए, और दूसरी जो आधी मात्रा शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है वो प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण। तो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। यदि हम रासायनिक तरीके से खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले एक खरपतवार नाशी होता है आइसोप्रोट्रोन, उसका डोज जो है 0.5 kg एक्टिव इन्ग्रीडियंट पर हेक्टेयर, ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा आधारित क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली निकाई गुड़ाई कर दें।

0: और रागी की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
1: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
0: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379, जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में ये मैच्योर कर जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526। ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, इसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352 जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से विकसित की गई। इसकी परिपक्वता अवधि ये 100 ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109 दिनों की है, औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है, और झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो पुरानी प्रभेद भी है, जैसे A404 ये BAU रांची से विकसित की गई, और RAU 8 ये RAU ढोली से विकसित की गई। दो किस्में हैं जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, और ये इसकी औसत उपज भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और किसान भाई इसकी इस अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, और रोकथाम कैसे करें हम?
0: रागी में जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन एवं दूसरा है भूरा धब्बा। रागी प्रमुख रोग व्याधियां हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं, जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तिया को झुलसा देते हैं। बालियों की गिरिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है, और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है, जिससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है, और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियां पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है, जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदनाशक दवा जैसे मेनकोजेब, कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में झुलसन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम, कीटाजिन या ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर की दर से छिड़काव करें, और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है, और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएँ तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है, जैसे रोग

0: की किस्म है VL 379, VL 356, VL 352, OEB 536, 532 का चुनाव करें। इससे इस रोग से हम लोग उसमें जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटरी रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग। यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं। बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं, जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है, वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है, तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्त कीट एक पतंगा होता है, जबकि लार्वा तने को भेद कर छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेड हर्ट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमेथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुवाई करें, जिससे कि रोग से बचाया जा सके, कीट से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है और बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियां रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनोलफॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4-4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुवाई करें, तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें, तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तथा इसे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा, जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में 1 हेक्टेयर में 60 से 70 हज़ार रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान भाई अब आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है। और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर, और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
1: जी, तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है।

0: किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि।
6: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें। और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
7: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
6: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में बताएं।
7: मक्के में बहुत ज़्यादा, बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
6: मैग्नीशियम
7: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं
6: जी।
7: मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को, उसको कम करने का काम करता है, और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है
6: जी।

0: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित जो पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है। और फोलेन एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पाइटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह की बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
0: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं, इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लेक्स जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पर भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लेक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फायदे अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लेक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्न फ्लेक्स होते हैं ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्न फ्लेक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जा रहे हैं और वो और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई उसको मार्केट से खरीदते हैं या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसको औद्योगिक स्तर पर मीन्स फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मीन्स करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको क्या करेंगे स्टीमिंग कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं और ये समय जो है चार घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है। तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको है रूम के

0: तापमान पर कमरे के तापमान उसको सुखा लेंगे। जब ताप उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है मीन्स उसमें जो नमी है 16-24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है जो कि जिसमें कि 16-24% मॉइस्चर है नमी है उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लेक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है, और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है पैकिंग करना है और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16-20% के लगभग में रखना होता है, और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं जिससे कि हम लोग वो मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है, और आफ्टरवर्ड क्या होता है एक्सट्रूजन होता है, और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मीन्स करने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और फ्लेक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप एक्सट्रूजन डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने, और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूँगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो। खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
6: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
6: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान, सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफ़ी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियाँ ज़्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती है और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी

हो रही है तो आपको ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं, और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे, और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5,000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए, और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही, इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत
सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने

0: वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जांच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जांच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जाँच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जाँच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट,
1: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
7: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, हाँ, हाँ, इसे ही कहते

0: कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी की BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के

पहले बीजोपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पके आम के बारे में, खास तौर पर इसके उत्पाद और संरक्षण तकनीक के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं विशेषज्ञ डॉक्टर MA आफ्ताब। मैं आपको बता दूँ, ये अध्यक्ष खाद्य विज्ञान एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो पके आम के क्या कुछ उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
2: देखिए, अभी पके आम की जहाँ तक बात है, ये पके आम का सीजन अभी चल रहा है
0: जी,
2: और इसमें जो अर्ली वराइटीज़ हैं उसमें जरदालू आ चुके हैं, बम्बई आ चुका है, और उसके बाद फिर मालदे जिसको कि लेंगड़ा भी बोलते हैं वो है, फिर फजली है और भी मल्लिका है, ये सब सारे आम का अब सिलसिला शुरू हो गया। तो ये आम हम लोग, हमारे किसान भाई जानते हैं कि आम का क्या इम्पोर्टेंस है, इसे फलों का राजा कहा जाता है
0: जी,
2: और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए वो पाए जाते हैं, जो कि विटामिन ए का जो रोल है वो सब लोग जानते हैं कि ये आँख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी, जी।
2: और ऐसे तो और भी सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में, तो विटामिन ए का ये प्रचुर मात्रा आम में पाई जाती है, और आम अभी आ चुका है। अब बात यह है कि आम हाईली सीजनल क्रॉप है, हालांकि ये बहुत सी वैरायटीज़ है जो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हवाते ये जुलाई अगस्त तक चला जाता है ये आम का सिलसिला, लेकिन ऐसा लीची के साथ नहीं है। आम के साथ ये हमारा सौभाग्य है कि आम की बहुत सी वैरायटीज़ यहाँ हमारे क्लाइमेट में ग्रो होती है, और आम अभी शुरू हो गया है, अब ये अगस्त तक चलता रहेगा। अब है कि आम जो है तो चूंकि इतने हाईली प्राइज्ड फ्रूट है, इतना उसका महत्वपूर्ण है, उसका रोल है हमारे बॉडी पर, विटामिन ए है और भी बहुत से फाइटोकेमिकल्स हैं उसमें, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये सारा जो है वो सीज़न भर ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, अगर आउट ऑफ सीज़न। और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे जवान और बूढ़े सभी इसको लाइक करते हैं। तो आम का जो है तो हम कुछ जो सीज़न भर है तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे, बाद में इसको यूज़ करने के लिए अगर किसी की ख्वाहिश होती है, किसी की इच्छा होती है कि आम का पेय पदार्थ हम पिए, तो ऐसे तो बाज़ार में बहुत सी सिंथेटिक मिनरल्स, सिंथेटिक बिवरेजेस वगैरह भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि आम से प्रसंस्कृत करके कैसे उसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और कम से कम साल भर तो रखा ही जा सकता है। तो ये जो है तो हम आज इसमें बताना चाहेंगे कि आम से क्या क्या बन पाता है। इसमें आम से जो है प्रिजर्व्ड मैंगो पल्प, जैसे कि आम का जो गुठली होता है उसको निकाल के छिलका से छील करके हम उसका पल्प को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्क्वैश उसी पल्प से, जब पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया है और भंडार में रख के भंडारण कर लिया है, उसके बाद उसका हम स्क्वैश बना सकते हैं। स्क्वैश एक पेय पदार्थ होता है जो कि चीनी के शीरे के साथ मिला के बनाया जाता है, और उसी को जब 3 गुना पानी में मिला दिया जाता है तो ये RTS बन जाता है हमारा, जो कि डायरेक्ट नुक्कड़ पर जो आप पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, या और भी जैसे कि माजा है, ये सब RTS है, रेडी टू सर्व। तो ये माजा वगैरह को जो है तो हम लोग उसमें कुछ गम मिलाया जाता है इसलिए वो गाढ़ा होता है, लेकिन नॉर्मली इसमें 10% ही जूस रहता है, 10-15% मैंगो जूस रहता है। गाढ़ा पीने में इसलिए लगता है कि उसमें गम्स मिलाए जाते हैं, और गम्स मिला के उसको पैकिंग किया जाता है। तो ये स्क्वैश और

0: यस बन गया मैंगो पल्प से, और अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंगो जैम। आजकल बच्चे टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं, तो अब टिफिन में कोई जो है रोटी भुजिया ले जाना नहीं चाहता है, अब चाहता है कि वो जैम हम ले जाएं। तो मैंगो से हमारे उद्यमी भाई भी इसका व्यवसाय कर सकते हैं जैम बना करके, और घर की महिलाएं भी इसको बना करके रख सकती हैं घर में, ताकि बच्चों को भी दिया जा सके। और ये बहुत ही स्वादिष्ट रोटी में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके बारे में भी अब ये बताएंगे। अगला प्रोडक्ट है जो पाँचवा प्रोडक्ट हमने अभी बताने जा रहे हैं, वो है डिहाइड्रेटेड मैंगो स्लाइसेस। आप देखते होंगे कि गाँव में मैंगो या दूसरे सब्जी वगैरह को भी सुखौता बनाया जाता है धूप में रख के, लेकिन धूप में रखने से इसका बहुत ही पौष्टिक ह्रास होता है, जिसमें जो विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। उसका इनहाइजीनिक कंडीशन में वो चूँकि सुखाया जाता है बाहर धूप में, उसमें डस्ट पड़ जाता है, उसमें बहुत सा इन्फेक्शन लगने का डर होता है। तो इस तरह से अभी जो है विकसित की गई है एक कैबिनेट ड्रायर, वो बिल्कुल बंद डब्बा रहता है, उसमें अंदर में हीटर लगा रहता है और फैन रहता है, तो फैन से जल्द जो है उसको मैंगो स्लाइसेस को काट के और उसको डाल दिया जाता है, और डालने के बाद वो ड्राई करके हम लोग ड्राइड मैंगो स्लाइसेस भी पैक करके रख सकते हैं, और वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। और वो हम लोग ट्रेवल में जा रहे हैं तो आप एक पैकेट रख लिया उसमें मैंगो स्लाइसेस है, तो इस तरह से मैंगो स्लाइसेस को सुखौता बना करके, लेकिन हाँ कैबिनेट ड्रायर में ही हो, तब उसका रंग और उसका जो पौष्टिक का तत्व है वो सब इंटैक्ट रहता है। और अगला है कि कैंड मैंगो स्लाइसेस। कैंड मैंगो स्लाइसेस क्या है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि डब्बा में, टीन के डब्बा में वो जो है, तो बहुत सी चीज़ आने लगे हैं अब तो, हर जगह मिलने लगा है। ये टमाटर का प्यूरी मिल रहा है, मटर मिल रहा है, आप हल्दीराम का रसगुल्ला देखते होंगे, इसको कैनिंग बोलते हैं, कैनिंग डब्बा बंदी। तो डब्बा बंदी करके भी हम लोग मैंगो स्लाइसेस को रख सकते हैं, वो साल भर रह जाता है, और वो सबसे अच्छा और बिना प्रिजर्वेटिव का ये मेथड है। और इसके लिए लेकिन कुछ उपकरण वगैरह लगते हैं जिसके में लागत आती है, एक बार उपकरण में की लागत में आप पैसा खर्च कर दीजिए, फिर अपना काम करते रहिए। तो ये सब उत्पाद हैं, उसके छः उत्पाद का वर्णन हमने किया है, इसको अब हम बना सकते हैं। और
1: जी तो कैसे बना सकते हैं डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा जानना।
0: उत्पाद बनाने के लिए देखिए एक एक करके मुझे बताना होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैंगो पल्प, कैसे हम उसको संरक्षित कर सकते हैं मैंगो के पल्प को। तो मैंगो के पल्प को संरक्षित करने के लिए क्या होता है कि पहले उसको आम को बढ़िया से धो लिया जाता है, वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि एक्स्ट्रा डर्ट है वो है उसमें, जो रस निकल जाता है ऊपर से, जो एसिड बोलते हैं उसको, वो निकल जाता है, वो भी धुल जाना चाहिए। और उसके बाद जो है तो उसको बढ़िया से धो करके उसको पीलिंग नाइफ से, स्टेनलेस स्टील का हो, लोहे का बिल्कुल नहीं हो, उससे हम लोग छील लेते हैं। और छीलने के बाद उसको जो है इसमें थोड़ा सा स्लाइसेस काट लीजिए, अगर आपके पास फ्रूट मिल है तो। फ्रूट मिल कुछ नहीं है बल्कि ये मिक्सी जो घर में है ना, उसी तरह का होता है फ्रूट मिल। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी को पल्प निकालना है तो वो स्लाइसेस काट करके वो फ्रूट मिल में डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें वो होमोजेनाइज होकर के बिल्कुल पिसा जाता है। जैसे हम लोग घर में, किचन में मिक्सी वगैरह में अगर छोटे पैमाने पर करके देखना चाहते हैं कोई, तो वो जो है तो घर में मिक्सी में उसको स्लाइसेस को काट करके और उसको बिल्कुल होमोजेनाइज करके वो बना लेते हैं पल्प। अब पल्प निकालने के बाद क्या किया जाता है कि पल्प निकालने के बाद अगर उसमें रेशा है तो थोड़ा मोटे कपड़े से, मोटे जाल वाले कपड़े से उसको छान लेते हैं, इसलिए कि महीन कपड़े वाले जाल से अगर छानेंगे तो वो उसमें आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। उसके बाद ताकि उसमें इसलिए छानना ज़रूरी है कि अगर कुछ आम में रेशा वगैरह होता है तो रेशा वाले आम को एक तो लेना ही नहीं है, और जो रेशा वाला आम नहीं है जैसे जरदालू है, उसके बाद मालदा है, जो है ये क्या नाम है, फाजली है, मल्लिका है, ये सब को हम आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मल्लिका और फजली तो काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं, इसको काटने में भी स्लाइसेस उसमें ज़्यादा स्लाइस निकलता है, पल्प पार्ट ज़्यादा रहता है और गुठली की पार्ट कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा सूटेबल है। वो करके उसको जो है हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको जो है उसमें थोड़ा देर उसको चूल्हा पर चढ़ाते हैं, यानी वो फॉर ए फ्यू मिनट्स ताकि उसमें से अंदर से मतलब 60-65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है उसको दो तीन मिनट, जबकि और लेमैन लैंग्वेज में ऐसा बताएंगे कि आम के जो ये है पल्प है उससे भाप जब निकलने लगे

बिल्कुल हल्का भाप निकलने लगे, मतलब 100 डिग्री तक नहीं टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, भाप जब निकलने लगे तो उसको उतार लीजिए, तो इसको पास्टोरीकरण कहते हैं। पास्टोरीकरण हुआ, ये पास्टोराइज कर लिया उसको, उसके बाद उतार लिया, और उतारने के बाद इसमें परिरक्षक डालते हैं, रासायनिक परिरक्षक। इसमें हम लोग नॉर्मली पोटाशियम मेटाबाइ सल्फाइड या सोडियम बेंजोएट डालते हैं। सोडियम बेंजोएट अगर डालना है, चूँकि पल्पी है इसलिए सोडियम बेंजोएट ज़्यादा सुटेबल होगा, तो सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड जो होता है वही होता है इसमें, तो वो उसमें 0.02% 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी एक ग्राम जो है पाँच लीटर अगर पल्प है तो आप उसमें सिर्फ एक ग्राम डालेंगे, आप 1000 मिलीग्राम एक ग्राम डाल करके उसको स्वच्छ जल में, यानी पानी है उसको बॉयल कर लीजिए, आप बॉयल करके उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद उसमें उसको पूरे पल्प में उसको मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद जो है उसको फिर हम लोग अगर हेड स्पेस छोड़ा है तो थोड़ा सा पोटेशियम मेटाबाइ सल्फाइड भी ऊपर में थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद बंद करके उसको सील कर देते हैं, और इस पल्प को हमने प्रिजर्व कर लिया। अब ये पल्प अगले साल तक के लिए प्रिजर्व हो गया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी, मान लिया आपको स्क्वैश बनाना है या आरटीएस बनाना है या जैम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो ये आप इससे निकाल के व्यवहार कर सकते हैं। जब आम का सीज़न ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसको निकाल करके आप व्यवहार कर, नॉर्मली तो वही करेंगे लोग कि जब प्रिजर्व करेंगे तो उसको जब तक आम चल रहा है उसी से हम अपना बना सकते हैं जो भी बनाना हो उत्पाद, तो उस तरह से वो हम लोग सील करके रख देते हैं। और अब स्क्वैश देखिए, अब स्क्वैश पर आते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्क्वैश। ये बीवरेजेस में आता है, पेय पदार्थ, नॉन फर्मेंटेड बीवरेजेस। तो अनफर्मेंटेड बीवरेजेस में दो आते हैं, स्क्वैश एंड आरटीएस। तो स्क्वैश बनाने के लिए क्या है कि ये पल्प को हम लोग, मान लिया अगर हम एक लीटर पल्प को हमने लिया और लेने के बाद उसको जो है उसका डेढ़ गुना चीनी का शीरा बना लेते हैं, डेढ़ गुना चीना, दुगना इसलिए नहीं देते हैं कि ऑलरेडी इसमें चीनी है। ये आम मीठा आम है, पका हुआ आम है, ये कच्चा आम अगर हम लेंगे तो कच्चे आम में फिर हमको चीनी दुगना मिलाना पड़ेगा, तो 1.5 kg चीनी इसमें हम डालते हैं, और इसमें नहीं डालेंगे, मतलब अलग से शीरा में डालेंगे, शीरा बनाने के लिए उसका हाफ पानी डालेंगे, यानी अगर 1.5 kg चीनी लिया है तो उसमें 750 मिलीलीटर पानी मिला करके उसको गर्म करके शीरा हम लोग तैयार कर लेंगे। अब है कि अगर हम जब शीरा मिला रहे हैं तो हल्का सा उसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, 1 kg चीनी अगर है तो उसमें 4 g सिट्रिक एसिड, चूँकि हमने 1.5 kg चीनी दिया है तो इसलिए हमको 6 g सिट्रिक एसिड को पानी में घोल के उस उबलते हुए नहीं, मैंने गर्म जो हम चढ़ाए हैं गर्म करने के लिए ताकि चीनी उसका घुल जाए पानी में, तो उसको हम लोग डाल देते हैं सिट्रिक एसिड को, और सिट्रिक एसिड से क्या होता है कि वो चीनी की जो गंदगी है अगर तो वो भी निकल जाती है, उसमें जो कीड़ा मकोड़ा मान लिया अगर आ गया है तो वो भी निकल जाता है। उसके बाद जब शीरा ये बन जाता है हमारा, चीनी घुल जाता है, सिर्फ चीनी घुलाना है, शीरा को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, और उसके बाद जब इसको जो है हम लोग छान लेते हैं, और छानने के बाद धीरे धीरे उसमें वो जो हमारा पल्प है 1 kg पल्प है, पल्प को किसी बर्तन में डाल देते हैं, बोतल से निकाल के पल्प में डाल देते हैं या डब्बे से, और उसके बाद 1 liter उसमें धीरे धीरे हम लोगों को ये शीरा जो है चीनी का जो सिरप है उसको धीरे धीरे मिलाते हैं और चलाते जाते हैं ताकि वो उसमें विलीन हो जाए, सारा शीरा जो है धीरे धीरे उसमें घुल जाए, और घुलने के बाद ये जो क्वांटिटी मेरा 1 kg से बढ़ के 2.5 kg हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब ये शीरा मेरा ये स्क्वैश तैयार हो गया। चूँकि परिरक्षक हमने पहले से दे रखा है उसमें, इसलिए दोबारा परिरक्षक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं आम का तो उसमें हम इस समय परिरक्षक दे सकते हैं, तो उसमें 0.06% डालते हैं पोटाशियम मेटाबाइ सल्फाइट, इसमें लिख लीजिए, चूँकि इसमें पानी मिल गया है, इसमें चीनी मिल गया है, हालांकि चीनी भी प्रिजर्वेटिव है लेकिन उस क्वांटिटी में हम नहीं दे रहे हैं जितना उसमें प्रिजर्व हो सके, तो उसमें एक थोड़ा बहुत जो है प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, तो 0.06% यानी 600 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम 1 liter में डालना। तो अगर ये 2 liter हमारा बना है पूरा चीनी का सिरप और ये गूदा मिलाने के बाद, तो उसमें हम लोगों को 1200 मिलीग्राम यानी 1 g से थोड़ा ज़्यादा 1.25 g के करीब
उसको हम लोग पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, इस चीज को जान लीजिए। उस समय हम लोग पल्प को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम

0: हम बेंजोइट डाले थे, अभी हमें उसको पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड डालना है और डाल के उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके स्टरलाइज्ड बॉटल में, अगर प्लास्टिक का बॉटल है तो पानी से धो के उसको धूप में अच्छा से सुखा के, और उसको जैसे पानी का जो बॉटल मिलता है हम लोग आरओ वाटर वगैरह पीते हैं उसमें भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको करके उसमें जो है बढ़िया से स्वच्छ जल से धो के धूप में सुखाने के बाद हम लोग जो है उसको उसमें भर देते हैं, भरने के बाद कैप को जो है सील कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्वैश बन गया। अब स्क्वैश में अगर मुझे व्यवसाय करनी है तो मुझे लाइसेंस लेना होगा, FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की भी प्रक्रिया अब गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हर शहर में होता है, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ये इसका पता लगाना होगा कि भाई हमने ट्रेनिंग लिया है या सीखा है, हमारे यहाँ किसी विश्वविद्यालय सबौर में ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग आप ले लीजिए, सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उससे आपको बैंक का लोन भी मिलने में आसानी होगी और आपको लाइसेंस भी मिलने में आसानी होगा। तो ये आप करके व्यवसाय भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगर मान लिया RTS बनाना है आपको, नुक्कड़ पर छोटे छोटे 100-150 ml में आपको बाहर भेज करके, जैसे लोग फेंटा कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं लोग, तो अब ये लोग जान रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गैस के और कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या है कि आप लोग बेवरेज बना इसी स्क्वैश को अगर 3 times आप मिला देते हैं पानी इसमें, तो ये बन गया RTS। और RTS बनाने के बाद उसको बॉटलिंग कर दीजिए, क्रॉन कॉर्क सीलिंग कर दीजिए, और उसके बाद एक बड़े से पतीली में डाल करके उसको फिर से स्टरलाइज करना पड़ता है बोतल के समेत, और इसको जो है तो 70-80 degrees centigrade पर कम से कम 15 minutes तक उसको बॉयल करते हैं। तो उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें जो बॉटल है वो हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इसमें जाने के बाद बॉयलिंग वाटर में जो पानी में जाएगा ये उबलते पानी में, गर्म पानी में, तो वो फट सकता है, तो हीट रेसिस्टेंट बॉटल लेना होगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें जहाँ पर आप मान लिया सेल के लिए डाल रहे हैं किसी नुक्कड़ पर, तो उसको फिर से बॉटल को वापस लेना होगा, ये एक है प्रॉब्लम। और ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान है शीशे के बोतल में करना, इसलिए कि उसको आप फिर से स्टरलाइज कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग RTS भी बना सकते हैं घर में। अगर आपके पास स्क्वैश का बोतल रखा हुआ है तो आप कोई आपके यहाँ कोई आया है गेस्ट आया है तो आप उसमें 1/4 जो है आप ले लीजिए स्क्वैश ढाल लीजिए ग्लास में, और 3/4 जो है 3 hissa पानी उसमें मिला के आप उसमें पानी से चम्मच से चला के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हाईली न्यूट्रिशस हुआ। ये वही चीज़ फ्रूटी में भी है, फ्रूटी जो पैक करते हैं उसका जो पैकिंग इक्विपमेंट्स है, उसका जो पैकिंग ये है जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कॉस्टली है, 25-30 lakh रुपए का आता है वो सिर्फ पैकिंग के लिए। चीज़ उसमें वही है जो आपको हमने बताया बनाने के लिए, वैसे ही कर सकते हैं आप। तो ये हो गया है ना। अब एक चीज़ और बताते चले हम कि ग्रीन मैंगो के बारे में हमने नहीं बताया।
1: जी जी।
0: अभी हरा आम का देखिए सीजन है, और हरा आम बहुत टूट रहा है, गिर रहा है, आंधी तूफान आना नेचुरल है, वो आता ही है इस समय में, तो उसको हरा आम के लिए भी इसी तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं पल्प को। लेकिन इसमें क्या है कि आम को छीलने के बाद उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं, और बॉयल करने के बाद उसको जो है फिर उसको निकाल करके हाथ से बिल्कुल उसका पल्प निकाल कर उसको छान लेते हैं, और बॉयल जब हमने कर लिया है तो उसको पास्टोरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, बॉयलिंग से वो निकला है पल्प, क्योंकि कड़ा पल्प रहता है कच्चे आम में, और बॉयलिंग के बाद उसको निकाल दिया, और निकालने के बाद उसको उसी तरह से प्रिजर्वेटिव हम लोग डाल देते हैं उसमें जैसे हमने पके आम के लिए बताया, और क्वांटिटी वही रहेगी उसकी भी, सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड। स्क्वैश बनाने के लिए भी सीख वही विधि अपनाई जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि स्क्वैश बनाने के लिए उसमें हमने 1.5 kilo चीनी लिया था, क्योंकि आम मीठा होता है पका हुआ आम, तो कच्चे आम के लिए मुझे 2 kilo चीनी लेनी होगी, और उसमें भी सैट्रिक एसिड डालना है, क्योंकि चीनी डाल रहे हैं तो सैट्रिक एसिड उस चीनी को खट्टे मीठे में बदलने के लिए उसको सैट्रिक एसिड को डालना पड़ता है, और चीनी की सफाई के लिए भी, और उसमें जो गंदगी है वो भी निकल जाए उसके लिए भी करते हैं। और फिर उसके बाद उसको उसमें तभी है कि ग्रीन मैंगो में हम लोग चूँकि रंग नहीं होता है उसमें, तो उसमें हरा आम का जो है एसेंस भी डालते हैं और कलर भी डालते हैं, तो इसमें कलर और एसेंस का जो परसेंटेज है उसमें 0.001% है, हल्का बिल्कुल। अब वो देखिए आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जो बाज़ार में खाने का रंग मिल रहा है, रंग जो जनरली जो हलवाई लोग यूज़ कर रहे हैं कि वो उठा के ले आते हैं रंग और डाल देते हैं, उसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे पैकेट पर कि दिस इज़ नॉट फॉर फूड पर्पस, तो उसके लिए अलग से बुश कंपनी का या और भी बहुत सी कंपनी है, तो उसका जो है तो वो

0: रंग होता है, अलग से आता है वो खाने वाला रंग। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप देखिएगा कि वो अलग से आता है, 2 ग्राम 3 ग्राम का ही पैकेट आता है, ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए कि बहुत कम पड़ता है वो। तो घर में किचन में रखने के लिए उतना ही बहुत है। तो ये रंग भी और एसेस भी, एसेस भी आपको आप देखिएगा कि एसेस जो है FFB कंपनी का हम लोग यूज़ करते हैं, वो कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेस भी 0.001%, कलर डालना अगर है तो 0.001%, एप्पल ग्रीन कलर डालना होगा, एप्पल ग्रीन कलर डालना है ग्रीन मैंगो के लिए। और कलर जो कलर तो राइप मैंगो में तो कलर रहता ही है, इसलिए उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया RTS स्क्वैश और मैंगो पल्प को कैसे हम पके आम का और कच्चे आम का दोनों का प्रिजर्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने बता दिया
1: जी। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी और विशेष जानकारी के लिए, और आशा करते हैं आम को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं, सभी लोगों को ये आम फल का राजा है इसलिए काफ़ी पसंद होता है, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिकता भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे लेकर, इसके उत्पाद को लेकर क्या कुछ हम बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उत्सुकता रहती है जो आपने जानकारी दी। तो आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को इस वार्ता को सुनकर लाभ मिलेगा।
0: विशेष जानकारी के लिए आप हमारे विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, हमारा डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, खाद्य विज्ञान एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे आगे भी पर्सनली मिल सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंसी भी देते हैं किसानों को, और इन उद्यमी हमारे यहाँ से बहुत से उद्यमी बने हैं, काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे।
1: तो श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
8: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना? ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में

0: ही होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद सुजाता जी।
6: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं?
7: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
6: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
7: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
6: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
7: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
6: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
7: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
6: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
7: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछूंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको

0: हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टेबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की भी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरिन की टेबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि

0: तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग से फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, ANM, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है, और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपके पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास इंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
7: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि न नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में। और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखें तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर एमपी मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्रॉल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
0: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
1: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। यह घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है, जिनमें फ्लेक्सुओसिस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगन नार्डस, सिम्बोपोगन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी कोमल व गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
0: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
1: लेमन ग्रास भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
0: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लैटेराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
0: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जानना चाहेंगे, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए।
1: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी, तो सिम शेखर अभी वैरायटी है। इसका जो है उपज क्या है, 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नीमा, CKP 25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास की कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे।

0: करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो?
1: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: और डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
1: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
0: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
1: रोपण का कार्य वर्ष में दो बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहां सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गोमूत्र, एक भाग गोमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है
0: जी। तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
1: लेमन ग्रास शाकीय फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2-2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटाश तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटाश तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक 2 महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
0: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
1: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार

0: फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3 से 4 कटाइयों प्रति वर्ष।
1: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
0: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45 से 50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
0: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग हैं लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60 से 70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3 से 4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
1: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
0: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है। तो आसवन उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए। इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45 से 50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है, तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या होता कि 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
0: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
0: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
0: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं।

0: जिससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचाता है, त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
1: जी, तो श्रोताओं आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फ़ायदे हैं और इसलिए बाज़ार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। और व्यावसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फ़ायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन पर। मैं हूं अनु और स्वागत करती हूं हर रोज की तरह हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम आज खास विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं, धान में पोषक तत्व प्रबंधन। और इस विषय को आज हमारे बीच लेकर आए हैं डॉक्टर राजीव रक्षित। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि बीज स्थली में उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए।
3: नमस्कार किसान बंधु, जहाँ तक धान की बात है, बीज स्थली हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी तरह इसका बुआई नहीं करते धान में, हम लोगों को पता है। तो बीज स्थली में जहाँ तक की बात है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है किसी भी बीज स्थली में, उसकी क्यारियों में हम कोशिश करेंगे कि 1 kg नाइट्रोजन, जिसे हिंदी में नेत्रोजन कहा जाता है, 1 kg पोटाश और 1 kg स्फुर या उसे फास्फोरस कहा जाता है।
1: अच्छा।
3: तो हम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसको देने की कोशिश करेंगे, जब हम मिट्टी की प्रिपरेशन या फिर जब शुरुआत करेंगे, जब बीज स्थली बनाने की क्यारियों को तैयार करेंगे।
1: जी।
3: फिर जब बीज गिरने के 15 दिन बाद हम करते हैं कि उसमें 1 kg नाइट्रोजन और देने की कोशिश करेंगे, और नाइट्रोजन जो है बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और सब किसान बंधु इसी विषय की जानकारी अवश्य रखते हैं कि यूरिया जो है, जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है या नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम ये पाएंगे कि बीज स्थली में या बीज गिराने के 15 दिन बाद हम 2.2 किलोग्राम यूरिया का बीज स्थली में उपनिवेशन करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन या फिर उस बीज स्थली में डालेंगे।
1: जी, तो यहाँ पर उर्वरक प्रबंधन आपने जाना, और बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब की मात्रा, यानी कि खाद की मात्रा की हम बात करते हैं, अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए खाद की इसमें?
3: अब ये जो है विषय जो है आपकी, कि ये आप डिपेंड करेगा कि क्या कौन से सारे प्रभेद आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: अच्छा।
3: जैसे अगर हमने कहा कि अगर ऊपरी जमीन है आपकी, तो वहाँ कुछ अगर जल्द पकने वाली कुछ प्रभेद रहेंगे, तो अवश्य किसान भाई ये करेंगे कि 80, 40 और 20 के हिसाब से, मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे। अगर

0: कुछ संकर किस्म है जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, वो उन्नत मान के किस्म है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा कि जल्द पकने वाली प्रभेदों में 80-40-20 के हिसाब से करेंगे, पर जैसे ही संकर किस्मों का अगर इस्तेमाल करने लगे तो वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा हम 20 kg और बढ़ा देंगे। तो इस अनुसार अगर संकर किस्म है आपके पास तो 100, 40 और 20 kg के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का इस्तेमाल आप करेंगे। कई किसान ऐसे हैं जो भागलपुर या इससे जुड़े हुए जिलों में सुगंधित किस्में लगाते हैं
1: जी।
0: सुगंधित किस्मों में आपके दो तरह के किस्में और आएंगी, एक बौनी किस्म होगी, एक हो सकती है लंबी किस्में। तो बौनी किस्मों में मूलतः हम 80, 40 और 20 kg NPK के हिसाब से ही चलेंगे, पर जो अगर लंबी किस्में हैं जिनको जिनके गिरने का डर रहता है तो इसलिए हम वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ी कमी कर देंगे, और बौनी की लंबी किस्मों के लिए 40, 30 और 20 kg NPK का इस्तेमाल हम प्रति हेक्टेयर के मात्रा में करेंगे।
1: और इसके बाद जो अलग खाद हम देते हैं तो उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जैसे हम ये कह सकते हैं कि अलग खादों में धान के लिए सबसे मूलतः जरूरी है आपका जिंक सल्फेट। जिंक की कमी मूलतः धान में पाई जाती है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जिंक की कमी है, और इस बात को ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि धान की फसलों में कहीं जिंक की कमी ना आ जाए। तो 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय एवं कदवा जब करेंगे, जब कादो करेंगे उस फील्ड को, तो उसके पूर्व खेत में हम इसको मिला दें ताकि किसी भी तरह की जिंक से जुड़ी हुई समस्याएं ना उत्पन्न हो। इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जब हम फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर किसान भाई कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य ये कोशिश करें कि 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वो रोपाई के 20 से 25 दिन पहले कंपोस्ट का इस्तेमाल कर ले।
1: जी, और किन फसल चरणों में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए?
0: जहाँ तक फसल चरण की बात है, हर एक किसानों को ये पता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम एक बार में नहीं कर देते। हम कोशिश करते हैं कि जो स्पेशलाइज स्टेज है जहाँ पर फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी जगह उसका इस्तेमाल की जाए। तो अगर फसल चरण की बात कही जाए धान में, तो नाइट्रोजन की आधी एवं पोटाशियम एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा जब हम कादो के समय तथा 1/4 नाइट्रोजन की मात्रा रोपाई के 20 से 30 दिन बाद तथा शेष जो नाइट्रोजन बचेगी हमारे पास वो बाली निकलने के वक्त ही हम उसका इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल कंडीशन में हम ये करें, साधारण मूलतः तो यही किया जाता है। अगर आप किसान भाई के पास ऐसी कोई प्रभेद है जो 150 दिन लेगी या 150 से ज़्यादा दिन लेगी तो ऐसे क्षेत्र में वो नाइट्रोजन का 1/4 मात्रा रोपाई के पहले इस्तेमाल करें, दूसरा 1/4 मात्रा रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, तीसरा जो है वो 5 से 6 सप्ताह बाद इस्तेमाल करें, और अंतिम जो 1/4 बचेगी वो 7 से 8 सप्ताह में जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस जगह कि खड़ी फसल में नाइट्रोजन का व्यवहार करने के पूर्व खेत से आप अवश्य आपके खरपतवार जो है उसको निकाल दें, या यदि पानी का जमाव बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी निकासी कर दी जाए। इन बातों का ध्यान आप फसल के चरणों में रखिए जब आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे।
1: जी, तो आपने सुना किसान भाइयों कि जल जमाव नहीं रहना चाहिए आपके खेतों में, और आप पानी की निकासी का व्यवस्था ज़रूर रखें। अब जैव उर्वरक की बात करते हैं तो क्या इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: अभी भारत सरकार या कई राज्य सरकार भी पारंपरिक खेती की बात कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अवश्य ये रेकमेंड करते हैं, हम अवश्य ये किसानों को बताते हैं कि समेकित कृषि प्रणाली का उपयोग करें। तो इनके देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि धान में आप अजोला का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं, या इस्तेमाल किया भी जाता है या कुछ लोग कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं।

0: वायुमंडल में जो नेत्रजन आपका है उसका इस्तेमाल, उसको खींच कर अपने पास रख लेते हैं, या सिंपल भाषा में कहे तो उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं मिट्टी में। कुछ ऐसे हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु। उसके साथ साथ आप धान की उत्पादकता अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो अवश्य ही एजोला के साथ साथ कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका उदाहरण हम कह सकते हैं एजो स्पाइरिलम है, उसके अलावा नील हरित शैवाल है जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि फॉस्फोबैक्टीरिया जो फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाएगी, ऐसे बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है आज। और साथ ही साथ माइकोराइजा भी है, किसान इस माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाया जा सके। तो यही सब है कि आप रासायनिक के साथ साथ जैविक खाद का भी समेकित तरीके से इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करें ताकि धान की उत्पादकता भी बनी रहे और भविष्य में हमारी सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बने रहे। जो मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास जो खाना है उसको हम इस तरह बचा के रखें ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिलते रहे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, मुझे लगता है कि जितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उतने अच्छे से आप सुनेंगे और इसे अपने व्यवहार में ज़रूर लाएंगे तो आप अच्छे से धान में पोषक तत्व प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। इसे फ्रिक्वेंसी याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 जून के दौरान सामान्यतः 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई

डेढ़ मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि पुराना हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है, वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड से धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है। और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है। और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीजन है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है, पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो धीमा फ्लो होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो खून आता है वो काला आ सकता है। क्या होता है कि धीमा फ्लो है तो खून जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में रुक रुक कर अंदर डार्क हो जाता है और अक्सर ये लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है। और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना, तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर PCOS जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है, तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की

वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का एक सिम्टम हो या फिर उसका ये एक साइन हो, यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो। ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफी अलग होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हेवी फ्लो भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फाइब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं, तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी दिख सकता है, और ख़ासतौर से तब जब फ्लो रुक रुक कर आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो ये कंडीशन थोड़ी ज्यादा पेनफुल होती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक तो काला खून आता ही है, इसके अलावा बहुत ही इरेगुलर ब्लीडिंग होती है और जिसमें कि डार्क ब्लड भी हो सकता है, और कभी कभी आपको कमजोरी लगती है या फिर नौजिया लगता है। इसके अलावा आप पेशाब जाते हैं या स्टूल पास करते हैं तब भी आपको दर्द होता है। इसके अलावा आप पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में भी आपको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज्यादा तेज पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो भी ये हो सकता है कि लक्षण हो एंडोमेट्रियोसिस का। और अगर आपको ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं, हर बार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न आपको नोटिस कर रहे हैं, कभी बहुत स्लो है फ्लो और कभी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, इसके अलावा डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है कि इतनी ज़्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इसे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हों। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट ख़राब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसी कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज़्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज़ के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप
हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार, और सुनते रहे 90.8

0: 8FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है, और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से, जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
0: सर, आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
3: नमस्ते किसान भाइयों। सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है, तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला का जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे, और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सो सूखने लगती हैं, और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या वाइट फ्लाई है, इसके चलते होता है। तो इसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है, तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए, अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यू ल्योर ट्रैप है, उस क्यू ल्योर ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है, और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का, जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है, उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको उसके बचाव करने के लिए हम जो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें

एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो, या लिखते जो हम लोग हैं, उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला की फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है, आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं, मतलब दोहराते हैं, तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों अगर ये भी उपलब्ध है आपको नहीं है, तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है उसकी जो है 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टीकर मिला करके इसको छिड़काव करें, तो इससे जो है कि आपको इसे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और कीट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झांका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं, तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल भृंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल भृंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं, और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो ज़मीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो ज़मीन से सटे हुए रहता है, तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाता है, और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो ख़राब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है, एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है

से 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से ये जो लाल भ्रिंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी। तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट

क्या होता है, ये आपका दो तरह से क्षति करता है। एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, तो ये इसके जो शिशु है उसी में उसके बढ़ने वाला पोर्शन में ही उसको काट देता है। और काट देने के बाद क्या होता है कि जो जो उसको बढ़ने वाला जो कली होता है वो चूँकि उसी को काट देता है, तो पुनः जो है कि नीचे से या बगल से कली निकलती है, जिसके चलते जो है कि उत्पादन पे बहुत मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये है शुरुआती कंडीशन में, और बाद की कंडीशन में जो है कि आपके फल को ये टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है, जो भाग है ऊपरी वाला भाग, वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है, चूँकि उसको काट देते हैं इसके शिशु। तो अब इससे हम लोग कैसे इसका बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपके अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंकें, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें। तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये इमामेक्टिन बेंजोएट पुनः जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली के तरह होता है। तो पहले इसको हम लोग को घुला लेना है, और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है, और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो 1 रुपये वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए, और पुनः उसको अच्छी ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय 4 बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC। यह एक लिक्विड के फॉर्म में ये कीटनाशी पाया जाता है, और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर सक इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोक्जम का जो है 35 AC का 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोक्जम 75 AC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो आधा 1 ml प्रति लीटर पानी में, साथ में हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है। स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से, ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है, और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए स्टिकर आप ज़रूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसान भाइयों पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो भेन होता है वो पीला दिखता है, और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी का जो पत्ती है वो चितकावर टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है। और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है,
तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है, और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी, ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके

0: खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे, ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब किसी चीज से काटिए, और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है, उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूँकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे, तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है, और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है, और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है, और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार

तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 जून के दौरान सामान्यतः 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
2: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवम्बर, जैसे 15 अक्टूबर

0: से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। और बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊंचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपस्थित धान के बौने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहां सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
1: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तिरुसुरुष के किरने की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यूनतम संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपस्थित प्रजातियों में गौतम, ब्रिचारिया, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है, तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपस्थित किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियां खड़ी तथा हरी होती है, इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि परिपक्वता अवधि 170-175 दिन की होती है। और दूसरी जो प्रभेद है वह रिचारिया है, यह बौना प्रभेद 155-160 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं, इसकी उपज क्षमता 55-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तीसरा प्रभेद सरोज है, यह बौना प्रभेद बोरों में 160-170 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके दाने लंबे तथा पतले होते हैं, इसकी उपज लगभग 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ठंड प्रतिरोधी है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें होंगी अनुशंसित किस्मों की, अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे, कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
0: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में एक हेक्टेयर के 10वें भाग के लिए 10-15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरो ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटे या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबो कर रखने के बाद नमी वाले बोरे में एक दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेयस्कर होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं, किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
0: बोरो के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है और बीज दर हम लोग को 1 हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर एक या एक से दो बिचड़े रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक वर्ग मीटर में 35 से 40 मीटर झूर रखें।

0: रोपने के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएं तो वहीं पुनः रोपनी कर देना चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए, जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफोर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफोर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25-30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं सस्क्रियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% इसी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5-7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2-3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह जो रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए, जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बालू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधी कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधी कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल के भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30-35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13-14% नमी तक सुखाकर भंडारित कर देनी चाहिए। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बोरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें पौधों की सिंचाई की समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियाँ पर एकत्र उसको गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं और प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचाए जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान किसानों के बीच हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज के किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है, लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है। तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहां जल जमाव की समस्या रहती है, जहां हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं उसकी खेती करके बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: जन कल्याण के।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
6: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
7: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
9: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमा हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
7: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
9: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई,

0: तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके के होती हैं। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसे ही पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लाविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पर लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पर जो धान होता है उस पर सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं, तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके, और उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारे मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
0: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया हमने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हमने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या क्या, हमने पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया, तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और

पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले तो वो 20 से 25 दिन पुराना था, यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी, तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पर, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ। और विशेषता ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में।

0: तो लेकिन श्रीविधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे, तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन 3 में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियाँ होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए।

0: ये अपने ज़मीन पे पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डेपोक नर्सरी, तो ये डेपोक नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगे, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी, तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से, तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोक नर्सरी। तो ये डेपोक नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकीनेस होती है, तो जब आप डेपोक नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजुअली डेपोक नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: मैम, तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीवी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट।

0: भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
4: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
5: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है, हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं। बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं, उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। उसी के तरह बैसिलस हो गया, या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
4: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
5: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया, फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है, और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में

0: सिलस काम करता है, तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है, तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है
0: जी।
1: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया

0: ये जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है, और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड, या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा, उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो, और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहाँ पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का, उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंजीसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक

0: कारक, जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं, बैसिलस, सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके उनको बोल देंगे कि बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो ज़रूर वो आपको कोई बायोफर्टिलाइज़र दे देंगे या कोई बायोपेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, टाल्क लिक्विड दोनों भी, आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं और वो सभी जगह पर अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाज़ार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है, जो बाकी के जैव नियंत्रक कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहाँ पर थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज़्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये उपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves

0: our children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो कीटनाशी के बारे में, यानी कि नैनो पेस्टिसाइड के बारे में। ये क्या है और आजकल क्यों कृषि विशेषज्ञ विशेष सलाह दे रहे हैं कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे समय से किसान भाई बहन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो आखिर अंतर क्या है नैनो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: जी, थैंक यू मैम।
0: सर, आपसे सबसे पहला सवाल, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कि नैनो पेस्टिसाइड यानी कि नैनो कीटनाशी क्या है?
5: नैनो पेस्टिसाइड, जिसको कि नैनो कीटनाशी भी बोलते हैं, यह उन्नत इंजीनियरिंग कृत फार्मूलेशन है जो नैनो तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है, और इसमें जो कीटनाशक तत्वों का आकार जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में समाहित रहता है, या डायरेक्ट इसमें या प्रत्यक्ष रूप से नैनो कण को यूज करते हैं, और साथ ही साथ यह जो है ना कुशल एवं लक्षित होता है, उसे नैनो कीटनाशी कहा जाता है। जैसे नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऑक्साइड इत्यादि इनके उदाहरण माने जाते हैं।
0: ये इतना ज़रूरी क्यों है?
5: ज़रूरी अभी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई, जैसे पहले परंपरागत जो कीटनाशी होते थे उसमें कुछ बहुत सारे महत्व बिंदु है जिसको कि इसमें नहीं समाहित किया गया है, जैसे कि उपयोग करने का तरीका, उसका मात्रा, यह सब इसमें कम हो गया है। तो जैसे मुख्य सब इनकी विशेषताएं हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पर काम करता है, या जहाँ पे चाहिए जितना उतना ही यह काम करता है। यह इसका बड़ा मुख्य पहलू है कि नैनो कीटनाशी का। साथ ही साथ यह अत्यधिक कुशल होते हैं, जिसको कि कह सकते हैं कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं, कि जो परंपरागत जो हम कीटनाशी यूज करते थे उसके तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसका जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावश्यक उपयोग जो आने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जो होती थी इसमें कम हो गया है, परंपरागत में ज़्यादा होती थी, और अगर मात्रा कम होगा तो यह पर्यावरण पर भी इसका जो है न प्रभाव जो है न पॉजिटिव होगा या निगेटिव कम होगा, और खेतों में नैनो कीटनाशी का अवशेष की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि प्रारंभ में ही इसकी मात्रा कम होती है, और जब ये नियंत्रित जो करते हैं वह पूरा लक्ष्य बेस्ड काम करते हैं, और उपयोग में जो मात्रा होती है बहुत कम, लगभग जो है ना जो परंपरागत कीटनाशी था उसका लगभग 10% अप्रॉक्स हम इसमें यूज करते हैं, और जो है यह धीरे धीरे काम करता है जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है और इसमें अवशिष्ट बचने का चांस कम हो जाते हैं।

0: और निश्चित तौर पे है कि जब हम चीज़ को कम उपयोग करेंगे, कम खर्च होगा, तो इससे जो है ना किसान भाई का जो जो खर्च आता था कम हो जाते हैं, और जो है ना जो प्रतिरोधकता जो था कि बहुत सारे कीट जो है ना जो कीटनाशी थे उससे प्रतिरोधी हो गए थे, तो इसमें जो है ना प्रतिरोधकता जो है यह भी कम है नैनो कीटनाशी में, और इससे कृषि उपज को बढ़ाने में ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम इसका उपयोग टारगेट वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ यह हम स्थिति परिस्थिति और बुद्धिमता से नैनो कीटनाशी का उपयोग करते हैं।
1: जैसे कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल टारगेटेड काम करता है और बहुत कम मात्रा में बेहतर काम करता है, तो सर आप ये बताइए कि काम कैसे करता है नैनो पेस्टिसाइड?
0: जो कीटनाशी होता है यह सर्वप्रथम जब हम उस पर जहाँ चाहिए जब कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सर्वप्रथम होता है कि कीट के जो शरीर का हिस्सा है, जो बॉडी का पार्ट है, उससे जो है ना चिपकता है, और धीरे धीरे उनके बॉडी पे जो क्यूटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं इन कीड़ों पे, उसको जो है ना उससे इंट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे कीटों के शरीर के अंदर जाता है, और जो कि जो शरीर जो कीट के शरीर में जो पानी रहता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंतोगत्वा शरीर में डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि वह जो है ना कीट मरने लगता है, क्योंकि जो हम कीटनाशी का जो प्रयोग करते हैं ना इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो हम अपने सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो और उसका सतह क्षेत्रफल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कार्य क्षमता सतह क्षेत्रफल का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और इसीलिए जो है ना इसका यह जो है ना कि वह टारगेटेड होते हुए काम करते हैं। तो ओवर ऑल अगर आप हम देखें तो यह क्या करता है कि जब हम डालते हैं तो लक्ष्य पे काम करता है, या पत्तियों के सतह पे जो कि चिपक जाते हैं तो वहाँ भी इंसेक्ट जब बैठ जाते हैं तो उससे उसका जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना सक्रिय तत्व इंसेक्ट के शरीर में जाते हैं और उसका शारीरिक क्रियाएं बाधित होती है और अंतोगत्वा उनका मृत्यु होने लगता है।
1: जी सर, आपने ये तो बताया कि नैनो पेस्टिसाइड काम कैसे करता है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैनो पेस्टिसाइड बनाया कैसे जाता है?
0: नैनो जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है यह मुख्यतः दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष नैनो कण का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ धातुएं जैसे नैनो जिंक ऑक्साइड है, तो आप जिंक ऑक्साइड को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही लेके उसको जो है ना छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो है ना कीट जो होते हैं मरने लगते हैं, तो यह प्रत्यक्ष नैनो कणों का उपयोग है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो है ना नैनो इनकैप्सुलेशन करते हैं, नैनो का कण लेते हैं, उसके अंदर जो कीटनाशी होता है परंपरागत कीटनाशी होता है उसको उसके अंदर में कैप्सूल की तरह रखते हैं, तो इसका क्या होता है कि कैप्सूल में बंद हो जाता है, तो इससे कीटनाशक जो है ना जो निकलता है कैप्सूल से धीरे धीरे निकलता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और कभी कभी जो है ना हम लोग कीटनाशक को नैनो इमल्सन के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ हुआ जैसे तेल वगैरह में नैनो के रूप में यूज करते हैं, जो सक्रिय मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जिससे कि जो है ना मिल के मुख्य सक्रिय तत्व और जो नैनो कण होते हैं या कीटनाशक को के तरह काम करते हैं, और जिससे कि अंतोगत्वा कीट का मृत्यु हो जाता है।
1: सर अब आप ये बताइए कि नैनो पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं?
0: मुख्यतः जो है कीट नैनो कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक रूप में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें हम कार्बनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के तेल होते हैं और वह उसके लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है, तो उसको लेके हम यूज करते हैं। दूसरा है कि अकार्बनिक के रूप में, जैसे कि मतलब अकार्बनिक धातु के जो है ना जो होते हैं उसको डायरेक्ट हम जो है ना नैनो कण बनाते हैं। नैनो कण बनाने का मतलब हुआ कि उसका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के रेंज में लाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं।

0: और वह जो है ना धातु के रूप में होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, जैसे नैनो सिल्वर हुआ, तो यह जो है ना उसमें बहुलता से कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है और वह प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है जहाँ पे उसको मारना चाहिए।
1: जी सर, तो अभी आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और जब नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो ऐसे भी हम जब आम कीटनाशकों की भी बात करते हैं तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वक्त भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, यहाँ मुख्य बात यह है कि यह जो हम पहले परंपरागत कीटनाशी यूज करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते थे, तो मात्रा पे जरूर ध्यान रखेंगे। जो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो परंपरागत है उसका दसवां हिस्सा ही इसमें हो जाता है, तो दसवां हिस्सा से मतलब जितना जरूरी हो उतना ही जो है ना इसका जो है ना उपयोग करें। दूसरी बात है कि जो हवा का जो वेग है, डायरेक्शन है, जो उसका बहने का जो हाँ रुख है, उसको देखते हुए जो है ना किसान भाई को इसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो है ना जब आप नैनो कीटनाशी यूज करते हैं तो मास्क का जरूर यूज करें, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इवन सूक्ष्म होता है और खुली आँखें के द्वारा दिख नहीं पाता और पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया, तो इससे हार्म होने का भी जो है ना विपरीत हेल्थ जो अपना स्वास्थ्य है उस पर जो है ना विपरीत प्रभाव पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए जो है ना मास्क का भी जरूर यूज करना चाहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका उपयोग करें। और मुख्यतः जो है इसका उपयोग जैसे हम पत्ते पे स्प्रे करके करना अच्छा माना जाता है, या दूसरा जहाँ पे देखें कि जो उसका बर्भार जो होता है कीटों का, जो उसका एक्टिव फेज होता है जहाँ बर्भार होता है, लार्वा वगैरह जो है ना, वहाँ अगर कीट नैनो कीटनाशक का उपयोग करें तो इस तरह जो है ना बहुत कारगर माना जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें जिसका कि ध्यान रख के ही किसान भाइयों का नैनो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, नैनो हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए।
1: यानी कि हवा का रुख आप विशेष रूप से ध्यान रखें और जी, जी, अनुशंसित मात्रा है।
0: जी जी जी जी।
1: और मास्क का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया तो परेशानी हो सकती है।
0: जी,
1: तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें, और उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी मिट्टी का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
7: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
8: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
7: हाँ, हाँ, हाँ।

0: कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
6: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती हैं तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ ज़रूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से काम कम ज़रूरी हैं जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये ज़रूरी है, तो कुछ जो ज़रूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है, इससे आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकालें। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति

से निकल जाती है, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना ज़रूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटे। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि घर के लोग समझें, ख़ास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए। किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सकें। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें। और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं, अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझे और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस
संस्था के लिए जरूरी है। क्रेच सुविधा क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है।

0: जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं, और जब आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें, तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी। तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं, और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक़ हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक़ है, तो अपने शौक़ को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक़ हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक़ हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ़्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कराती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के, अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं, और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं, और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है। आंधी के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13-14 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 जून के दौरान सामान्यतः 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आपको बता दें कि 11 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी जिलों में पहुंच चुका है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर और बिहार के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 कि नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान दें कि स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। बीज गिराने से पहले

उपचार करना बहुत जरूरी होता है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में ही बीज गिराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई जल्दी ही कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में ही गाड़ दें। जिनके खेत में सब्जियां हैं वो ध्यान दें, वर्तमान मौसम में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मिर्च में विषाणु जनित यानी कि वायरल रोगों का प्रसार बहुत अनुकूल रूप से होता है। अगर रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत उखाड़ कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दे। इसके बाद वह कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडा क्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। खरीफ प्याज की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई जरूर कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले ध्यान दें कि उस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ अनु और आज एक बार फिर एक खास विषय लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। हम बात कर रहे हैं अजोला की और साथ ही इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप सभी को बताई जाएंगी जो किसान भाइयों के लिए, खेत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज हम बात करेंगे खेती, पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता के बारे में, साथ ही उत्पादन और प्रयोग विधि, आप कैसे अजोला का करेंगे इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा, मृदा विज्ञान विभाग बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अजोला के बारे में बताएं।
2: एक्चुअली अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिनके पत्तियों में एनाविना अजोली नाम का एक नीलहरी शैवाल पाया जाता है। भारत के कई भूभागों में इसका उपयोग पशु आहार, मानव आहार, जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में किया जाता है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण के लिए भी किया जाता है।
0: जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो भारत में अजोला की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं एवं कहां कहां मिल सकती है, साथ ही बिहार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है?
2: देखिए, मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो अजोला की जो कि पाई जाती हैं। उसमें है अजोला कैरोलिनियाना, अजोला फेलिकुलाइड्स, अजोला मैक्सिकाना, अजोला माइक्रोफिला, अजोला पिन्नाटा, अजोला रुब्रा। लेकिन देखिए, पहले अजोला निलोटिका भी पाया जाता था, लेकिन अब अजोला निलोटिका सामान्यता नहीं मिलता है। तो ये जो 6 प्रजातियां हैं, ये 6 प्रजाति हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। भारतवर्ष क्या कहिए कि विश्व में पाई जाती है, यही 6 प्रजाति मुख्य रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है। और जहां तक बात है बिहार की, तो यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह शोध करके देखा है कि यहाँ के वातावरण के हिसाब से जो अजोला माइक्रोफिला है यह सबसे बढ़िया है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है किसी 10-15 दिन अजोला कैरोलिनियाना बहुत अच्छा कर जाए, अगले 10-15 दिन हो सकता है रुब्रा अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अजोला माइक्रोफिला का सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ एक जो लोकल कलेक्शन है यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का BAUAS1, वह भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, खास करके माइक्रोफिला के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस।

0: इसी का देखा गया है।
1: जी, पोषक मान क्या है अजोला का?
0: देखिए, अब एक चीज है कि अजोला, मैंने कहा ही कि उच्च पोषक मान वाला है, इसमें 25-35% प्रोटीन है। अब देखिए 25-35% प्रोटीन है, यानी कह लीजिए कि अंडा, मछली, मुर्गा, इस सबसे भी कुछ मामले में ये ज्यादा प्रोटीन वाला है, तो इसमें 25-35% प्रोटीन पाया जाता है। जहां तक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 4-5% तक पाया जाता है। फॉस्फोरस भी इसमें 0.85% के आसपास पाया जाता है। पोटास की बात करें तो पोटास आपको 2.5% से 4.5% के बीच में इसमें पोटास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे आप विटामिन B12 की बात करें तो 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है। कैल्शियम भी 67 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी 4-3 मिलीग्राम पाया जाता है। गंधक भी पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम। जस्ता भी पाया जाता है 4.1 मिलीग्राम। लोहा की बात करें तो 7.3 मिलीग्राम पाया जाता है। तांबा इसमें 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीज 102 मिलीग्राम पाया जाता है। सोडियम भी 0.26 मिलीग्राम पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें लगभग लगभग जो हमारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न कहते हैं।
1: जी, अगर अजोला का प्रयोग किसान भाई खेती में करते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें?
0: देखिए, ऐसा है, इसका प्रयोग खेती में आज से नहीं होता है, इसका प्रयोग काफी पहले से किया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो दूसरे भागों में था, विश्व के दूसरे भागों में हम कहें तो ज्यादा बढ़िया है, उसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता था, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चूंकि हमने बताया कि इसके पत्ती में नीलहरित शैवाल पाया जाता है, तो ये लोग अभी यही करते थे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इसमें फायदा होता है, नाइट्रोजन की बचत होती है, इसी के लिए करता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने शोध करके इस पर टेक्नोलॉजी भी रिलीज किया है कि हम यदि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा यदि आधी कर दें, लेकिन हम इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें, तो हम देखे हैं कि हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग करके हम 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटास जो हम धान में देते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शोध करके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जो ये प्याज है, खास करके खरीफ प्याज, बिहार में इसका काफी क्षेत्रफल है, तो ये जो खरीफ प्याज है, खरीफ प्याज सड़ता बहुत है, तो यदि अजोला की सिर्फ आप मल्चिंग कर दीजिए तो मल्चिंग करने के बाद यह देखा गया है कि इसमें इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी सड़ता कम है, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो यह सारी चीजें यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने यह देखा है कि यदि हम इसका प्रयोग प्याज में करते हैं तो सड़ता कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़िया होता है। धान में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रिकमेंडेड अनुशंसित नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा है वह भी आधी बच जाती है। यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग न करें, यदि डुअल क्रॉपिंग करें धान के साथ, तब भी हमारे उत्पादन में खास करके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास में बचत होती है, यह चीज हम लोगों ने देखा है।
1: जी, अगर पशुपालन की हम बात करें तो क्या पशुपालन में अजोला का प्रयोग हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में बताइए।
0: बड़ा बढ़िया है, बड़ा आपने समचीन प्रश्न पूछा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वह खेती में तो कम प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी पशुपालन में इसका जरूर प्रयोग कर रहे हैं। जो पशु पोषण है, पशु को जो हम चारा देते हैं, चारा मिल नहीं पा रहा है, और चारा नहीं मिल पा रहा, साथ ही साथ यदि चारा मिलता भी है तो चारा में उतना पोषक मान नहीं होता जितना अजोला में। यदि हम देखें अजोला को तो 100 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हम सिर्फ अजोला को पैदा कर सकते हैं यदि सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उतना कोई भी चारा आपको उत्पादन करके नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो ज्यादा पोषक मान वाला है वह ज्यादा मात्रा में यह उत्पादन करके आपको दे सकता है। अब यह बात है कि पशु पोषण में, यह तो हम लोगों ने यहां शोध करके भी देखा था, जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं वह भी हमारे साथ थे इस प्रयोग में, तो यह करके हम लोगों ने देखा कि यदि हम 1 kg सुबह और 1 kg शाम यदि हम जानवर को देते हैं खाने के लिए, जो भी आप दाना चारा देते हैं उसी के साथ मिला करके 1 kg सुबह में 1 kg शाम में देते हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 8-15.6% तक, यानी 8-16% तक लगभग हमारा दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिर्फ यदि एक किलो सुबह एक किलो शाम यदि हम खिला देते हैं और आपका मान लीजिए गाय है वो 10 लीटर दे रही है, तो 10 लीटर के स्थान पर यदि आपको 1.5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है तो सोचिए कि कितना फायदा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि

0: लेकिन वो इसमें नहीं, बकरी में नहीं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं के पोषण के लिए आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में क्या अजोला का प्रयोग किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में ही इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि केचुआ की तेजी से आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसकी ब्रीडिंग जल्दी से करना चाहते हैं, उसमें भी अजोला आपका बड़ा उपयोगी है। कारण यह है कि अभी हमने बताया कि इसके पोषक मान बहुत अच्छे हैं, तो अब केचुआ भी इसको खा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है बढ़िया उसका वृद्धि होता है। इवन 200 से 250% तक 3 महीने में उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, यह हम लोगों ने शोध करके देखा है। अब प्रश्न उठता है कि जो समृद्धिकरण है क्यों हो जाता है? अब अभी आपने को हमने बताया कि नाइट्रोजन 4.5% से 5.5% है, कहीं से केचुआ बाहर से तो पोषक मान लाएगा नहीं। अब इसमें चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है इसीलिए उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हम 25% तक उसमें मिला रहे हैं, तो 25% तक यदि मिला रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि कम से कम 1/4 तो मामला उसमें जा ही रहा है, तो नाइट्रोजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। पोटास ही हमने बताया 2.5 से लेकर 4.5% तक है, तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होगी, या अन्य पोषक तत्व ही जो इसमें है वो पोषक तत्व के कारण आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वह गुणवत्तापूर्ण बनेगा। और इतना ही नहीं, केचुए की वृद्धि विकास यह भी बढ़िया होगा, तो इसके समृद्धिकरण में भी आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। अजोला की उत्पादन विधि के बारे में थोड़ा बताएं।
0: अब जहां तक अजोला के उत्पादन विधि की बात है, तो यदि आप ये पशुपालन के लिए करते हैं, तो पशुपालन के लिए कर रहे हैं तो जो आप बगल में जो फार्म है जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर गड्ढा आप बना लें। गड्ढा ऐसा है कि आप 2×2 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2×1 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2.25×1.5 मीटर का भी बना सकते हैं। हाँ, गहराई इसका 30 सेंटीमीटर से लेकर 0.5 मीटर तक गहराई रखें। अब क्या है कि जो गड्ढा आपने बना लिया तो गड्ढे के नीचे कोई पॉलीथीन बिछा दीजिए, जैसे पानी रिसे नहीं, उसका कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर आप उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं। यदि आपने 30 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आप कम मिट्टी की ऊंचाई रखेंगे, यदि 0.5 मीटर का रखे हुए हैं तो मिट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं। तो अब आपने मिट्टी कर दिया, इसके ऊपर ये जो है आप 2 से 4 इंच कम से कम पानी रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए, तो वह आपने वहां पर पानी डाल दिया। जब पानी डालेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां झाग वाग होगा, तो जो भी आपके पास तांबे की या प्लास्टिक की जो भी जाली रखते हैं तो उसके जो स्कम है, उसके जो झाग है, उसको आप चाल करके वहां से हटा दिए। हटा देने के बाद उसमें जो है आपको ये डाल देना है, क्या कहते हैं, अजोला। तो अजोला को कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में यूज करते हैं तो उसमें कीड़े की भी समस्या आती है, तब आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है। लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, जो आप पानी डाले हैं उस पानी में गोबर भी मिलाया जा सकता है, मिलाया जाता है, जो एक आपका स्क्वायर मीटर में है 1 से 1.5 kg जो गोबर है उसको पानी में 10-15 मिलीलीटर पानी में घोल करके, जो बालू चालने वाला चलनी है उस चलनी से चाल करके उस स्लरी को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप गोबर मिलाते हैं तो बहुत सारा जानवर खाने में नाटक करता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तब भी आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, वहां पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे डालेंगे भैया? तो इसमें आप ये कीजिए कि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए, और उसमें 0.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाइए, और इसको मिला करके जो उसका 5 ग्राम है, 10 ग्राम भी कर सकते हैं लेकिन 5 ग्राम अनुशंसित है, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए, तो 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें डालते रहें हफ्ता 10 दिन के बाद। तो आप इस ढंग से करेंगे, कारण ये है जो अजोला है उसको फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, तो जो फास्फोरस का रिक्वायरमेंट है वह उसको मिल रहा है, और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भैया इतना ज्यादा यदि हम को अजोला वहां पर चाहिए धान के लिए, वहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए, वहां पर आपको करना यह है कि यदि हरी खाद के लिए करते हैं तो खेत में ही क्यारी बना लीजिए, वहां 10×2 मीटर का या 10×1 मीटर का क्यारी बना लीजिए। अब यह क्यारी बना करके उसमें वही गोबर डाल करके, गोबर का घोल डाल करके, और उसमें आप अजोला डाल करके और उसके बाद उसकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डुअल क्रॉपिंग के लिए करते हैं, जैसे धान का और अजूला का एक ही साथ वृद्धि करवाना चाहते हैं तो वह

0: वहां पर जितना आप ग्रीन मैन्योरिंग में डालते हैं उसका दसवां हिस्सा ही वहां पर आप प्रयोग कीजिए। जब धान आपको 5-7 दिन 10 दिन का हो गया रोपा हुआ तो उसी में पानी थोड़ा सा 2-4 इंच जरूर रहना चाहिए, उसमें अजोला आपने छिड़क दिया और जितना आपने फास्फोरस डाला था वो कम से कम 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा दीजिए। और उसकी मात्रा को बढ़ा करके आपने डाल दिया और 15 से 21 दिन तक जो पानी का स्तर है 2 से 4 इंच आप बरकरार करके रखेंगे तो देखेंगे कि पूरा खेत अजोला से भर गया। अब उसके बाद पानी के स्तर को कम कर दीजिए। अब पानी के स्तर को कम करके छोड़ देंगे तो वह जितना अजोला है वह आपके मिट्टी को पकड़ लेगा और उसके बाद वह खुद वहां पर ये खत्म हो करके वो हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था कि जब आप अजोला पैदा कर रहे हैं पशु के लिए तो वहां पर हरेक 15-20 दिन के बाद आप 1/3 पानी को जरूर निकालते रहिए, नए पानी से उसको प्रतिस्थापित करते रहिए और जब मिट्टी काली हो जाए तो अब उसकी स्थिति में आप मिट्टी को हटा करके फिर जब काली मिट्टी हो गई तो फिर नई मिट्टी डालना पड़ेगा, ये करेंगे तभी आपका अजोला चलेगा। तो ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों को आप जान करके अजोला का उत्पादन करके अपने पशुपालन में भी फायदा कमा सकते हैं, खेती में फायदा कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन फिर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सबौर में आइए। हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, यहाँ आकर के सीखें और जरूर इसका उपयोग करें।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता, उत्पादन और प्रयोग विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से।

0: खुशहाली तक।
1: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखने में छोटन लागे है घाव करे गंभीर, तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
1: जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है।
1: जी,
2: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर

0: की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
1: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थीरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
1: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बात

0: आपको आज की वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया, आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
10: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
9: जी।
10: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
9: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
10: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है और जैसे

0: अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
1: तो मान लिया जाए जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
0: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में।
1: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
0: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
1: जी,
0: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
1: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
0: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना
0: है? महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक, मेथी, धनिया की चटनी, हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फ़ायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए, और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था, तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।
2: सुन रहे हैं।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियां। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें।